जब उन्हें हमारी साफ साफ बातें सुनी जाती हैं तो वो लोग जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते कहते हैं कि इसके बजाय कोई और कुरान लाओ या इसमें कुछ तरमीम करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मेरा ये काम नहीं है कि अपनी तरफ से इसमें कोई तगय्युर व तबद्दुल करूं, मैं तो बस उस वही का पैरो हूं जो मेरे पास भेजी जाती है। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े हौलनाक दिन के आजाब का डर है। और कहो अगर अल्लाह की मशीयत यही होती तो मैं ये कुरान तुम्हें कभी ना सुनाता और अल्लाह तुम्हें इसकी खबर न देता। आखिर इससे पहले मैं एक उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूं, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? फिर उससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो एक झूठी बात घड़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की वाकई आयात को झूठा करार दे? यकीनन मुजरिम कभी फलाह नहीं पा सकते। ये लोग अल्लाह के सिवा उनकी परस्तिश कर रहे हैं जो इनको न नुकसान पहुंचा सकते हैं न नफा, और कहते ये हैं कि ये अल्लाह के हां हमारे सिफारिशी हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो क्या तुम अल्लाह को उस बात की खबर देते हो जिसे वो न आसमानों में जानता है और न जमीन में? पाक है वो और बाला बरतर है उस शिर्क से वो ये लोग करते हैं। इब्तिदाअन सारे इंसान एक ही उम्मत थे, बाद में उन्होंने मुख्तलिफ अकीद मसलक बना लिए। और अगर तेरे रब की तरफ से पहले ही एक बात तय न कर ली गई होती तो जिस चीज में वो बाहम इख्तिलाफ कर रहे हैं उसका फैसला कर दिया जाता। और ये जो वो कहते हैं कि इस नबी पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई, तो इनसे कहो गैब का मालिक व मुख्तार तो अल्लाह ही है। अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं।

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: किसी भी हालत में उसे छोड़ने या नजरअंदाज कर सकता, और इस तरह वो उस अहमियत वाली चीज को चाई से अपनाता है और उसके हुसूल के लिए हर हमेशा गुदो करता रहता है। या फिर उसके मुकाबले उस शख्स के लिए भी ये कहावत इस्तेमाल की जा सकती है, और ख्वाब गफलत में वो कीमती शय खो बैठा हो। तो इस मौके पर इस कहावत के जरिए उस शख्स की गफलत के लिए सरजनिश की जाती है। जैसे कहा जाता है, अगर तुम्हें वाकई अहमियत थी तो तुम वो वक्त कभी नहीं गंवाओगे। जिसके दिल में नमाज हो तो नमाज कजा नहीं कर सकता।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी हेल्थ फॉर ऑल सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेल्थ फॉर ऑल में

0: प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियां निहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: एक दफा का जिक्र है, एक भेड़िया अपने दोस्तों के साथ जंगल में रहता था। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उसे खाने की तलाश करना बहुत मुश्किल होता था। हर दिन उसे अपना पेट भरने के लिए कई जंगली जानवरों का पीछा करना पड़ता था। लेकिन एक दिन भेड़िये ने सोचा, अगर मैं किसी किसान के खेत में जाकर कुछ भेड़े चुरा लूं, तो मेरा काम आसान हो सकता है। एक दिन भेड़िया अपने दोस्तों से कहकर एक खेत के पास गया। वहां से कई भेड़े मिल गईं, जो खेत के आसपास ही घूम रही थीं। भेड़िये को लगा कि पेट भरने का ये सबसे आसान तरीका है। लेकिन जब उसने भेड़ों का शिकार करना शुरू किया, तब खेत के किसान और उसके कुत्ते उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगे। किसान के कुत्तों ने फौरन भेड़िये का पीछा करना शुरू कर दिया। बाद में जाकर भेड़िये को ये ख्याल आया कि भाई ये प्लान तो बिल्कुल गलत था, और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। भेड़िये ने ऐसे तैसे कर अपनी जान बचाई, लेकिन वो काफी उदास और गुस्से में भी था। उसे समझ आया कि जिस गलत काम की वजह से उसे मार का सामना करना पड़ा, वो उसकी अपनी गलती थी। अगर ये किसान मेरे लिए अपनी भेड़े छोड़ देता, तो मुझे क्यों शिकार करना पड़ता भाई, भेड़िये ने सोचा। कुछ दिन बाद भेड़िया वापस उसी खेत के पास गया। उसने देखा किसान और उसके खानदान वाले लैम रोस्ट खाने की तैयारी कर रहे थे। किसान और उसके खानदान वाले रोटी, सब्जी और गोश्त के साथ खाना खाने का प्लान बना रहे थे। भेड़िये को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। इस किसान को तो देखो, ये अपनी रोटी और अपनी सब्जी खाता है, और जब मैं इनकी भेड़े चुराने का सोचता हूँ, तो उसे लगता है कि मैं चोर हूँ। कितनी नाइंसाफ है, देखो खुद ही तो खा रहा है ना अपनी भेड़े। भेड़िये अपने अंदर का गुस्सा समझ नहीं सका। उसे लग रहा था तो किसान के लिए सिर्फ एक शिकार था, और किसान सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही अपनी भेड़े रखना चाहता था। ये कैसा इंसाफ हुआ भाई, सब खुद अकेले अकेले खा रहे हैं, भेड़िये ने अपने आप से कहा। लेकिन जैसे ही एक बार फिर भेड़िये ने किसान के खान को देखा, उसे समझ आया कि उसकी अपनी बात भी उतनी ही गलत थी जितनी किसान की थी। किसान अपने खानदान के लिए खाना बना रहा था, और भेड़िया अपनी भूख के लिए दूसरों की चीजें चुरा रहा था। भेड़िये को अपनी गलती का एहसास हुआ। भेड़िये ने अपनी पुरानी सोच पर गौर किया, और तब जाके उसे समझ आया कि कभी कभार हम दूसरों के बारे में फैसला करने के लिए जल्दी कर देते हैं, बगैर ये

समझे कि हम खुद कितने गलत हो सकते हैं। भेड़िये ने सोचा, क्या मुझे भी किसान की तरह अपनी जिंदगी में अपने काम करने का हक नहीं था? लेकिन एक बात है, मैंने किसान की भेड़ें चुराने की कोशिश भी तो की थी ना, और किसान अपने लिए लैम रोस्ट बना रहा था। भेड़िये को समझ आ गया था कि अक्सर हम दूसरों की गलतियां देखकर उन्हें जज करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। भेड़िये को ये सबक मिला कि जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तो पहले अपने काम को देखना बहुत जरूरी होता है। हम जो दूसरों पर इल्जामात लगाते हैं, वो जरूरी नहीं कि हमारे अपने काम से बेहतर हों। उस दिन भेड़िये को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसीलिए भेड़िये ने अपनी गलती को समझा और सोचा कि आगे से वो दूसरों को जज करते वक्त अपनी गलतियों को नहीं भूलेगा और अपनी जिंदगी में इंसाफ और समझदारी के साथ काम करेगा। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम दूसरों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं बगैर अपनी गलतियों को देखे हुए। हम अक्सर अपने काम को सही समझ दूसरों के कामों को गलत समझते हैं। जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं समझे, हम दूसरों की बुराई करते हुए अपने आप को भी ठीक से नहीं समझते। भेड़िये की कहानी हमें ये बताती है कि दूसरों को समझने से पहले हमें अपनी सोच और हरकतों पर गौर करना चाहिए। हमें अपने काम को सही या गलत समझकर दूसरों को जज करना चाहिए। और अगर हम कभी अपनी गलतियों को समझ भी लेते हैं तो ये जान लें कि हम दूसरों को भी समझ पाएंगे और जिंदगी में इंसाफ के साथ रह सकेंगे।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है, इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है? किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है? इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुताल्लिक जरूरी मालूम करने के लिए समाप्त कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूं नाज़िया आपके साथ एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल्ड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की चेन की। वो गुड़ वाली चेन नहीं, ना साइकिल की चेन भी नहीं, ये चेन है ब्लॉक्स की। हाँ, इस टर्म को आपने आप श्योर बहुत बार सुना होगा, लेकिन शायद इसके काम करने का तरीका उतना हमें पता नहीं है। तो आज की जो टर्म है वो है ब्लॉकचेन। देखिए, हम सब ने ब्लॉकचेन का नाम बहुत सुना है, लेकिन हमें खुद को भी नहीं पता था। मेरा मतलब, मैं अपने आप को कह रही हूँ कि मुझे भी पता था कि एक्चुअली काम कैसे करता है। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि चलो, मुझे आपके साथ भी इसकी थोड़ी सी डिटेल शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बनने वाले हैं ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन क्या है? बड़ा सवाल है। नहीं, ब्लॉक बेसिकली एक डिजिटल लेजर जो ट्रांजेक्शंस या फिर रिकॉर्ड्स को सिक्योर तरीके से स्टोर करता है। इसे एक चेन ऑफ ब्लॉक समझा जा सकता है और हर ब्लॉक में कुछ ट्रांजेक्शंस का डेटा होता है और ये ब्लॉक्स एक दूसरे से क्रिप्टोग्राफिक लिंक के जरिए जुड़े होते हैं। सबसे ज्यादा खुसूसी पहलू ये है कि ये सेंट्रलाइज सर्वर की जगह डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पर चलती है, यानी कि कंप्यूटर्स के पास इसी लेजर की कॉपी होती है। तो ये बात तो मेरी समझ में आई, और अब समझना ये है कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। तो देखिए, जब ब्लॉकचेन के काम की बात करें तो सबसे पहले ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड रखने का काम इसका हम सबको समझ में आता है। जब कोई ट्रांजेक्शन होता है, मिसाल के तौर पर डिजिटल करेंसी जब भेजी जाती है तो वो ट्रांजेक्शन नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होता है। इसके अलावा फिर कुछ ट्रांजेक्शंस को इकट्ठा करके एक ब्लॉक बनाया जाए और हर ब्लॉक में ट्रांजेक्शंस का डेटा, टाइम और पिछले ब्लॉक का क्रिप्टोग्राफिक हैश होता है। यानी ब्लॉकचेन बेसिकली हैशिंग और लिंकिंग के जरिए काम करती है। हैश बेसिकली एक यूनिक कोड होता है जो ब्लॉक की समरी को डिस्प्ले करता है। अगर ब्लॉक का डेटा बदल जाए तो उसका हैश

बदल जाता है जिससे चेन टूट जाती है। हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक से हैश को कंटेन करता है, इससे टेम्परिंग मुश्किल हो जाती है। वहीं इसके काम करने के तरीके की अगर मैं बात करूं तो एक अलग तरीके का मैकेनिज्म है। जी हाँ, नेटवर्क के नोड्स इस बात पर एग्री करते हैं कि ब्लॉक सही है या नहीं। इसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे POW यानी प्रूफ ऑफ वर्क, जहां माइनर कॉम्प्लेक्स पजल्स सॉल्व की जाती है। वहीं पर दूसरा होता है POS यानी प्रूफ ऑफ स्टेक, जहां वैलिडेटर्स अपने कॉइन स्टेक करके ब्लॉक्स वैलिडेटते हैं। इसके अलावा अगर इसके काम करने के तरीके की बात की जाए तो ब्लॉक्स का ऐड होना और रेप्लिकेशन भी इसी के अंडर आता है। जब मेजॉरिटी नोड्स ब्लॉक को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो ब्लॉकचेन में ऐड हो जाते हैं और नेटवर्क के तमाम नोड्स अपनी कॉपी अपडेट कर लेते हैं। वहीं एक दफा ब्लॉकचेन ऐड हो जाए तो उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए नेटवर्क की बहुत सी कॉपीज के साथ चेंजेस करने होंगे जो कि उतना फीसिबल नहीं। वैसे तो ब्लॉकचेन को लेकर मिक्स्ड लोगों की एक मिक्स्ड ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको उतना अच्छा नहीं मानते। वैसे मैं कहूंगी कि ब्लॉकचेन के बहुत सारे फायदे हैं, वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लॉकचेन के एडवांटेजेस की। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो काफी ऑब्वियस है वो है सिक्योरिटी, यानी क्रिप्टोग्राफी और डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर की वजह से डेटा को चेंज करना या अनऑथराइज एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी काफी टाइट हुई। वहीं दूसरी चीज जो समझ में आती है वो है ट्रांसपेरेंसी। जी हाँ, नेटवर्क में ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड शेयर होता है जिससे ऑडिट और मॉनिटरिंग आसान हो जाती है। हर पार्टिसिपेंट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकता है, यानी पब्लिक ब्लॉकचेन में जाए और देख सकता है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी भी है। इसके अलावा एक और बड़ा जो एडवांटेज है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। जी हाँ, किसी एक अथॉरिटी के कंट्रोल की बजाय नेटवर्क में कई पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हटा देते हैं, तो ये बात भी काफी अच्छी है। और दूसरी बात जो अच्छी है इसके बारे में वो है कि रिकॉर्ड्स एक मर्तबा लिख जाए तो उसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। ये फ्रॉड के खिलाफ काफी मददगार होती है, यानी यहाँ पर जो भी डेटा है वो इम्यूटेबल है, तो ये भी इसका एक बड़ा फायदा हुआ। दूसरी चीज है ऑटोमेशन। दूसरी नहीं, चौथी चीज हुई ऑटोमेशन। बेसिकली कुछ ब्लॉकचेन्स जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट करते हैं। ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड होते हैं जो कंडीशंस पूरे पर ऑटोमेटिकली एक्शन ले रहे हैं। इसके अलावा इसको और बड़ा एक एडवांटेज है ट्रेसेबिलिटी। सप्लाई चेन जैसे सिस्टम में किसी प्रोडक्ट का पूरा सफर ब्लॉकचेन पर आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, और ये इसका बड़ा फायदा भी है। वहीं चलिए इसके मैंने कुछ एडवांटेजेस पे बात की, तो ऐसा नहीं है कि इसके कोई भी किसी भी तरह के डिसएडवांटेजेस नहीं है। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, और एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जितनी भी पॉपुलर ब्लॉकचेन्स होती हैं वो कभी कभी स्लो हो जाती हैं और ट्रांजेक्शन की जो कॉस्ट है या फीस है वो बढ़ती है, खासतौर पर जब नेटवर्क बिजी हो, तो ये भी एक मसला बनता है। वहीं पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ब्लॉकचेन्स जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करी है, यानी प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम जैसे बिटकॉइन बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करता है, जो कहीं ना कहीं अमेंट के लिए अच्छा नहीं है, तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज हुआ। वही एक और चीज जो समझ में आती है वह प्राइवेसी कंसर्न्स। पब्लिक ब्लॉकचेन्स पर जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट होते हैं, अगर आइडेंटिटी लिंक हो जाए तो प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो ये भी बड़ा डिसएडवांटेज हुआ। इसके अलावा कुछ रेगुलेटरी और लीगल मसाइल भी होते हैं, जैसे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज के लिए रूल्स अभी इवॉल्विंग है, लीगल क्लैरिटी की कमी अडॉप्शन में बैरियर आती है, तो ये भी एक बड़ा बैरियर है। वही एक और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इररिवर्सिबल ट्रांजेक्शंस। अगर गलती से पैसे भेज दिए या प्राइवेट की खो जाए तो ट्रांजेक्शन वापस लेना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज।

0: एडवांटेज हुआ। वहीं इसके साथ कुछ और भी डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट और साथ ही कॉम्प्लेक्सिटी। जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्लॉकचेन इंटीग्रेट करना महंगा और टेक्निकली चैलेंजिंग हो जाता है। वहीं पर कभी कभी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी डेवलप हो जाती है। लोग समझते हैं कि ब्लॉकचेन सब कुछ सिक्योर बनाता है, लेकिन अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बग हो या प्राइवेट कीज लीक हो तो नुकसान बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अब मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉकचेन है क्या, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। तो बस लास्ट में मैं यही कह सकती हूँ कि ब्लॉकचेन एक बहुत ही पावरफुल एक कॉम्प्रोमाइजिंग टूल है, जो ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हैं जो मैंने आपको बताए, और आप समझिए कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इरिवर्सिबल ट्रांजेक्शंस हैं, रेगुलेटरी और लीगल प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, प्रिवेसी कंसर्न्स भी हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, वगैरह वगैरह। तो अगर आप सोच रहे हैं ब्लॉकचेन इस्तेमाल करूं कि ना करूं, तो अब आपके सामने सब कुछ एकदम क्लियर क्रिस्टल है। मतलब आप जो हैं, अगर खुद आपके पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, सो व्हाई डोंट यू टेक सम लीगल एक्सपर्ट्स कंसल्ट कर सकते हो, या किसी और टेक्निकल एक्सपर्ट या फाइनेंशियल एक्सपर्ट को आप कंसल्ट कर सकते हो। और ब्लॉकचेन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बार बार आप कंसल्ट कीजिए, थोड़ा सा खुद मुतमईन हो, एक्सपर्ट्स की राय लीजिए और उसके बाद ही इसका इस्तेमाल कीजिए। तो बस मैं यही कह सकती हूँ। वैसे तो हर चीज के कुछ ना कुछ प्रोज और कॉन्स हैं, लेकिन उनका सही तरीके से बैलेंस इस्तेमाल आपको जो है वो कामयाब और मुतमईन बना सकता है। चलिए आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। चला नए सेगमेंट में एक और नए टर्म के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्लाह।

तो यह कि निकाह के लिए सबसे पहले अंदरूनी आमादगी जरूरी है। दोनों के अंदर यह शऊर पैदा होना चाहिए कि वो सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं एक दूसरे इंसान के हुकूक के साथ जिंदगी गुजारने जा रहे हैं। इसी तरह जहनी तौर पर तैयार होना, जहनी आमादगी, इसका मतलब यह कि इंसान को मालूम हो कि शादी हर वक्त रोमांस का नाम नहीं, इसमें इख्तिलाफ होगा, मिजाज का फर्क होगा, बाज़ तवक्कात पूरी नहीं होंगी, कभी माफी मांगनी होगी, कभी अपनी पसंद मुअख्खर करनी होगी। तो जो शख्स सिर्फ अपनी ख्वाहिश को देखता है और दूसरे इंसान के हक को नहीं, वो निकाह के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं। एक मर्द के लिए सिर्फ ये काफी नहीं कि वो कहे मैं शादी करना चाहता हूँ, उसे अपनी जिम्मेदारियां उठाने की अहलियत पैदा करनी होगी, उसके अंदर फैसला करने की सलाहियत हो, अखलाक में पुख्तगी हो, उससे पर किसी हद तक काबू हो, अहलिया को महफूज और बाइज्जत जिंदगी दे रहा हो और ये समझे कि शौहर होना इख्तदार की कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी की अमानत है। ये भी समझे कि घर में मर्दांगी ऊंची आवाज से साबित नहीं होती, किरदार, खिदमत, हिफाजत और अहद की पाबंदी से साबित होती है। बिल्कुल उसे एक औरत के लिए भी शादी सिर्फ लिबास, तकरीब और नए घर का नाम नहीं, उसे भी इस दिवाजी जिंदगी की हकीकत समझने की जरूरत है। घर के नजम महालात, बाहमी मुशावरत, शौहर के मिजाज, खानदान के मामलात और मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों से वाकिफ होना चाहिए। इसी तरह दोनों को गुफ्तगू, इख्तलाफ के हल, वक्त की तंजीम और बच्चों की तरबियत की बुनियादी समझ होनी चाहिए। फिर सामिन इकराम, माली आमादगी की बात आ जाती है, यानी शादी के लिए माली तैयारी भी अहम है। यानी इसका मतलब ये नहीं नौजवान के पास महल, महंगी गाड़ी और गैर मामूली दौलत जरूर हो, बल्कि ये है कि वो बुनियादी अखराजात, रिहाइश और जिम्मेदारियों के बारे में हकीकत पसंद हो, उसे मालूम हो कि आमदन कितनी है और खर्च कैसे होगा, कर्ज और नमूदो नुमाइश से बचना होगा, जरूरियात और ख्वाहिशात में फर्क करना हो और शादी को ऐसी महंगी तकरीब न बनाया जाए जो नए घर की इब्तिदा ही माली दबाव से करे। माली आमादगी का असल मतलब माली जिम्मेदारी का शऊर है। फिर एक और अहम मौजू है कि हर उम्र के निकाह की अपनी अपनी जरूरियात होती हैं। निकाह 20 बरस की उम्र में हो, 30 में, 40 में, उसके बाद हर मरहले की अपनी नफसियाती और अमली जरूरियात होती हैं। कम उम्री में होने वाली शादी में दोनों अफराद एक दूसरे के साथ जिंदगी बनाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता होते हैं। दरमियानी उम्र में शादी करने वाले अफराद के पास पहले से कायम आदात, तजुर्बात और बाज़ औक़ात खानदानी जिम्मेदारियाँ भी हैं। बाद की उम्र में निकाह का मकसद रिफाकत और सुकून ज्यादा नुमाया हो सकता है, इसलिए निकाह के लिए एक ही नुस्खा सब पर लागू नहीं किया जा सकता। हर उम्र में आमादगी, हालात और जिम्मेदारियों का अलग जायजा जरूरी है। अब अगर कोई ये सवाल करे कि जल्द शादी की जाए या मुकम्मल पुख्तगी के बाद, यानी अकल, जहनी तौर पर आमादगी मुकम्मल हो, अकली पुख्तगी कामिल हो, फिर शादी की जाए, इस मौजू पर दो मारूफ आरा सामने आती हैं। एक राय यह है कि इंसान निस्बतन कम उम्र में शादी करे ताकि अपनी औलाद के साथ जवानी और कुव्वत के ज़माने में ज़िंदगी गुजार सके। दूसरी राय है कि पहले मुकम्मल जहनी, माशी और शख्सी पुख्तगी हासिल करे, फिर शादी करे। हकीकत में सामने कराम दुरुस्त यह है कि असल मेयार उम्र नहीं, असल मेयार अहलियत है। बाज़ अफराद कम उम्र में भी जिम्मेदार होते हैं, बाज़ ज़्यादा उम्र में भी जज्बाती तौर पर नापुख्ता रहते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं कि उम्र कितनी है, बल्कि ये है कि क्या यह शख्स जिम्मेदारी उठा सकता है, क्या वो अपने फैसले के नताइज बर्दाश्त कर सकता है, क्या वो दूसरे इंसान के हुकूक पहचानता है या नहीं। वैसे इस्लामी नुक्ता नज़र में बुलूग के बाद इंसान शरी जिम्मेदारी के दायरे में दाखिल हो जाता है। ये खुद इस बात का इशारा है कि हमारी तरबियत का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि बच्चा बुलूग के करीब पहुँचते पहुँचते जिम्मेदारी, इबादत, अखलाक, माली शऊर और ज़िंदगी की बुनियादी महारतें सीख चुका हो। लेकिन आज का मतलब यह है कि हम जिस्मानी तौर पर बड़े हो जाने वाले नौजवानों को भी तवील अरसे बच्चों की तरह रखते हैं। 17 या 18 बरस का नौजवान अपने कपड़े तक मुनज़्ज़म नहीं कर सकता, अपना कमरा नहीं संभालता, अपना मामूल नहीं बना सकता, अपनी तालीम की जिम्मेदारी वालिदैन पर डाल देता है। फिर अचानक शादी के बाद हम उससे एक मुकम्मल जिम्मेदार शौहर या बीवी बनने की तवक्को करते हैं। तो मसला यहाँ सिर्फ नौजवान का नहीं, तरबियत के निज़ाम का भी है। अगर बालिग होने के बाद ही बेटा या बेटी बुनियादी जिम्मेदारी नहीं उठाते तो मसला सिर्फ उनकी ज़ात में नहीं, उसमें घर की

0: जाते हैं, इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर रखें, ट्रैफिक साइंस और सिग्नल का एहतराम करें और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। याद रखें, आपकी छोटी सी एहतियात से न सिर्फ की जिंदगी महफूज होती है बल्कि आप अपने फैमिली और मुआशरे की भी हिफाजत करते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि सड़क पर एहतियात और सब्र से चलिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को पहली तरजीह दीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: डेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहिए। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ F107 पर, दिल से देसी।
2: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: FM 107. Time check. Time check. राइट गाइस, टाइम फॉर द टाइम चेक. और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01.
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर. दिल से देसी.
0: दोस्तों सलाम आदाब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करें आप लोग खैरियत से होंगे. और एक और नया दिन, और आज है मंडे. आज है बहुत ही खूबसूरत सा नया दिन, 4th of August, एक और नई तारीख, और हम आराम साथ में आ चुके हैं. अच्छा, आज भी ना मैं कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करूँ. पता है क्यों? क्योंकि सुबह सुबह मुझे लगता है कि जब आओ तो कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर करनी चाहिए हमें आपको, जो हमने कल ऑब्जर्व की, परसों की, या सुबह सुबह हमने कुछ की. जैसे कल मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया था, आज भी मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ. और आज की बात जो है ना, वो शुरू करते हैं एक बहुत ही छोटी सी बात से. देखो, मैं सुबह आती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे दिखते रहते हैं सुबह काम करते हुए, और मैं खुद को भी देखती हूँ और कंपेयर करती हूँ. तो मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं जो हूँ वो उस कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ जिसको हर वक्त थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा नखरा रहता है, परेशानी रहती है, सोच रहती है, और हर चीज़ जो है वो मुझे मेरे मुताबिक जब ना मिले ना तो मुझे

0: जो है वो कहीं ना कहीं एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन होता है. अब मैं जब आ रही थी तो मैंने देखा कि कितने सारे हमारे जो है ना भाई लोग जो है मजदूर भाई वो काम कर रहे थे, आपस में हंस भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे. और मुझे महसूस हुआ कि शायद वो एक लंबे टाइम से काम कर रहे हो सकता है रात से काम चल रहा होगा, हो सकता है अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जब हम और आप सो रहे थे शायद तब से उन्होंने काम शुरू कर दिया. इस सख्त गर्मी में उसमें भी काम भी कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, अपनी दोस्ती भी निभा रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं. अब इतनी मेहनत इतनी मशक्कत के बावजूद खुश नजर आए. तो पता है मुझे उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैंने उनसे कोई इंट्रैक्शन नहीं की, लेकिन मैंने कुछ ना उनसे सीखा. और वो ये कि जिंदगी में देखिए मसाइल तो हम सबकी जिंदगी में है, लेकिन हम अपनी सोच से अपनी प्रॉब्लम्स को आधा जो है वो सॉल्व कर लेते हैं. सोच इन द सेंस हमारे किस तरह की सोच है, जैसी हमारी सोच होगी वैसे ही तो हमारा एटीट्यूड भी होगा. तो हम अपनी सोच को अगर थोड़ा सा पॉजिटिव रखें, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखें, थोड़ा सा अपलिफ्टेड रखें, तो शायद हमारी ज़िंदगी जो प्रॉब्लम्स हैं हो सकता है सॉल्व हों या ना हों, लेकिन कुछ हद तक हमारे लिए जो है हमारे ऊपर उतनी हावी नहीं होंगी. तो बड़ी आसान सी चीज़ जो मैंने एक्सट्रैक्ट की इन लोगों को काम करते हुए हंसता मुस्कुराते देखते हुए, वे ये कि हम अक्सर उन चीज़ों पर ही फोकस कर रहे होते हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं, जबकि खुशी देखा जाए तो उन चीज़ों में मिलती है जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं. और हर नई सुबह एक नया मौका लेकर आती है कुछ नया करने का, कि मदद करने का और अपने ख्वाबों को एक कदम आगे बढ़कर पूरा करने की कोशिश करने का. तो चलिए आज के दिन की शुरुआत जो है वो किसी भी शिकवा और शिकायत पर नहीं बल्कि मुस्कुराहट और उम्मीद के साथ करते हैं. मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया और पूरे 3 घंटे आपके साथ रहने वाली हूँ इसी शो में जिसका नाम है समर मॉर्निंग्स. आज का शो स्पेशल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज है ट्यूसडे एंड ट्यूसडे वी सेलिब्रेट अस टर्निंग दैट ट्यूसडे. तो 90s के गाने भी आपके लिए प्ले किए जाएंगे बैक टू फ्रॉम 7 AM ऑनवर्ड्स. और अगर आपका कोई 90s का फेवरेट सॉन्ग है तो हाँ मुझे पहले से ही आप जो है वो भेज सकते हैं. नंबर है 666-22-107. इस नंबर पर मुझे भेजिए तो आज की अच्छी बातें होंगी, ज़बरदस्त सा म्यूजिक होगा, पॉजिटिव वाइब है और शो की शुरुआत जो है वो सुबह के असकार से. तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं मॉर्निंग असकार की तरफ. वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. और हाँ तब तक आप भी सोच के रखिए कि आप मेरे साथ क्या शेयर करने वाले हैं. 666-22-107 इज द नंबर.
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है. इन्हीं पाकीजा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं. इरादे खुदावंदी है. वज़कुर इस्मा रब्बिक बुकरतन व असीला. और सुबह शाम अपने परदिगार के नाम का जिक्र किया करो. और अब समाज फरमाइए सुबह के अज़कार FM 107 पर.

0: रोशनी। अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
1: अपने शरई मसाइल के हल, रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक दीनी रहनुमाई, अहले इल्म के मुदलल जवाबात और मुफीद इल्मी गुफ्तगू सुनने के लिए समात कीजिए नूर इस्लाम। तरतीबो पेशकश फुरकान शाहिद कासमी, हर जुमा शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: दोस्तों, असल में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैराज 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर अमेतराज ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

0: पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैत्राज 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर प्रेस भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
1: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप,
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
1: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज सहूलियात खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचे तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

गाइस एक बार वापस आप सबको कहेंगे वेलकम खुश आमदीद आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड इट्स 6:20 ऑन द क्लॉक तो कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ पर जुड़ चुके हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है 6622107 तो चलिए आइए सबसे पहले इनका हालचाल ले लेते हैं यहाँ पर सलाम कहते हैं गुड मॉर्निंग कहते हैं विशिंग एवरीवन अ ब्यूटीफुल फुल एंड ब्लेस्ड डे अहेड यूसुफ शमीम जी गुड मॉर्निंग एंड वी विश यू द सेम मैन इसके साथ हमें एक और खूबसूरत सा मैसेज है इनका नाम हम चेक करते हैं इनका नाम है अजहर गुड मॉर्निंग कहते हैं अ वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप अजहर इसके साथ हुसैन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं अ वेरी गुड मॉर्निंग यासिर हमारे साथ अलखोर से गुड मॉर्निंग कहते हुए अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको इसके साथ अहमद हमारे साथ हैं गुड मॉर्निंग अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी ओके कैसे हैं आप कलीम जी ने मुझसे पूछा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे इसके साथ हमारे साथ एक और ये मैसेज है मोहम्मद जी का मोहम्मद जी सलाम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम गुड मॉर्निंग अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको न्याज हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं गुड मॉर्निंग अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सऊदी से हमें सुनते हुए मियाँ बख्श उदासी जी गुड मॉर्निंग कहते हैं वालेकुम अस्सलाम अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको सभी सुनने वालों को सलाम का हाय वालेकुम अस्सलाम इसके अलावा एक और वॉइस नोट है जो चलिए अभी तो खैर मैं अभी सुन के फिर बताते हैं सुनने मतलब आप लोग सलाम मुझे पता है कि लिखना टाइप करना भी मुश्किल होता है ना और आप कभी ड्राइव कर रहे हैं कभी कुछ और काम कर रहे हैं तो ऐसे में कहाँ ही हो पाता है अच्छा यहाँ पे हुसैन जी हैं गुड मॉर्निंग कहते हैं और कहते हैं कि बहुत ही अच्छी शुक्रिया मैडम आपने बहुत ही प्यारी बात बताई और मेरी भी ड्यूटी जो है वो सुबह तक चलती रहती है रात से इनकी सुबह तक चलती है ओके नाइस और यहाँ पे कासिम जी हमारे साथ जुड़े हुए गुड मॉर्निंग कहते हुए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको ओके सलाम यहाँ पर भेजा है और अभी तो टाइप कर रहे हैं गुड मॉर्निंग भी कहते हैं इंजीनियर मोहम्मद फैजान जी सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वालेकुम अस्सलाम

को इसके तो एक और ये मैसेज है और ये मैसेज हम चेक कर लेते हैं. इनका नाम, सबके नाम जो है वो मुझे देखने पड़े हैं. आर ए एस लिखा हुआ है. आई डोंट नो, गुड मॉर्निंग कहते हैं आप. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. एंड सुबह गुड मॉर्निंग. ये मुस्तफ़ा जी का मैसेज है. थैंक यू सो मच. बस आप प्यारे मैसेजेस आ चुके हैं. आपका हाल चाल जो है वो मुझ तक पहुँच चुका है. और अब मौसम की बात कर लेते हैं. तो जैसा हम जानते ही हैं कि मौसम जो है अभी ठीक ठाक तरीके से नाराज़ चल रहा है. नहीं नहीं, नाराज़ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा मूड ऑफ तो चल ही रहा है. थोड़ा सा गर्म तो है ही. तो आज भी मौसम कुछ ऐसे ही रहने वाला है. मतलब आज पूरे दिन जो है वो गर्मी रहेगी, धूप रहेगी. और दिन के वक्त देखा जाए तो गर्मी की शिद्दत आपको और ज़्यादा महसूस हो सकती है. सो इसलिए अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो फिर सारे जो हम बताते चले आ रहे हैं आपको, उस पर आपको ज़रूर जो है वो ध्यान रखना है. इसके अलावा अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो आज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है 42 डिग्री सेल्सियस, वहीं मिनिमम रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस. और इस वक्त देखा जाए तो अराउंड इट्स 34 डिग्री सेल्सियस. और राइट, और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है. ह्यूमिडिटी जो है वो तकरीबन है 80%, जिसकी वजह से हमें और आपको जो है वो गर्मी भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है. सो ठाक वाली नमी है. वहीं मौसम जो है वो जैसा भी हो, फिलहाल लोगों को जो है ना भी 40 के आसपास महसूस होगा. इसके अलावा अगर मैं यूवी इंडेक्स की बात करूँ तो आज का जो मैक्सिमम यूवी इंडेक्स 9 है और वेरी हाई है इस कैटेगरी में कहलाता है. और सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बहुत ज़्यादा वाली गर्मी रहेगी. तो यहाँ आपको हद से ज़्यादा मतलब थोड़ा ज़्यादा और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है. अच्छा, इसके साथ अगर सनराइज़ की बात की जाए तो आज सनराइज़ हुआ है 5:02 पर, यानी 5:02, और सनसेट होगा 17 पर. वहीं पर विजिबिलिटी जो है वो ठीक है. मतलब उतनी कुछ ऐसी धुंध नहीं है. हवा जो है वो तकरीबन 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है. ऑल टुगेदर आज गर्मी है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा आप ख्याल रखिए. अगर आप आफ्टरनूनस में काम करते हैं या बाहर निकलना आप पूरी है तो पानी का आपको ख्याल रखना है. थोड़े से हल्के फुल्के, थोड़े लूज वाले यू नो ऐसे कपड़े पहनिए जो ब्रेदेबल. और धूप में बहुत ज़्यादा लंबा जो है वो आपको बाहर, अगर कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा सा कम ही आपका निकलना हो. जितना आप परहेज़ कर सकते हैं करिए. बाकी तो जैसा मौसम है सो है. अभी यही महीना है जब इस तरह का मौसम और रहेगा. फिर इंशाल्लाह सितंबर ऑनवर्ड्स मौसम काफ़ी अच्छा हो जाएगा. तो ये थी आज की मौसम की बात. और मौसम की बात हो गई और अब आ जाते हैं आज के दिन की बात की तरफ. यानी आज है 4th of August और आज कुछ स्पेशल डेज भी ऑब्जर्व किए जाते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आज है इंटरनेशनल आउल अवेयरनेस डे. हाँ जी, आज का दिन जो है वो आउल यानी जो उल्लू है उसकी अहमियत, उनकी हिफाजत के हवाले से अवेयरनेस फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है. अब तो ये बहुत ही रेयर हो गए, लेकिन हाँ चलिए इसके बारे में आज बात हो रही है बिकॉज इट्स अ डे टुडे. इसके साथ है इंटरनेशनल लिपर्ड डे. ये दिन कहीं ना कहीं लिपर्ड के नाम किया जाता है कि ये जानवर, इनको तहफ़ और कंजर्वेशन जो है इनका कितना इम्पोर्टेंट है, लिहाजा इस दिन को भी इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है. इसके अलावा एक और डे है, वो है आज नेशनल चॉकलेट चिप कुकी डे. आइसक्रीम, चॉकलेट और कितनी सारी चीज़ें हर रोज़ ही चल रही हैं. हालाँकि हम और आप ना कितना बोल रहे होते हैं सुबह सुबह आके डाइट एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड हेल्दी ये तो लंच हेल्दी तो डिनर हेल्दी, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें अपने डिश जो हैं वो सेट करके चल रही हैं, जिसमें है चॉकलेट चिप कुकी डे. और चॉकलेट चिप कुकीज़ के शौकीन लोग जो हैं वो इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं. आप हैं तो बताइए, मैं तो हूँ नहीं. इसके साथ एक और दिन भी है, वो है सिंगल वर्किंग वुमेंस डे. और ये दिन उन लेडीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है जो इंडिपेंडेंट हैं और अब प्रोफेशनल ज़िंदगी में मेहनत कर रही हैं. ठीक है, अकेले सब कुछ संभाल रही हैं, कर रही हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात. इसके अलावा आज है US कोस्ट गार्ड डे और ये कोस्ट गार्ड के जवानों की कुर्बानियों को याद करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है. तो बस आज का जो दिन है यानी 4th of August हमें और आपको ये याद दिलाता है या याद दिला रहा है कि जो कुदरत है उसकी हमें हिफाजत करनी है, मेहनत करने वाले लोगों की कदर करनी है और ज़िंदगी में जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना उन्हें सेलिब्रेट करना है. तो बस आज के दिन की भी शुरुआत पॉजिटिविटी क्राउड के साथ ही करेंगे और हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं. तो बस अपनी लाइफ में जो चीज़ें अच्छे हैं

0: जो सही हैं वही सच्ची हैं और वो आपकी और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाते हैं. तो बस उसकी तरफ जो है वो आप थोड़ा सा ख्याल रखिए. बाकी कुछ और मैसेजेस भी हैं आप लोगों के जो हम यहाँ शामिल कर लेते हैं. नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. यहाँ साथ का मैसेज है गुड मॉर्निंग कहते हुए, अ वेरी गुड मॉर्निंग और हालचाल पूछा है और जो है आज का आउल डे देख लीजिए कुछ तो और मतलब अच्छा दिन है आज, इस तरह का भी दिन होता है. इसके साथ हमारे साथ एक और भाई रहे हैं, इनका नाम है अब्दुल करीम जी. गुड मॉर्निंग कहते हैं और आपको मैडम सुन रहे हैं. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. और अगर आप लोग मुझे बता देते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. अच्छा इन द सेंस इसलिए कि पता चल रहा होता है कि अच्छा जी कौन कौन हमें सुन रहा है, अच्छा ये बंदा यहाँ से सुन रहा है, तो ये एक कनेक्शन तो होता ही होता है. यहाँ पर हमें बता रहे हैं सऊदी अरब दमाम में बादलों की जो है बादल हैं और मौसम काफ़ी अच्छा है. अरे वाह, मियां बख्श जी ने ये बात हमें बता दी है. चलिए ये तो अच्छा है कि वहाँ पे बादल है. और यहाँ इंजीनियर मोहम्मद फैज़ान आउल की इम्पोर्टेंस देख लीजिए भाई, कौन कौन से डेज हैं, किस किस तरह के दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं. यहाँ पे आउल ही की बात हो रही है ना, इसको दूसरी तरह से अदरवाइज ना लीजिएगा, तो आउल ही बात हो रही है. अच्छा इसके साथ हमारे साथ एक और मैसेज है हमसा जी का. गुड मॉर्निंग कहते हैं वखरा से हमें सुनते हुए, वेरी गुड मॉर्निंग. और यहाँ पर हमारे साथ हैं SH ने गुड मॉर्निंग कहा है और साथ ही कहा है कि आप कैसी हैं. मैं बिल्कुल ठीक हूँ उम्मीद कर रहा हूँ. जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. और एक गाने की रिक्वेस्ट भी आ चुकी है हमारे पास. ओके आज की मूवी का एक उन्होंने सॉन्ग जो है वो यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट किया है. ठीक है, हमने जैसे कहा ना आपसे आधे घंटे के बाद से हम जो हैं वो गाने प्ले करेंगे, तो आपने जैसे गाने की रिक्वेस्ट कर दी है तो आप डेफिनेटली शामिल करूँगी और हम आपका गाना ज़रूर चलाएंगे. तो अभी तो नहीं चलेगा जैसे मैंने आपको बोला, 7 बजे से ही चलते हैं, तो प्लीज़ आप हमें तब तक ज़रूर सुनिएगा. फिलहाल दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे तो कुछ और अपडेट्स आपके साथ. एंड ऑफकोर्स आज का हमारा जो कन्वर्सेशन का ये कह सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर आएंगे. बट बिफोर दैट एक छोटा सा ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास उनकी जबानी. हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
3: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब. सुनिए हदीब टू हैबिट अजय महावश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 ओनली ऑन FM 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी. स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी अपनाइए.
4: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है. इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे.
5: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107.

0: पर दिल से देसी।
1: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं। ये फेंस ऐसी हों कि उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए। उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें कि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बनी हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: जेंस की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। नो मो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इस वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 की और आपकी फैमिली हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
3: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107
3: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
4: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स RJ नाजिया के साथ।

गाइस, एक बार आप सब सभी को कहेंगे वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ. एंड 6:38 ऑन द क्लॉक वापस चुके हैं हम. और अब वो टाइम है जब हम आज का अपना जो मुद्दा है वो आपके साथ शेयर करें. आज मैंने सोचा कि हम बात करेंगे मदद की, और उसमें भी मदद जो है वो स्ट्रेंजर्स से. ऐसे तो कहने को हम सब जो है वो अब अपने बच्चों को ही सिखाने लगे हैं कि जी अगर आप स्ट्रेंजर दिखता है तो आप उससे बात नहीं करो, आप उससे इंटरेक्ट नहीं करना. मदद तो बहुत दूर हो गई, लेकिन क्या हम बाकी इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे पूरी तरह से जो है वो अडॉप्ट करने लगे. वैसे अगर सच देखा जाए और जाना जाए और पूछा जाए तो हम सब ने कभी ना कभी किसी न किसी अजनबी या फिर स्ट्रेंजर की मदद की होती है. और ये भी सच है कि कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे किसी अजनबी ने हमारी मदद की होती है. और इंसानियत तो हमें और आपको यही सिखाती है कि एक दूसरे के काम आए बिना एक दूसरे को जाने. लेकिन आज का दौर थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है. हम जो है वो मदद तो करते हैं, कर जाते हैं, लेकिन जब स्ट्रेंजर्स की बात आती है तो हम बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हो जाते हैं. हमें डर भी लगता है कि नहीं कहीं हम फंस ना जाएं. और शायद सोच के चलते आज की सोसाइटी जो है वो धीरे बदल रही है. आज सामने से आप लोगों के साथ तकलीफ में लोगों को देख रहे होते हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, परेशानी में होते हैं, लेकिन हम और आप जो है वो थोड़ी देर आपस में एक दूसरे से कहते हैं हाय बेचारा परेशान है ना, कितनी इसको तकलीफ है ना, बस ये कह के और निकल जाते हैं. शायद हम रुक के इनिशिएटिव करते, शायद हमें डर होता है कि अरे कहीं हम तो नहीं फंस जाएंगे, कहीं हमारे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा. और ये सोच धीरे धीरे धीरे धीरे इतनी गाढ़ी होती चली जा रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी ज़्यादा रैम्पेंट हो रही है कि अब हर कोई जो है ना वो एक डिस्टर्ब है. कुछ भी हो जाए अपने आप को थोड़ा सा बचाता है. अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा किस्सा भी आपके साथ शेयर करूँगी. जब मैं वेकेशंस पे गई थी तो मैं जो थी घूम रही थी दिल्ली में, वहाँ पर एक मार्केट है लत नगर करके, मैं वहाँ थी और मैंने देखा कि एक शख्स जो है वो थोड़े से ज़यीफ़ हैं और काफ़ी परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे. एक शॉप के बाहर इधर उधर इधर उधर बहुत बार उन्होंने जो है ना वो आए गए आए गए, जैसे होता ना रेस्टलेस से. तो अब मेरे साथ मेरा भाई भी था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये बहुत परेशान से लग रहे हैं ना, हम इनसे पूछें कि क्या परेशानी है. देन ये सेड अरे भाई तुम क्यों पूछोगी, होगा कुछ उनका और चलो अपने काम से काम रखो एंड लाइक दैट. लेकिन बस ये था कि मेरा शॉपिंग में दिल नहीं लग रहा था, मैं शॉप से उसको उनको देख रही हूँ और मुझे वाकई ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो कभी बैठ भी रहे हैं, कभी खड़े हो जा रहे हैं, कभी बाहर झाँक रहे हैं, कभी इधर हैं, कभी उधर. मतलब एक आपको एहसास हो रहा था कि कुछ तो है. अच्छा मैं ही नहीं थी वहाँ उस शॉप में, या आसपास बहुत सारे लोग थे जो आई एम श्योर पता नहीं नोटिस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे. तो आई थिंक करना चाहिए, बट मैंने तो नोटिस किया. फिर मैंने ना जाकर भी ज़बरदस्ती मैं गई उस शख्स से और मैंने उनसे जाके पूछा, कि आप परेशान हैं, कोई बात है, मैं क्या आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ. तब जाके उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने अपना फ़ोन मेरे आगे किया और कहा कि बेटा ये मेरा फ़ोन जो है ना बंद हो गया है और मुझे अपने घर वालों को कॉल करनी, बात करनी है, वो कहीं पर है और मैं उनसे बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, उन्हें बता ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ. तो मैंने देखा, मुझे लगा कि अरे वाह इनका फ़ोन बंद, मतलब जेन्युइनली, मतलब उनकी आंखों में एक खुशी की लहर सी दिखी. उन्होंने खुद किसी को अप्रोच नहीं किया, वो खुद बस ऐसे टहल रहे, परेशान उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वो किसी से हेल्प ही नहीं मांग रहे. मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए, मुझे एटलीस्ट पूछना चाहिए. अब मैंने यहाँ क्या किया, अपना फ़ोन तो नहीं दिया उनसे, मैंने पूछा कि आपको नंबर याद है. तो बहुत देर सोचते रहे, कभी कोई नंबर बताएं, कभी एक नंबर उन्होंने जो बताया वो नंबर जब हमने डायल किया तो पता चला कि वो किसी और को मिल गया, वो तो उनके घर वालों को नहीं मिला. तो मतलब 2-3 अटेम्प्ट के बाद उन्हें एक प्रॉपर नंबर आया फाइनली. अब क्योंकि उनका फ़ोन तो बंद था तो फिर वो भी एक मसला था. एक उन्हें नंबर याद आया, फिर हमने उनके उस बंदे को कॉल किया, उस बंदे ने उन्हें सुना, समझा, कहा आप वहाँ पर रुको, यहाँ पर रुको, और हम भी उनके साथ रहे और फिर उनकी फैमिली आई और उनको वहाँ से लेकर गई. तो इस तरह से वो हमारे लिए बिल्कुल अनोन थे. लेकिन पता है उन्होंने क्या कहा, जाते वक्त उन्होंने कहा कि बेटा आज के टाइम में ना कम लोग ऐसे होते हैं जो इतना अपना वक्त खराब करें किसी के लिए, दूसरे की मदद करने के लिए इतना टाइम अपना जो है ना वो खराब करें. जैसे हम लोगों को कुछ ऐसे 40 मिनट लग गए होंगे, 40 मिनट भी

0: ज्यादा हम उनके साथ खड़े रहे हम मतलब उनका वेट करते रहे कि उनकी फैमिली का कोई बंदा आ जाए हम उनको हैंडओवर कर देने फिर हम जाए ऐसा हमने किया बट वो ये बड़े उससे बैठते वक्त ना गाड़ी में ये घूम के ऐसे आ गया दुनिया में ना लोग ऐसा करते नहीं है आपने ऐसा किया बड़ा अच्छा लगा आप यहीं से हो क्या या कहीं बाहर से आए हो तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा ये थॉट अपने आप में मैंने कहा देखो हम आज किस दौर में आ चुके हैं जहाँ लोग हैं वो आपको ऐसे जज कर रहे होते हैं कि आप यहाँ हो तो शायद आप मदद नहीं करते होगे क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा हो गया है आप कहीं और से हो तो शायद आपने मदद कर दी तो आप यहाँ पल से वाकिफ नहीं हो तो मेरे दिल को बड़ा धक्का भी लगा मुझे अफसोस भी हुआ तो बस वहीं से मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना आप लोगों से भी जाना जाए कि आपके ख्याल में इंसानियत की जो असल पहचान है वो क्या है सिर्फ अपनों की मदद करना आपको लगता है ये असल इंसानियत है या ज़रूरत के वक्त किसी भी अजनबी एक्स वाई जी किसी भी अजनबी का जो है वो सहारा बनना इंसानियत है तो आज यही हमारा टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है आपने कभी किसी स्ट्रेंजर की हेल्प की वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं किसी स्ट्रेंजर ने किसी मुश्किल वक्त में आपकी हेल्प की तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं या आप जो है वो पहले हेल्प करते थे मंथ अपॉन अ टाइम पुराने टाइम में आपको लगता था कि हाँ स्ट्रेंजर्स की हेल्प करना है आज थोड़ा सा आप जो है वो झिझकते हैं मदद नहीं करते या कोई और ऐसा इंसिडेंट जो आपके जहन में है किसी भी अजनबी की हेल्प के हवाले तो आज आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं जैसे मेरे जहन में एक था छोटा सा इंसिडेंट तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया नंबर है 4434377 यहाँ पर आप और हम कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं या मैं कनेक्ट हूँ देन द नंबर इज 666-22-107 आज का सवाल जो है वो इंसानियत को लेकर है वापस से मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ कभी किसी ने आपकी कोई अजनबी कभी किसी की किसी भी तरह की छोटी भी हेल्प हो सकती है क्या कभी किसी अजनबी ने जनरली आपकी मदद की या आपने कभी किसी अजनबी की जो है वो मदद की एंड इस तरह से रिलेटेड या फिर आपके ख्याल में इंसानियत जो है वो उसकी असल पहचान क्या हो सकती है क्या आपको लगता है कि मदद जो है वो सिर्फ अपनों की करनी चाहिए मतलब जिनको आप जानते हैं उनकी मदद ही मदद करना चाहिए या ज़रूरत पड़ने पर या आपको ऐसा लगता है कि अजनबी का भी हमें सहारा बनना चाहिए कितना फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है कि आप जो वो स्ट्रेंजर्स के हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं ये बात मुझे बताइए ज़रा 666-22-107 पे यही आज का हमारा सवाल है एंड देखते हैं गुड मॉर्निंग कहते हैं फिर हमारे साथ यहाँ पर अलवकरा से जुड़ चुके हैं नफीस एंड सलीम साहब का नंबर ज़रूर भेजते हैं आपको नफीस जी और उनका नंबर इसके अलावा गुड मॉर्निंग के कुछ और मैसेजेस हैं वी अप्रिशिएट कि अगर आज का हमारा जो मुद्दा है अगर आप हमें कुछ बताएं अपना कोई आज हमने बहुत ही सिंपल सा रखा है अजनबी की मदद या अजनबी ने कभी आपकी मदद की इट्स वेरी सिंपल बस यही आपको मुझे बताना है कि क्या कभी ऐसा कोई किस्सा हुआ जहाँ कोई बिल्कुल एब्सोल्युटली स्ट्रेंजर बंदा था आप उसे जानते नहीं थे पर आप उसकी हेल्प की आगे बढ़ के या क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी स्ट्रेंजर ने आपकी परेशानी में आपकी मदद की कई बार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है हम हैं मतलब यहाँ तो खैर इतना नहीं प्रॉब्लम होता लेकिन और अगर कंट्रीज़ में देखा जाए अपनी कंट्रीज़ में देखा जाए तो वाकई हमें कितनी परेशानी होती है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स होता है कि हम रिलाई करें कम्प्लीटली स्ट्रेंजर्स पर किसी अजनबी से ही मदद मांगे और लोग आपकी मदद भी कर दें और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हैं वो परेशानी का सबब भी बन जाते हैं तो दोनों तरह की सिचुएशन है आपके साथ कोई पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ है तो ज़रूर शेयर कीजिए 666-22-107 पर या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 पर
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain. FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: Noor ala noori yahdi Allah li noorihi man yasha. Roshni par roshni. Allah नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है
4: अपने शरई मसाइल के हल रोजा जिंदगी से मालिक दीनी रहनुमाई अहले इल्म के मुदल्लल जवाबात और मुफीद इल्मी गुफ्तगू सुनने के लिए समात कीजिए नूर इस्लाम

0: अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और की फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग RJ नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: Right guys, welcome back. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ 6:49 ऑन द क्लॉक। मेरे साथ कॉलर यहां पे कनेक्ट हो चुके हैं, चलिए बात कर लेते हैं। हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं जावेद जी आप?
3: अल्लाह का शुक्र है नाजिया जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, खैरियत है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज का आपने हमारा टॉपिक जो है वो सुना,
3: टॉपिक सुन के आज मैंने मैसेज भी कर दिया, मैंने कहा देखता हूँ कि अगर
2: इनकेस खटाक से मैंने आपको नहीं, वाकई कभी होता है ना कि अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही है तो आप हमें मैसेज जरूर कीजिए, हम यहाँ से आपको मिलाना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है, तो उस केस में हम आपको खुद मिला लेंगे। ठीक है,
3: बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके, फौरन आप मुझे, आई एम नंबर वन टुडे।
2: हाँ, आप फर्स्ट कॉलर हैं माशाल्लाह, और मुझे लगा कि आपको इसलिए मिला लें फिर आप बिजी हो जाते हैं जैसे आपने कहा, तो हमने कहा चलिए आपसे पहले बात हो जाए।
3: वो तो आज तो रईस भाई मतलब लगे होंगे, रईस भाई मैं जीत गया आज।
2: कल वो जीते थे, इत्तेफाक से उनकी पहली कॉल थी तो अब राइट।
3: अच्छा माशाल्लाह, ये इतना अच्छा खूबसूरत टॉपिक, तो खैर हम किसी टॉपिक को भी हम किसी के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि एक से एक है माशाल्लाह जो आप लेके आती हैं। और बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सुन के, अभी कल की बात है कि मैं रास्ते में आ रहा था तो एक निशान थी जो ये बड़ी वाली, तो बोनट खोल के वो खड़े हुए थे तो मैं रुक गया पास जाके और मैं अपने मतलब अपने ड्यूटी पे ही था, तो फिर जाके जैक्स वगैरह आए लेकिन अनफॉर्चुनेट वो स्टार्ट नहीं हुई, कुछ और प्रॉब्लम निकला उनका, बैटरी का नहीं था। तो उससे पहले भी एक दफा जुमा अदा करके आ रहे थे तो बिल्कुल मस्जिद के बाहर ही एक आदमी, उनका टायर पंचर था, तो फिर बेटे मेरे साथ थे तो फिर हमने मतलब भरपूर उनका साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और रही बात मदद की, तो नाजिया जी ये स्ट्रेंजर को यको इस चीज को हमेशा आदमी को अपनाना चाहिए क्योंकि जिंदगी में उसकी कामयाबी यही है। देखें इबादत और नमाज और सारी इबादत इसका तो फिर तलाफी हो सकती है, छूट हो सकती है, लेकिन जो किसी को तकलीफ में देके आप बिला सिला मतलब सिला तो रब की साथ देने वाली है, वही देता है। तो आप वो कोई ये मत सोचिए कि यार इस बंदे पर ये कौन है ये क्या है, आप कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिए इस चीज को। और वो आप यकीन कीजिए, मैं हल्फन ये बात करता हूँ, जब आप किसी इंसान ने के साथ तो इंसान करता ही रहता है लेकिन किसी गैर के साथ जब इंसान जुड़ता है उसकी मदद को पहुंचता है उसके लिए खड़ा होता है, रब की जात मतलब ये मेरा जाती तजर्बा है कि अल्लाह ताला की जात कुछ ही दिन के अंदर आपको ऐसी मतलब चीजें आपके हवाले, आपके पास खुशबू, आपके पास किसी भी तरीके से रहमत की बारिश फरमाता है वो।
2: ये बहुत सही कहा। नहीं, हम लोग देखिए अपनों की तो कर देते हैं, अगर जिन्हें जानते हैं उनकी तो फिर भी आप मदद कर देते हैं, लेकिन जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, आज यहाँ नहीं बात करेंगे अपनी कंट्रीज की बात करें तो अब वो दौर नहीं रहा, लोग जो है बगल से आराम से देखते हुए अफसोस करते हुए गुजर जाते, कोई किसी की मदद नहीं था। और ये मैंने खुद भी देखा, अभी वेकेशन थी, मैं देख रही थी कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, लोग बराबर देख रहे हैं खड़े हैं बट कोई मदद भी नहीं कर रहा। अब देखिए ये भी है कि जिस तरह का सिस्टम है, जिस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं उसके चलते लोग

0: अफसोस तो कर रहे हैं बट कोई मदद नहीं कर रहा।
1: बिल्कुल बजा फरमाइए। देखिए यहाँ पर जो कानून के लिहाज से माशाल्लाह जब कोई किसी की मदद करता है तो उसको जो भी देखने वाला उसको अप्रिशिएट करता है और उस पर खुशी का इजहार करता है। हमारे पास मसला ये है, कानून तो हर तरफ है, दुनिया के हर कोने में है, लेकिन उस पर खाली कानून जो जिन्होंने अमल करवाना है वो ठीक तरीके से नहीं करवाए और जिन्होंने करना है वो उस पर अमल कर रहे। तो डरते भी हैं लोग, डरते भी हैं कि अगर यार हम किसी को बेचारा अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट या किसी ऐसी सिचुएशन में हो वो उसी को पकड़ लेते हैं कि आपने किया ये काम।
0: बिल्कुल, शायद इसीलिए लोग जो है ना मदद नहीं करते और घबराने लग गए, हट जाते हैं। तो बिल्कुल आपने
1: करने
0: सही
1: वाले करते हैं, करते हैं। जिन्होंने करनी है वो बिल्कुल करते हैं और वो करते ता कयामत जब तक जिंदगी है वो करते रहेंगे दूसरे की मदद।
0: बस अल्लाह करे ऐसे लोग रहें हमारे सोसाइटी में, वाकई रहने चाहिए, नहीं तो अगर हर कोई ऐसे सोचेगा तो कोई भी कभी किसी की मदद ही नहीं करेगा।
1: तो मैं लंबी कॉल नहीं करूंगा, लास्ट सिर्फ मैं दो तीन ये जरूर कहूंगा कि इंसानियत का जो असल हुस्न यही है कि हम जरूरतमंद की मदद करें, चाहे वो अपना या हो या अजनबी हो, लेकिन मदद हमेशा अकल या अपनी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए करने चाहिए। इससे एक बेहतरीन माशरा तश्कील अमल में आता है।
0: बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने एंड जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और बहुत अच्छे से इस टॉपिक की शुरुआत की। मैं चाह भी रही थी कि कोई बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को जो है वो एड्रेस करे, जो आपने किया वेरी वेल सेड। और एक लाइन जो आपने कहा मदद करनी ही चाहिए, अपने एहतियात उन सारी चीज़ों को देखते बट मदद करनी, दैट्स द पावरफुल टेक अवे। थैंक यू जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच, एन्जॉय रेस्ट ऑफ योर डे एंड बहुत अच्छा लगता है और आप तो बहुत डिमांड में रहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मॉर्निंग में आया कीजिए जल्दी, जैसे आपके बाद आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो लिसनर फ्रेंड्स हैं, वो आपको सुने मोटिवेट और वो भी हमारे साथ तो जुड़ते नहीं बट आपको सुन लेंगे तो उन्हें थोड़ा सा लगेगा।
1: मेरी तरफ से जितने भी मेरे तौफीक भाई का भी सुबह सुबह मुझे मैसेज, शहजाद भाई का भी, शहजाद सलीम भाई का भी, रईस भी मैसेज मुझे आ जाता है और जितने भी सामने सुनने वाले हैं सबको मेरे दिल की गहराई से अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन और अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। क्या बात है, हमारे साथ एक बहुत ही कमाल के हमारे लिसनर जो थे वो जुड़े हमेशा की तरह, बहुत ही अच्छी बात की आज भी उन्होंने। एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं, चलिए बात करते हैं। हेलो
2: हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सबको।
0: वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज सूरज भाई कैसे हैं आप? आज निकल हूँ मैं
2: कॉल करनी है तो कुछ ना कुछ करनी पड़ेगा सुबह के लिए। और अच्छा टॉपिक है, यहाँ पर तो हेल्प करना निस्बतन बहुत आसान है, कानून को भी मैनेज करना आसान है। और आई एम लॉन्ग टाइम हेयर और मैं एमिरेट्स में था, हमारी कंपनी थी डेजर्ट में, यही करके वहाँ अगर हमें सम टाइम कंपनी हमें तो ट्रांसपोर्ट देती थी लेकिन अगर भी पर्सनली या सम रीज़न पर्सनली जाना हो तो वहाँ ट्रांसपोर्ट का बड़ा इशू था। या अक्सर जुमे की नमाज के लिए यही वैसे तो मस्जिद थी करीब लेकिन यानी बनी हुई थी लेकिन दिल करता था कि बड़ी मस्जिद जो प्रॉपर मस्जिद है वहाँ जाके जुमे की नमाज पढ़ी जाए, एक लुत्फ उठाया जाए जो इबादत का है। तो उसके लिए हमें रास्ते में कोई भी लिफ्ट दे दे, पिकअप वाला भी ना जिसमें ओपन है, तो हम उसको दुआएं देते थे। तो दिल में था कि जब अल्लाह ताला ने हमें भी ऐसा चांस दिया ना तो हम जरूर मदद करेंगे। तो यहाँ मैं बड़ा, जब तक गवर्नमेंट ने ऐलानात नहीं किए रेडियो में उसमें आए तो मैं जहाँ पर भी हाथ में मैं ऑफिस से निकलूँ तो जो मेरी रोड साइड पे हो तो मैं उसको बिठा लेता था कि भाई, और अगर मुझे थोड़ा लेफ्ट राइट कहीं उसको ड्रॉप करना पड़ा डजेंट मैटर, और अगर कोई दूर है या उसने कहा कि आई एम कम्फर्टेबल उसको बता देना आई एम गोइंग देयर, तो आप इस तरह है टैक्स। अच्छा उस वक्त ये उबर चीज़ें नहीं थी, लोग खड़े हो इंतजार कर रहे होते थे कि प्राइवेट टैक्सी इस तरह है। तो इसका जब तक कानूनी पे हमें अलाउ था मैंने बड़ी कोशिश की और बहुत से लोग इवन जैसे हम लोग जजीरा नेटवर्क में वहाँ गेस्ट भी बड़े आते हैं तो वहाँ मुझे एक यूज भी मिला, बड़ी उससे गपशप हुई।
0: अच्छा।
2: उसको मैंने होटल पे ड्रॉप किया तो वो मुझे पैसे दे रहा है, मैंने कहा यार आप लोग क्या समझ रखे हैं, हम लोग जो है सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, इंसानियत भी होती है कोई चीज। तो आई एम वर्किंग देयर तो मैंने आपको ड्रॉप कर दिया, तो बड़ा अच्छा उसने रिस्पॉन्स किया।
0: और आपका ही नाम नहीं हुआ, पूरी कंट्री का जहाँ से आप बिलोंग करते हैं सब

0: का नाम हो कि वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं ना, एक आदमी के जहन में बैठ जाते हैं।
1: मैंने कहा वी आर लुकिंग सेम यार सब कॉन्टिनेंट, तो इसकी वजह से तो हमने कहा हर दफा हम पैसे ही नहीं मांगते, हम लोग हेल्प ही करना चाहते हैं।
0: देखो
1: तो फिर मैंने कहा बहरहाल अच्छा एक जब तक था, और ये जो 800 रुपये पार्किंग में अगर किसी गाड़ी नहीं ना किसी ने शटर खोला हो, इसका मतलब मोस्टली तो बैटरी होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। तो मेरे पास केबल भी मैंने कस्टमाइज बनाई हुई है बड़ी अच्छी किस्म
0: की, लोगों की हेल्प करने के लिए
1: उसमें रखी है, आपकी हेल्प भी हो जाती है और अगर कोई ऐसा खड़ा है तो उसकी भी हेल्प करें तो स्वाब कमाएं। तो ऐसा ऐसा मामला भी रहता है। और बाकी जो हमारे दोस्त ने कहा कि हमारे मुल्कों में लोग वाकई हेल्प करना चाहते हैं लेकिन इतने कॉम्प्लिकेशन या इनकी स्टोरीज आके तो लोग डर जाते हैं। एक हेल्प की ऊपर से आप लोग उसी कानून के शिकंजे में आ गए फिर वो इस तरह करके। और एक और चीज़ भी है, हेल्प करते हुए ये भी देखें कि यहाँ पर रमजान में बीच में बहुत ज्यादा आमद थी, अब कम हो गई है, अब गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है, मांगने वाले उन्होंने पेपर रखे हुए हैं हमेशा, आप देखें
0: सही कहा,
1: यकीन करें 100%। अच्छा लोगों को ये बड़ा ऑब्जेक्शन होता है कि उसने पेपर रखे हैं ब्लैक एंड व्हाइट व्हाट्स एवर पिक्चर रखी है तो आपने देना है, तो आप देखें ना यार वो खुद कह रहे हैं कि ये मेरे हैं, अब वो हमने देखे हैं सच्चे झूठे हैदराबाद, तो आप देखें ना कहते हैं तहकीक करें, तहकीक करने ही नहीं देते, उस पर राज होने जाते हैं। ये अल्लाह का यार अल्लाह का मामला है, तो फिर अल्लाह ने सब कुछ हम पे छोड़ दिया है तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द रॉन्ग, और ये कह रहे हैं 100% फेक
0: है ना, 100%
1: फेक। एक ने लिखा कि कैंसर का मर्ज ये वो है उसको है, मैंने उसको देखा पेपर देखे तो मैंने कहा कौन है, मैं जैसे होता है ना किसी का फादर कहते हैं नहीं ये मेरे चचा हैं, अच्छा चचा हैं तो तुम्हारा इसी वो मेरा चचा चले गए हैं तो मैं उनके ना पेपर लेके उसमें मांगने हूँ। एक ने कहा मेरी ट्रीटमेंट करवानी है बिल मैंने देना है इस तरह है, तो मैंने कहा जनाब आपका वो हमद का कार्ड किधर है बताएं, आप यहाँ बैठे हैं यहाँ गवर्नमेंट बड़ी अच्छी फैसिलिटीज देती है।
0: सही बात है,
1: नहीं मैं तो विजिट भी आया हूँ यार, मैंने कहा यार तुम लोग होप करो,
0: वही चीज है मदद के नाम पे लोग झूठ भी इतना करने लग गए ना कि लोग फिर मदद नहीं करते सच में।
1: और यहाँ तो ममनू है और उन्होंने रखा है, और उन्होंने बकायदा ऐसे इदारे हैं के चैरिटीज के या उनके, अल्लाह ना करे किसी को हो, यहाँ हुकूमत ने किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ा, उसकी मदद करते हैं। लेकिन आप उनके देखें वो मैंने इनको कहीं ऑफर करे ना वो कहते नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, अच्छा हम जा रहे हैं, वो बेशक कहीं भी जा रहे हो दे आर नॉट विलिंग टू डू।
0: और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग ही आप मदद आप उनको ऑफर करें सांसे के चलिए आपकी कोई जॉब करवा देते हैं आपका रोजगार सेट हो जाए आप काम कर लो, यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ मैं अपने कंट्रीज की भी बात कर रही हूँ, तो वो फॉरन में ना कर देते हैं नहीं नहीं नहीं पैसे तो दे दो, मतलब पैसे देने की मदद ले सकते हैं काम नहीं करेंगे काम के लिए ना कर देते हैं।
1: उधर ना कराची में सिग्नल पे अभी आई डोंट नो कि अभी तो मोर देन 1 ईयर हो गया ट्रेंड इतना है खाने को दे दो खाना नहीं खाया, अच्छा सुबह हो या शाम हो या खाना नहीं खाया तो वहाँ फ्री खाना भी काफी अवेलेबल
0: है,
1: तो उनको बोले चले हम आपको वहाँ ड्रॉप कर देते हैं, तो अच्छे उन्होंने चावल और व्हाट्स एवर जो खाना से मतलब हमने बर्गर खाना है, अच्छा 12-13 साल का लड़का तो कहता है बर्गर, तो मैंने कहा खाओ बर्गर लेकिन मेहनत से खाओ, भूखे को खाना जो मिल रहा है ना वो शुक्र हो, और फरमाइश करनी है ना तो वो अपनी मेहनत से कमाओ, मैंने कहा जवान बच्चे हो कमाओ फिर, इधर तुम रोडों में फिर रहे हो कह रहे हो खाने से मर रहा हूँ तो तुम्हें क्या खाने तक तो तुम्हें छोड़ देते हैं जिंदा तो रहो तुम, तो दे आर प्रोफेशनली दे आर प्रोफेशनली, उनको आपने बस ये तो हम लोग उनको कहीं यानी उठा के ले जा नहीं सकते, ये तो सोसाइटी का काम या उनका है, लेकिन इनको इनकरेज करें और इनके ऊपर बकायदा डॉक्यूमेंट्रीज और वो जो कहते हैं ना स्टिंग ऑपरेशंस भी हैं कि पूरा घर उनके 6-8-10 बहन भाई माँ बाप गाड़ियों में भर के हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं, दे आर डूइंग सेम सिचुएशन।
0: हाँ यही शायद है वजह, इन रीजंस के चलते अब लोग मदद नहीं करना चाहते हैं, अब वो वाला जज्बा नहीं रहा शायद दिल में हो अंदर रहता हो कि हम कर दें बट उस तरह से मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह से ट्रांसलेट हो पाता है जेन्युइन मदद में, क्योंकि इतने फ्रॉड इतनी सारी चीज़ें आ गई मेरे को लगता है अरे कुछ तो फायदा है नहीं इनकी हेल्प करने का, ये सब तो ऐसे ही है। सो फॉर दैट
1: हर एक हमारे दिन में भी

0: खासतौर पर सेल्फ रिस्पेक्ट और शर्म रखी है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट और शर्म को छोड़ के आ जाए तो समझे उसने छोड़ दिया। और खास तौर पे फीमेल या लेडीज या बच्चियां अगर वो आ जाए, दे आर नॉट डिजर्व, यानी एक इतने खतरनाक माहौल या इस चीज में, तो इसमें बंदे को खुद भी जजमेंट हो जाती है कि ये जो है ना ये डिजर्व नहीं करते, ये प्रोफेशनल हैं। और आप अगर किसी से बातचीत या कुछ कर रहे हो ना, तो इनके दाएं बाएं काफी कारिंदे होते हैं, सब इकट्ठे आगे पड़ जाएंगे।
1: मतलब वही समझदारी से मदद करिए, ऐसा नहीं कि इस वजह से हम लोग मदद ही करना छोड़ दें एक दूसरे की, लेकिन थोड़ा समझदारी से, हिकमत से, जैसे कहा जावेद जी ने और आप भी कह रहे हैं कि हाँ देखभाल।
0: हमारे यहाँ एडी साहब हैं और भी इदारे हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड, ट्रस्टेड हैं, वहाँ पर जाएं। और ऐसे लोग खास तौर पर देखें, दीन में क्या इज्जत है नफ्स इंसान की, सेल्फ रिस्पेक्ट इसकी बहुत है। इसके बजाय अगर आपके कोई जानने वाले मांगने वालों को, मैं बिल्कुल, अब तो मेरे पास इतनी स्टोरी है, हो सकता है 100 में 5-10% सच्चे भी हों। हाँ, अगर आपके जानने वाले हैं, अड़ोस पड़ोस में हैं, अपने देखें आपके जहाँ रिश्तेदार हैं, आप हर एक से कहें ना, तो आजकल का ज़माना ऐसा है, एक ढूंढो तो मिल जाते हैं। तो आप उनकी मदद करें, उनकी इज्जत नफ्स को भी रखें और उनको एहसास रहे कि हमने नहीं मांगा।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और वाकई जो लोग नहीं मांगते उनकी हमें खास तौर से मदद करना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि माली तौर से ही आप किसी की मदद करें, और भी बहुत सारी तरह से आप किसी की भी हेल्प कर सकते। तो खैर, ये अमल ऐसा है जिसे जारी रहना चाहिए सोसाइटी में, बिकॉज इसी के चलते इंसानियत जो है वो जिंदा है। अगर हम मदद ही करना छोड़ देंगे तो वाकई कहीं ना कहीं इंसानियत पूरी तरह से ख़त्म या तबाह हो जाएगी। तो एक दूसरे की हेल्प करें, चाहे हम जानते नहीं जानते, लेकिन हाँ समझदारी से ये भी
0: बिल्कुल हेल्प करें। और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरे किसी रिश्तेदार ने मदद की, जीरो, वो कहते थे कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी सब अजनबियों ने मदद की।
1: देखिए,
0: कहीं अल्लाह ने कोई बंदा भेज दिया जिसने एक स्टेप अप, एक स्टेप टू, अल्लाह की मदद थी, हमारी कोशिश थी, अल्लाह ने कहा कि बस ये मेरा बंदा तेरी मदद करेगा। इसी तरह मैं खुद भी कहता हूँ कि मुझे जैसे अजनबी ने मदद की, तो मेरे लिए भी वो होना जरूरी नहीं है। हाँ, मैंने मांगा नहीं, काम के लिए उन्होंने मुझे काम ऑफर किया, मैंने काम किया, उससे आगे गए, कहीं और स्टेप है। बस मांगने से अभी मुझे वो चिढ़ा है। बाकी काम में, हमारे साथ ऑफिस में भी यार इतने लोग आते जाते हैं, वी आर स्ट्रेंजर्स, हम लोग अजनबी हैं और तीन जगह पे काम कर रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं उनको सपोर्ट करें, उनके साथ मिल के रहें।
1: नाइस, बहुत जबरदस्त कॉल, थैंक यू सो मच जुकनैन जी कि आप आए हमारे साथ जुड़े आज फाइनली। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज। सो दोस्तों, आज का हमारा बहुत ही जबरदस्त सा टॉपिक है, आप भी सोच के रखिए, कभी किसी अजनबी ने आपकी मदद की या आपने किसी अजनबी की मदद की, तो लेट मी नो ऑन द नंबर 666-2107। फिलहाल के लिए छोटा सा मिनट ब्रेक।

0: FM 107. Time check. Time check. Right guys, welcome back. A very good morning. और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 7:08.
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर.

0: दोस्तों आज बात हो रही है इंसानियत की असल पहचान की। आपको क्या लगता है कि सिर्फ अपनों की मदद करना सही है या जरूरत के वक्त अजनबी का भी हमें सहारा बनना चाहिए? क्या कभी स्ट्रेंजर ने, किसी भी अजनबी ने आपकी मदद की, आपका बड़ा काम उनकी वजह से हो गया, या आपने कभी किसी स्ट्रेंजर की मदद इस तरह से की कि वाकई सबने आपको अप्रिशिएट किया? तो कोई भी ऐसा किस्सा आपके पास है, कोई ऐसी मेमोरी है आपके जहन में, तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं रईस जी आप?
1: हम रेगुलर तीसरे दिन के कॉलर बनने वाले थे, लेकिन
0: आपकी हैट्रिक होते होते रह गई। देखा आप, ये होता है, चूक गया।
1: लेकिन हमारे खास दोस्त आए, मतलब उनसे मतलब सीखने का थोड़ा उनका भी अपना जो था, और हमारे जो करने भाई माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन अंदाज में उनका भी ये होता है बात करने का अंदाज।
0: अब आप इन्हें जुलकर्न जी को भी अपने ग्रुप में ऐड कीजिए, ठीक है?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह उनका भी बहुत पुराना उनका लिस्टर, वो आते रहते हैं सबसे बात
0: जी जी जी,
1: उसे भी आया करते थे
0: जी,
1: तो बड़ा बेहतरीन अंदाज होता उनका कोई बात को मतलब रिप्लाई करने के लिए और समझाने के लिए, ये करने के लिए बड़ा अच्छा,
0: बड़ा प्रैक्टिकल समझाते हैं और मतलब एकदम स्ट्रेट वन टू वन समझाते हैं। अच्छा भी लगे कि बुरा भी लगे, बात मैं सच्ची कहूँ,
1: लोग तो कोई इतनी औकात नहीं थी, आप लोगों से तो सीखते सीखते थोड़ा सीख गए।
0: अरे आप तो कितना अच्छा बोलते रहे, ऐसे तो बोल गए मतलब।
1: नहीं नहीं, बस हम लोग सीखते सीखते बस ऐसे हमारे दोस्तों से हम भी थोड़ा सीख गए, नहीं तो इतना मौका नहीं मिलता था बात करने का। रहा मौजू पे हम आते हैं, क्योंकि थोड़ा ऑन ड्यूटी है तो बेहतरीन है, मतलब ये खास कर करना चाहिए, लेकिन सिचुएशन को देख के थोड़ा सा आदमी को जिस तरीके से कहा हमारे जुलकरनैन साहब ने कि बिल्कुल सिचुएशन को देख के हमें मतलब ये करना चाहिए, ना कि मतलब इस तरीके से कहीं भी फिर वो हो जाए, जैसे कहीं कहीं रील में आता है कि एक पत्ता उतरा उधर मदद के ये बाइक से दूसरा बाइक लेके चलता।
0: सही कहा आपने, बिल्कुल सच्ची बात है, और यही सब हो रहा है। देखो आप मदद करने चलते हो और आपका लॉस हो रहा है।
1: एक उतरा बाइक से स्टार्ट बाइक की, चलो उतर के चलो उसका मदद करता हूँ, दूसरा चलता
0: बताइए। हाँ, इस तरह के लोग ट्रैप भी करते हैं, पूरी बकायदा प्लानिंग कर रहे होते हैं और लोगों को फंसा देते हैं।
1: सामने वाले मजबूर हो जाता है कि यार इसका मदद करना चाहिए, लाजिम करना चाहिए यार, वो उतरा पीछा दूसरे वाले ने फायदा उठा, उनकी पूरी सेटिंग रहती है। तो इनका एक बहुत जो मतलब जो मुस्तहिक है उनको मतलब उससे मतलब ये कर दे रहे हैं बेचारे, बड़ा बहुत ज्यादा तकलीफ होता है देख के। हाला मेरा फितरत है अजय जी कि मैं नहीं परवाह करता हूँ, मैं फौरी मतलब यार कहीं बाहर क्या हो या अपने करीब का हो वो मेरे साथ में, फिर वो किस तरीके से उसका ये रहता है बिहेवियर क्या करता है, मैं परवाह नहीं करता, बोलता हूँ यार जो हमारे पास है, जो जिस तरीके से किसी का मतलब है कुछ जिस्मानी मदद है माली मदद है कर दो, बाकी अल्लाह पे छोड़ देता हूँ यार, जाने दो, बंदा जो जैसा करेगा वो कर रहा है तो बंदे को अल्लाह ताला से उसके अजर का मतलब ये होना चाहिए, मुतमन्नी होना चाहिए, ना कि मतलब उस बंदे से ही की, और फिर उसका फायदा भी नहीं है कि जो उस बंदे से मुतमन्नी रहे कि हाँ मुझे इससे बदला लेना, तो फिर वो फायदा नहीं, वो मजा नहीं है। तो मेरे ख्याल से मेरा ये है कि
0: आपकी मतलब कभी किसी ने, किसी स्ट्रेंजर ने आपकी हेल्प की, कभी कोई आपके साथ सिचुएशन ऐसी आई
1: सिचुएशन आई है मेरे सामने कि मतलब उसको मैं बहुत लंबी हो जाएगी बात, बहुत ऐसे ऐसे जगह पे अल्लाह ने हमारे लोगों से मतलब लोगों के जरिए से मदद किया है कि जिस वक्त मैं सऊदी अरब में गया था, मैं आपको बताऊं 10 दिन तक हमारा कफिल नहीं मिला, और पहले फर्स्ट डे मतलब ये स्टार्टिंग की बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट डे कई लोग मुझे मिले, टेलीफोन कर रहा था बंदा वहां से, मतलब उस ऑफिस से कोई फोन नहीं उठा रहा है, और जो भी मदद के लिए अपने करीब के लोग आ भी रहे हैं वो आने के बाद में थोड़ी देर बात करके और वो आराम से फिर निकल जा रहे हैं। दो बंदे हथेले नौजवान लड़के अल्लाह ने भेजा उनको, और मतलब अंधेरा हो गया था, वो आके मुझे बिना पूछे, बिना जिस तरीके से आपने फरमाया था कि बिना वो कह नहीं रहे, तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, वो आके मुझे पूछे हाँ क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको बताया, मतलब कर मैं अपनी बात को ये कर रहा हूँ, वो बेचारे अपने साथ में लेके गए, अपने उसे लेके गए, बोले पहले नहाओ धो खाना पानी खाओ ये करके, तो फिर सुबह टाइम यहाँ तक कि टैक्सी वाले को भाड़ा भी दिखे हमें पिल्ले उस एरिया में, तो ऐसे ऐसे बहुत से हैं अल्लाह के बंदे कि मतलब अगर हम अपने अपने उसको ये करते हैं तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं वैसे उस बंदे के दिल में डाल के और आपके लिए वो जरिया बना देता है, ये आदमी को इससे ये नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे

0: मुश्किल सिचुएशन में अल्लाह ताला क्योंकि हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर एक जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। तो ये मकसद नहीं कि अल्लाह ताला खुद आके आपके हाथ में है, वो एक जरिया निकाल देगा आपके लिए, आसानी कर देगा, वो आपको बिल्कुल बड़े आसानी से मुहैया कर दिया जाएगा। तो ये सब चीजें बंदे को सोचना चाहिए और मदद करने से, मैंने ऐसे ऐसे लोगों का मदद किया है कि अरे इसमें थोड़ा सही हो जाएगा, कि यहाँ तक कि पूरा मैंने खर्च उठा लिया है कहीं कहीं पे, कि आप जान चलो तुम्हारा कितना कितने कितने तक हो जाएगा।
1: और वो गैर थे या आपके जान पहचान के थे?
0: जान पहचान के थे, मतलब वो लेकिन हमारे करीब के ना रिश्तेदार ना हमारे गांव के, थोड़ा दूर के भी थे।
1: अच्छा,
0: और उनका हालात मैं जानता था, थोड़ा सा मजबूर थे। यहाँ तक उन्होंने कहा कि पड़ोस वाले ने मुझे पानी से मतलब रोक दिया, मेरे पास वो औकात नहीं है कि मैं नल का मतलब ये कर लूं। और उसके अपने खानदान के, अपने खानदान होता है ना आपस में तनाजा होता है छोटी छोटी बातों के लिए, आप बेहतर जानती हैं। मैंने कहा तुम्हारे नल लगाने के लिए कितना खर्च आ रहा है? उसने कहा कि थोड़ा नहीं इतना तो ज्यादा होगा। मैं बोला इतना आता है? मैं बोला आप तैयारी करो, आप उसका जो ये है करने वाला उस काम को, मैकेनिक है जो भी, मिस्त्री है उसका, टेक्नीशियन है जो भी है, उसको आप लेके आओ जितना खर्च लग रहा है। तो ये सब चीजें होती है ना कि किसी के लिए, अब वो बंदे तो उसके चेहरे पे वो खुशी और वो मतलब समझ लो कि हमेशा उसके लिए दुआ है, और ये सब सबका जारिया में से है। तो ये सब अगर मौका आपको मिल रहा है तो आप उसको ये करना चाहिए, मतलब बंदे को।
1: और हमेशा
0: मेरा ये है कि मैं घर पे पहुंचता हूँ तो इसमें बहुत से लोग मुतमन्नी रहते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ है, आए कि नहीं आए। तो ये सब चीजें हैं आदमी को इस तरीके से कि आदमी के ना रहने के बाद भी लोग याद करें, इस तरीके से उनका ये करो, वक्त पे मदद करना, ये मदद बहुत बड़ी चीज है अल्लाह के नजर में, बहुत बड़ी चीज है अल्लाह के राय में। जो मतलब जैसे अल्लाह ने कहा कि मतलब जो मुसाफिर है और या अड़ोस पड़ोस के, पड़ोस का हक तो इतना पड़ोसी का हक, इसमें दीन ने हमारे इतना ज्यादा कुछ सिखाया है, इतना सिखाया कि अगर उसके बंदा आ जाए,
1: हाँ तौफीक दे के हम पूरी तरह से उस पे अमल करें,
0: हाँ उस पे अगर अमल कर ले तो मुसलमान परेशान नहीं रहेंगे,
1: कोई भी परेशान नहीं रहेगा। ये बात बिल्कुल सही है। आप
0: जकात नहीं, हम अपने जो मुस्लिम जिनके ऊपर फर्ज किया गया है, जिससे उनको सवाल के जो जो दो इस पर ईमान रखे हैं, वो लोग अगर उस पे अपने आ जाए ना, तो कोई भी अपने पड़ोस का चाहे कोई भी मतलब धर्म का मानने वाला हो, अगर आप उसके साथ में वो नरमी और वो लेंगे तो उम्मीद है कि वो तुम्हारे से मतलब ये बद ना रहे।
1: और बताए सारे जितने भी धर्म है ना, सब ये सिखाते हैं कि एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का ख्याल रखो, सब चीजें, लेकिन हमने जो है वो छोड़ ही दिया है असल में उन चीजों को।
0: अब कहीं पे वो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि बहुत ज्यादा आप दिखा भी मत करो कि मतलब लोग पीछे जाए आपके, कि
1: नहीं जेन्युइन है जैसे, हाँ नहीं बिल्कुल दिखावा तो खैर नहीं करना उसके, तो फिर आपने स्वाभाविक खो दिया। आपके लिए अल्लाह के लिए खालिस होनी चाहिए,
0: ओवर मत करो, इतना भी मत करो कि लोग तुम पे मतलब इतना सवाल करना शुरू करने की मतलब
1: लेकिन मदद करो जहाँ जो कर सकते हो,
0: मदद करो
1: सही,
0: इतना आप दिखावा सामने भी मत आओ, अगर पीछे करोगे तो भी अल्लाह ताला तुम देख रहा है ना।
1: सबसे अच्छा है वही, आप खालिस तो अल्लाह के लिए ही कर रहे हैं और उसी से चाहते हैं
0: उसका। आपको फोटो खिंचवाने की, आपको मतलब मीडिया के सामने आने की जरूरत नहीं है
1: जी जी,
0: आप हमको चाहिए कि मतलब तरीके से मदद करें कि लोग मतलब भले अल्लाह ताला वो आपको गैब से उसके दिल में जो आपके लिए नफरत कर रहा है उसके दिल में अल्लाह ताला डाल देगा।
1: हाँ
0: ये उम्मीद रखा, जब तक अल्लाह डालेगा नहीं वो कोई भी कितना भी कर ले, अल्लाह ताला जब तक उसके दिल में डालेगा नहीं वो नहीं हो सकता,
1: नहीं
0: कभी
1: हो
0: वो
1: सकता।
0: ही नहीं
1: होता। बहुत ही जबरदस्त कॉल रईस जी, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत सारे पॉइंट्स आप ऐड किए और बताया भी कि आप तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई इंसान जो है वो स्ट्रेंजर्स हो या फिर आपके अपने जान पहचान के लोग, मदद कीजिए, करना हमें चाहिए। That's true.
0: भी देखें, थोड़ा सा हालात देखें, मैं मतलब
1: हाँ, थोड़ी हिकमत से समझदारी से
0: जो हमारे जुलकरनैन साहब ने फरमाया कि मतलब कुछ लोग आजकल उसको एक अपना बिजनेस बना लिए
1: हैं।
0: वो लोग एक बंदा आया कि वो बाकायदा अच्छा टोपी कुर्ता लगा के अच्छे से माशाल्लाह दिखाया मुझे, तो बोला कि मतलब वहाँ का मैं मुदर्रिस हूँ।

0: और ये हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल का फोटो फोटो दिखाया तो बोला ये इतने बच्चे हैं और इंशाल्लाह ये मतलब वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मैं बोला आप मुदर्रिस हैं, आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किया है ये कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए आपको यही पता नहीं है और आप वहाँ के मुदर्रिस हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं बोला माशाल्लाह और इंशाल्लाह में आप चर और मतलब उसके जो प्रेजेंट के उसको आपको यही पता नहीं है उर्दू के उसको, तो आप कैसे कहाँ पे कैसे वहाँ। वो बंदा फौरन मुड़ के भाग गया, वो मैं बोला ले ले यार कुछ ले लो, नहीं लिया बोला
1: मैं आप तो रही डरा रहे हैं मदद करने के बजाय लोगों को डरा के भगा देते हैं।
0: नहीं उनका एक बिजनेस था मुझे पता चल गया लेकिन मैं कुछ देता था। मैं बोला आप एक उर्दू के और आप एक ये हैं और आप कहाँ इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह और कहीं कहाँ पे माशाल्लाह आपको पता नहीं है तो आप कैसे पता रही है। वो भाग गया बंदा, वो मतलब बोला रोका बहुत, बोला नहीं नहीं नहीं नहीं तुम्हारी। मैं बोला भाई अल्लाह ताला तुम्हें मतलब
1: हिदायत दे और क्या कह सकते हैं। पर मुझे अच्छा लगा आपका कि आप पूरी अच्छे से तफ्तीश करके हेल्प कर रहे हैं।
0: ठीक है,
1: वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम
0: जानने वाले जावेद भाई, सलीम भाई और जितने हमारे भाई हैं उसामा, सब लोगों को सलाम
1: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ बहुत ही जबरदस्त ही रईस भाई की हमारी कॉल थी, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा जो है वो विजिलेंट रहें जब आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, ये ख्याल रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
2: हाँ जी,
1: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप?
2: वेरी हैप्पी, गुड मॉर्निंग। साड़ी भी हेल्प कर दो जी।
1: बताइए कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ?
2: आपकी मोर देन हैप्पी।
1: एक चाय
2: ऑर्डर कर दो।
1: चलिए जी, जरूर, अगर मेरे बस में, मुझे बताइए मैं आपके लिए कहाँ पे ऑर्डर कर दूँ।
2: शुक्रिया जी, शुक्रिया मैडम। और कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बात चल रही स्ट्रेंजर्स की हेल्प की। अजनबी अपनों के लिए हम सब मदद करते ही हैं, कर भी देते हैं, सब कुछ पता होता है, लेकिन क्या स्ट्रेंजर्स की भी आप हेल्प करते हैं? या क्या कभी किसी स्ट्रेंजर ने आपकी जेन्युइनली हेल्प की, बहुत बड़ी हेल्प आपकी उनके थ्रू हुई और आप उन्हें कभी जानते भी नहीं थे?
2: नाजिया जी, मेरा मानना है जो हेल्प है ना,
1: हाँ,
2: वो अकेली पैसों से नहीं होती।
1: बिल्कुल सही, जरूरी
2: वो बंदे पैसे को अच्छी एडवाइस देके।
1: हाँ, True.
2: और जैसे आप यहाँ पे मैम देखिए, आप मिनिस्ट्री में जाते हो अपना कोई भी काम करवाने के लिए,
1: हाँ.
2: तो यहाँ पे जो पेमेंट का मोड होता है, ऑप्शन होता है, वो एज अ कार्ड ही यूज होता है मैडम।
1: सही कहा।
2: तो बहुत सारे बंदे हैं जिनके पास कार्ड भी नहीं है या बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो अगर किसी के पास कार्ड नहीं है, आपने उनको कार्ड दे दिया, ये भी मैडम एक हिसाब से किसी स्ट्रेंजर की हेल्प से कम ही है।
1: बहुत बड़ी बात है, सही कहा। और ऐसा करते हैं लोग आपस में यहाँ पे, बहुत अच्छी बात याद दिलाई आपने। कई बार लोग जो है एक दूसरे को मैंने देखा दे देते हैं, और बेचारा कैश में दे देता है।
2: कोई समय ऐसा था मैडम, मेरे पास भी नहीं था ना बैंक अकाउंट ना कार्ड, तो हम लोगों ने भी बहुत लोगों से मांग के यूज किया है जब भी मिनिस्ट्री में जाते थे,
1: और फिर आपने देते थे। ये देखिए, ये भी हेल्प है। और आपको याद है वो सारे के सारे गैर थे, बट उन्होंने आपकी हेल्प की, मना नहीं किया।
2: नाजिया जी, मेरे को तो वो दिन भी याद है, अभी आपने बात छेड़ दी, जब मैं कतर में आया था ना
1: जी,
2: वो एक ना टीन के डब्बे आते हैं जिसमें साग हो गया, जब फॉल नमाज ये सब्जियां आती है ना फ्रोजन,
1: केन वाली
2: मैडम, ऐसा भी समय था, देखिए उसको अच्छी तरह से उसके किनारे साफ करके, क्योंकि वो तीखे बहुत होते हैं ना, तो उसमें भी हम लोगों ने चाहिए या अपन के लिए यूज करते थे उसको।
1: ओहो, यहाँ तो इतनी फ्रीक्वेंटली बॉटल्स वगैरह तो मिल ही जाती है।
2: मिली जाती है, जब मैं नया नया आया था ना, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैडम, गिलास की जगह पे उसको यूज करते थे क्योंकि ग्लास नहीं थे उस टाइम हमारे पास।
1: तो देखिए, सब वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता, आपने इन चीजों को किया और अब मुझे लगता है किसी को जरूरत होगी ग्लास की, कप की, तो आप सबसे पहले आते होंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके जहन में है कि वो मैंने उसका इस्तेमाल किया था, जबकि इतने शार्प एजेस होते, कटने का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है, तो आपके जहन में होगा और आप मदद करते होंगे।
2: इट्स ट्रू मैडम, मैंने सच में यूज किया उसका, अभी भी मुझे याद है, ये कोई वो नहीं है, अभी मैं वो बड़ी बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात मैडम, ये मैंने देखा पहले क्या है, जब लोग इंडिया में रहते थे ना, इमिग्रेशन का फॉर्म लाजमी भरना होता था।
1: सही,
2: हाँ, तो अगर आपने वही चार बंदों का वही फॉर्म भी भर दिया, उससे बड़ी भी हेल्प मैडम कोई नहीं है।
1: बहुत ही अच्छी आपने बात बताई है।

0: क्योंकि बंदा वहाँ पे जाएगा, लाइन पे लगेगा, वहाँ पे कोई नहीं ध्यान देगा क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे.
1: और कुछ लोग ऐसे ट्रैवल कर रहे होते हैं उनको बेचारे को समझ में नहीं आता, ये तो मैंने भी बहुत भरे और अभी
0: तो
1: भी
0: बहुत अच्छी बात.
1: हाँ, मतलब वो लोग नहीं बेचारे देख के भी नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें बड़ा स्ट्रगल करते, तो कई बार कहते मैडम आप भर दो, तो मतलब भर देना चाहिए, रुकिए आपका सा टाइम जाएगा बट आप भर दो. मैंने तो कितने फॉर्म्स में, मेरे साथ तो 5-6 लोग पीछे लाइन में लग गए, पर ठीक है मेरे साथ जो थे वो क्या यही काम करती रहोगे, अरे जल्दी करो खत्म करो, अरे तुम ये क्या कर रही हो, बट आई लाइक कर दो, बेचारों की मदद करना चाहिए. आई आस्क्ड हिम कि तुम भी भरो जल्दी हो जाएगा, तो हमें ये छोटी छोटी हेल्प करनी चाहिए. सही बात.
0: उस टाइम की फीलिंग देखिए, आपकी फीलिंग क्या होगी जब आपने वो 5-6 फॉर्म भरे होंगे, है ना, आपका मन कितना हल्का हुआ होगा.
1: ये तो है, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा, हालांकि मेरे साथ जो लोग थे वो थोड़े से परेशान हो रहे हैं, वो खड़े हैं उधर कोने में, मैं भर रही हूँ, टाइम तो लगता है थोड़ा बहुत, बट हाँ मुझे लगा कि नहीं उनकी हेल्प हो गई, क्योंकि वो वाकई ऐसा चेहरे से लग रहा था कि परेशान है, उनको भरने में बहुत स्ट्रगल करते. ये छोटी छोटी हेल्प बहुत, आपने अच्छी बात दोनों हाईलाइट की और बहुत ही प्रैक्टिकल बात थी, और दोनों मैंने भी कभी ना कभी फेस की. कार्ड को लेकर भी हुआ कि मैं एक बार गई हूँ और मैं अपना उस तरह वो पर्स ले गई जिसमें मेरा था ही नहीं कार्ड. अब ठीक है, मुझे मैं वहाँ पहुँच गई, मुझे पेमेंट करना ही करना, तो आई वॉज लाइक लुकिंग हेयर एंड देयर, तो एक बंदे ने बगैर कहे खुद ही ऑफर किया कि मैम आप चाहो तो मेरा यूज़ करें, तो आई लाइक देखो कितने अच्छे लगे, इंसानियत है.
0: ट्रस्ट का लेवल देखिए ना, सपोज मैं किसी कतर के रेजिडेंट को बोल रहा हूँ कि मैंने पेमेंट करनी है सर, आई डोंट हैव कार्ड, मतलब उसी टाइम मैडम दे देगा.
1: हाँ,
0: क्योंकि पता है ना बंदे ने गलत यूज करना ही नहीं उसका.
1: हाँ,
0: और इसी में यूज हो रहा है तो देने वाला बंदा ही मैडम दिल खोल के
1: दे देता है,
0: हेल्प करता है आपकी.
1: अपने कंट्री में थोड़ा सा ये वाला मुश्किल है, कार्ड वर्ड ऐसे नहीं देगा वहाँ पर
0: मैडम. मैं वो भी आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ
1: जी,
0: अपने वहाँ पे भी एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे बुजुर्गों की पेंशन आती है ना, बहुत सारे मैडम बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो बेचारे जब पेंशन भी लेने आते हैं रिक्शे पे आते हैं मैडम. अगर आप उन्होंने उनको बैंक तक छोड़ दिया 2-व्हीलर पे, उनकी पेंशन दिला के उनको दोबारा घर पे छोड़ दिया, इससे बड़ी भी मैडम हेल्प कोई नहीं है.
1: वाकई क्या बात है भाई, बहुत ही प्यारी कॉल आपकी, और मैं आपने के लिए वेटिंग के ऐसा कोई आए जो डे टू डे की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके ऊपर बात करें. ये चाह रही थी कि कोई बोले ये सारी चीज़ें, कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, और स्ट्रेंजर से हम बिल्कुल नहीं जानते, ऐसे ऐसे रिलेटेड नहीं है, हल्की फुल्की आपकी मेहनत है बट आप आगे आ रहे हैं, आप इनिशिएट कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं और मदद कर रहे हैं. एक्सेलेंट.
0: आप रिश्तेदारों के हवाले से बात करोगे ना,
1: हाँ,
0: तो उसमें भी बहुत लंबी बात हो सकती है इस चीज पे.
1: हाँ वो तो खैर रिश्तेदारों की तो चलिए मैंने देखा लोग फिर भी कर देते, as you know them well, हाँ, आप उनको जानते ही हो तो आप उनकी मदद करते हो, लेकिन स्ट्रेंजर्स की हेल्प करने का आज का दौर नहीं रहा. जैसे मैंने अपना इंसिडेंट बताया ना, मैंने देखा लाजपत नगर में एक बुजुर्ग इधर उधर टहल रहे हैं, तो उनका बेचारे का फोन ऑफ हो गया था और इतने लोग वहाँ उन्हें देख रहे होंगे, आई एम श्योर देख रहे थे, किसी ने भी नहीं उनकी हेल्प करनी चाहिए, कोई नहीं आया, कोई नहीं बढ़ा, देख रहे हैं थोड़ा. मैंने देखा कुछ लोग अफसोस भी कर रहे हैं, देख के बेचारे परेशान है, बस कह के निकल गए. बट कितने लोग हैं जो इतना गट्स लेते हैं कि आगे बढ़ के पूछें कि नहीं आप क्यों परेशान हो, अंकल क्या हुआ है, हम आपकी हेल्प कर दें, कुछ कर दें, तो नहीं होता. बस ये इसलिए नहीं होता क्योंकि इतने गट्स होते हैं, इतने स्कैम्स हो गए, इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई कि लोग चाहते तो हैं कि हम मदद करें बट वो डर जाते हैं. ये एक डर जो है ना सोसाइटी में आ गया.
0: जी जी, एक ना मूवी आई थी 2007 में, ट्रैफिक सिग्नल. उसमें पूरा अच्छे तरीके से बताया गया कि जो लोग मांगते हैं वो मांगते भी ऐसे हैं, भी हमें देखे जाओ हमारा हक है, हमारी ड्यूटी है. डिटेल में उसमें बताया गया,
1: बहुत ही डिटेल में, काफी अच्छी मूवी देखी है. इत्तेफाक से पहली मूवी है जिसमें मैंने कहा हाँ मैंने भी देखी. आप जब भी कहते हो अच्छा मैं अब देखूंगी, चलो थैंक गॉड ये मूवी देखी थी मैंने, बट थैंक यू सो मच.
0: लास्ट में मेरे को लगता है आपने अलीगढ़ से ज्यादा समय दिल्ली में बिताया है.
1: हाँ नहीं, दिल्ली में मैंने ठीक ठाक टाइम इसलिए बिताया क्योंकि मेरे भाई पे रहते हैं. इस तरह से हाँ, तो वहाँ पे आधी फैमिली है तो बस वहाँ घूमना घामना तो इस तरह का, और दिल्ली का तो कल्चर आप जानते ही हैं थोड़ा सा है भी इस तरह के, लोग जो है अपने काम से काम ज़्यादा रखते हैं, कोई किसी दूसरे के काम से काम बिल्कुल नहीं रखना चाहता, तो ये मैंने महसूस किया हल्का फुल्का, और उसकी वजह भी शायद हम ही लोग हैं कि एक दूसरे के साथ इतने चीट फ्रॉड ये सब करने लगे कि आके भी एक दूसरे की मदद नहीं करते, या टाइम भी नहीं है, पता नहीं क्या है.
0: जी बाकी मैडम अच्छा भी है आपने अच्छे से एक्सप्लोर किया है ना दिल्ली को, जिस बंदे ने नजदीक से दिख लिया ना दिल्ली को वो

0: बंदा दुनियादारी को बहुत करीब से जान जाता है।
1: नहीं मैं भी चप्पे चप्पे से वाकिफ नहीं हूँ दिल्ली के, बट
0: ऑटो रिक्शो वालों से तो वाकिफ होना
1: ना। हाँ उनसे तो हूँ, उनके साथ तो मैं इधर उधर आई गई तो उनको भी जान गई। चलिए जी, थैंक यू वंस अगेन, हमेशा ही आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगता है और अपनी मेमोरीज जो है ना, मेरी खुद की पर्सनल, मेरे एक्सपीरियंस वो सारे एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। तो थैंक यू कि आप प्रैक्टिकल एग्जांपल और चीज़ें हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। थैंक यू वंस
0: अगेन,
1: यू टू, टेक केयर, बाय। ऑलराइट, यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक हम एक्सप्लोर कर रहे हैं दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं ख्याल में इंसानियत की असल पहचान क्या है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनों की मदद करना ठीक है, या फिर आप ये समझते हैं कि वाकई अजनबी का भी आपको सहारा बनना चाहिए? क्या कभी किसी अजनबी ने आपकी हेल्प की या आप उनकी हेल्प कर पाए? सर शेयर कीजिएगा, कोई भी आपके पास कोई भी छोटा मोटा कोई भी मेमोरी है, कोई है 666-2107, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिए 4434377 पर।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: देखिए मैं तो कहूंगी सुनना बहुत जरूरी है और समझ के फिर समझदारी से काम करना उससे भी इंपॉर्टेंट है। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स मेरे यानी नाजिया के साथ।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: देखो कई बार हमारा दिल तो चाहता है कि हम किसी की मदद कर दे, बट हमारा दिमाग हमें रोक लेता है, समझाता है अरे आज के दौर में तुम मदद करने की सोच रहे हो, कहीं कुछ ऐसा वैसा हो गया तो फंस जाओगे, बस हम रुक जाते हैं। क्या करें, कई बार जो है हमारा दिमाग जीत जाता है और दिल हार जाता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता है। 100 बार हमारा जो है दिमाग जीता तो कम से कम 10-20 बार हमारा दिल भी जीतता है, और हम अपने दिल की सुनते हैं और मदद कर भी देते हैं, और फिर जब हम देखते हैं कि सब कुछ सही रहा, नॉर्मल रहा, तो अगली बार भी हम अपने दिल की सुनने के लिए जो है ना वो तैयार हो जाते हैं, है ना। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों की। जैसे यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, कादिर अब्दुल हादी जी का सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम भी आपको कहेंगे। और यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छी बात मेंशन की है, देयर आर सम एरियाज वेयर द रिस्पेक्टिव ऑफिशियल सर्विस प्रोवाइडर हैज टू बी इन्फॉर्म बिफोर मेकिंग सपोर्ट एज द गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड रूल्स एंड मेड स्पेशल अरेंजमेंट्स विद द इमीडिएट हेल्प टू रीच इन एनी एरिया एंड एनीवेयर। दैट्स राइट, यहाँ भी है और हमारी कंट्रीज में भी है।

0: बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, आप उन्हें वहां पे कांटेक्ट कीजिए. बट कई बार उससे भी वर्स सिचुएशन हो जाती है, बंदा वहां तक अप्रोच करने की भी पोजीशन में नहीं होता ना, उसको इमीडिएट हेल्प चाहिए. इमीडिएट हेल्प के लिए आसपास के लोग ही हैं जो कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर जो है कादिर अब्दुल हादी जी, एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट उन्होंने शेयर की स्टोरी कि व्हेन आई वाज इन दुबई, ये बोल रहे हैं नॉट मी, और कहते हैं आई फाउंड वन पाकिस्तानी फैमिली हु वर वेटिंग फॉर अ टैक्सी एंड ड्यू टू हैवी रेन द टैक्सी वाज अ लिटिल बिट हैक्टिक टू रीच एंड द वाइफ ऑफ द पाकिस्तानी फैमिली इज प्रेग्नेंट. सो इट वॉज अराउंड 9 PM. आई ड्रॉप देम इन देयर हाउस दो माई रेजिडेंस वॉज द अदर साइड एंड एट द सेम टाइम देयर वॉज नो लोकेशन शेयरिंग एट दैट टाइम. तो देखिए, कुछ लोग हैं इतने अच्छे, इतने जेन्युइन कि एक दूसरे की मदद करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि नहीं इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कि हम तो कुछ ऐसे वैसे परेशान के शिकार तो नहीं हो जाएंगे एंड समथिंग लाइक दैट. आप आगे बढ़ते हैं और मदद करते हैं, ये होना भी चाहिए और ये जारी रहना भी चाहिए. क्योंकि जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो हमारा मतलब अच्छी अच्छी बिल्डिंग से, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर या और जो फैसिलिटीज़ हैं उससे हमारा जो है वो काम नहीं चलता. असली हेल्दी सोसाइटी जो है वो तब होती है जब लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं. कोई मुसाफिर है, रास्ता भटक गया है, हमने उसकी जेन्युइनली मदद कर दी. ये छोटी छोटी चीज़ें, इसमें पैसा भी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई रिस्क भी इन्वॉल्व नहीं है. बट ये हेल्प हमारे हर रोज़ हमने देखा होगा कि कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो इस तरह की हेल्प चाहता है, तो हम उसकी इस तरह की हेल्प जिसमें ज़ीरो रिस्क इन्वॉल्व है वो तो कर ही सकते हैं. कोई बेचारा ऐसा बुज़ुर्ग है, सामान उठाने में से दिक्कत हो रही है, आप आगे बढ़े, आपने उसका सामान उठा लिया या उस जगह पर उसका रख दिया, या कोई और छोटी सी हेल्प जो आपको लगती है कि आप कर सकते हो इन योर गुड कैपेसिटी, तो वो तो आपको करना ही चाहिए. ये मैं स्ट्रेंजर्स के हवाले से ज़्यादा बात कर रही हूँ. अच्छा, और भी मैं बातें करूँगी, बट बिफोर दैट एक कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो चलिए इनसे पहले बात कर लेते हैं. हेलो.
1: हेलो, गुड मॉर्निंग.
0: हाय, अ वेरी गुड मॉर्निंग. अज्जू है क्या हमारे साथ?
1: यस.
0: कैसे हैं अज्जू? हाउ यू डूइंग? हाउ इज योर मॉर्निंग गोइंग?
1: मॉर्निंग गोइंग गुड. जस्ट नाउ वन शिफ्ट इज कंप्लीटेड.
0: वन शिफ्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड. नाइस. सो हाउ मेनी मोर शिफ्ट्स यू हैव नाउ?
1: ओह, वी आर डिवाइडिंग, डिपेंड्स ऑन द टेंडर. Humidity is too high now, almost 58 to 59.
0: Yeah, today.
1: So we are every day morning we are rolling around 5 o'clock. So 5 o'clock to 7 o'clock, almost we have one shift.
0: Nice. We are
1: and
0: done with
1: depend,
0: one.
1: Yeah, it depends on the climate changes.
0: Nice. Okay. So आज का हमारा जो टॉपिक is about helping strangers. कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई स्टोरी जहाँ आपने किसी स्ट्रेंजर की हेल्प की एंड ऑफ कोर्स किसी स्ट्रेंजर भी आपकी टफ सिचुएशन में हेल्प की?
1: नहीं, मैं अभी तक ऐसे हेल्प का सिचुएशन मेरे लिए नहीं आया अभी तक, क्योंकि मैं बाहर, मैं किधर भी बाहर जा रहा हूँ तो उसका फुल प्रिपरेशन में मैं जाता हूँ. For example, if I'm going any long journey, some unknown language, Maharashtra, somewhere out of my language states, I will prepare all those things. So until now, I don't want anyone help from any strangers. But mera ek incident tha last time, I was in vacation. एक यूपी फैमिली था, उसका एक हस्बैंड एंड वाइफ एंड उसका दो बच्चा लोग था, छोटा है, बहुत छोटा है. सो द गाय केम फॉर वर्क इन तमिलनाडु एंड समवन चीट हिम. सो वो उसको वापस जाने का यूपी में. सो वो एक मॉल का ऑपोजिट खड़ा था. वो बहुत आदमी के पास वो बात कर रहा था, लेकिन यू डोंट नो, यू नो द तमिलनाडु, नो हिंदी, वी आर नॉट फेमिलियर दैट हिंदी. मे बी लाइक 100 में आपको 10% पीपल हिंदी बात करता है, वो भी बहुत सम रूरल एरिया में बहुत कम है. तो मैं गाड़ी में पार्क, मेरा वाइफ एंड मेरा बेटी माल का अंदर था, मैं गाड़ी में खड़ा था. तो मैं देख रहा था वो क्या चल रहा. फिर मैं गाड़ी बंद करके थोड़ा आस्था से नजदीक किया, फिर मैं बात समझ गया. मैं फिर मैं उसको बात किया, क्या तोड़ो, मैं बोला भाई

ने एक आदमी मेरा काम के लिए लेके आया, वो काम इतना अच्छा नहीं है, वो थोड़ा मुश्किल है, जीतिया ऐसे बोला था। फिर आपको क्या चाहिएगा? वो बोला नहीं मेरा

0: उसके बाद उसके बाद मैं बोला आपको रेलवे स्टेशन छोड़ने का बोला, वो बोला मेरा पास पैसा नहीं है पूरा खत्म हो गया बोला था। फिर ओके नो प्रॉब्लम, फिर मैं वो थोड़ा नजदीक है 3-4 किलोमीटर ओनली इन रेलवे स्टेशन, तो मैं वो लोग को लेके गया रेलवे स्टेशन लेके गया। फिर उसको अंडर सेवर टिकट ना, अंडर सेवर टिकट आने वाला नेक्स्ट ट्रेन को मैं मिला के उसके पास 2000-3000 रुपीज दे के आप जाओ, जाके आपका गांव में कोई काम मिलेगा तो ढूंढो बोला।
1: Wow, you're such a nice person.
0: ये मेरा बहुत, लेकिन मैं ये दो बच्चे लोग को बहुत रो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा मेरा बहुत माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। फिर उसको पूछा आपको कौन सा कंपनी में आया, कौन बुलाया, उसको नंबर दीजिए, वो नंबर भी दिया था। फिर मैं उसको बात किया, वो कोई दूसरा आदमी है। फिर मैं वो क्यों ज्यादा टेंशन क्यों लेने का बोल के मैं उसको दोबारा फोन नहीं किया।
1: बट आपने हेल्प किया, रिसेंटली
0: हुआ था,
1: वेरी नाइस।
0: मैं हेल्प किया था,
1: जबकि आपका ऐसा
0: जो मेरा हाँ। जो मेरा पास हेल्प करने का दम है, मेरा पास हेल्प करने का
1: कैपेसिटी है,
0: मैं डेफिनेटली आई विल हेल्प।
1: वेरी नाइस, यही होना चाहिए, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट।
0: मेरा ऊपर का हेल्प मांग रहा है तो मेरे को नहीं कर सकता।
1: हाँ ठीक है, हर तरह की हेल्प नहीं कर सकता हर कोई, बट जितना आप आपकी गुड कैपेसिटी में कर सकते हो,
0: जस्ट डू दैट। बी हॉनेस्ट, बी हॉनेस्ट, आपको
1: बी विलिंग, एटलीस्ट बी विलिंग टू हेल्प, ये होना चाहिए। इतनी तो आपके अंदर यू नो कर्टेसी रहे कि किसी के साथ कुछ बुरा हो, जस्ट वॉक इन, जस्ट टॉक टू देम, पूछिए एंड जस्ट डू योर बेस्ट, जो आप कर सकते हो इन गुड कैपेसिटी, कोई रिस्क इन्वॉल्व ना हो आपके लिए उसके साथ, इतना करना चाहिए, इतना हमें टाइम निकाल ही लेना चाहिए। इट्स नॉट दैट कि हम इतने बिजी हैं कि कभी किसी की कोई परेशानी हमसे कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ अपनी दुनिया में जी रहे हैं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
0: लेकिन अगर एक चीज है, अगर हमारा इंडिया में बहुत आदमी हेल्प मांगता था, कभी कभी कोई कोई आदमी मेरे पास भाई इतना खाना नहीं खाया पैसा दीजिए मेरा पूछे था, वो मैं बोलता, मैं उसको देखता पहले देख के, मैं पैसा नहीं देता आपको, भूख है तो आ जाओ होटल में आ जाओ, मैं खाना खिलाएगा, इतना खाओ आप खाओ, लेकिन पैसा नहीं देगा।
1: सही, जो
0: सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि मेरा हेल्प का फायदा होना चाहिए। मैं 100-200 में देता, वो सीधा वाइन शॉप में जाकर 1 रुपया पीते, ऐसे वाला आदमी बहुत है इंडिया में।
1: बिल्कुल,
0: तो मेरा हिसाब से बी हॉनेस्ट, आपको बी हॉनेस्ट में हेल्प पूछेगा तो मैं डेफिनेटली आई विल डू फॉर माई स्ट्रेंथ।
1: बिल्कुल,
0: मेरा ऊपर का वो पूछेगा तो मैं बोला मेरा पास इतना नहीं है, आई विल डू दिस मच लेवल ओनली, आई कैनॉट डू मोर देन यू आर एक्सपेक्टिंग।
1: किसी को छोटा सा कोई मशवरा दे दिया, कोई एडवाइस दे दिया, किसी के साथ किसी को कनेक्ट करवा दिया कि ये बंदा है इज द राइट पर्सन, ये आपकी हेल्प कर देगा। सो ये चीजें हैं, और इसी से शायद हम कह सकते हैं कि इंसानियत जिंदा है। जो हम बात करते हैं कि इंसानियत कैसे जिंदा है, किस तरह से इसको जिंदा रखा जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एलिमेंट्स हैं, मैंडेटरी हैं, और आज की सोसाइटी को, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गई हैं। सो नाइस, ग्लैड, आई एम सो इम्प्रेस कि आप जैसे लोग हैं जो आगे से एकदम स्ट्रेंजर्स की जाके हेल्प करते हैं, इतनी एक्सटेंड तक जाते हैं हेल्प करते हुए। सो वेरी नाइस, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय, यू टू। देखो कितना अच्छा लगा कि हमारे साथ हमारे एक लिसनर जुड़े अजू, उन्होंने इतनी अच्छी स्टोरी बताई, उनका कोई लेना देना नहीं, एकदम रेंज बंदा। बट शायद ये कि अज्जू जी का एक कह सकते हैं एडवांटेज है कि ही स्पीक्स हिंदी और ही अंडरस्टैंड्स हिंदी वेल, और इसके चलते उन्होंने उस बंदे की बात ना सिर्फ सुनी बल्कि उसकी इतनी मदद की कि उसको वहाँ तक पहुँचाया, उसकी जो डेस्टिनेशन हो सकती थी वहाँ तक उसको पहुँचाया। तो पैसे से भी हेल्प की, हाथ पैर से भी की, अपनी समझदारी से भी की, हर तरह से हेल्प की। तो ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए, हम इतने ज़्यादा बिजी ना हो कि बिल्कुल भी किसी को नहीं देख रहे हैं और बस अपने आप में ही लगे हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि ठीक है, हेल्प हर कोई नहीं कर पाता और उतना करना आज के दौर में हो भी नहीं पाता। कुछ लोगों को मैंने देखा है कहते हैं कि भाई हम ऑनलाइन हेल्प करेंगे। अब ऑनलाइन भी हेल्प बहुत हो रही है आज के दौर में, सोशल मीडिया दौर है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से बहुत सारी ऑनलाइन हेल्प हो जाती है। कितने ऐसे फंड रेजिंग कैंपेन्स हो रहे होते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि किसकी मदद हो रही है, कौन इसका एंड यूज़र होगा, कौन किसको एंड में जाके फ़ायदा होने वाला है, बट हम जुड़ जाते हैं उस नोबल कॉज के साथ, मदद हम कर रहे हैं। और ये देखिए ब्लड डोनेशन कैंप्स, ये भी तो आप एक किसी ना किसी की मदद कर रहे हैं। आपको पता नहीं कि वो खून जो है वो पता नहीं आपने डोनेट तो किया किसको पहुंचेगा, किस ज़रूरतमंद, लेकिन हम करते हैं। कुछ लोग जो है मैंने देखा फ्री में ऑनलाइन, आप देखिए ना कितने सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स उन्होंने चलाए हुए हैं जहाँ पर बच्चे फ्री में बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इमोशनल ग्रुप्स हैं जहाँ लोग एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन टू सम एक्सटेंट बहुत ज़्यादा काम होता ही है, बट एक्चुअल में मुझे क्या लगता है कि जो ऑफलाइन हेल्प है ना उसकी अहमियत ही अलग है। ऑफलाइन का मतलब कि रियल लाइफ में आप जो है हेल्प करते हैं उसका एक असर अलग होता है, वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। कभी कभी एक छोटी सी तसल्ली वाली बात कह देना, छोटी सी आपकी मुस्कुराहट किसी के लिए, या छोटा सा आपका उसको टेंशन दे देना, या छोटी सी प्रैक्टिकल हेल्प, कोई भी प्रैक्टिकल हेल्प जो कि करना आसान हो सकता है, वो उसके दिन को बेहतर बनाती है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, हेल्प जो है वो वाकई कंटेजियस है। आप किसी की हेल्प करते हैं, अगला 100% कहीं ना कहीं हेल्प उसकी उस सिचुएशन में होती है तो फौरन रिलेट करता है और दूसरे की हेल्प करता है, फिर वो दूसरा तीसरे की, तीसरा चौथे की, इस तरह से ये चेन बन जाती है। लोग एक दूसरे की हेल्प करना शुरू कर देते हैं एंड दैट्स हाउ वी विल लाइक कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मेक एन हेल्दी सोसाइटी। तो इसकी बात हम करते हैं। ठीक, मैं कहती हूँ कि आप कुछ जगह एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस भी लें। कोई ऐसी जगह है जो बहुत ही आइसोलेटेड सी है, वहाँ आपको जाना है, आपको हेल्प करने को कोई बोल रहा है, कह रहा है, सो यू कैन अवॉइड। लेकिन पब्लिक प्लेसेस है, इन जगहों पे अगर कोई हेल्प है, रिक्वायर्ड है, तो यहाँ आप ज़रूर कर लीजिए। हाँ, कुछ ऐसी भी सिचुएशन सकती हैं जहाँ आप इंटरवीन करने से पहले ज़रूरी है कि कोई कोई अथॉरिटी है, पुलिस है, कोई इमरजेंसी सर्विसेज हैं, वो आए उस सिचुएशन को संभालें। तो मैं ये नहीं कहती कि रिस्की सिचुएशन में आप अकेले खड़े होकर हीरो बन जाइए, हीरो बनने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं करना है। लेकिन हाँ, जहाँ आप कर सकते हैं, जहाँ जैसे आप कर सकते हैं छोटी छोटी मदद, वो ज़रूर कीजिए। वो आज की सोसाइटी के लिए और हमेशा हर सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो के करना ये भी ज़रूरी है। मदद ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप पैसे से करें, पैसे से मदद करना ही मदद करना नहीं होता है दोस्तों। कभी अच्छी बात कहना, मुस्कुराहट, कभी किसी को सही इन्फॉर्मेशन बताना, कभी किसी के कोई फॉर्म भर देना, ये सारी चीज़ें जो हैं छोटी छोटी मदद हैं। याद रखिए, इंसानियत है वो ज़िंदा इसी दम पर है कि हम साथ साथ मिलकर एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ें, और कभी भी कोई भी इंसान जो है ना अकेले आगे नहीं बढ़ता। जहाँ आप देखिए कि जहाँ पर इंसान के पास दिल है वहाँ उसमें हमदर्दी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे में होशियारी भी बहुत है, लेकिन दिल में हमदर्दी, ये मैं कहती हूँ बहुत बहुत ज़रूरी है। तो बस आज हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम जो हैं वो एक हेल्दी सोसाइटी में गुड बैलेंस जो है वो ले पाएँ, कैसे मदद भी की जाए उसको भी बरकरार रखा जाए। और मैं कह सकती हूँ दोनों में गुड बैलेंस क्रिएट करना बहुत समझदारी से, ये हमारे और आपके हाथ में है, और इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए है। टाइम का सारी दुनिया में सबके पास बड़ा मसला है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप समझदारी से मदद भी करेंगे, आप समझ भी पाएंगे कि इस इंसान को की ज़रूरत है कि नहीं, और इसी बैलेंस से एक मजबूत, एक पॉजिटिव और एक हेल्दी सोसाइटी जो है वो बिल्ट होती है। चलिए, एक लास्ट कॉलर है आई थिंक इस टॉपिक पे, इनसे कर लेते हैं एंड दैट्स हाउ वी हैव कंक्लूडेड दिस। और वापस आएंगे 8 बजे तो हमारा जो गेम सेगमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट कॉलर ऑन दिस टॉपिक, हेलो।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़िया जी।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? रमेश जी हमारे साथ, राइट?
2: अहमद बोल रहा हूँ।
1: अहमद है, ओके। अहमद आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा कि आज के टॉपिक में मैं अपना भी इनपुट, कुछ अपना पर्सपेक्टिव भी थोड़ा सा दे दूं,
1: प्लीज,
2: लोगों को एक अलग नजर ये शायद नजर आ जाए इसमें। मैंने अभी अज्जू जो आपके एक हमारे जो लिसनर है उनसे मैंने जो डिस्कशन आपने की और मैंने सुना उनकी जो स्टोरी, मेरा अपना एक है कि देखिए सिचुएशन किसी भी फैमिली किसी भी पदे पर यूजुअली जब आप कोई दूसरी जगह पर जाते हो तो ये सिचुएशन आ सकती है। करेक्ट, कहीं भी हो, शायद वो इन कंट्री हो आउट कंट्री हो, बट मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे सिचुएशन के लिए हर एक शख्स को एक बैकअप प्लान पहले से रखना चाहिए. ये नहीं कि आप इस एक्सपेक्टेशन में हो कि ठीक है अगर ये मेरे साथ में बुरा हो जाए तो मैं किसी से हेल्प मांग लूंगा एंड ऑफ कोर्स दैट पर्सन विल बी एम्पैथेटिक और वो मुझे हेल्प कर देगा. बट इन द केस अगर आप खुद से भी

0: प्रिपरेशन एक बैकअप प्लान रखते हो कि भाई इनकेस अगर ये चीज ना चलती हो तो मेरे पास ये बैकअप प्लान है, मैं इन सिचुएशन में इमरजेंसी में मैं ये ऐसे ऐसे इस चीज को हैंडल करूंगा। यानी हमेशा किसी और की हेल्प के भरोसे पर रहना, क्या ये भी ठीक है?
1: नहीं, ये मेरा नहीं। बट कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं ना, जिसमें आपने 100% प्लान बी रखा है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट कुछ ऐसा हो गया।
0: करेक्ट करेक्ट,
1: तो हम उसके लिए तो प्रिपेयर नहीं थे।
0: नहीं, मैंने एग्री किया आपके कि आप प्लान ए के ऊपर 100% पूरा बिलीव किया कि इट इज गोइंग टू वर्क वेल। ठीक है, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, व्हाटएवर मैं अनदर प्लेस में पहुंच गया, इन सर्कमस्टांसेस वर्स्ट केस सिनेरियो वो चीज नहीं हुई। इन केस ऐसे सिचुएशन में आपको पहले से ही प्लान करना है कि अगर ऐसा होता है तो मैं इसका क्या सोल्यूशन निकालूं। अभी वो बंदा जो है वो पूरी फैमिली के साथ में एक नई जगह पर पहुंच गया, उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो ठीक है, अज्जू वहां पर थे, अज्जू ने हमको हेल्प कर दिए। चलिए, कोई और बंदा भी हेल्प ही देता है, ऐसा नहीं कि नहीं आदमी फंसा नहीं रहता है। बट इन सच केसेस कुछ कुछ जगह पर कुछ कुछ बैड हैपनिंग्स भी हो जाती है। अगर लड़की है, वो अगर एडल्ट है या टीनेजर है, नहीं नई जगह पर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो हर बंदा अच्छा ही होगा। जो अच्छा बंदा था ठीक है, उसने हेल्प किया, कोई दूसरा अच्छा बंदा नहीं होता, वो कुछ और भी बैड हैपनिंग हो सकती थी। तो मेरा ऐसा मानना है आपके पास एक सेकंड बैकअप प्लान भी होना ही चाहिए। प्लान ए से आप चलिए, लेकिन प्लान भी आपके दिमाग हमेशा रखिए कि अगर ये चीज नहीं होती है तो आई विल डू लाइक दिस एंड आई विल डू इट लाइक दैट।
1: आपको
0: वो नौबत ही ना आए।
1: और अगर आ भी गए तो जस्ट सी कि किस तरह का बंदा आपकी हेल्प कर रहा है। कुछ ना कुछ तो आपके एक इंस्टिंक्ट्स बता देते हैं कि बंदा थोड़ा सा अच्छा है कि नहीं।
0: देखिए, हर आदमी जो है वो जजमेंट में फेल हो भी जाता है, और वो अगर स्कैमर हो या उसको कुछ भी, मैं नेगेटिव जो पर्सन होते हैं वो इतने शातिर होते हैं कि वो ना अगर फैमिली अगर हो ना उनको ज्यादा उनको पता होता है किस तरीके से इनको ट्रिक किया जाए। स्पेशली अगर आप नई जगह पर हो तो, अगर आप आपके एरिया में हो ना तो आप आपके एरिया में आप हैंडल कर लोगे, लेकिन आप नई जगह पर हो तो जो स्कैमर्स भी होते हैं वो काफी, यानी हम लोगों की बॉम्बे की जुबान में बोलते हैं, बहुत शाने होते हैं लोग। वो लोगों को फंसाने आता है कि भाई किस तरीके से फंसाया जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास प्लान ए हो, प्लान बी हो, और अगर हो सके तो प्लान सी भी हो, देन इंशाल्लाह आपको ये सिचुएशन ही नहीं, आप पहले से प्रिपेयर हो। और ये सिर्फ इस सिचुएशन में नहीं, मैं लाइफ की हर चीज के अंदर, मैं जिन लोगों के साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह जॉब करता हूँ, उन्होंने मुझे ये चीज का थोड़ा सा आइडिया दिया कि ऑलवेज हैव प्लान ए एंड प्लान बी, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो प्लान आल्सो इज बेटर।
1: क्या आप क्वालिटी में हैं क्या?
0: आई एम सॉरी,
1: आप क्या क्वालिटी डिपार्टमेंट में हैं?
0: जी नहीं, मैं गवर्नमेंट में हूँ। कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट पर्सन हो।
1: ओके, नाइस।
0: तो बस मुझे बस वही पता चला है कि आपके पास अगर ये होता है तो आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथली चलती है, आपको वो टाइम पे पैनिक का कोई सिचुएशन ही नहीं आएगी।
1: नाइस, दैट मींस ये पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए मदद लेने वाले के जहन में, तो हर कोई कभी भी किसी भी वक्त पे मदद लेने वाला बन सकता है।
0: आपको हेल्प ही किया जाए, आप खुद के भी तो सेल्फ प्रिपरेशन में रह सकते हो ना।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
0: देखिए, वो जो भी बंदा था जो अज्जू से मिला, वो उसकी कंट्री या उसके स्टेट में जो होगा वो वेल स्टेबल होगा, आई अज्यूम कि वो स्टेबल होगा। बट ओके, वर्स्ट केस सिनेरियो में वो नई जगह पर है तो नई जगह पे सिचुएशन तमाम हैंडल करना डिफिकल्ट होता है। तो अगर वो अपनी जगह पर स्टेबल है तो वहीं से प्लान भी कर ले कि अगर मेरे साथ में बुरा होता है तो मैं इसको इस तरीके से हैंडल कर लूंगा। तो माइंड स्टेबल होता है, फैमिली अगर आपके साथ है तो वो भी स्टेबल रहते हैं। जैसे बच्चे रो रहे थे तो आप अगर फादर है तो आप बच्चों को समझा सकते हैं, बेटे डोंट वरी, आई हैव अ प्लान बी, वी आर गोना वर्क इट लाइक दैट।
1: चलिए, ये बात तो सही है। ये सिचुएशन तो हम फिर भी समझ रहे हैं कि हम प्लान कर सकते हैं, इसको और फर्दर प्लान किया जा सकता है और इलैबोरेटेड वे में प्लान कर सकता था। लेकिन कुछ सिचुएशन लाइक एक्सीडेंट फॉर एग्जाम्पल, या इस तरह का कोई मिसहैप, हमने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए बट डिस्पाइट ऑफ दैट ऐसा हो गया, उसमें तो हम कुछ हद तक डिपेंड करते हैं कि कोई हमारी हेल्प
0: कर रहा है। एक्सीडेंट, मैं हमेशा एक्सीडेंट वर्ड को इस तरीके से लेता हूँ कि एक्सीडेंट का मीनिंग ही है कि ये बिना इन्फॉर्म किए, बिना आपको बताए, बिना प्रिपरेशन के हो जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट। सो अगर आपके साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो इन दैट केस आई वुड टोटली एग्री विद ऑल द अदर लिस्ट।

0: बिजनेस के भाई उन्होंने जो जो अपना इनपुट दिया है मैं उसमें एग्री करूंगा कि भाई यस दैट, आप उस टाइम पे हेल्पलेस होते हो. अगर एक्सीडेंट में खुदा ना खास्ता आप इंजर्ड हो जाते हो वट एवर, देन यू आर हेल्पलेस. इन दैट केस ओके ऑफकोर्स इफ समवन विल हेल्प यू दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, दैट विल बी द बेस्ट. बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में मैं
1: कुछ
0: जो मेरे जहन में रहता है कि भाई इसका एक दूसरा भी तो नजरिया होता है, दूसरा पहलू होता है. इसका दूसरा पहलू ये था कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई ओके आप हमेशा उस नजरिए से देख रहे हो, इस नजरिए से भी तो देखिए आप कितने प्रिपेयर्ड हो इस चीज के लिए.
2: सही कहा,
0: हमेशा रिलाय रहना किसी पर, क्या ये बेटर है? मेरे ख्याल से नहीं है. आपने आपसे इतना स्ट्रांग रहे कि आपको जरूरत ना पड़े. जैसे आपने एक्सीडेंट बताया उस केस में ऑफकोर्स यानी योर बॉडी इज समटाइम आई मीन वो गिव अप कर देती है, तो इन दैट केस आप कुछ नहीं कर सकते. देन आपको दूसरे पर तो रिलाय होने होगा.
2: That's true. चलिए, थैंक यू सो मच, ग्लैड कि आप जुड़े. नहीं नहीं नहीं, आपकी बात मेरे हर्ट क्यों हो गया? आपने बहुत अच्छी बात की एंड दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट जो हम सब मिस भी कर रहे थे. हाँ, नहीं करना
0: चाहिए.
2: हाँ नहीं, और नहीं, ये बात तो है. अपने जो सारे आप प्रिकॉशंस लेकर चलिए ही चलिए, उसके बाद कुछ केस कुछ हो रहा है देन.
0: आपको देखिए लाइफ के अंदर कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि ठीक है मैं फला जगह जाने वाला हूँ, वहाँ मेरा एक रिश्तेदार या दोस्त है
2: जी,
0: और ऐसा होता है कि वो बंदा आपको हेल्प नहीं कर पाता है फॉर वट एवर रीजन, फॉर पर्सनल रीजन, फॉर यानी कोई भी वजूहत हो सकती है, और वो आपको ना हेल्प कर पाए. तो आप तो पहले से आपने माइंड बनाया था कि यार मैं वहां जाऊंगा तो मुझे ये बंदा या बंदी हेल्प करेगी, और वहां पर जाने के बाद पता चला यार उसने अपने हाथ उठा लिया, यार नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता, देन वॉट. आप तो उस भरोसे पर गए थे.
2: सही बात है.
0: अगर आप पहले से इसे माइंड में रखते नहीं देखिए अगर ये बंदे जो हेल्प नहीं किया तो मैं आई एम गोना डू द प्लान बी, ओके दैट वर्क्स. आपको मेरे ख्याल से स्टॉप होने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने लाइफ में कंटिन्यू करेंगे. आपको इश्यूज थोड़े यानी
2: वो स्टैग्नेशन जो आप कह रहे हैं आएगा, वो स्टैग्नेशन बहुत ही टेम्परेरी होगा. Otherwise, that's nice. Fantastic. Thank you so much. Glad कि आप हमारे साथ जुड़े हो. Last में जुड़े, एक बहुत ही अच्छा टेक, बहुत ही पावरफुल आपने टेक दिया. So I think this is the best takeaway. अभी का हमारा ये भी हो सकता है कि हेल्प भी करना है और हेल्प लेने वाले को भी सोचना है, अपनी प्रिपरेशन रखनी है. Thank you once again.
0: Yes. True.
2: Have a great day.
0: Thanks a lot. You too. Thank you so much.
2: Bye. Alright, so दोस्तों आज इस टॉपिक को यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं और लास्ट में कितनी अच्छी क्लोजिंग हुई इस टॉपिक की, बड़ा फैंटास्टिक क्लोजिंग. और मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप सब लोग जुड़े विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव, विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो आप करते हैं. सो थैंक यू सो मच. आज भी इस टॉपिक हमने भरपूर बात की, हालांकि एक घंटा एक डेढ़ घंटा और भी ज़्यादा बात की जा सकती है. मेरे पास तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट क्या ही कितना बोलें कितना बताएंगे. हमने जस्ट समझ लिया हेल्प करना है समझदारी से, अपनी गुड कैपेसिटी को देखते हुए, और जो हेल्प ले रहा है जैसे हमारे लास्ट कॉलर अहमद जी जुड़े, उन्होंने कहा उसको भी थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखना है, समझदारी से हेल्प लेना है.

FM 107. Time check. Time check. राइट गाइस, टाइम फॉर द टाइम चेक. और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 8:09. और एक भाई ने बहुत ही प्यार से मुझे भेजा था कि आशिकी मूवी का कोई भी ट्रैक चाह दीजिए. तो चलिए खास आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सा ट्रैक मिलकर एंजॉय करते हैं. एंड स्टे होक टू FM 107. दिल से तेज.

आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

गाइस वेलकम बैक। और कई बार ऐसा होता ही होता है कि हमारे जो ख्वाब है ना वो इस तरह के ख्वाब होते हैं जो कहीं ना कहीं दूसरों की हकीकत के साथ जुड़कर उनकी ख्वाबों को भी पूरा करने में हमारी और आपकी मदद करते हैं। देखिए बहुत बहुत बार हम जो है ना अपने ख्वाब सिर्फ अपनी कामयाबी तक ही रखते हैं, जबकि कुछ ख्वाब कुछ लोग ऐसे हैं जो देखते हैं जहां हजारों लाखों की लोगों की जिंदगियों में रोशनी लाई जा सके। वेल आज इस मिनट पे जहां मैं आपके साथ एक छोटा सा नरेशन शेयर करती हूं और मैं आपसे कहती हूं कि आप मुझे गेस कीजिए और बताइए कि ये किस पर्सनालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनकी पर्सनालिटी पर शायद छोटा सा नरेशन बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा मतलब वन लाइनर जैसा है। अगर मुझे कहा जाए तो मैं बहुत देर तक बहुत कुछ पढ़ सकती हूँ, बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बहुत कुछ बता सकती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा टाइम होता कहाँ है। तो चलिए आज हम इस सेगमेंट में जिस पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं वो मैं कह सकती हूँ वो वाकई अपने आप में उन्होंने जो काम किए हैं वो एक बहुत मिसाल है। जैसे मैंने कहा उनके ख्वाब सिर्फ उनकी कामयाबी तक जो है वो महदूद नहीं रहे, उन्होंने कुछ ऐसे ख्वाब देखे जो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी के साथ जुड़े हुए थे। एक ऐसा नौजवान क्रिकेटर जिन्हें और आप हमेशा याद रखते हैं, एक ऐसे कप्तान के तौर पर जिन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान की टीम को जितवाया। शायद उनकी कहानी जो है वो एज अ क्रिकेटर एज अ विनिंग कैप्टन के तौर पर याद रखी जाती है, लेकिन असल कहानी क्रिकेट की नहीं है बल्कि दूसरों की करने की खिदमत की। और ना जाने ऐसे कितने एक्ट्स हैं जिन्हें करने की है जिसके बाद हम और आप उन्हें दिल से एडमायर करें। देखिए पाकिस्तान ने जब वर्ल्ड कप जीता था तो उस वक्त उस कामयाबी के पीछे सालों की मेहनत थी, हिम्मत थी और लीडरशिप थी और एक लीडर की सोच थी। मुश्किल वक्त में उनका एक मैसेज नेवर गिव अप, ये कहीं ना कहीं हर किसी को मोटिवेट करता था। और शायद पाकिस्तान की टीम ने हार के करीब पहुंचकर भी हार नहीं मानी और यही बात उनकी जीत में तब्दील हुई। देखिए क्रिकेट से तो रिटायरमेंट ले लिया लेकिन आपने अपनी वालदा की याद में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाया और ये मिशन इन्होंने शुरू किया। बहुत लोगों ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। और हाँ 1992 वर्ल्ड कप का जो प्राइस मनी था वो भी हॉस्पिटल के लिए ही आपने डोनेट कर दिया। आपकी ज़िंदगी में ऐसे कितने लोग आए होंगे जिन्होंने अपनी जो सोच है, जो अपनी खुशी है, जो अपने ड्रीम्स से उन्हें पीछे रख के लाखों लोगों के ड्रीम्स को आगे रखा। ये इस तरह की ही पर्सनैलिटी है, इस तरह की शख्सियत हैं। मैं कहूँगी ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने असली जीत हासिल की, मतलब असली जीत जो है वो सिर्फ ट्रॉफी उठाना नहीं है कि कामयाबी को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि अपने स्किल्स को इस तरह इस्तेमाल करना है कि दूसरों का भी भला हो। जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो हम एक बेहतर और एक ज़्यादा केयरिंग सोसाइटी की बुनियाद मजबूत रखते हैं। मैं कह सकती हूँ आपकी जर्नी हमें ये बताती है कि एक शख्स का जो जज्बा है वो लाखों लोगों की जिंदगियां आसानी से बदल सकता है। तो आज आपको मुझे बताना ये है कि मैं एक्चुअल में ये किस शख्स के बारे में बात कर रही हूँ। देखिए हिंट तो बहुत बड़ा मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया, काफ़ी बड़ा हिंट यही है कि इन्होंने 1992 में पाकिस्तान टीम की कप्तानी की और इस टीम को जो है वो वर्ल्ड कप में इनको ये वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुए। तो ये तो एक बड़ा हिंट है, बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई कि किस तरह से इन्होंने अपनी वालदा के नाम पर शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाया, उसके बाद बहुत सारे लोग जो है जो ज़रूरतमंद थे उनके ये काम आए। और 1992 की जो वर्ल्ड कप की जो प्राइस मनी थी वो भी हॉस्पिटल को इन्होंने डायरेक्टली डोनेट कर दी थी। तो आपको मुझे बताना है कि ये किस पर्सनालिटी के बारे में बात हो रही है। चलिए देखते हैं कि कुछ लोग पहचान पाए हैं कि नहीं पहचान पाए हैं। यहाँ पे गुल नफीस जी का मैसेज है, सलाम कहते हैं हम सबको एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू, बहुत ही अच्छा सा आपका मैसेज है। ओके इसके साथ यहाँ पर हमें मैसेज किया है खोबर से, हो सऊदी अरेबिया से फरीद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेरी नाइस थैंक यू एंड वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच आप कितने प्यारे मैसेज का। उस्मान जी हैं प्लम्बर भाई, हाँ जी जी जी वहाँ पे वो टेक्नीशियन तो बोल रहे थे, हाँ वो प्लम्बर ही थी बात। चलिए वाओ भी लिखा है तो कुछ तो अच्छा हुआ है हमारी इस कन्वर्सेशन के

सलाम कहते हैं और इनका नाम है हिशाम. वालेकुम अस्सलाम. जसविंदर जी हैं हमें. जसविंदर जी मैं किधर बताऊँ, मैं बस क्या ही बताऊँ. चलिए काश मैं कुछ बता पाती. ओके यहाँ पे सलाम कहा है एंड प्लीज प्ले सॉन्ग रिश्ता प्यार का ना टूटे. अच्छा ठीक है ये वाला गाना लगाते हैं. चलिए एंड शहजादा जी का पहला मैसेज है और बिल्कुल सही जवाब दिया है शहजादा जी ने. यहाँ पर यूसुफ जी का जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक जवाब है एंड ऑफ कोर्स ये वाला सही जवाब है कुरैशी जी का. इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है बताया. एंड यासीन खान जी हैं आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है. दैट्स द राइट आंसर. शाह वसीम जी आपका जवाब ठीक है. राज बिल्कुल सही जवाब राज का भी है. वेरी गुड मॉर्निंग आपको. इसके साथ रईस जी ने भी बिल्कुल सही सही जवाब यहाँ पर हमें दे दिया है. एंड ये है मुसाब ने सही जवाब दिया है. आपका जवाब ठीक है. इज द राइट आंसर प्रिंसन. बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप. एंड बिल्कुल सही. उमेर शहजाद जी का जवाब इज द राइट आंसर. सैयद खादिम हुसैन जी ने यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया है. और आसिफ है और आसिफ सभी को सलाम कहते हैं. अलबत्त उन्होंने अभी जवाब शायद टाइप कर रहे हैं या मुझे अभी देने वाले हैं. तो चलिए यहाँ पर है अहमद जी. अहमद जी ने बिल्कुल सही सही जवाब दिया है. और कोई है बंदा इनका नाम है SH. एक बार मैडम फिर बताइए. देखिए आज हम जिस पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं उन्हें हम और आप अच्छे से इस तरह से जानते हैं कि उन्होंने हमेशा ही लोगों की मदद की है. ऐसे काम किए हैं. फिलैंथ्रोपिक वर्क उनका बेशुमार. बहुत लंबी हो जाएगी डिटेल तो मैंने कहा शायद आप उससे पहचान पाएँ या ना पहचान पाएँ. बट आई एम श्योर इस लाइन से तो आप ज़रूर पहचान जाएंगे कि 1992 वर्ल्ड कप के विनिंग कैप्टन के तौर पर याद रखे जाते हैं. और पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप जिताने में इनका बहुत ही अहम रोल रहा. तो आप बस इस लाइन से आप मुझे बताइए कि ये हम किस पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है जब तक आप सोच रहे हैं तब तक एक और अपडेट छोटी सी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि उमान ने जो है वो 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के सिटीजन्स के लिए 14 दिन तक वीज़ा फ्री एंट्री की जो है वो फैसिलिटी देने का ऐलान किया है. जितने भी टूरिस्ट हैं उनके पास वैलिड पासपोर्ट हो, रिटर्न टिकट हो, होटल बुकिंग हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो और फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, उसके बाद उनको जो है वो 14 डेज का वीज़ा फ्री एंट्री दी जाएगी. GCC कंट्रीज़ के सिटीजन्स को ये जो है वीज़ा की ज़रूरत नहीं है तो आप जानते हैं. लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिनमें आपका हमारा भी शुमार होता है. तो ये कंट्रीज़ जो हैं इन कंट्रीज़ के लिए भी ओमान ने अब 14 दिनों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है. हालांकि जो मैंने आपको बताया कि पासपोर्ट वैलिड हो, आपका रिटर्न टिकट हो, होटल बुकिंग हो, हेल्थ इंश्योरेंस और थोड़ा सा फाइनेंशियली आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी है. अंदान तो वैसे बहुत अच्छा मौसम खरीफ का चल रहा है यहाँ ओमान में. बारिश भी हो रही होती है. अगर आपको मौका मिलता है और छुट्टियाँ भी आपकी पेंडिंग हैं, आप प्लान कर सकते हैं, आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, देन वाई नॉट सलाला जाइए, घूम के आइए. लास्ट टू लास्ट ईयर मैं गई थी और मैं कह सकती हूँ कितना खूबसूरत है सलाला. इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्टेशन. इतना अच्छा लगा, लग ही नहीं रहा था कि हम GCC में, और वो भी जुलाई और अगस्त के मंथ में जहाँ इतनी गर्मी होती है. बहुत ही अच्छा मौसम था. अच्छा इसी अपडेट के साथ एक और भी अपडेट आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कटारा ने जो है वो 10th होली कुरान रिसाइटेशन अवार्ड के लिए एप्लीकेशंस को खोल दिया है. रजिस्ट्रेशन जो है वो 3rd अगस्त से 30th September 2026 तक जारी रही. यहाँ पर टोटल प्राइस मनी बहुत ज़्यादा है और फर्स्ट प्राइस जो है वो 500,000 है, सेकंड प्राइस 200,000 एंड थर्ड प्राइस 100,000. पहली पोजीशन हासिल करने वाले कारी को पूरी कुरान रिसाइटेशन रिकॉर्डिंग भी कटारा स्टूडियो में दी जाएगी और वो तैयार कर दी जाएगी उनके लिए. तो इस तरह से अगर कोई है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाला तो ज़रूर पार्टिसिपेट है. चलिए ये दोनों अपडेट्स आपके साथ, कुछ और भी बातें आपके साथ शेयर करूँगी. बट बिफोर दैट आपको बताना है आज हम जो हैं वो किस पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं, किसको हमारे दिल ने याद है. तो बस आप मुझे, अगर आपको नाम समझ में आ गया है तो जल्दी से और भेज दीजिए 666-222-107 पर. बस छोटा सा छोटा मुन्ना सा ब्रेक लेती हूँ मैं, फौरन वापस आती हूँ उस छोटे से मुन्ने से ब्रेक के बाद और फिर हम अपना गेम स्टार्ट करेंगे. ठीक है आज का जो हमारा गेम है अगेन इज गोइंग बी वेरी सिंपल. जो हमने कल रखा था वो देखेंगे कुछ. चलो मैंने आपको 30 सेकेंड्स दिए, आप भी क्या याद करोगे, 30 सेकेंड्स ही पूरे दिए आपको. 30

सेकेंड्स में आपको जो है वो पहचान कुछ बताएंगे. फ्रूट्स के नाम है, कभी हो सकता है वेजिटेबल्स के नाम हो, कभी शहरों के नाम हो सकते हैं, कभी कतर की जो लैंडमार्क प्लेसेस हैं या स्ट्रीट्स के नाम आप ले सकते हैं, या कोई फेवरेट डिशेस हैं उनके नाम हम ले सकते हैं. सो इट्स लाइक दैट. ठीक है, तो फिर एक छोटा सा ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक.

0: FM 107 पर दिल से देसी।
1: एक बार वापस आप सबको कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समा मॉर्निंग्स, मैं हूं नासिया आपके साथ। 8:33 हो चले हैं हमारे स्टूडियो क्लॉक भी, तो बस अब टाइम हो ही गया है कि हम एक छोटा सा एड प्ले कर दें और फिर आपके साथ प्ले करते हैं, गेम स्टार्ट करते हैं।
0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्ट

0: एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारे मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: गाइस वापस आ चुकी हूँ मैं, मेरा नाम है नासी और आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स। अच्छा जी, कुछ लोगों ने और यहाँ पर सही सही जवाब दे दिए हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। आसिफ जी का जवाब बिल्कुल सही, एकदम सॉलिड जवाब दिया आपने। मोहम्मद इमरान जी ने सही, आपका तो खुद का नाम, माशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर ये वाला जवाब मुझे जयस खान जी का आ चुका है, इनका जवाब बिल्कुल ठीक है जयस, आपने सही जवाब दिया। एंड यहाँ खलील पराचा जी हैं और सब खैरियत है। बिल्कुल खलील जी, आप बताइए आप कैसे हैं, कहाँ गायब हैं, खैरियत है। रिजवान जी ने सही सही हमें जवाब दिया है। एंड ये वाला मसला बहुत बड़ा मसला है, MW लोग पूछते जा रहे हैं सारे जवाब में, सारे सवाल में कबीर भाई की तरफ डाइवर्ट कर देती हूँ, उनको सारे जवाब पता है, उनसे आज आप पूछेगा, ठीक है। उसके साथ मुकर्रम जी हैं और आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया मुकर्रम, बिल्कुल सही जवाब है। गुड मॉर्निंग कहते हैं, क्यों प्लीज क्या मैं तो समझी नहीं, आपने कुछ तो कहा है पता नहीं। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल सही सही, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें मुदस्सिर बंगश जी ने लिख के भेजी हैं और यहाँ पे मुदस्सिर जी का जवाब बिल्कुल सही है। इसके साथ एक जवाब और सही वाला आ गया है और इनका नाम है शब्बीर। तो आप में से जितने लोगों ने यहाँ पर लिखकर भेजा है इमरान खान, क्या बात है, बिल्कुल ही सही आपने पहचाना है। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पता है जब लोग कामयाब हो जाते हैं, पैसा मिल जाता है, शोहरत मिल जाती है, तो वो यूजुअली अपने आप को पैसा शोहरत अपना और डबल करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब हम जो है ना पैसे से पैसा बनाएं और पैसा बनाएं और पैसा बनाएं। बट व्हाट आई लाइक अबाउट हिम इज़ कि ये शख्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपना नहीं सोचते, ही इज़ लाइक अ वन पर्सन जिन्होंने बहुत सारा सोशल मतलब बहुत सारे काम ऐसे किए हैं। अब वन टू वन तो मैं क्या मैंशन करूँ, लेकिन इतने सारे काम करना, लोगों के लिए सोचना, अपनी खुशियाँ अपनी चीज़ों को साइड में रखना, दैट मेक्स हिम क्वाइट अ यूनिक पर्सन एंड लाइक रियली फॉर दैट। इतने सारे लोग इन्हें प्यार भी करते हैं, भरपूर मिलता है। कमाल का क्रिकेटर, कितने ऐसे क्रिकेटर्स निकल के आए होंगे, आप कंट्रीज देखिए कितनी कंट्रीज में कितनी क्रिकेटर्स खेलते हैं, बट कम ऐसे होंगे जिनको हम ऐसे टिप पे काउंट करें जो इस तरह की सोच रखते हैं एंड सोसाइटी के लिए काम करते हैं। देखिए हमेशा हमारी लाइफ में हम सोसाइटी से लोगों से बहुत कुछ ले रहे होते हैं, लाइफ में एक पॉइंट आना चाहिए, नहीं तो कम से कम हम उस पॉइंट को क्रिएट करें जहाँ हम सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट करें, उसको दें कुछ कुछ कर्ज के। व्हेन आई से कि कैसे हम कॉन्ट्रीब्यूट करें, हजारों हैं एंड दैट अगेन कम्स टू हेल्प, लोगों मदद करना, दैट्स हाउ वी बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर सोसाइटी, है ना। तो अभी तो इस पर बहुत लंबी बात हो गई, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, आप वापस नहीं जाओगे वहाँ पे। तो चलिए हम अपने गेम की तरफ आ जाते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ गेम के लिए, आ जाइए गेम के लिए। आपको करना है कि बस मुझे कॉल करनी है, कॉल करने के लिए नंबर है 4434377 और मैं और आप साथ में मिलकर ये गेम खेलेंगे, जहाँ पे अब मैं आपको और टाइम बढ़ा दिया, ठीक हो। मैं कितना आसान करती चली जा रही हूँ, एकदम आसान से आसान, जिससे कि बस आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और आप आसानी से जुड़े। 30 seconds आपको, चलो ठीक है, अब आराम से इत्मीनान से भर भर के नाम लीजिए आप जितने चाहें। तो फिलहाल मेरे साथ एक कॉलर यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम नाज़िया बहन।
1: वालेकुम अस्सलाम भाई, कौन है साहब,
2: कैसे हैं आप, ठीक ठाक खैरियत है?
1: हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: अल्लाह का करम है, शुक्र है। बस आपने जो अभी सॉरी मैंने कॉल की गेम के दौरान, मैं हाँ। गेम खेलने के लिए ना क्या हो ना, मैं मुझे इन चीज़ों का थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लेकिन आपने जो जिस बंदी के बारे में आपने बात की, तो खुदा की कसम आपने मुझे आज बहुत खुश कर दिया। पहले भी मैं आपकी फैन थी हूँ और रहूंगी, लेकिन आज आपने जिस की बात की, जिस पर आपने थोड़ा सा टॉपिक किया,
1: चलिए
2: तो फैन नहीं फिर भी मैं ऊपर हो गई आज आपकी।
1: अरे मेरा क्यों हो रहा है, आप हम सब मिलके उनके फैन हो और जो काम लोग कर रहे हैं, जो काम अधूरे रह गए, हम अपने तौर पे अपनी गुड कैपेसिटी में जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए, है ना। एंड आई एम श्योर आप करते रहेंगे जितनी जो
2: जरूर जरूर जरूर, लेकिन खुशी आपको पता है मुझे किस बात की, किस चीज की मुझे खुशी मिली, लेकिन आपने जिस बंदी की जिक्र की मुझे इस चीज की बहुत खुशी, क्योंकि बंदा काबिल के लायक है, क्योंकि आपने जिस बंदी की जिक्र की, जिस बंदी की बात की, तो

0: आपने जो करना था, आपने जो बोलना था वो आपने बोल दिया, आपने कर दिया, लेकिन खुशी मुझे मिली क्योंकि वो बंदा मेरे दिल को बहुत अजीज है।
1: बिल्कुल, माशाल्लाह,
0: कहने को बहुत कुछ है।
1: अभी आप देखिए,
0: आपको भी पता है कुछ।
1: हाँ, अब आप खुश भी बहुत है तो आप मुझे ऐसे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है? अब आप मेरे से गेम खेल रहे हैं।
0: वो आपकी बात ठीक है, मैंने आपको पहले बोला कि मुझे नहीं नहीं खेलने की ना चाहने की खेलने की बात नहीं है, लेकिन मुझे इन चीजों का थोड़ा सा वो नहीं, इंटरेस्ट नहीं है इसलिए। लेकिन आपने वो हमारी इस बंदी की बात की तो मुझे इस चीज की बहुत खुशी मिली। पता की कसम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जितना भी मैं आपका, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, और जितना आप एडमायर करते हो उतना मैं भी एडमायर करती हूँ। सो फॉर दैट हम दोनों ही एडमायर करते हैं, और उनके जो अच्छे काम हैं, हर शख्स में कुछ ना कुछ अच्छा है, और वो हमें हमेशा पिक करना चाहिए, उधर देखना भी चाहिए। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बट लाइक
0: आपका बहुत शुक्रिया, आपका
1: बहुत
0: शुक्रिया।
1: ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, तो एक तो भाई आए बट उनका अभी हम खेलने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं, कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो,
2: हट कर दिया आपने,
1: हट कर दिया आपने। आज हद हो गई वाकई। शहजादा जी आप हैं कहाँ, ये बताइए।
2: मैं रईस भाई की कॉल के बाद ऑलरेडी मैसेज डाला हुआ है कि कॉल बिजी है, प्लीज कॉल करें। अच्छा। तो आप क्या मैसेज मिस कर दिए। बहरहाल जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, मुझे सुनना है। मैं बोला ऑलरेडी उनको मैं बिजी हूँ और मैंने मैसेज डाल दिया।
1: मैं आपने डाला, बट क्या हुआ ना, बैक टू बैक खुद ही आती रही तो हमें खाली नहीं मिल रहा था। हालांकि हाँ, मुझसे चूक भी हुई, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने देखा और मैं सोचा मैं भी कॉल करूंगी, है ना, जस्ट
2: मुझे पता है इतना मतलब बिजी और आपके इतने मतलब हाईएस्ट आपके जो फार्मर होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा आपको तो पूरा टाइम के हिसाब से कवर करना था, आई नो दैट। तो थैंक यू वेरी मच। मैं यही बोलूंगा और एक चीज मैं बोलूंगा इमरान खान के बारे में, वो एक लीजेंड कैप्टन तो है ही है, और कोई कुछ बातें ना
1: कुछ सीखा आपने उनकी कैप्टेंसी से, और आप भी अपनी लाइफ में लेकर आते हैं।
2: उनका लाइव मैच मैंने बॉम्बे में खुद स्टेडियम में जाके देखा है।
1: अच्छा,
2: मैंने उनका मैच इंडिया पाकिस्तान के मैच में, तो 90 में भी नहीं, मैं खुद देखा हुआ उनका। अच्छा, तो
3: मीरा वाले नहीं मिले नसीब,
2: तो अपना बात मैंने जो ये है ना एक बताना चाहूंगा मैं इमरान खान के बारे में। देखिए, उन्होंने जो कैंसर हॉस्पिटल जो बनाया था ना, उनकी वजह क्या थी ना, उनकी वालदा जो फोर्थ हो गई थी ना, उनकी वालदा को कैंसर था। तो पाकिस्तान में एक कैंसर हॉस्पिटल ने तो 92 का वर्ल्ड कप जीता था, उन्होंने सारा जो जितना अमाउंट मिला था ना सारा उसमें दे दिया। उसके बाद और एक चीज वो दोबारा कैप्टन में आए, उन्होंने 87 के वर्ल्ड कप अपना उन्होंने रिटायर लिया, 87 का वर्ल्ड कप रिलायंस कप हुआ था, उन्होंने रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने, लेकिन फिर भी बोर्ड ने उनको जबरदस्ती और उनके फ्रेंड ने जबरदस्ती उनको वापस है ना बॉस पे फोर्स करके उनको वापस लिया। तो वो 92 तक रहने के बाद फिर उन्होंने वो एक वर्ल्ड कप पाकिस्तान को दे के गया, और उससे पहले 87 के पहले जब वो ऑस्ट्रेलिया में जब खेले थे वो एक बहुत घमंडी प्लेयर थे, उन्होंने एक है ना एक फ्रेंड को उन्होंने ना कीक मार दिया था, लात मारा था, वो खुशी से मिलने आया था, तो वो फ्रेंड बड़ा नाराज हुआ था। बहरहाल उसके बाद है ना 10 साल क्रिकेट में बाहर रहे इमरान खान, उनके पैर में ऐसी बड़ी इंजरी हुई थी कि उनको 10 साल क्रिकेट से बाहर रहना पड़ा, सब थक चुके थे डॉक्टर। तो फिर किसी मैडम ने किसी ने बताया कि आपको कुछ मतलब गलत हुआ है, तो फिर उन्होंने बोला था हाँ मैंने एक फ्रेंड को मैंने लात मारा।
1: अब मैं समझ गई शहजादा जी, आप जो है वो क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं। आज मैं आपके साथ गेम तो खेलने ही वाली हूँ, और आपको 30 सेकंड्स में क्रिकेटर्स के नाम बोलने हैं। देखिए आपको कितना मैंने आपकी ही चॉइस का दिया है।
2: अच्छा अच्छा,
1: ठीक है, क्रिकेटर्स के नाम
2: इसके बारे में जितना मतलब बोला जाए ना
1: कमी है, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं है, हम एक दो घंटा हम लोग आराम से बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, बट हाँ क्या कह सकते हैं। बट यार चलिए, कभी ना कभी हर रोज हम ऐसी तरह की पर्सनैलिटी लाते हैं कि थोड़ा सा मैंने याद कर लेते हैं, हल्का सा माई मेमोरी जो है ना फ्रेश हो जाती है।
2: मैंने हाईलाइट है ना पेपर में अनाउंस किया था, वो शख्स को मैं मिलना चाहता हूँ जिससे मैंने बच्चे में देखा था, तो वो शख्स आया, इन्होंने माफी मांगे, बाद में वो प्रीपेयर अच्छे से फिर दोबारा क्रिकेट

0: आप लोग क्यों इतना डरते हैं गेम से? गेम नहीं खेलते, सब लोग बात कर करके चले जाते हैं, कोई गेम नहीं खेलने के लिए आता है, ये क्या बात है भाई? देखिए कितने सिंपल सिंपल मैंने रखे हैं फल सब्जी, अब इससे आसान और इससे सिंपल और क्या ही हो सकता है बताओ मुझे। अभी कोई पूछ रहा है कि मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, वी आर डन, हमारा तो क्वेश्चन ही हो गया खत्म, आंसर इज इमरान खान। चलिए कल आप, अब या अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए कोई कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हेलो।
1: चलो भाई हम मैदान में उतर जीतेंगे। हमारे आते बहुत देर
0: देर कर दी इन्होंने, और तो इन्होंने देर की, फिर कह रहे इंतहा हो गई मतलब मुझ पे, हालांकि ये हुआ कि मैं भूल गई।
1: आप जानो वो जाने, अब आपको आपको मैसेज किया उन्होंने, आपके उस पे बैठे थे बेचारे इंतजार में।
0: हाँ ये तो है। अच्छा ये रईस जी, मैंने देखा लोग बात तो करते हैं खूब अच्छे से, करना भी चाहते हैं, पर गेम नहीं खेलना चाहते, जबकि इतना सिंपल रखा है मैंने।
1: भैया गेम खेलने में कौन सा मतलब क्या जा रहा है भैया, हमारे गेम का बाकी है आपके ऊपर, अभी आप इंतजार कर रहे हैं, आप समझ गए हैं, उसको छोड़ दो, अभी उधर का बात करो, छोड़ दो इंशाल्लाह, कोई बात नहीं।
0: सही सही, तो चलिए आपके साथ
1: आपने किस टॉपिक पे ये लिया गेम भैया, आपको बस आसानी से दो, एक दिन तो मैं विनर बन गया था,
0: एक दिन आप विनर बने, आज भी आप विनर बनेंगे क्योंकि आज मैंने बहुत आसान कर दिया। क्रिकेट
1: हमारे एक से बड़े पुराने लिस्नर है मुबीन साहब, वो पता नहीं कहाँ पे हैं भैया, उनकी
0: मुबीन जी कहाँ है,
1: कमेंट पढ़ने में आप लोगों को इतना मजा आता था, हाँ। आप सुनते थे इतना मजा आता था यार,
0: हमें भी आता तो भेजते रहते थे, हाँ नहीं वो है नहीं पता नहीं, हाँ लेकिन कुछ बताया भी नहीं, प्लीज प्लीज कोई उनके रास्ते में हो तो बताए, हाँ मिस कर रहे हैं। अच्छा रईस जी आपके साथ गेम खेलते क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम है, तो मैं चाह रही हूँ एक दो कॉलर से जुड़ी जाए। अच्छा आपको मैंने और आसान कर दिया, आपको अपने दोस्तों के नाम लेने हैं, जितने दोस्त आपको याद आते हैं आज, ठीक है?
1: अल्लाह ये तो दोस्त हमारे एक भाई हो गए सलीम भाई, जावेद।
0: अरे रुकिए रुकिए, अरे सबर, अरे रुकिए तो सही। अच्छा। अभी आपका टाइम तो मैं रुक कर दूं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
1: अब हमारे सलीम भाई हो गए, देखो जावेद हो गए, जुलकरनैन भाई हो गए, उसके बाद में ओसामा भाई हो गए, ये तो समझ लो कि हम लोग अनमिटेड मतलब ये है।
0: अरे दोस्तों क्या नाम बोलिए, नाम बोलिए
1: जी, और नाम भाई है हमारे, जी हमारे मतलब रशीद भाई, मतलब इतने दोस्त हैं कि अभी उसमें हमारे इम्तियाज भाई हो गए, फिरोज भाई हो गए, नसीम भाई हो गए, इतने दोस्तों नाम मतलब अब अनाउन मतलब तो यहाँ के दोस्त हैं उनके नाम मैंने लिए हैं, अब और बाकी जो गांव में हैं उनके
0: नाम क्यों नहीं लिया आपने? हमने दोस्त का ये थोड़ी कहा कि कतर के ही दोस्तों के नाम लो और बाकियों के नहीं लो, कहीं के भी ले सकते थे, बट आपने बताया कितने दोस्तों के नाम लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दोस्त आपके कतर में है, वाह। चलिए रईस जी आज आपके दोस्त मैंने आपको याद करा दिए जो आप भूल गए थे,
1: हाँ किसी से मिले हैं किसी से नहीं मिले हैं, और भाई और भी लोग हैं लेकिन वो थोड़ा सा जिससे ज्यादा ये नहीं है तो उनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझा, आप नाम लेंगे तो बहुत है।
0: अरे तो जीतने के कितने भी नाम ले देते, कौन सा हम जाके क्रॉस चेक कर रहे थे पीछे,
1: अरे कौन सा नाश्ता करवाने वाले हैं आप बुला के क्या
0: नहीं नहीं परेशान ना हो, अभी आ जाएंगे ना सर्वर भाई वो नाश्ते पे आपको
1: बुलाना,
0: उनकी बहुत कंजूसी है तो वो हम कभी ना कभी तो उनकी तोड़वाएंगे, आप लोगों के थ्रू ही उनकी कंजूसी खत्म होगी, ठीक है?
1: सारे लोग हमारे जितने नाम लिए हैं सबको लेके आएंगे फिर हम,
0: हाँ और भी लेके आइएगा जिनके नहीं ले पाया, ठीक है? चलिए जी ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। देखो रईस जी कितने अच्छे, डरते वरते नहीं है, सीधा कॉल करते हैं और खेलते हैं गेम, वैसे क्या ही डरना, देखो कितना सिंपल करती चली जा रही मैं। एक और कॉलर है, हेलो यूसुफ जी, थैंक यू सो मच, आप आ गए फाइनली। लोग इतना डरते हैं, बात तो मुझसे कर रहे हैं, बात के लिए इतनी कॉल्स आती रहती है, गेम पे तो नहीं डर जाते हैं, आई डोंट नो,
2: ओ शायद थीम से हटकर शायद नहीं आ रहे हैं, आई बोली थीम रखी तो इंशाल्लाह बहुत
0: पता है मुझे बहुत

0: हाँ उसमें आप जो है एक्टर्स का मतलब आर्टिस्ट जो और भी हैं जो साइड में जिन्होंने रोल किए हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट उनके भी नाम ले सकते हैं ठीक है
1: अच्छा
0: चलिए ओके ऑल द वेरी बेस्ट आपका टाइम स्टार्ट होता है अब
1: अमिताभ बच्चन शाहरुख खान सलमान खान आमिर खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी विक्की कौशल श्रीदेवी माधुरी दीक्षित ऐश्वर्या राय करीना कपूर रानी मुखर्जी अम्बरीश पुरी टाइम है अभी
0: थोड़ा
1: जी शर्मिला टैगोर शम्मी कपूर रणधीर कपूर रणवीर कपूर रणवीर सिंह आलिया भट्ट
0: सोहा अली खान इज द राइट आंसर पता है कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 oh my god क्या बात है भाई 20 आपने ओ गॉड एकदम हिल गई मैं तो जबकि बीच आपने कहा और भी है क्या अभी टाइम और भी बचा हुआ है वही तो 23 और हो जाता क्या बात है भाई
1: मेरे माइंड में जो नाम आ रहे थे वही मतलब मैं प्रिपेयर नहीं था ये
0: ये इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थे बट ऑल ऑफ सडन आपसे पूछा गया बहुत अच्छा इसे कहते हैं कि यू नो थिंकिंग ऑन योर टोज एकदम लास्ट मिनट कुछ आ जाए और आप एकदम सोच के बता पाए ये एक बहुत अच्छी ब्रेन एक्सरसाइज भी है बाय द वे बट बहुत अच्छा खेला यूसुफ आपने 20 इज लाइक बहुत हाईएस्ट स्कोर है अभी तक का इतना थोड़ा सा मुश्किल ही होगा किसी के लिए बट वेरी वेल प्लेड थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर द कॉल Take care.
1: Nice.
0: You too. Take care. Bye. Walaikum assalam. All right. So, दोस्तों आप थोड़ा नहीं ज़्यादा ही डरते हैं लेकिन अगर नहीं डरते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए या मैं कुछ और चीज़ें भी मैंने सोची कि मैं आपके जो है वो पूछूंगी खेलूंगी बट लेट्स सी कि कितने लोग जुड़ पाते हैं हेलो
2: चलो मैं ही जुड़ जाता हूँ आपस में दोबारा
0: नाइस शहजादा जी आप चले गए मैंने कर लू ये भी करके चले
2: गए टाइम आपका बहुत क्लोजिंग पे है
0: हाँ क्लोजिंग पे तो जल्दी से गेम खेलते हैं आपको मैं क्रिकेटर्स ही दे रही हूँ क्रिकेटर्स के नाम ठीक है
2: चलो ओके
0: चलो जी और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब
2: गावस्कर वसीम अकरम वकार यूनुस अब्दुल कादिर सलीम यूसुफ सलीम मलिक सलीफर इमरान खान जावेद मियां दाद वसीम बारी मुदस्सिर नजर वीवी रिचर्ड्स लारा सचिन तेंदुलकर और अपना बुमराह समी सिराज और अपना वरुण राहुल द्रविड वैभव सूर्यवंशी
0: वैभव सूर्यवंशी लास्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 क्या बात है शहजादा जी आपने तो हाईएस्ट स्कोर कर लिया अब तक का इतना अच्छा खेला और इतना कमाल का स्कोर किया है हालांकि उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है बट हाँ 22 का स्कोर इज हाईएस्ट क्रिकेटर्स को लेकर इनका जो पैशन है वो साफ साफ दिख रहा है जैसे यूसुफ जी का पैशन फॉर द बॉलीवुड मूवी और एक्टर एक्ट्रेसेस को लेकर यहाँ पे बहुत एविडेंट था उसी तरह से शहजादा जी ने भी 22 का स्कोर करके साबित कर दिया कि भाई क्रिकेट की बात होगी तो मैं ही हूँ अच्छा यहाँ पे कुछ लोग जो है मुझे मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कॉल कर रहे हैं लास्ट में इनके है 9679 चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करूँ तो अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं देन द नंबर वी हैव इज वो नंबर है 4434377 दिस इज द नंबर जिसपे हम कॉल्स आपकी ले पाते हैं और बाकी 6662107 पे सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस ओके वी आर कनेक्टेड टू वन कॉलर हेलो
3: हेलो अस्सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम कौन है मेरे साथ
3: फहीम अख्तर शेख
0: फहीम कैसे हैं फहीम एंड हाउ इज योर मॉर्निंग गोइंग
3: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ आप सुनाएं कैसे हैं
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ टाइम भी बस बहुत कम है तो मैं आपके साथ जो गेम खेलूंगी आपको 30 सेकंड्स में है और क्रिकेटर्स के नाम आपको बोलने हैं ठीक है
3: ठीक है स्टार्ट करें
0: चलिए ऑल द वेरी बेस्ट आपका टाइम स्टार्ट होता है अब
3: ओके सचिन तेंदुलकर विराट कोहली ब्रैडमैन जेकस के एलस ब्रेन लारा रिकी पॉन्टिंग एम एस धोनी शेन वॉन मुरलीधरन वसीम अकरम अकाडनस इमरान खान कपिल देव सुनील गवास्कर अनिल कुमार राहुल डेविड सिस्टी वॉ एलन बोर्डन एडम गिलक्रिस्ट डेल स्टेन शान पोलक कटली एम्ब्रोस कोल्टी वॉश एंड जावेद नियादत इंजमाम बाबर आजम
0: इज़ लास्ट

0: us 10, मुझे लगता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. क्या बात है भाई, वाओ दैट्स ग्रेट. आप लास्ट में चले और आज के हमारे विनर हैं विद 25 का हाईएस्ट स्कोर. वेरी नाइस, फैंटास्टिक.
1: क्रिकेट बहुत दिल से देखता हूं मैं.
0: ओह दैट्स हाउ या शायद इसीलिए आप जो है इतना अच्छा परफॉर्म कर सके. ग्लैड कि आप लास्ट में जुड़े और बहुत अच्छा खेला और आज के आप हमारे इस समर मॉर्निंग्स के विनर भी हैं. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे. थैंक्स फॉर योर कॉल, बहुत मजा आया आपसे बात करके. जज़ाकअल्लाह, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. दोस्तों अब मेरा वक्त हो चुका है कि मैं आपसे बाय बाय टाटा कहूँ इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह कल वापस आपकी हमारी मुलाकात होगी 6:00 बजे इसी शो में. जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए. खुश रहिए, सुनिए 107 दिल से देसी.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असद कतर की आवाज़ रेडियो कतर से पेश खिदमत है। आज का पहला फसलना शरी इस्माइल खान की जुनी और पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। आज़म वज़ीर ख़ारजा ने मुत्तहिदा अरब इमारात नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सऊदी के वज़ीर ख़ारजा कुवैत के वज़ीर ख़ारजा सल्तनत ओमान के वज़ीर ख़ारजा और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से अलहदा अलहदा टेलीफोन पर गुफ्तगू की। रियासत कतर मिस्र और तुर्किया ने बतौर सालिस ममालिक गजा की पट्टी में इसराइल की जानिब से जारी खिलाफ वर्जियों खसूसन सेहत के मराकज और तिब्बी ढांचे को निशाना बनाने और उस नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की हलाकतों की जदीद मजम्मत की है। कतारा कल्चरल विलेज फाउंडेशन ने कुरान करीम की हौसला अफजाई से 10वीं कतारा बैनुल अक्वामी किराते कुरान अवार्ड के लिए दरख्वास्तें वसूल करना शुरू कर दी हैं। और अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और ये ईरान के लिए एक अच्छे पर दस्तखत करने का आखिरी मौका है। ये थी अहम खबरों की सुर्खी। अब समाप्त कीजिए मुफसल नशरिया।

पसंद हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहराई विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक ऐसे जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास की जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन

0: दीजिए इजाजत, मासलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बमरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। क्रिकेट हो
3: and he's hooked that way. That's four runs.
2: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
4: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे @1 PM,
4: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स की
5: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. 107. Dil se desi.
1: Qatari Sports Legends. Assalamu alaikum dosto, Qatari Sports Legends ke is program mein aap sabhi ka istiqbal hai. Main hu aapka mezban Mohammed Amin. तो आज हम बात करेंगे जासिम जाबिर के बारे में. जासिम जाबिर एक यंग और प्रॉमिसिंग कतरी फुटबॉलर हैं जो कतर की नेशनल टीम और डोमेस्टिक फुटबॉल में डिफेंसिव रोल्स के लिए पहचाने जाएंगे. उनकी पैदाइश 20 फरवरी 2002 को दोहा में हुई और वो अस्पार अकेडमी में ट्रेनिंग हासिल करके प्रोफेशनल फुटबॉल तक पहुंचे. उनका मेन पोजीशन है डिफेंसिव मिडफील्डर, लेकिन वो जरूरत पड़ने पर सेंटर बैक और राइट बैक की पोजीशन में भी खेल सकते हैं. जासिम ने असद और अर्रयान जैसे टॉप कतरी क्लब्स के साथ अपना डोमेस्टिक करियर डेवलप किया, जहां उन्हें हाई लेवल कोचिंग और इंटरनेशनल क्वालिटी प्लेयर्स के साथ खेलने का तजुर्बा मिला. उनकी रीडिंग, टैकलिंग और डिसिप्लिन उन्हें मॉडर्न फुटबॉल का एक वर्सेटाइल डिफेंडर बनाती है. इस साल का वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप में कतर को ग्रुप बी में रखा गया था और कतर के स्क्वाड में जासिम को शामिल कर लिया गया था. उन्होंने ग्रुप स्टेज मैचेस में कतर की तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट अपीयरेंसेस किए. स्विट्जरलैंड के खिलाफ एक और बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ मैच में उन्होंने डिफेंसिव मिडफील्ड रोल में टीम को स्टेबिलिटी फराहम की, जबकि कनाडा के खिलाफ टफ मैच में भी वो मिडफील्ड

0: और बैकलाइन के दरमियान लिंक बनाते रहे। इन मैचेस ने उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस दिया। जासिम जावेर को कतर फुटबॉल का फ्यूचर स्टार माना जाता है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो आने वाले टूर्नामेंट्स में और बेहतर परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगले बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्रग्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि क्लब की सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिले, और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
4: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, पिछले एपिसोड में हमने बात की सीजनल एलर्जी के असबाब क्या क्या हो सकते हैं और किस तरह से जो सीजनल एलर्जी है उससे हम मुता सकते हैं। आज हम उसकी अलामत और उसकी डायग्नोसिस पर बात करेंगे। सीजनल एलर्जी की सबसे नुमाया अलामत बार बार छींके आना है, उसके साथ नाक बहना, नाक बंद होना, आंखों में खारिश महसूस होना, आंखों से बाज़ूकात पानी आना और इस तरह गले में खराश भी हो सकती है। कुछ अफराद में कुछ ऐसी अलामतें भी देखी जाती हैं जो कि आम तौर पर नहीं भी होती, से सर में शदीद दर्द होना और चेहरे पर आप दबाव या भारीपन महसूस करते हैं। जो सूंघने की हिस्से उसमें कमी

0: 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइजिंग के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल marketing@qmc.qa।
1: One step to 23. Welcome to our segment One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One step to 2030.
1: दोस्तों, flying cars, air taxis, इनके बारे में हमने सुन रखा है, देख भी रखा है। सवाल ये होता है कि how close are we to these personal air transport? देखिए, कभी आपने सोचा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम रोड्स पर ट्रैफिक में फंसने की बजाय अपनी गाड़ी को हवा में उड़ाकर ऑफिस, शॉपिंग मॉल या किसी घर पहुंच जाएंगे। देखिए, जो चीजें पहले साइंस फिक्शन मूवीज का हिस्सा थी, आज पूरी दुनिया भर में वो रियलिटी बन रही है। आजकल कंपनीज एयर टैक्सीज और फ्लाइंग व्हीकल्स डेवलप कर रही है। ये व्हीकल्स इलेक्ट्रिक बैटरीज पर चलती है और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डिजाइन की जा रही है। वैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले सालों में सिलेक्टेड सिटीज में एयर टैक्सी सर्विसेज आम लोगों के लिए अवेलेबल हो सकती है। अब हम ये सोचते हैं कि हम फ्लाइंग कार्स के कितने करीब पहुंचे। आज भी कई प्रोटोटाइप व्हीकल्स टेस्ट की जा चुकी हैं। कुछ व्हीकल्स वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकती हैं, यानी हेलीकॉप्टर तरह सीधा ऊपर उठकर उड़ सकती हैं और ना रनवे के लैंड कर सकती हैं। लेकिन अभी भी फ्लाइंग कार्स अब ट्रांसपोर्ट का हिस्सा तो नहीं है। इसकी वजह सेफ्टी है, इसकी वजह रेगुलेशंस है और शायद इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस। वैसे गवर्नमेंट और एविएशन अथॉरिटीज को पहले श्योर करना होगा कि ये टेक्नोलॉजी पब्लिक के लिए सेफ है कि नहीं। मुझे उनके ये डर लगता है। इससे ये ना ठीक है कि हमें फ्लाइंग कार्स साइड बहुत करती हैं, बट क्या हम खुद फ्लाइंग कार्स को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? आई डोंट नो, अभी तो ऑटोनॉमस का कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया, फ्लाइंग कार्स का पता नहीं। लेकिन हाँ, इस फायदे तो मार होंगे ही होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि लोग रोड्स के ट्रैफिक से बच जाएंगे। पर शायद हम कह सकते हैं कि हवा में इतना रश है तो सफर लोग रोड पर एक घंटे में तय करते थे, अब वो चंद मिनट में तय हो सकता है। वहीं पर बात की जाए फायदे की, तो एक और बड़ा फायदा है फास्ट इमरजेंसी सर्विसेज। जी हाँ, इमरजेंसीज में डॉक्टर्स हो, रेस्क्यू टीम्स है या फिर कोई सप्लाई है, जो तेजी से डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती है। वहीं पर टाइम सेविंग भी है। जी, सिटीज में लोगों का बहुत सा वक्त जो है वो ट्रैफिक में वेस्ट हो जाता है। आपको पता ही होगा कि बड़ी सिटीज में गर्म जाम लगना बड़ी कॉमन सी बात है। एयर ट्रांसपोर्ट इस वक्त की बचत करेगा और मुझे लगता है कि आपको आपके डेस्टिनेशन पर आसानी से पहुंचा देगा। वहीं कई एयर टैक्सीज जो हैं वो इलेक्ट्रिक पावर पर चलने के लिए डिजाइन की जा रही हैं। इससे फ्यूल कंजम्पशन होगा, पोल्यूशन कितना कम हो जाए, यानी एक तरह की क्लीन टेक्नोलॉजी। और हम बेटर क्वालिटी, ये हम सब क्या, बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इन एरियाज में पहुँचना आसान हो जाएगा क्योंकि रोड्स बनाने झंझट ही नहीं। वैसे ऐसा नहीं है कि इतने सारे फायदे मैं गिना रही हूँ तो इसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। नहीं दोस्तों, फ्लाइंग कार्स के अपने अलग चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज है सेफ्टी कंसर्न। जैसे कहा, सुनने टाइम से लगता है, यू नो, अगर आप कोई मूवी में देख रहे हो या कोई फिक्शन मूवी चल रही है, आपको इतनी चीजें एक्साइट करती है, बट अगर आप खुद पर्सनली

0: जाए तो शायद आप रिलक्टेंट हो गई होगी। सबसे बड़ा सवाल जो मुझे रोकता है वो है सेफ्टी को लेकर। मतलब अगर हवा में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए क्या होगा भाई? इसीलिए बहुत एडवांस सिस्टम जो है उस जरूरत है। भाई एक चीज मुझे लगती है जो और भी बहुत ज्यादा सरंदाज होगी वो है हाई कॉस्ट। शुरू में फ्लाइंग व्हीकल्स बहुत ज्यादा महंगे होंगे, हर इंसान के लिए इन्हें अफोर्ड करना पॉसिबल ही नहीं होगा। ये तो भाई एक बात हुई। आजकल हम रोड्स पे ट्रैफिक का जो है ना वो रोना रोते हैं। कल हो सकता है हजारों फ्लाइंग कार्स हवा हो तो उन मूवमेंट कैसे होगा? एयर ट्रैफिक मैनेज करना उफ बड़ा चैलेंजिंग होगा। वहां पे तो आप जो है वो सिग्नल्स भी नहीं लगा सकते, क्या करोगे फिर? उसके साथ जो है वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जी हाँ, फ्लाइंग टैक्सीज के लिए स्पेशल लैंडिंग एरियाज और चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत होगी, तो फिर एक एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का लोड भी बढ़ता है। फिर मैं सोच रही थी बारिश हो या हवा चल रही हो या डस्ट है, तो ऐसे में या बहुत ज्यादा और क्लाइमेटिक कंडीशन है जहाँ मतलब जहाँ पर मुझे लगता है कि इस तरह की फ्लाइंग व्हीकल्स से उनका ऑपरेशन बड़ा मुतासर होगा। आपको देखना पड़ेगा कि मौसम ठीक है तभी तो मैं जा सकता हूँ, अदरवाइज मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? वैसे एक ऐसी सिटी भी आने वाले वक्त में होगी जहाँ सिर्फ सिर्फ एयर टैक्सी आप जो है वो आसानी से सिंपली मोबाइल ऐप से बुक करेंगे, वो आपके घर के नज़दीक आके लैंड करेगी। आप घर से निकलेंगे, नियरेस्ट टैक्सी स्टैंड तक पहुँचेंगे और बस 10 मिनट में अपनी डेस्टिनेशन पर लैंड कर जाएंगे। फ्यूचर कैसा होगा पता नहीं, हो सकता है फ्यूचर में ऑफिसेज, मॉल्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की रूफ टॉप पर एयर टैक्सी लैंडिंग पी पैड्स भी मौजूद हों। स्मार्ट टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूट्स को मैनेज करेगा और हाँ, ट्रैवल को ज्यादा सेफ भी बनाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स की अगर मैं मानूं जो मैं सुनती रहती हूँ पॉडकास्ट, तो समझ में आएगी फ्लाइंग कार्स शायद ट्रेडिशनल कार्स को पूरी तरह से रिप्लेस कभी ना कर पाए। ठीक है, लोग पसंद करेंगे, लेकिन एक बड़ी तादाद, एक बड़ा तबका ऐसा भी होगा जो ट्रेडिशनल कार्स को ही ना फर्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मानेगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों सिस्टम एक साथ चलेंगे, रोड भी ट्रैफिक, हवा में। अगर कल से यहाँ आपसे कहा जाए कि जी कल से दोहा में फ्लाइंग टैक्सी सर्विस शुरू होगी, तो क्या आप उसमें सफर करना पसंद करेंगे? क्या आप भी आज भी ट्रेडिशनल कार पर ज्यादा भरोसा करते हैं? चलिए मुझे बताइए 666-221-107 पर। इसे इस सवाल अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प है। खैर, बस आखिरी टेक यही होगा मेरा कि आज फ्लाइंग कार्स एक फ्यूचरिस्टिक ड्रीम लगती है, लेकिन टेक्नोलॉजी की रफ्तार देखकर लगता है कि शायद अगले चंद सालों में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। अब हम इसे किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे ये कह तो सफारी के लिए सफारी तो नहीं कहना चाहिए, क्या हम भी हवा में सफर करने के लिए तैयार हैं? ये जवाब मुझे आप ही देंगे। फिलहाल जब तक आप अपने जवाब को जो है वो सोच रहे हैं कि मुझे कैसे देना है, क्या देना है, मैं आपसे यहाँ पर इजाजत ले लेती हूँ। कल मिलूंगा बस एक और नए टॉपिक पे बात करूंगी। तक मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हैं सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: musician. Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QME now.
2: बस बहुत हो नीड एन एस्केप एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ उसके साथ क्योंकि आ गया है एस्केप रूम अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एट प्योर फन ग्राफिक नहीं ट्रिकी वर्कप्ले बोरिंग मीटिंग्स नहीं ब्रेन टीजिंग रिडल्स है जहां कंटेस्टेंट नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into your unique game show, Escape Room, with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107, Dil Se, Desi. Dil Se, Desi.
4: दोस्तों घर की हिफाजत आपके हाथों में है एयर कंडीशनर की सेफ्टी पर तब में हर साल कई घर सिर्फ इस वजह से आग के शिकार होते हैं कि लोग छोटी छोटी सेफ्टी को नजरअंदाज करते हैं एयर कंडीशनर का सही इस्तेमाल और देखभाल आपको इस किस्म के हादसों से बचा सकता है इससे मुताल्लिक कुछ एहतियात बरतें कंडीशन की सफाई में लापरवाही ना करें अगर आप अपने एसी की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें धूल मैल वगैरह जमा हो जाता ये ब्लॉकेज हवा का रास्ता रोकता है जिससे यूनिट ज्यादा गर्म होकर आग लग सकती है हर 2-3 महीने में फिल्टर की सफाई करें और एक दफा एसी का ओवरऑल चेक जरूर करवाएं। बिजली लोड का ख्याल कीजिए अक्सर लोग मार्केट से सस्ता और नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस या एक्सटेंशन ले आते हैं जो एयर कंडीशनर का लोड बर्दाश्त नहीं करते किसी गलती शॉर्ट सर्किट या स्पार्क बन सकती है हमेशा सर्टिफाइड और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक आइटम्स का ही इस्तेमाल करें हमेशा किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से मशवरा लें एसी जब टपकता है वहां स्विच या सॉकेट लगाने से बिजली का करंट या शॉर्ट सर्किट हो सकता है याद रखें हमेशा किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करवाएं अगर एसी से अजीब स्मेल आवाज या ज्यादा हवा आ रही हो तो फौरन उसे बंद करें और चेक करवाएं। FM7 कहता है कि आपकी आगाही न सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचाता है
5: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए रेडियो वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी तो इसलिए हम आपके लेकर आए हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉर्पोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सौरभ, आप सुन रहे हैं स्विच ऑन एफएम 107। साथियों, जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हम हमेशा याद रखना चाहते हैं। शादी हो गई, बर्थडे पार्टी हो गई, किसी की ग्रेजुएशन हो या किसी का बेबी शावर या कोई भी स्पेशल फैमिली इवेंट हो, हम चाहते हैं भाई कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। और हाँ, इवेंट की तैयारी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पता है क्या? इनविटेशन कार्ड। अच्छा, एक वक्त था जब खूबसूरत डिजाइन वाले कार्ड्स घर घर जाते थे, याद है ना? वो 90s में लोग कार्ड इस्तेमाल करते थे और उनको बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया जाता था। लेकिन आज भाई टेक्नोलॉजी का दौर है और एक नया ऑप्शन हमारा, डिजिटल इन्विटेशन, यानी पेपर के बजाय मोबाइल, ईमेल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए इन्विटेशन भेजना। तो भाई आज को स्विच में हम बात करने लगे डिजिटल इन्विटेशन वर्सेस पेपर पर, एक ऐसी चॉइस जो हमारे इवेंट्स को भी स्मार्ट बना सकती है और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकती है। तो साथियों, जरा एक काम करते हैं, प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक छोटा सा इनविटेशन कार्ड बनाने के पीछे कितने रिसोर्सेज लगते हैं? देखिए, पेपर बनाने के लिए ना दरख्तों को यूज किया जाता है, ट्रीज को, फिर प्रिंटिंग के लिए इंक, इलेक्ट्रिसिटी और पैकेजिंग इस्तेमाल भी होता है। और अक्सर क्या होता है भाई, अक्सर यही होता है कि इवेंट खत्म होने के बाद वो ब्यूटीफुल इनविटेशन कार्ड्स में रख दिए जाते हैं या फिर सीधी सी बात है कचरे में फेंकें अगर अपने ना हो तो। सोचिए एक फैमिली इवेंट में अगर आप कह लें कि 100-150 कार्ड्स प्रिंट होते हैं तो फिर वो सिर्फ एक दिन के लिए होते हैं ना, एक दिन के लिए भी नहीं, मैं कहूंगी कुछ घंटों के लिए, तो कितना सारा पेपर वेस्ट होता है। इसके अलावा कार्ड्स को डिलीवर करने के लिए ट्रांसपोर्ट भी यूज होता है कि नहीं, जिससे फ्यूल कंजम्पशन होता है, कार्बन एमिशन बढ़ती है, यानी एक छोटी सी चीज भी एनवायरनमेंट पर असर डाल सकती है। तो भाई अब आप पूछेंगे, आप बताओ हम इसमें क्या करते हैं? तो भाई इसके लिए आपको छोटा सा इको स्विच ऑन करना है, जहां मुमकिन हो पे बजाय डिजिटल इन्विटेशन चूज करें। देखिए, डिजिटल इन्विटेशन के बहुत सारे फायदे, कुछ मैं आपको यूं ही उंगलियों पे गिनवा दूंगी। आपकी जो ये सोशल मीडिया की एप्स हैं या दूसरी तीसरी जो मैसेजिंग वाली

0: एप्स होती हैं या ईमेल्स या ऑनलाइन इनविटेशन प्लेटफॉर्म्स, ये चंद स्किन में इनविटेशन भेजा जा सकता है फॉर मल्टीपल पीपल। इससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और ये जो दरख होते हैं उनको भी पकड़ने में मदद मिलती है, वो काटे नहीं जाते। प्रिंटिंग और डिलीवरी का खर्चा भी कम सकता है। आप डिजिटल इनविटेशन को और भी क्रिएटिव बना सकते हैं अपनी मर्जी से, फोटोज, वीडियोस, मैप्स और आरएसवीपी ऑप्शंस के साथ, और इससे टाइम भी बचता है भाई। मिसाल के तौर पर शादी का इनविटेशन सिर्फ कार्ड नहीं बल्कि एक ब्यूटीफुल वीडियो मैसेज भी बन सकता है। लेकिन साथियों, अगर किसी स्पेशल ओकेजन पर पेपर इनविटेशन ज्यादा जरूरी लग रहा है आपको, तो भाई आप रिसाइकल्ड पेपर या इको फ्रेंडली प्रिंटिंग ऑप्शन क्यों ना यूज करते। देखिए, मकसद ये नहीं है कि हर चीज को बिल्कुल बदल दिया जाए, बल्कि जहाँ आसानी से बेहतर चॉइस हो सकती है वहाँ इको स्विच कर लिया जाए ना, मकसद तो यही है। अच्छा, अब अगर इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल दूँ ना, तो आजकल बहुत सारे लोग अपने इवेंट्स में डिजिटल इनविटेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अभी एक बच्ची के इनविटेशन रिसीव किया था एंड इट वाज वो वाओ ब्यूटीफुल। कई कपल्स अपनी शादी के लिए वीडियोस इनविटेशंस भेजते हैं जिसमें उनकी फोटोज, इवेंट डिटेल्स और पर्सनल मैसेजेस भी होते हैं। बर्थडे पार्टीज के लिए पेरेंट्स डिजिटल कार्ड बनाकर ग्रुप्स में भेज देते हैं जो मैसेज ग्रुप्स होते हैं। इजी होता है, जल्दी सबको पहुंच जाता है। अच्छा हाँ, कंपनी अपनी मीटिंग्स और के लिए ऑनलाइन इनविटेशंस यूज करती हैं साथियों। अच्छा, इससे ना सिर्फ पेपर वेस्ट करता है बल्कि गेस्ट्स के लिए भी आसानी होती है। वो इनविटेशन कभी भी मोबाइल पर दोबारा से चेक कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई इनविटेशन कार्ड कहीं भूल गए हो तो भाई एक मसला पड़ जाए। लोकेशन देख सकते हैं और अपनी अटेंडेंस कंफर्म कर सकते हैं गेस्ट। अच्छा भाई, यानी एक छोटी सी डिजिटल चॉइस कन्वीनियंस और स्टेबिलिटी दोनों लेकर आ सकती है। तो भाई साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज क्या है बता देती हूँ। अगली बार आप किसी इवेंट प्लान बनाए तो खुद एक सवाल जरूर कीजिएगा, क्या इस इनविटेशन को पेपर की बजाय हम डिजिटल बना सकते हैं। भाई जरूर बना सकते हैं और यकीन जाने पेपर से बेहतर बना सकते हैं। और हाँ, हमें बताना मत भूलिएगा आपने कभी डिजिटल इनविटेशन रिसीव किया है। मैंने तो किया था, बहुत खूबसूरत। और क्या आपको कार्ड्स ज्यादा पसंद है या डिजिटल इनविटेशंस? इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुनते इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, हर मैसेज जो मोबाइल से भेजा जाए वो सिर्फ एक क्लिक नहीं, कभी कभी नेचर के लिए एक छोटा सा पॉजिटिव होता है। छोटी सी आदत डालें और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। और सुनते रहें FM 107।
1: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर दिल से देसी
1: अस्सलाम वालेकुम आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर मैं हूं आपकी आरजे माविश खान आज का टॉपिक है वक्त में बरकत कभी आपने महसूस किया कि कुछ लोग कम वक्त में भी बहुत काम कर लेते हैं जबकि कुछ लोगों का वक्त होने के बावजूद भी काम मुकम्मल नहीं होता इसे ही वक्त बराका कहते हैं बराका जब आती है जब हम अपने वक्त को सही तरीके से यूज करते हैं और उसे बेकार चीजों में नहीं करते अल्लाह का जिक्र नमाज की पाबंदी और डिसिप्लिन वक्त में बरकत पैदा करता है अक्सर सोशल मीडिया और बेमकसद एक्टिविटीज हमारा वक्त ले जाती हैं अगर हम थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं आज का अमल ये है कि अपने दिन के कुछ हिस्से को प्लान बनाएं और बेकार एक्टिविटीज को कम करें ये था आज का मैसेज आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर मैं हूं आरजे माविश फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात
2: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी
3: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है मगर जो भी कुरान सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है यहाँ तक के वो ऐसे मानी हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं तिलावत तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के प्रोग्राम तहफीमुल कुरान पर से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर
4: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन 107 एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी स्ट्रेस हो बिजी रूटीन हो फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हर हफ्ते एक नई हदीस एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम हदीस टू हैबिट हदीस टू हैबिट दिल से सुनिए जिंदगी में अपनाइए
2: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886, ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107, टाइम चेक, टाइम चेक, चेक चेक चेक, टाइम चेक। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं सुबह के 11:01, यानी इट्स टाइम फॉर,
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: यस, वेलकम है आपका, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो आज ये आवाज़ आपको थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी, सन और साउंड, आई साउंड बदल गया है। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता, और आज हमारी सफ़ा कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाई, तो आज उनकी जगह पर मैं हूँ। तो सन है, सन को और भी स्पेशल हम बना ले हैं। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल और FM 107, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और ये बता दो जनाब कि आज कैसे हो, कैसे हुई आपकी सुबह? उम्मीद है आपके दिलों में वही रोशनी और गर्मी होगी जो हमारे कतर के टेम्परेचर्स में है। हाँ, आई कैन सी कि हमारे जो कतर का टेम्परेचर है वो अभी इस वक्त मैक्सिमम 41 डिग्री सेल्सियस पर है, विच फील्स लाइक 49 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम 33 डिग्री सेल्सियस पर है। देखो, टेम्परेचर्स का क्या है, बढ़ते घटते रहेंगे। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि हम अपना ख्याल रखें, है कि नहीं? वेल, आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी, और बचपन की ना गलियों में हम घूम कर आएंगे। सीरियसली, मतलब जो साते हैं तो वो बचपन हमें याद आता है, फिर चाहे हम जितने भी बड़े हो जाएं। लेकिन उससे पहले हमसे जुड़ने का रास्ता तो नोट करो, 666-22-107 इज आवर व्हाट्सएप नंबर। इस पर आप मैसेजेस कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं 4434377 पर। तो ये दोनों नंबर्स को अपने जहन में उतार लीजिए, क्योंकि हमारी बातचीत आगे इन्हीं के जरिए कंटिन्यूसली चलने वाली है। वैसे अगर आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जुड़ सकते हैं, 107 हर जगह पर हम मौजूद हैं, और चाहे तो सन एंड साउंड को भी चेक कर लीजिए। वेल, आगे क्या क्या होने वाला है, हम बात करेंगे ऐसे बीच की जहां पॉपकॉर्न बिखरा होता है, यस, और डिस्कस करेंगे उन घरों के वो अजीब रूल्स की, बचपन में हमें बड़े नॉर्मल लगते थे, लेकिन जब हमें थोड़ी अकल आई बड़े हुए तो हमने सोचा कि यार ये मतलब ये वाकई में हमारे घर के रूल्स थे। सो यस, देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स कि आज हम सन एंड साउंड में करने वाले हैं। यूं मेरा गला कैसे लग गया, वो कहते हैं ना कि गला सूख गया है, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं थोड़ा सा पानी वानी पीऊं। तब तक के लिए आपको एक म्यूजिकल ब्रेक पे ले जाती हूं, और उसके बाद आपकी मेरी मुलाकात कंटिन्यूअसली चलने वाली है। तो कहीं ना जाए, बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी, स्टे ट्यून्ड।

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
1: तो यस माय देसी ऑडियंस वेलकम वंस अगेन ऑन FM 107 पर. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मैं जनाब आज मैं हूँ आपकी ए फॉर अमाउंट सन एंड साउंड पर. और ये बताएं कि अभी गर्मियां कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहीं वेकेशन वगैरह का कुछ प्लान है?

0: या यहीं पर अपने वेकेशंस लेके यहीं सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं? बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे को मैंने पूछा कि भाई छुट्टी कहाँ जा रहे हो, बोलते नहीं हम छुट्टी घर पे आराम करना चाहते हैं, सो स्टेइंग हियर. ऐसा कुछ आपका भी विचार, जो भी प्लान्स है शेयर करें. हम लोग बातें करें, ये चीजें शेयरिंग केयरिंग की तरह हो जाती है, एंड सम यू नो आइडियाज किसी के भी काम आ सकते हैं. सो 666-22-107 666-22-107 इज आर नंबर. इस पर आप मैसेजेस कर सकते हैं और कॉल करने के लिए 4344-377 इज आवर नंबर. वैसे अमेरिकनर्स हैं जो हमें गुड मॉर्निंग सलाम के मैसेजेस भेज रहे हैं, सो यहाँ पर तौफिक भाई ने हमें गुड मॉर्निंग भेजा है, तो भाई आपको भी गुड मॉर्निंग सलाम. और अनवर का मैसेज है, क्या बात है. मीरा का है, सो मीरा थैंक यू सो मच. एंड यहाँ पर सबा का भी मैसेज है, वाओ ब्यूटीफुल गर्ल सुन रही है. मोहम्मद यूसुफ खान भी हमारे साथ जुड़ गए, सो यस थैंक यू टू यू. आप सभी को तहे दिल से सलाम, आप सभी को तहे दिल से गुड मॉर्निंग. एंड आई जस्ट प्रे कि आज का ये दिन बड़ा कमाल का हो. चलिए शुरुआत करते हैं अब एक ऐसे अमेजिंग फैक्ट के साथ. आप इमेजिन कीजिए कि आप एक समुद्र के किनारे चल रहे हैं, ठीक है, समुद्र के किनारे चल रहे हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं. वेल आई नो कि अभी गर्मियों का टाइम है, बट यू हैव टू इमेजिन कि आप ठंडी हवा फील है और आपके पैरों के नीचे बड़ी खूबसूरत सी एकदम प्यारी प्यारी, वो कहते हैं ना रेत है, प्यारी प्यारी रेत है. और जब आपने नजरें और जरा ध्यान से देखा कि रेत में कुछ और भी है, क्या ये? दैट्स पॉपकॉर्न जो वहां पर बिखरा हुआ है. तुम्हें काफी फिल्मी लग रहा है ना कि अमिताभ, रेत में पॉपकॉर्न कहाँ से आ सकते हैं? सो स्पेन में कैनरी आइलैंड्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर फोर्टेवेंटुरा, यस ऐसी जगह है. इस जगह पर स्पेशली पॉपकॉर्न बीच है, पॉपकॉर्न बीच काफी पॉपुलर है. वहाँ की जमीन मतलब आप देखेंगे रेत तो है लेकिन पॉपकॉर्न जैसी दिखाई देती है. यहाँ पर खाने वाली नहीं है कि आप बिल्कुल पॉपकॉर्न मतलब समझ के एकदम मुंह में डाल लें, नो नो इसे खाने की गलती बिल्कुल मत करना. ये असली पॉपकॉर्न नहीं है बल्कि टाइनी वाइट मरीन एल्गे और कोरल फ्रेग्स है. यस, और समुंदर की लहरों ने ना इसे सालों की मेहनत से घिस घिस कर पॉपकॉर्न जैसा शेप दे दिया है. Well, कभी कभी जब मैं इन चीज़ों के बारे में जिक्र करती हूँ या कभी जब खुद देखती हूँ, लगता है सच में क्या कमाल का कुदरत का करिश्मा है ना. मतलब जो चीज़ आपने सोची नहीं आपने एकदम से देखी, एंड यू वाओ. मेरे साथ ऐसे ही हुआ था जब मैंने उनकी बात की, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी तो वहाँ पर भी एक बहुत खूबसूरत जगह, एंड जब मैं गई तो समुद्र किनारे ऑब्वियसली को वगैरह ये सब कुछ होते हैं जो हम कहते हैं ना बीड्स की, आपने मालाएँ देखी होंगी, बीड्स लॉकेट्स देखे होंगे. बीड्स बहुत सारे लोग ब्रेसलेट के तौर पर अपने हाथों में पहनना पसंद करते हैं, एंड आई सॉ दैट, बट वो रियल बीड्स नहीं थे, बट बीड ऐसे दिखते थे. तो ये सारे दो वहाँ पे ही हैं, ये मिलकर इस तरह की बना देते हैं, सो ब्यूटीफुल, मतलब वाइट रंग का. कैन यू इमेजिन? वेल ये तो मैंने जिक्र किया, लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि आप किसी ऐसे बीच पर कभी गए हैं या कोई ऐसी जगह पर गए हैं जो थोड़ी नीक रही हो, मतलब बिल्कुल अलग धलग, आप लगा वाह यार मतलब मजा आ गया, ये जगह तो हमने देखी नहीं, या देखकर आपको थोड़ा सा सरप्राइज हुआ या शॉक लगा, क्या हुआ? शेयर कर सकते हो आप, ठीक है. 666-22-107 पर 666-22-107 पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो 443-443-77 पर 443-443-77 पर, बताने के लिए कि कोई आपने ये जगह देखी जहाँ पर आपको कुछ अजीब और गरीब लगा, एंड यू रियली रियली लव्ड इट. मतलब ये हमारे साथ कोई जुड़ना चाह रहे हैं, आइए जरा इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम अमिता बहन, कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ. कौन जुड़ा है हमारे साथ?
1: सैयद खादिम हुसैन.
0: अरे वाह सैयद भाई, क्या हाल चाल है?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. देखो ये किसी किसी की आवाज वो सुन के ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुन के कुछ अजीब सा भी लग रहा था. लाइव शो में मैं पहली बार आई, बहुत दिनों बाद.
0: वेल सैयद भाई मैं आ रही हूँ, बट मैं आती हूँ दोपहर के 1:30 बजे से, सो इट्स अ गेम शो, तो इसलिए आपकी हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही. गुजर रहे गर्मी के दिन?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब खैरियत है और बिल्कुल गुजर रहे माशाल्लाह, दिन भी अच्छे हैं, लग रही है लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है अच्छा.
0: ये बात सही है, सही है. तो आपने अभी सुना हमारा सवाल, हमने क्या पूछा है?

0: जब जो सबसे अच्छा लगा कतर में बहुत अच्छा, तो वो सी लाइन है।
1: आहा, तो सी लाइन की ऐसी कौन सी बात है जो आपके जिम्मे?
0: सी लाइन में ये है कि वो जगह बिल्कुल क्लियर है, साफ है, तो आप दूसरी बात फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं
1: जी।
0: और वहाँ पर हर चीज अवेलेबल है।
1: ये बात तो
0: एक
1: सही
0: तो
1: है।
0: ये बात हो गई। हाँ। दूसरी बात कि वहाँ पे मैंने देखा कि एक ये जो रेप है ना, रमल बोलते हैं उसको, वो भी जगह जगह पैसे है कि जैसे पहाड़ बने हुए और बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, वो सीन बहुत प्यारी सीन है और पानी उधर के बिल्कुल साफ है।
1: ये बात तो सही
0: है। मैं कहता हूँ कि मैं और भी होंगे लेकिन मैंने जो देखा है ये सी लाइन बहुत बेहतरीन है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: और फिर वहाँ अगर सर्वर भाई जैसे खाने पकाने वाला बंदा भी साथ में हो
1: तो
0: वो भी कुछ चिकन फ्राई है सब कुछ करा,
1: एब्सोल्युटली बारबेक्यू तो फॉलो होगा।
0: बारबेक्यू,
1: राइट राइट, ये बात सही कही। सी लाइन तो मैं अभी इतने सालों में 3-4 बार गई हूँ, लव्ड इट। तो आपने जैसे जिक्र किया, मैं चाहती हूँ कितने बार जा चुके हैं?
0: मेरे ख्याल में मैं बेशुमार, अभी बहुत ज्यादा, इसलिए कि हमारे एक भाई साहब है मोहतरम, वो दिल्ली हैं
1: जी,
0: तो अक्सर ऐसे होते हैं ना कि बस वो फोन करते हैं और सीधा बोलते हैं तैयार हूँ मैं आता हूँ और चलते हैं।
1: अरे
0: तो,
1: वाह।
0: तो मुझे वो कहते हैं ना कि तैयार होने में भी वो कोई जरूरत ही नहीं है, बस सिर्फ ये कि अपने लिए वो नहाने के लिए कुछ ट्राउजर वगैरह दूसरा लो साथ में और गाड़ी में बैठो और जाओ।
1: क्या
0: और बारबेक्यू लिए वो खुद बंदोबस्त करते वो माशाल्लाह बना के देते हैं माशाल्लाह।
1: क्या बात है सैयद भाई, बड़ा अच्छा लगा आपकी बात सुन के। मुझे बताइए आप मतलब सी लाइन के तो आप इतने मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि यू रियली लव इट, ऐसी कोई जगह, क्योंकि गर्मियां बड़ी हैं तो ऐसी कोई जगह जो आप सजेस्ट कर सकते हो जो आपकी पर्सनल फेवरेट है कि भाई गर्मियों में यहाँ जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा?
0: आउट ऑफ कंट्री या कतर?
1: कतर में।
0: कतर में तो अभी मैं अगर बोलूं तो किसी शॉपिंग मॉल में जाने दे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन अगर पार्क फैमिली पार्क वो सबसे अच्छा मियां पार्क है, पार्क और बिदा पार्क भी फैमिली के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सैयद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया ये आपने जो बताया हमको। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं?
0: मियां पार्क में ये है कि अमिताभ बहन उसमें आगे अगर आप उस तरफ देखो लोकेशन बहुत प्यारा लगता है,
1: राइट,
0: और मगरब के बाद लोकेशन बहुत प्यारा लगता है और हवा भी चलती रहती है बच्चों के लिए। हम जैसे वैसे फैमिली तो मेरी यहाँ पे नहीं है लेकिन
1: अच्छा।
0: वो जो दोस्त है वो भाई साहब है,
1: हाँ जी,
0: उनके साथ ऐसे जुड़ा हूँ कि फैमिली मेंबर, तो बहुत अच्छा लगता है मतलब
1: माशाल्लाह। सच में एक फीलिंग बहुत अच्छी आती है और वो कहते हैं ना कि बिल्कुल सोशल मीडिया टाइप की पिक्चरें भी बड़ी अच्छी खिंच जाती है, है कि नहीं?
0: जी जी, और कतर तो माशाल्लाह है भी खूबसूरत।
1: ये बात सही कही,
0: हकीकत सुकून है।
1: बिल्कुल सही कही भाई सैयद भाई, सच आपसे बात करके। हाँ जी हाँ जी,
0: कहीं भी बैठो, कहीं भी आप बैठो, कहीं कोई आपको मना नहीं करेंगे यहाँ जाओ।
1: ये बात तो आपने सही कही, ये बात सही है कि कतर में एक चीज मैंने खुद भी महसूस करी है कि आप जैसे कहते हैं ना कि किसी बड़ी बड़ी जगह में घूमने के लिए आपको बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, यहाँ बिल्कुल नहीं करना पड़ता, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट और बड़े प्यार से वार्मली आपको मिला जाता है, आपको ट्रीट किया जाता है। सो यस भाई, दिल से बड़ा अच्छा लगा आपसे बात, एंड थैंक यू सो मच।
0: बहुत शुक्रिया अमिता बहन, मुझे बहुत खुशी है कि अपने अपनी बहनों से और अपने भाइयों से बात हो, बात हो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, यू ही बने रहे एंड सच में हैव अ वंडरफुल ईयर अहेड, ठीक है? गर्मी आए, ख्याल रखे, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, पहले थे हमारे सैयद भाई जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से हमें बताया कि भाई देखो सी लाइन बीच उनको बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ये उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। कोई जगह जो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग रही, यू नो यू रियली लव्ड इट, जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारे कतर में हो, कतर में है तो और भी अच्छी बात है, कतर के बाहर भी कोई ऐसी जगह जो आपको बहुत मज़ेदार लगी हो। अभी हमारे साथ कोई और भी जो चाह रहे हैं, आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहु।
1: क्या बात है, मैं कौन हूँ? मैं हूँ ए फॉर अमिता, आप बताएं आप कौन है?
2: मैं आपके साथ FM 107, गेस करिए अमिता जी।
1: देखो ऐसे गेस करवाओगे ना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हमारा शो खत्म हो जाएगी, बता दो जल्दी से।

0: यस एफ एम 107 है मेरे साथ, क्या बात है, ये भी नाम मुझे चलेगा। अरे वाह शहजादा जी, क्या हाल है?
1: आज सफा मैम नहीं आ पाई।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: अच्छा तो वो सफा में वैकेशन है क्या फिर? आप नहीं
0: है? ये तो राज बात है, पता चलेगा आपको कुछ दिन के बाद। तो शहजादा भाई आपने सुना हमारा सवाल जो हमने पूछा?
1: हाँ हाँ, बारे में ना।
0: हाँ जी, कोई ऐसी जगह जो थोड़ी सी डेंट रही हो, जैसे कहते हैं ना कि आप जब गए तो आपको लगा वाह मजा आ गया, या फिर गरीब मतलब ऐसे जो आपको याद रही हो अभी तक।
1: हाँ हाँ, मेरा तो हमेशा क्योंकि मैं बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ
0: जी, जी।
1: तो मेरा अपना मेरे तो मैं रहता हूँ जिस एरिया में ना, गंडा क्रॉस तो मैं ना जुहू है, जुहू बीच है। हाँ, और बॉम्बे तो ऑलवेज ही पूरा हर जगह है ना, समुद्री समंदर है।
0: हाँ हाँ,
1: और हाँ बड़ा तो हमारा जो ये जुहू बीच है ना
0: जी,
1: यहाँ पे हमारा क्रिकेट मैच होता है वीकेंड में के दिन। हाँ, तो उधर जाने के बाद बड़ा पीसफुल लगता है, और जो
0: आपने मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, आपने कहा जू बड़ा सुकून आता है, जू बीच में कितने सारे लोग होते हैं तो आपको सुकून आ जाता है अब भी?
1: नहीं नहीं, तो हमारा एक पार्ट जो है ना जो लोग के लिए वो एकदम क्राउडेड जो फास्ट फूड है और जो अपना कैमल भी है और
0: राइट
1: वो उधर हम लोग जाते भी नहीं
0: है। अच्छा।
1: और वहाँ तो हाँ वहाँ
0: अलग है आप, क्योंकि मैं जो बीच में गई थी तो मतलब वो तो बहुत ही ज्यादा लाइव है।
1: फिर अपने यहाँ का जो चरनी रोड का है चौपाटी, चौपाटी मरीन ड्राइव, गेट ऑफ इंडिया चले जावे तो इसको बड़ा मतलब है। ये तो मरीन ड्राइव जो अपना है तो कॉपी तो आप कॉर्निश ही ले लो।
0: हाँ, ये एग्जैक्टली मैं बोलने वाली थी कि वो एहसास हमें यहाँ मिल जाता है, मतलब मरीन ड्राइव एंड यू गो टू कॉर्निश, कॉर्निश
1: ये मरीन ड्राइव जो यहाँ का जो फर्निश है ना
0: राइट,
1: पूरा नीचे जो टर्न हुआ है आगे तलक केरल तक, तो पूरा वो मरीन ड्राइव ट्राइडेंट होटल वो सारा कुछ याद आता है
0: राइट,
1: पूरा
0: मतलब फिर मुंबई को थोड़ा कम मिस करते हैं।
1: हाँ, कॉफी है, कॉफी है, कोई अगर अगर वो देख मरीन ड्राइव तो हमें यहाँ तो नहीं आ गया।
0: एग्जैक्टली, मैं खुद गई हूँ मरीन ड्राइव, जब भी मैं मुंबई अक्सर मेरी वो फेवरेट जगह होती है, वहां जाकर मुझे वड़ा पाव बहुत अच्छा लगता है। लाइक अगर मैं मुंबई गई हूँ, जैसे ही मैंने लैंड किया है मुझे बाहर निकल के वड़ा पाव खाना है।
1: मेरा फेवरेट है, पास में भी जो स्टॉल है ना
0: राइट,
1: बड़े फेवरेट है। हाँ, तो जाके वो तो नहीं
0: ये बात है। अच्छा, लेकिन शहजादा आपने तो जैसे बताया मुझे मुंबई का ही के बारे में आपने बताया, लेकिन उनकी कुछ खास आई है, जैसे हमने जिक्र किया था कि कैनरी आइलैंड्स में एक पॉपकॉर्न बीच है, तो ऐसा कुछ जो मतलब आपके जहन में लगता है कि मैं मरीन ड्राइव में जाता हूँ तो मतलब मुझे हमेशा ये फील होता है, तो क्या लगता है वो बताइए ना।
1: मरीन ड्राइव जाने का हम लोग तो मिड नाइट में जाते थे। हाँ। और एक है ना बैंड स्टैंड जाते थे।
0: राइट, बैंड स्टैंड ये
1: शाहरुख का घर है।
0: हाँ,
1: हाँ। ना बिल्कुल, तो वो सब पत्थर पत्थर है ना जो समय
0: right.
1: लगे वो
0: yes.
1: तो वो एक अलग ही, आप कहाँ हो, अब मैं नहीं हूँ क्या, आउट ऑफ इंडिया तो नहीं, तो बड़ी आवाज। और एक हाजी अली, हाजी अली का तो बैक साइड आप जो दरगाह के तो पीछे जाओगे कभी वहाँ पे बैठो तो वो एक बहुत अच्छा, इतना बेहतरीन नजारा लगता है, वो बहुत जबरदस्त। और जो फीलिंग स्टार्ट किया है जो समुद्र के ऊपर से ना
0: जी जी जी
1: तो गया, पता है आपको, तो वहाँ तक गया वाल्केश्वर जो है ना उस तरफ चला गया है, और वो कनेक्ट किया है बांद्रा में जो
0: वैष्णो
1: ऊपर, वो आप इतना लंबा जब ड्राइव करके आओगे ना स्पेशल रात के टाइम पे, जो बड़े जितने भी टावर है जो बिल्डिंगे हैं और हाई फाई

0: है ना, सब देखेंगे वहाँ पे जितनी हाँ, भी है हाँ, तो वो है ना न्यूयॉर्क और यूके वगैरह।
1: ओहो शहजादा भाई आपने तो मुंबई दर्शन कराते कराते पूरे वर्ल्ड के दर्शन करा दिए।
0: लेके बिल्डिंग से लेके और मुझ से लेके और ऐसे ऐसे मॉल है बोलेंगे क्या मॉल है,
1: क्या बात है। तो आप मुंबई में रहते कहाँ पर है?
0: मैं सांता क्रूज में रहता
1: हूँ। ओके तो एक चीज तो समझ में आई कि आप जब कभी जाए मुंबई तो तभी हमें भी जाना चाहिए क्योंकि आपके साथ मुंबई देखने का मजा कुछ और है कि नहीं?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल है ना, बहुत अभी तो भी अंडरग्राउंड में मतलब ट्रैवलिंग कर रही है मेट्रो आपको 40-50 किलोमीटर टाउन बिटवीन स्टार्ट हुए
1: राइट राइट,
0: और उसकी जो हाइट है ना मेट्रो की यहाँ पे 3 डब्बे होते हैं होते वहाँ को कम से कम 9-10 ऐसे इतनी तकती है। अरे बाप रे, मैंने मेरे घर से कनेक्ट ही है सांता क्रूज, मेरा वहाँ से 5 मिनट का डिस्टेंट है, एयरपोर्ट के कनेक्ट है जी से बेस्ट है। हाँ 20 रुपीज में मैं टिकट लेके ना एयरपोर्ट इंटरनेशनल जाता हूँ।
1: क्या बात है, मतलब सारी वो कहते हैं ना कि उंगलियां घी में आपकी बिल्कुल उस तरह से लग रही हैं। लेकिन मुंबई के बारे में जो आपने इतनी मोहब्बत से बताया मतलब बड़ा अच्छा लगा मुझे कि स्पेशली आपको नेचुरल बीच समुन्द्र के किनारे पत्थर होते हैं उसने मतलब आपको बिल्कुल दिल पे राज किया हुआ है।
0: मेरे टकराते ना जो बारिश में हाइक है
1: राइट,
0: आप जो टकराती है जो रोड पे पानी आता
1: जी,
0: है
1: जी जी
0: गाड़ियां पास होती ना वो तक होती है
1: क्या
0: और गेट ऑफ बता भी देख लो जब हाईटेक होता है तो जबरदस्त। ये जो बारिश का स्पेशल जो हाईटेक जो समुंदर का होता है ना
1: राइट,
0: वो क्या नहीं कहता है बॉम्बे लेके
1: बारिश में, लेकिन क्योंकि मैं बारिश में कभी मुंबई नहीं, बारिश में मुंबई काफी डूब जाता है मतलब ऐसा अक्सर मैंने सुना है, मेरे दोस्त जितने भी वहाँ अक्सर कह रहे हैं। सो बारिश में कोई एक जगह बताओ जहाँ आप हमेशा जाते हो और बिना किचन के
0: बारिश हो जो कंटिन्यू लग जाती ना बिना टेंशन के कहाँ वहाँ जाना है, वहाँ तो छतरी ज्यादा नहीं भी होता भी सारा हो जाता है।
1: अच्छा
0: क्योंकि बारिश भी नहीं है हाँ, लेकिन वो रिमझिम रिमझिम रिमझिम रिमझिम चलती रहती है।
1: अच्छा शहजादा भाई जैसे आपने मुंबई का बताया, मुझे बताएं कि कतर में ऐसी कौन सी जगह है जो आपके दिल पे राज करती है?
0: मैं भी वो गया, सबसे अच्छा मुझे स्विमिंग करने लगा सीलैंड लगा।
1: अच्छा सीलैंड को आप वो करेंगे? अच्छा ओके,
0: पूरी रेत ही रेत है। मैं ना अल्फोर बीच गया था, वहाँ है ना पत्थर है, क्योंकि
1: वहाँ पत्थर है राइट,
0: बहुत डिस्टर्ब होता है
1: हाँ।
0: लेकिन जो लेन है वो एकदम बहुत अच्छा लगता है हाँ। का मजा लेन में
1: हाँ, ठीक है। तो एक में दूसरा लिसनर भी मिले कि जो सी लाइन को वोट कर रहे हैं।
0: जी
1: अरे क्या बात, इंशाल्लाह जरूर जाए, फिर हमें बताएगा कि कैसा गा आपको। ठीक है नहीं शहजादा भाई मजा आ गया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यही बस दुआ करूंगी कि आपका दिन कब बीते। कह रहे आप
0: अच्छा
1: अच्छा ठीक है ठीक है, चलेगा 1:30 बजे आप मुझे सुन सकते हो वैसे, मैं फिर से मिलूंगी।
0: ऐसे भी आप लाइव आए ना 2-3 घंटे में ना
1: हाँ जी,
0: अपना एक नया ब्रांड एक नया
1: क्या बात
0: लेके तो मजा आएगा।
1: क्या बात है, मैं जरूर आपका ये फीडबैक अपने बॉस तक पहुंचा दूंगी। ठीक है चले, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना खूब ख्याल रखे शहजादा भाई, अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज।
1: क्या बात, मजा आ जाता है जो हमारे लिसनर्स और स्पेशली जो हमारे रेगुलर लिसनर्स भी जाते हैं और उनकी बातें सुनो तो मतलब उफ, मतलब आई विश कि मैं अपना खुद का एक बड़ा सा शो कर लूं लेकिन नहीं ये सब चीजें बैलेंस्ड होती है और ये हमारे हाथ में नहीं है, इट्स बेटर कि ये हमारी बॉस के हाथ में। सो दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग। और इसी में कहूंगी मैं छोटे म्यूजिकल ब्रेक की तरफ रुख कर, हमने आज पूछा हुआ है कि आप किसी ऐसी जगह पे गए जहां पर आपसे अजीब और गरीब सा लगा,

इन वे और इन अ बैड वे, बट जो आपकी मेमोरीज का हिस्सा रहा, ठीक है, बैड वे तो थोड़ा सा हम हटा देते हैं, लेकिन कई बार चीजें मैं यूं कहूंगी कि आप सरप्राइज हो गए कि अरे ऐसा भी कुछ है क्या, है ना, तो वो जरूर आप हमसे शेयर कर सकते हैं 6622107 6622107 पर. ये आप हमें कॉल भी करें 4434377 पर. अभी के लिए बहुत ही शानदार गाना है, हाई एनर्जी से बिल्कुल भरपूर है, तो वॉल्यूम बढ़ाइए, इंजॉय कीजिए सन एंड साउंड को, फुल ऑन सेलिब्रेट कीजिए. Stay to FM 107, दिल से देसी.

0: संपर्क कर आप है देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: उर्दू रेडियो

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफाकता हर दुख एक बजे से FM 107 पर से देसी
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है कभी वर्क दिन मॉल की भीड़ छोटी सी मुलाकात सर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद और ये याद और ये खूबसूरत अपनी बिजी लाइफ से तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए प्रोग्राम दोहा डायरी विद आरजे अरवर मिर्जा

0: होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी 2022 जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
0: वेलकम वंस अगेन FM 107 रे आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। साउंड में आज आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है और सच में आज हमारी सफा को काफी हमारे लिसनर्स मिस कर रहे हैं, तो बताना चाहेंगे भाई देखो आज उनके कुछ काम थे, कुछ चीजें थी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई, लेकिन कोई नहीं, आज का जो ये दिन है, आज जो शो है, आप अपनी ए फॉर अमिता के साथ गुजारने वाले हैं। अभी हमें कुछ मैसेजेस आए हैं, चलिए जरा उनकी तरफ रुख कर लिया जाए। अदील का मैसेज है, भाई सलाम भेजा है, हम कैसे हैं, हम बिल्कुल मस्त हैं, मजे में हैं। और मैसेज आया है पवित्र सिंह का, पवित्र सिंह है, गुड मॉर्निंग कह रहे भाई, गुड मॉर्निंग, अब तो आफ्टरनून होने वाली है। और हमारे साथ कौन जुड़ा है, लेट मी जस्ट चेक, सो इट्स अबू यूसुफ भाई, हेलो हेलो आपको भी, एंड आई एम परफेक्टली फाइन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे पूछने के। हमारे साथ ये भी कोई जुड़ा हुआ है, रोहिल जुड़े हुए हैं, भेल बिल्कुल मजे में हूँ, आपको सलाम है, बहुत सारा प्यार है हमारी तरफ से, बहुत सारी दुआएं हैं, लेकिन आपका जो मैसेज है वो मुझे समझ नहीं आया तो हम देखते हैं। वाले इस वक्त सन साउंड में हम बातें कर रहे थे कि भाई कोई ऐसी जगह है जो आपने देखी और कुछ अजीब और लगा, या फिर कुछ ऐसा लगा कि आप देखकर बड़े सरप्राइज हुए, तो आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107, या फिर फोन भी मिला सकते हैं 4434377 पर। तो हमें का मैसेज आया, उनका कहना कि देखो अमिता आपने जब जिक्र किया पॉपकॉर्न बीच का तो मुझे लगा कि हाय अगर मैं वहां होता तो वाकई में धोखे खाता और मैं न जाने वो पॉपकॉर्न उठा के मुंह में डालता, देखो मुंह में डाल लेते और पॉपकॉर्न खा लेते तो फिर भाई आपके दांतों का क्या होता मुझे नहीं पता, बड़ी मुश्किल हो जाती। लेकिन एक चीज़ इन्होंने लिखी, देखो अमिता मुझे ज़्यादा तो कुछ ऐसा याद, बचपन में एक बार पहाड़ों पर अब ले गए थे एंड काफ़ी बर्फ थी, बिल्कुल रुई जैसी बर्फ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। अहमद आपने बड़े प्यार से जिक्र किया उस रुई जैसी बर्फ, भी बता किस जगह पर आप गए जहाँ आपको बड़ा अच्छा लगा। फर का मैसेज है, उनका कहना है कि देखो अमिता मैं दिल्ली से हूँ और पॉपकॉर्न बीच का जिक्र बहुत मजा आया सुनकर, सच में मूवी सीन जैसा लग रहा था। मैं अगर अपना किस्सा बताऊं तो मुझे लद्दाख बड़ा पसंद आया क्योंकि वहां पर एक मैग्नेटिक हिल है जहां पर गाड़ियां आप चलने लगते हैं, खिंच जाती है बिल्कुल वही मैग्नेट की तरह, तो वो मेरी अब तक का सबसे बड़ा खुद का करिश्मा है। क्या बात है फ्रांक, लद्दाख हमेशा मैं प्लान करी और अभी तक मैं पहुंच नहीं पाई इंडिया में रहने का भी, बट कोई नहीं, कभी मौका पड़ा तो ये जो आपने जगह का जिक्र किया वहां जरूर जाऊंगी। मेरे दोस्त यार जा चुके हैं वहां पर, करा चुके हैं, बट ये लद्दाख की क्यों गाड़ियां बार बार मेरा दिल कटा ना जाऊं, मैं आज तक नहीं गई, बट ट्रेड्स ऑफ। अच्छा यहाँ पर और किसका मैसेज है, ये इमान है, इमरान मुझे कह रहे हैं जो मैं ज्यादा घूम नहीं पा और लेकिन मैंने अपने बेटे के साथ गया था जहाँ समुंदर के किनारे जो रेत थी वो गुलाबी थी। भाई कौन से समुंदर की बात कर रहे हैं, आप इंडिया में थे तब की बात कर रहे हैं या किसी और कंट्री में थे वहाँ की बात कर रहे हैं या हमारे कतर की बात कर रहे हैं, तो जिक्र करना बनता है। एटलीस्ट आप लोग ने थोड़ा बहुत शेयर किया। अच्छा हमजा का मैसेज है, उनका कहना है कि अमिता जो बलूचिस्तान है वहाँ पर हिंगोल पार्क है वो जरूर जाना क्योंकि प्रिंसेस होप नाम की एक पहाड़ी वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उसका रॉक फॉर्मेशन इट्स ब्यूटीफुल, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे कि कोई क्वीन का स्टैचू बना हुआ है। ओहो हो में हम वुड लाइक, मैं कभी नहीं गई, सो चलिए आपने जिक्र किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड अगर मौका मिला कभी फ्यूचर में तो जाऊंगी, है कि नहीं। तो मैं कहना चाहूंगी ऐसी कोई जगह जो आपके जहन में है और आपको बहुत पसंद आई या गए हो, आई रियली लव इट कि वाह यार मतलब किस जगह हम गए। बात करें तो मैंने थोड़ी देर पहले ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, somehow वो जगह वहाँ पर अलग अलग जो है बहुत खूबसूरत है। मैं वहाँ गई थी टैस्मेनिया एंड वहाँ पर एक गुफा है जो काफी मतलब जो कहते हैं ना लाटो

0: 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 48806 पर या ईमेल करें marketing@qa।
1: FM 101 टाइम चेक। हाँ जी, सन एंड साउंड का सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। आप सभी का दिल से इस्तकबाल है। और एफएम 107 पर इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पर बजे हैं दोपहर के 12:02।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से एसी।

Once again, 7 पर मैं हूँ आपकी एव और अमिता। तो अभी तक सन एंड साउंड हमने बातें की कि भाई कोई ऐसी जगह विजिट की अपनी लाइफ में जो थोड़ी अजीब और गरीब हो, एंड लव्ड इट कि भाई मतलब मजा आ गया जगह देख के। तो मुझे एक मैसेज, इनका नाम है हिना और ये कहती है कि अमिता हैदराबाद में ना पास मतलब एक बहुत खूबसूरत पत्थर है जिनका आकार जो है वो ह्यूमन फिगर है, एंड आई रियली लव दैट। मतलब वो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था लेकिन बहुत खूबसूरत। दैट्स अ गुड वन। वैसे हाँ, मैं भी रही हूँ और मेरे ख्याल से जिन पत्थर जिक्र करी हैं वहां पर मैं भी गई हूँ। वैसे एक और मैसेज है जिसका मैं करना चाहूंगी, राशिद का मैसेज है, कह रहे हैं कि ये पेशावर से और इन्होंने जिक्र किया है कटपाना डेजर्ट का। कहते हैं अमिता वहाँ के सैंड ड्यून्स मुझे बहुत पसंद है, एंड लिटरली जब आपने पॉपकॉर्न बीच का जिक्र किया तो मुझे वहाँ की याद आ गई। पर सच में कुछ जो जगहें हैं हम अक्सर गए हैं उनकी यादें जब हम ताज़ा करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे कुछ और भी अगर आप जहन में हो तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा 6621107 पर। वक्त हो गया है हमारे दूसरे सेगमेंट के बारे में बात करने का, एंड दैट इज़ रियली बहुत ज़्यादा वो इमोशनल है एंड थोड़ा फनी भी है। हाँ जी, तो याद है गर्मियों की छुट्टियों का वो टाइम जहाँ कुछ ना कुछ सोचा करते हैं, देखो करेंगे वो करेंगे, अपने दोस्तों के साथ खेला करेंगे, हर चीज़ हमारे लिए बड़ी पकड़ती थी। है मतलब ये हम अपने दिनों की बात कर रहे हैं लेकिन अभी मैंने करी है। रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते थे हर घर के रूल्स, और बचपन में वो रूल्स हमें लगते थे कि वो सबके घर के रूल है। मतलब घर रूल जो बचपन में हमें बिल्कुल नॉर्मल लगता था और बड़े समय सिर्फ हमारे घर का, हम सबके घरों में ना स्ट्रिक्ट रूल होते थे। रात को 8 बजे के बाद किचन का दरवाजा बंद, मतलब ये 8 बजे के बाद अगर भूख लग गई तो फिर क्या, या फिर से अगर हमको ठंड पीना है ना तो उसके लिए भी हमको परमिशन ली पड़ेगी अपने बड़ों से। और खुद के घर में पता है कैसा रूल था कि मतलब गेस्ट आ गए तो सामने दिखना मत, क्योंकि हम बच्चे बहुत शरारती, तो अगर हमने शरारत दी या गेस्ट ने कुछ हमसे पूछा हमने कुछ और ही जवाब दे दिया तो ना नक कट जाएगी, तो वो वाला सीन था। तो जो गेस्ट जिस कमरे में बैठे हैं वो कमरा हमारे नो गो जोन आता था। रूल्स आई एम सर्टन हर किसी के घर में कुछ होंगे। टीवी देखने का एक फिक्स टाइम होता था, वो फिक्स टाइम क्या होता था कि सिर्फ न्यूज जब चलेगी पापा बैठकर देखेंगे या फिर कोई रिलीजियस प्रोग्राम का वक्त होगा, मतलब वही टाइम होगा जब हमको टीवी का मौका मिलेगा। घर में शूज पहनकर आ गए तो ना समझ लिया जाता था, और रिमोट हमेशा पापा के हाथ में होता था, मतलब क्यों भाई पापा गए हो तो जनाब आपके घर का ऐसा कौन सा रूल था जो बचपन में बिल्कुल नॉर्मल था लेकिन जब आप बड़े हुए तो आपको लगा ये तो थोड़ा सा अजीब हो गया, ये हमारे घर का ही रूल था, ये किसी और का रूल नहीं था, जो आप हमसे शेयर करना चाहें तो जरूर शेयर करें 2221107 पर, 6621107 पर। आप अपने नाम के साथ हमें बता सकते हैं या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते 4443477 पर। आई रिपीट द नंबर 4443477 पर। और बताएं कि बचपन कौन सा टाइप नॉर्मल लगा लेकिन बाद में आपको पता चला कि ये सिर्फ हमारे घर का ही था और हम बहुत दिन तक मतलब फंसे रहे उन्हें, हम थोड़े इफ़्कू भी बनते रहे, लेकिन वो क्या रूल था जरूर हमसे शेयर करें। और अभी के लिए ओफ दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग केके की आवाज में, एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट। स्टे ट्यून्ड टू FM 1 दिल से देसी।

0: 107 पर दिल से तेज
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप मैं आपकी ए फॉर अमिता सन एंड भाई का बहुत तहे दिल से इस्तकबाल है तो क्या चल रहा है क्या हो रहा है वेरी श्योर कि हम जो हिटेड गाने हमने खास तौर से आपके लिए हुए हैं यू एंजॉयिंग इट और आज हमने पूछा अपने बचपन की ईद को ताजा करते हुए कि वो कौन सा एक बचपन का रूल था जो हर घर का एक रूल हुआ करता था घर में एक रूल बनाया गया था हम बच्चों के लिए एंड हमें लगता था कि वो हर घर का रूल है बट बाद में पता चला कि वो रूल सिर्फ हमारे घर में ही होता था तो ऐसी कोई याद ऐसी कोई चीज है जैन में शेयर करना चाहते हैं हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 666-22-107 या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 443-4377 पर तो आइए जरा कुछ मैसेज की तरफ रुख करते हैं हमें जनायरा का वो कहती है कि अमिता देखो मेरे घर का जो रूल था बड़ा कमाल का था वो ये था कि गेस्ट टॉवल्स और ऑर्डिनरी टॉवल्स ये अलग हुए मतलब जब कोई हमारे घर आता था तो वो खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाले टॉवल वो सिर्फ मेहमानों के होते थे और हमारे लिए वो प्लेन से टॉवल और एक बार मैंने गलती से ना वो एम्ब्रॉयडरी वाले टॉवल के हाथ पोछ लिया तो मम्मी ने चोट लगाई कि पूछो मत मतलब ये जो आपकी बात है ना मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे घर में भी यही होता था कि जो बेस्ट क्रीज होती थी जब कोई हमारे घर आता था तभी वो निकाली जाती थी और जब वो निकलती ना तो हमें ये इंस्ट्रक्शन जाते थे कि देखो इन्हें छूना मत टूट गई तो तुम्हारी खैर नहीं ओए होए मतलब ये कुछ चीजें तो मुझे लगता है अरे उस बहुत मजेदार थी अरे यहाँ मैसेज है अरहम का उनका कहना है क्या मेरे एक रूल था कि जो हमारा रिमोट कंट्रोल है पहली चीज तो पापा के हाथ में रहेगा दूसरी चीज वो कभी खाली नहीं रहेगा मतलब अब तो रिमोट के बहुत कवर्स आते हैं पर उस टाइम पर हमारे रिमोट का कवर क्या होता था उसमें एक प्लास्टिक चढ़ा होता था

और प्लास्टिक अगर फट जाए तो मम्मी बार बार नया प्लास्टिक लगा देती थी और हमें लगता था कि अरे मतलब ये क्या बात हुई. और कहते हैं कि हमारे घर में हमारा जो दोस्त होते थे मतलब दोस्तों के घर में जाता था तो वहां पर जो रिमोट था वो आजाद घूम रहा होता था. अच्छी बात है, चलो ये भी सही है. अरे महनूर का क्या मैसेज है, वो कहती पिता जब हमारे यहाँ गेस्ट आते थे तो हमें कहा था कि अगर गेस्ट आपको खाना ऑफर करे तो बिल्कुल मना कर देना. आपको कहना है कि नहीं नहीं हम अभी नहीं खाएंगे, हम बाद में खाएंगे. और फिर बस हम जो बच्चे होते थे ना ये रूल तो हम सुन लेते थे, अब कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन हम बच्चे वेट कर रहे होते थे कि गेस्ट जाए और हम जो बचा हुआ जितना भी स्नैक है उस पर टूट पड़े. देखो मैनूर, ये सिर्फ आपके घर का हाल नहीं, ये हमारे घर का भी हाल था. हम भी ये करते थे और स्पेशली जो की बिस्किट होता उसमें बीच में जैम जैसा कुछ लगा होता था, हाँ वो बिस्किट बहुत पसंद थे. और जब भी मम्मी वो ऑफर करती थी हमारे गेस्ट को, यू फील कि कब ये गेस्ट जाए और कब इतने सारे बिस्किट में से जो बिस्किट्स बच गए वो हम निपटा ले. ओके और जजाए है. अच्छा यहाँ गौरव का मैसेज है, वो कहते हैं कि मेरे अब्बू का एक फिक्स पानी का ग्लास, ठीक है वो स्टील का ग्लास था, और पूरे घर में की हिम्मत नहीं थी कि उससे पानी पी ले. अरे भाई साहब ये बात तो सही है, हम बच्चों को लगता था उस ग्लास में कोई सुपर पावर है जो सिर्फ अब्बू हैंडल कर सकते हैं. वाह बात है. वैसे ये बात है कि ये चीजें आपने शेयर की ना, ये हमारे घरों में भी होता था कि हमारे पापा का भी एक फिक्स, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कांसा, समझते हो ना कांसा, लाइक कॉपर का एक बहुत बड़ा ग्लास था और उसमें अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी भी थी, मतलब डिजाइनर ग्लास था एंड वो अट्रैक्टिव था. मतलब हम था कि हमको उसमें मिल जाए पानी पीने, मिल जाए शरबत पीने मिल जाए, लेकिन नहीं वो तो सिर्फ और सिर्फ पापा ही पीते थे उससे. क्या बात है. अच्छा यहाँ इनाया का भी मैसेज है, कहती है कि हमारे नए कपड़े सिर्फ ईद या शादी पर ही पहने जा सकते थे. अगर कोई नया सूट कर नॉर्मल दिन में बाहर निकलने की कोशिश करता तो दादी कहती थी कि कहीं की रानी बन गई हो क्या जो बाहर जा रही हो. अरे इनाया यही खूबसूरती थी हमारे उस दौर के बचपन की, जहां पर घरों में जो अजीब और रूल्स होते थे मजेदार होते थे. बस अगर आप भी हमसे शेयर करना चाहते तो शेयर कीजिए ना, अपने बचपन की यादों को ताजा कर रहे हैं, सच में बड़ा अच्छा लगता है. सो 666-22-107 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ, या फिर आप हमें कॉल ही कर सकते 443-443-77 पर. और अभी के लिए आदित्य एंड कुमार की इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, लेट्स एंजॉय. स्टे ट्यून्ड 107 दिल से देसी.

FM107 अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर में कॉरपोरेशन मार्केटिंग टीम से। कॉल 4488806 पर या ईमेल marketing@qmc.ua।

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
1: वेलकम वेलकम FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी अमिता. सन एंड साउंड सुन रहे हैं और अभी हम अपने बचपन की यादों को ताजा कर रहे हैं. हाँ जी, मैंने आपसे कहा कि बताएं कि आपके बचपन में आपके घर का कोई ऐसा रूल था जो अजीब था और बाद में आपको लगा रही थी हमारे घर रूल था, हमें लगता था कि सबके घर का रूल है. ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई याद है, हमसे शेयर कर सकते हैं 666-2107 पर. 666-2107 पर आप मैसेज करें या फोन लगा लें 443-443-77 पर. अभी मुझे मैसेज है तबरेज का, उनका कहना है कि अमिता हमारे घर में ड्राइंग रूम के जो पर्दे सब बंद रहते थे, मतलब घर में कितनी ही धूप क्यों ना हो लगता था कि यार ये कमरा अंधेरे में क्यों है. तो बाद में पता चला कि मम्मी को लगता है जो सोफे का रंग है ना वो कहीं ना हो जाए. पहले साथ कोई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आइजरा इनसे की जाए. अस्सलाम वालेकुम. क्या बात भाई, जुड़ा है हमारे साथ मोहम्मद भाई. ये तो बताएं कि ऐसा कोई रूल रहा आपके घर का ये जो हम जिक्र कर रहे हैं.
2: पता नहीं, हम कुछ सुने नहीं, अभी तो रेडियो चालू किए हैं.
1: अच्छा, रेडियो. हाँ
2: जी, जब से आप सबसे सोच रहे हो एक बार कॉल करें.
1: अच्छा,
2: लेकिन कर कर आपका तो सप्ताह गुजर गया कि पता नहीं महीना गुजर गया. अरे वो क्या नाम थे उनका, नाजिया महमूद थे ना, क्या नाम होगा,
1: नाजिया.

0: टाइम सफा नाजमा वेश सर भाई यस नाजिया मैं यस बिल्कुल तो देखिए हाँ अच्छा तो काफी दिनों से सोचते आज वो दिन आ ही गया कि आपने फोन लगा लिया हमें हाँ
1: आज भी लगा
0: मैं नहीं है मैं अमीर हूँ और आज सब मैं मान ही पाई है तो मैंने कहा कि चले मैं आपके से थोड़ा सा साउंड ये शो करूँ तो भाई को आते कर रहे ना कि हमारे घर में ना स्पेशली बन के टाइम घर में ना कोई एक रूल होता था जो हमें लगता था कि वो सब घर का रूल है लेकिन जब हम बड़े हुए तो बाद में पता चला कि अरे ये तो सारे घर का ही था जैसे कुछ हो गया था कि जब मेहमान आए तो उनके सामने नहीं दिखना फिर कभी टीवी का रिमोट सिर्फ पापा के हाथ में ही होगा तो ऐसा कोई रूल आपके घर में था स्ट्रिक्ट रूल नहीं ऐसी कोई चीज चलती आ रही थी लाइक अ ट्रेडिशन आपके छुटपन में हाँ
1: हमको इजाजत था बाहर रहने का हमारे बहन लोग मगर की अजान हो गई तब शाम हो जाता है
0: जी
1: सूरज डूबने का तो अभी आती थी तो उस टाइम लाजिम पढ़ने के लिए वहाँ पे घर पे जाना ही जाना है
0: जी
1: आप कहीं भी हो उसका मसला नहीं है उस टाइम पहुँचना है घर पे हाथ धोकर किताब लेकर नहीं बैठने पर हाथ जला दिए जाते थे
0: अरे अरे बाप रे
1: इसे कभी भी मिस नहीं हुआ मगरिब के बाद कहीं भी बाहर आना जाना मम्मी बैठती है पढ़ाने के घर पे रहना ही रह बाकी और उनको मेहमान ठीक है ये इस पे कुछ ज्यादा सख्ती
0: है
1: दूसरा वही है जब आप खेल कूद आ रहे सोचते थे मुंह धोना फ्रेश होना और बिस्तर पर पैर धोए उतारना ही
0: ये तो ऐसा लग रहा है मोहम्मद भाई की आपकी अम्मी थी वो काफी सख्त मिजाज था उनका हाँ
1: मिजाज नरम था लेकिन चिड़चिड़ापन होता ना कि घर पे नहीं होता है तो
0: हाँ जी
1: और एक चाची भी हमारी अच्छी थी कुछ भी बात होता था फोन मारती थी तो अम्मी भाग जाती थी
0: अच्छा
1: ये सब मामला और कोई तो मिलता नहीं था जो बच्चा है उसमें
0: अरे अरे ये तो
1: मतलब
0: जी जी जी क्या था बिल्कुल
1: मसला हमारा ऐसा है मेहमान हो या ना हो अगर अब में दाखिल हो गए और बच्चा एक कोने में किसी भी कोने में जाकर पड़ा हुआ है ना हम उनके सामने आ सकते हैं तो बस हम लोग
0: राइट
1: भी इतना बड़ा होने
0: के बाद जी घर पे एंट्री मारते
1: हैं टीवी तो
0: सही मतलब ये एक डिसिप्लिन था जो बचपन में चल रहा था और फिर हमने उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया इस तरह से
1: और दूसरी बात है अब हमारे वाले साहब के बाद हमारा वो सिस्टम है
0: अच्छा
1: घर के लड़के अगर हम दाखिल होते हैं तो हमारे बाप लोग या भाई लोग है जो एक साइड पर कर लेता है
0: अच्छा
1: अम्मी को हम जाते वो लोग अलग से वो जगह छोड़ देता है
0: अच्छा
1: हमने बता रहे जितने देर या अम्मी के रूम पे बैठेंगे
0: जी
1: या जो भी खिदमत है इस तरह तो वो लोग जाएगा
0: अच्छा तो ये बेसिकली तो ये अच्छा ये आज भी ये सिलसिला वैसे आपने ये जो जितनी भी बातों का जिक्र किया भाई मुझे लगता है कि एग्जैक्टली ये हर घर में रहा है और जो भी के दशक के इस खास तौर से जो फैमिलीज रही हैं अक्सर ये हुआ है मतलब मेरे ख्याल में एंड हम लोग काफ़ी छोटे थे हमको होता है कि अगर हम घर आ गए अपने पापा से पहले और पापा तक घर नहीं आए तब तक हमको खेलने की इजाज़त थी बाहर और अगर उनकी गाड़ी की हमने आवाज़ सुन ली तो हम वो ओलंपिक चैंपियंस दौड़ते थे घर की तरफ और उनके आने से पहले आते थे तो ये हमारे साथ होता था हाँ जी
1: आखिर हमारे पास वाले साहब का तो ऐसा था कि हम लोग जो

0: नजदीक में मतलब रोड क्रॉस करके रास्ता था समझिए
1: राइट,
0: वहाँ पे पढ़ने जाते थे। ऐसा था कि ऐसा नहीं कि वो दो बस जाके आएंगे घूम के, ऐसे टहलते तक देखेंगे, अगर बच्चा नहीं था है तो एक दो बार चक्कर में भी हाथ भी डाल गया है।
1: अरे बचपन में आपको बहुत बहुत मार पड़ी है।
0: हाँ, घर से बाहर तक जहाँ भी सब जगह बनना।
1: ओहो हो, मतलब ये तो चीजें बोल नहीं सकते बच्चे, तो बिल्कुल ये सह भी नहीं पाएंगे। अच्छा मुझे बताए कि ये तो आपने रूस का बताया, बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, कि ऐसी कौन सी याद है जो बचपन की ना आज भी जब आप सोचते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है और आपको लगता है कि काश वो याद वापस आ जाए, मैं उसे फिर से जी लूं।
0: अभी कोई ऐसा याद नहीं है।
1: याद नहीं, ये क्या बात हुई?
0: नहीं इतना याद है कि याद
1: है। I'm sorry, अच्छा बाहर खाका के आप भूल गए सारा कुछ।
0: याद आता जरा, अभी ऐसा जाना था पढ़ने के लिए।
1: जी जी जी,
0: चलेगा पढ़ने के लिए, और जेब में वो कंचे होते हैं ना, गोली वगैरह बोलते
1: हैं, वो
0: लेके लेकिन उस टाइम में वाले सब घर पे ही थे।
1: हाँ जी,
0: हमको क्या पता कि वो आएंगे हमको चेक करने के। दोपहर का टाइम तो गर्मी में आपने घर पे सो जाता था। अब हम तो चले गए, दो बच्चे बहका दिया कि भाई चलो ना यार खेल के आते हैं। अब हम बोल दिए कि भाई हमको पेशाब लगवा हम जा रहे हैं। उस टाइम में तो ये टॉयलेट वगैरह नहीं रहता था ना हॉस्टल वगैरह में, खेत वगैरह में जाना होता था।
1: अच्छा जी बिल्कुल।
0: और जब उधर गए तो हम तो मजे से खेल रहे कंचा। अच्छा। अपने कहा हमारे वाले साहब आ गए, जितने बच्चे रहे जितने थे हमारे वाले साहब, वो देखते ही भाग गए।
1: अच्छा, और आप फंस गए।
0: हम सोचे कि हुआ क्या, हमारे पीछे थे हमको पता नहीं है। अरे भाई जैसे पड़े ना गर्दन में हाथ लगा कर जो मारा है
1: बाबा, ओए
0: मारा तो मारा है, एक ईटा मिल गया था कहा ना कहा से, हाथ पे डाल कर पूछ लिया हाथ
1: वो
0: नहीं खेले तो ऐसा था। लेकिन उस समय अफसोस हुआ था, अभी हंसी आती है कि गलती की, माँ बाप से करना चाहिए इतना नहीं करना चाहिए।
1: समझ नहीं आता था,
0: इसलिए समझ आता है कि वही गांव के कुछ बच्चे हमारे साथ हैं।
1: हाँ जी,
0: अभी वो अपने माँ बाप की अदब भी नहीं करते हैं और देखते सुनते भी नहीं, बहुत डिसरिस्पेक्ट भी है उसके फैमिली में बहुत सारे ऐसे, इसलिए या कोई आदमी नशे के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो ये चीज हमको अच्छा लगा अपने फर्ज साहब में कि थोड़ी सतर्क हुई,
1: बहुत ज्यादा हुई। नेक्स तो है भाई, सख्ती और सही तरीके से अगर की जाए ना, सख्ती मतलब ऐसे नहीं कि अनशन कुछ भी, सही तरीके से की जाए तो डेफिनेटली बच्चे अच्छा ही कर पाते हैं लाइफ में, और जब ज्यादा ही छूट दे दो तो परेशानी तो होती है। आपके किस्से सुन के सच में बहुत अच्छा लगा और हमें खुशी हुई कि आपने हमें कॉल किया और हमारे साथ जुड़े। तो भाई ऐसे ही हम दुआ करते हैं आपके बचपन की यादें आपको और भी मतलब अच्छी यादें आए। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे मुझे याद ही नहीं। ठीक है भाई, चले बहुत
0: बहुत हाँ
1: बहुत याद है। अच्छा आप तो अपने बच्चों को नहीं मारते ना, कि आप भी करते
0: हैं?
1: चले इंशाल्लाह जल्द होएगी, जल्द आपके हाथ पीले हो मैं ये दुआ करती हूँ। चले भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ
0: जी, हमारे पास जितना मार पीट है,
1: सख्ती तो इम्पोर्टेंट है, वो डिसिप्लिन जरूरी है। तो बेशक आप या
0: ये मारना पीटना या फिर अभी भी हम लोग को ऐसा हो गया ना, अपने फादर वाले साहब तो है अभी भी डर होता है उनसे बात नहीं करते, और कभी ईद पे भी गला मिलना हो तो डर ही लगता है कि मिलने के लिए। तो अपने बच्चों को ये नहीं देना चाहते कि हमारा बच्चा जो भी है कभी भी तो दिल से आके करे बात करे, उसको परेशानी हो तो सवेरा ले।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह मुझे लगता है आपको आपको सुनने के बाद कि आप बहुत ही अच्छे फानेंगे। सो गुड लक विद दैट, और अभी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भाई, अल्लाह हाफिज।

0: दिन बहुत ही शुभ हो. थैंक यू सो मच. क्या बात है, बचपन की यादें वाकई में बड़ी कमाल की होती हैं. और मोहम्मद भाई से बात करके ये फील हुआ कि लाइक यू नो क्या क्या हुआ, काफी कुटाई पिटाई हो जाती थी उसपे और हम तब भी उफ नहीं करते. ऐसी कोई याद है जो बचपन है, कोई घर का रूल हा, और आपने सोचा कि ये हम सब घर ले, लेकिन देन यू रियलाइज कि ये सिर्फ हमारे घर का रूल है. और बड़े होकर आपको काफी हंसी भी आई, बहुत आपने सोचा कि अरे क्या था. तो जरूर शेयर करिए 6622107 पर, 6622107 पर, या कॉल करें 4434377 पर. हमारे साथ कोई जुड़ना चाहते हैं, आइए जरा इनसे भी की जाए. कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम.
0: क्या बात है, आवाजें गूंजती जा रही है. जरा रेडियो का वॉल्यूम कम कर लीजिए.
1: सुन रहा हूँ अभी आपका.
0: हाँ, कौन जुड़ा हमारे साथ?
1: अभी मेरा नाम आर्या है, मैं अभी नेपाल से हूँ, कचरेरा काम कर रहा हूँ.
0: जी आर्या जी, बताएं क्या क्या हाल चाल है, कौन सी आप बात बताना चाहेंगे कि आपके घर का एक ये रूल था जिसे आपने सोचा कि हर किसी के घर का रूल, बाद में आपको पता चला कि अरे ये तो हमारे घर का था सिर्फ, ऐसी चीज जो मजे की है.
1: यही रूल में अभी भाई मैं अकेला हूँ, ठीक है, और मेरा 3 सिस्टर है. जैसा मैं फ्रीडम चाहे वैसा नहीं दिया, फैमिली लोग बहुत सख्त करके रखा.
0: सख्ती आपके साथ की सिस्टर्स के साथ?
1: अभी तो मैं क्या बोलूँ, दूसरे के बाद सिस्टर के तो बात नहीं करता है. ये सोचता हूँ, जो सोचता है कि भाई में जो खेला होता है, जो मौज करता है, ऐसा करता है, घूमता है, लेकिन वो सब मेरे लाइफ में ऐसा नहीं है.
0: अच्छा, ऐसा नहीं हुआ. ओके, तो फिर मतलब क्या रूल क्या था आपके घर का, ये तो बताइए. मतलब समझ में आ गया कि सख्ती बहुत थी, और क्या था?
1: टाइम से पढ़ाई करो,
0: ये टाइम पढ़ाई करो. ओके, और मतलब पढ़ाई का थी, और क्या था, मुझे थोड़ा बताइए ना, मैं और समझना चाहती हूँ. अरे भी आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो, स्ट्रेस थी पढ़ाई से रिलेटेड, और पढ़ाई के बाद खेलने का मौका मिला था कि उसमें भी कुछ ऐसा था कि ये टाइम. अच्छा, ये इन्होंने कॉल ही ड्रॉप कर दी, कोई बात नहीं. तो हमारे आर्य भाई थोड़ा ये बताने के लिए हमें इन्होंने कॉल किया कि घर में पढ़ाई से रिलेटेड बड़ी सख्ती थी. देखो ये वाली जो चीज़ है ना, मेरे ख्याल से हर घर का एक ये वाला रूल है, और हमारे घर में आज तक ये रूल बरकरार है. वैसे कुछ और भी चीज़ें होती हैं हमारे जो थोड़ी मजे की भी होती हैं, जो हार्टेड होती हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हमारे ने बोला कि हमारे ड्रॉइंग रूम के पर्दे हमेशा लगे रहते थे, क्योंकि आपको लगता था कि ना अगर पर्दे हटे तो सोफे का रंग उड़ जाएगा. तो ऐसे कोई मजेदार चीज़ें या कोई घर के रूल्स जो आपने अक्सर ऑब्जर्व किए अपने बचपन में और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते 4344377 पर, या मैसेज करें 6622107 पर. कोई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आइए जरा इनसे बात कर लीजिए. सलाम अलैकुम.
2: वालेकुम सलाम. अमिता बहन कह रही थी.
0: बिल्कुल खैरियत से है भाई, कौन जुड़ा हमारे साथ?
2: मैं मुदस्सर बात कर रहा
0: हूं. अरे मुदस्सर जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल खुद से, बस हमारे लिसनर से बातचीत है, बचपन की यादों को ताजा कर रहे हैं. बताए आपने हमारा सवाल सुना.
2: जी जी सुना है.
0: हाँ जी, तो बताएं कुछ ऐसी याद जो आप शेयर करना चाहते हैं घर का कोई एक रूल.
2: तो हमारे घर में ये रूल था, उससे हम बहुत तंग हो जाते थे.
0: अच्छा, क्या?
2: जैसे हम वो स्कूल से आते थे ना, तो डायरेक्ट सो जाओ.
0: अच्छा,
2: में ये रूल था.
0: हाँ जी, खाना खाते ही सो जाओ, मतलब कोई गैप नहीं होता था बीच में.
2: नहीं नहीं नहीं, नहीं होता था. फिर बच्चे जो है ना, वो जब स्कूल से आते हैं ना, वो डायरेक्ट खेलने कूदने में जाते हैं ना.
0: हाँ जी,
2: उसको हमको बस डायरेक्ट आओ, फिर सो जाओ, 3 बजे उठना है.
0: अच्छा,
2: ये हमारे घर का उसूल थे, तो उसूल बहुत ज्यादा हम हो जाते थे.
0: तो फिर क्या करते थे?
2: फिर हम कभी कभी ऐसा कहे, हमारा मुख का बेटा है, वो इधर मेरे का था.
0: हाँ जी,
2: उसका मामू इधर था ना, वो जब वेकेशन का था गर्मी पे, तो वो हमको बोलता था कि जब जो मेरा माँ है ना, वो सब्जी है ना, जब पुप्पी हो जाए, हम आराम से खिड़की खोलेंगे, पहले आप निकलो फिर मैं निकलता हूँ.
0: हाँ, अच्छा.
2: तो फिर हम ऐसे करते थे.
0: हाँ, अच्छा, पकड़ाई भी नहीं आते थे?
2: नहीं, कभी कभी पकड़ते थे ना, वो चप्पल खाते थे ना.
0: मदद से भाई, चप्पल भी

0: Καϊέν.
1: Μου βάζει τώρα αυτά ο πίστη τη Άγκορ Τσαπέλ. Ξέρετε.
0: नहीं ये बट बड़ी मजे की बात है. अच्छा जब आपको बोला जाता था कि खाना खा के जाओ तो आपको सच नींद आती थी उस टाइम पे?
1: क्या आती तो बच्चे को नींद क्या आता है, बच्चे तो नींद सोने में उसको मजा आता है ना.
0: हाँ तो आप एक्टिंग करते थे कि आप सो रहे हो?
1: हाँ तो सो रहे अगर सो गया तो नींद आ गया सही है, नहीं नींद आ गया इधर के भी उधर तो किधर जाते थे, छोट भी नहीं थी ना.
0: तो अभी आज जब आप उस रूम बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है?
1: या मुझे कभी कभी हंसी आती है.
0: तो आपके घर के बच्चों के साथ ऐसा कोई रूल है, आप ऐसा कुछ करते हैं?
1: अभी तो कोई रूल नहीं है, अपने बच्चे तो आजकल तो बच्चा है बच्चा.
0: वो कोई रूल बना रहे
1: वो तो खुद रूल बना रहा है. बेटा है वो जब रूल से आता है खाना खाता है
0: हाँ जी
1: तो पड़ोसी के घर में जाता है, उसके साथ खेलते हैं, फिर उधर से आता है, फिर 4 बजते 5 बजते जब वो तक जाता है फिर इसके बाद वो सो जाता है.
0: क्या बात है. मतलब पूरी एक्टिव करने के बाद नींद आती है.
1: फिर उसके बाद इसको नींद आती है. लेकिन आजकल बच्चे तो जो है ना तो किसी का नहीं सुनता है ना, अपने आप है बस जो उसमें दिल सकते हुए कोई भी नहीं है ना.
0: तो अच्छा मुदस्सिर भाई आप बताइए कि लाइक कौन सी चीज को लेकर ने, मतलब ठीक है मैं समझती हूँ कि आज के बच्चे बिल्कुल पुराने दौर से डिफरेंट है, लेकिन कौन सी चीज है बिना पेरेंट जो आपने ये रखी है कि सुननी ही होगी, लाइक कोई एक छोटा सा रूल या कोई चीज उसको हमेशा ही सुननी है
1: बच्चों को?
0: हाँ जी
1: ऐसा कोई रूल तो नहीं है.
0: हाँ रूल नहीं है, कोई बात जो मतलब वो करनी ही है बाय डिफॉल्ट आपकी सुननी ही है उस तरह से?
1: अभी तक सकत नहीं.
0: क्या बात है मुदस्सिर भाई. लेकिन हाँ जी क्या बोले?
1: मैं बोल रहा हूँ अभी तक कोई बात नहीं है जो आजकल जो है ना
0: हाँ जी
1: शरारती करते है, लेकिन वो भी बच्चे बहुत भी समझदार भी है.
0: ये बात तो सही
1: है. मेरा दो मरीज है, एक कॉलेज में भी पढ़ रहा है, एक स्कूल में क्लास 10 में.
0: राइट
1: वो ऐसे बड़े है ना, उसने अभी तक उसने मार नहीं खाया है.
0: अरे वाह क्या बात है.
1: वो ऐसे बच्चे ठीक है. हाँ. मेरे घर में जो हमारा फैमिली भी बहुत बड़ा है, सारा फैमिली और फिर मामू भी साथ हमारे नजदीक है, तकरीबन सब मिला के तकरीबन 89 हमारे फैमिली है.
0: माशाल्लाह क्या बात है.
1: तो उनमें से इन दोनों अभी तक किसी ने ना मारा है ना. हाँ. उसने कोई रोक टोक किया. हाँ. है
0: अच्छा क्या जो, है?
1: मेरा जो बेटा है 4 साल का है, वो क्या शरारती है, इतना शरारती है. तो उसको मैंने पुपी ने उसको बोला कि मैंने तुमको आज पेंसिल दिया था, पेंसिल का है. वो बोला कि मेरा तो दोस्त था उसने हमसे दिया है.
0: हाँ जी.
1: तो पुपी ने ऐसे मजाक में हंसकर बोला कि तुम इधर घर में तो और किसी के साथ लड़ाई करते हो, फिर क्लास से क्यों बच्चों से डरते हो? अगले दिन उसने किया. अगले दिन पूरे जो क्लास में उनका पूरे बेकों से पेंसिल निकाला था उसके सामने निकाले थे, सब घर लेके आए थे.
0: अच्छा और
1: क्यों किया उन्होंने? जब हमारे जमाने में ऐसा करते थे डंडे मारते थे,
0: बहुत पिटाई हो जाती थी.
1: उधर वो टीचर भी मारते थे, घर में भी मारते थे.
0: राइट पूरी जगह कहीं से नहीं बच पाते थे. लेकिन फिर क्या हुआ, बस पेंसिल्स ले आए फिर वापस की नहीं की?
1: पेंसिल ले आए बाद में, तो फिर वो मेरा जो भाई है पता चला किया था अगले दिन, फिर पूरा पेंसिल वापस किया.
0: कसम से बड़ी कमाल की चीज है मेरी पता है.
1: हमारे बच्चों का तो डिफरेंट है.
0: ये बात तो सच कही आपने.
1: हम फुटबॉल खेल रहे थे.
0: हाँ जी.
1: फुटबॉल में मेरा पांव टूट हो गया.
0: अच्छा फिर?
1: तो फिर मुझे कजन ने हॉस्पिटल में लेके गया, वो मट्टी लगा और 14 डेज के लिए रेस्ट करने के लिए बोला.
0: हाँ.
1: मैं बिस्तर पे लेटा पड़ा हूँ.
0: हाँ जी.
1: तो बड़ा आ गया था वो, उस टाइम हमारे घर से बाहर पढ़ने जाते थे, उधर पढ़ते थे. और माँ को बोला कि पांव की तरह टूट गया के फुटबॉल खेलते थे. तो तब तक बरसात शुरू हो गया हमारे ऊपर.
0: अच्छा फिर
1: क्यों शरारत?
0: तब पड़ी बरसात.
1: एक तो हमारा पांव टूटा हुआ है.

0: फिर मन ने तो क्यों मारा मैं तो इसलिए मारा कि शरारत से क्यों किया। मैंने देखा तुम विदा पड़े हम आपको गिफ्ट लेके आते हैं तो चार मामू चाचू या कजन जो सबसे तुम्हारे पास लेके आते हैं तुम्हारा जो हमारी है देखो कितना पड़ गया है तो हमारा जुर्मा था वो तपड़ों से
1: भरा हुआ था। बट एक चीज तो माननी पड़ेगी भाई कि पहले के जमाने में सारी चीजें हम आज जिक्र कर रहे हैं इसका बड़ा मजा आता है आज भी जब सोचो के बारे में ठीक है। और उस टाइम पे हमें लगता होगा कि यार क्यों हमको ऐसे पढ़ाई हो रही है क्यों हमसे इस तरह से बात हो रही है लेकिन अब अगर सुनो तो बहुत हंसी आती है। पर आज के बच्चे इतने शरारती हैं एट द सेम टाइम बहुत उनका माइंड शार्प है चीजें जल्दी समझते हैं तो ये तो प्लस पॉइंट आज का है। बट कोई नहीं बहुत लगा कि आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी आपने हमसे शेयर की।
0: कोलकाता लेकिन घूम नहीं लग रहा था।
1: अच्छा नहीं कि चलो एटलीस्ट अभी लग गया दैट्स अ गुड वन है ना।
0: मैं आपके साथ ये पहली बात टाइम पे फर्स्ट टाइम में मेरा आपके साथ बात हो रही है। अरे आपका शो मैं सुन रहा हूँ लेकिन उस टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम मैसेज करें।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जो शो करते हैं ना देखे बात
1: जी भाई अभी मेरा 1:30 बजे शुरू होगा बट अब मेरे पास थोड़ा सा वक्त की कमी है क्योंकि अगला शो शुरू होने वाला है तो अब मुझे कॉल रखनी। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े भाई बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज टेक केयर बाय बाय। चलिए जनाब ये बात तो है कि बचपन की यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं और ये यादें यूं ही हमारी बर रहे हम यही करते हैं और इसी के साथ मैं कहूँगा आप हमें दीजिए जैद क्यों वक्त हो गया मेरे जाने का अब अगले की तैयारी कर लीजिए है कि नहीं। और आप हमसे जुड़ सकते हैं FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए और अभी मैं फिर से मिलती हूँ 1:30 बजे तो कहीं ना जाए बने रहे FM 107 पर दिल से।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 1:01 और आप सुन रहे हैं ये खास शो जिसका नाम है
2: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: 4th of August और क्या कुछ चल रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में, क्रिकेट से लेकर फुटबॉल, टेनिस और स्विमिंग तक सारी जानकारी आपको यहाँ FM 107 पे मिलेगी। और अमीन भाई अगले की अगले यानी कि आने वाले हफ्तों में थोड़ा सा नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से मेरा शो है, फिर उसके बाद अमीन भाई वापस आ जाएंगे तो आपको मजीद जानकारी समर स्पोर्ट्स के मुतालिक मिलती रहेगी। लेकिन अभी आज के बारे में हम बात कर लेते हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट एक मैच चल रहा है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, विच इज बिटवीन वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान। तो वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का मैच है, इस पर हम नजर डालेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। और दूसरा दिन जो है वो खत्म हो चुका है और आज तीसरा दिन होने वाला है। ये दूसरा टेस्ट है वेस्ट इंडीज का और पाकिस्तान के साथ ये जो मैच है, अगर जीत जाती है वेस्ट इंडीज तो 2-0 से क्लीन स्वीप कर देगी वेस्ट इंडीज, लेकिन 1-1 की बराबरी करने का पूरा चांस पाकिस्तान के पास है। और अभी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, करेंगे इस पर भी बात। लेकिन इस शो के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले सवाल कर लेते हैं। आज हम फुटबॉल पर बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे श्रीलंका के टूर के बारे में जो कि इंडिया का होने वाला है, फिर फ्रेंचाइजी लीग चल रही है, 100 मैचेस चल रहे हैं और हांगकांग में हो रहे फुटबॉल फेस्टिवल पर भी नजर डालेंगे। लेकिन अभी सवाल आज का जो भारी भरकम फैन लोग हैं उनके लिए है, जो क्रिकेट के असली फैन है। आज सवाल है कि क्रिकेट में हाईएस्ट ओडीआई स्कोर

किसके नाम पे है? एक सिंगल मैच में क्रिकेट का हाईएस्ट स्कोर ओडीआई में किसके नाम पे है, ये आपको बताना है। व्हाट्सएप नंबर 6662107। और जो बैट्समैन है उनको तो आज ये जवाब आसानी से पता होगा। बताइए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6662107। और ऐसा ही मैच था जिसमें भयंकर एक बैट्समैन ने तोड़ाई करी थी और ऐसे स्कोर किया था जैसे कि उनके बल्ले पे गेंद ने उनको फुटबॉल दिख रही हो। और बड़े आसानी से उन्होंने स्कोर किया था जब वो शुरुआत में बैटिंग करने के लिए आए।

सेंचुरी के बाद उन्होंने 150 मारा और फिर जबरदस्त स्कोर करा। वैसे 150 के ऊपर का ही स्कोर है ऑब्वियसली ओडीआई में, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, एक से बढ़कर एक नाम है। अगर हम ये नाम लेते जाएंगे तो ये नाम बहुत लंबे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं इसमें, श्रीलंका के प्लेयर हैं या नहीं है ये आप बताएं, फिर उसके बाद इंडिया के काफ़ी प्लेयर हैं। तो ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जिन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया और ओडीआई में तो ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन एक लौता ऐसा प्लेयर जिसने ओडीआई के हिस्ट्री में एक सिंगल मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, सिंगल स्कोर वो बताना है 666-22107। फिलहाल मैसेज की तरफ चलते हैं, लेट्स सी कि कौन है सही जवाब देने वाला। ये मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, बिल्कुल सही जवाब है आतिफ का। ओके, एक और मैसेज है आई थिंक फजील भाई, बिल्कुल सही। नसीम नदवी ने भी जवाब दिया एक और, सलाम वालेकुम अस्सलाम। ओके, हम मैसेज की तरफ थोड़ी देर में बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की तरफ रुख करते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम फिर फुटबॉल क्लब से लेकर लीग कप और इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में भी बात करेंगे। FM 107 पे आज का सवाल बड़ा ही आसान, हु हैज द हाईएस्ट ओडीआई स्कोर इन द क्रिकेट हिस्ट्री, एक सिंगल मैच में किस खिलाड़ी के नाम पे सबसे बड़ा स्कोर है एक सिंगल ओडीआई स्कोर में, एक सिंगल ओडीआई मैच में। नंबर 666-22107। आते हैं वापस इस छोटे से ब्रेक के बाद और फिर समर स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स की दुनिया भर की खबरें दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करें, अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी हिफाजत है। फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड शिकार होने से बचिए। अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रोमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें। आमतौर पे कम कीमत पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रमोशंस किए जाते हैं। FM 107 आपसे कहता कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
5: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se desi. Dil se desi. Aap sun rahe hain Summer Spokes with RJ Fazil. Only on FM 107. Dil se desi.
2: समर स्पोर्ट्स दिल से देसी FM 107 पे इस्तकबाल। दोस्तों, आप सभी का आज का सवाल एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर देते हैं, लोगों के जवाब और फिर स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम खबरें। सवाल बड़ा सिंपल सा था कि आपको ये बता, ओडीआई में एक सिंगल प्लेयर ने सबसे ज्यादा स्कोर किया था, वो किस प्लेयर ने किया है और पूरे हिस्ट्री में उस प्लेयर के नाम एक सिंगल मैच में सबसे ज्यादा स्कोर करने का रिकॉर्ड है। नंबर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107। और नवंबर का महीना था, ऐसा था, ये भाई एक भाई ने लिखा है बहुत ही उम्दा, नाम नहीं लिखा इन्होंने, लेकिन भाई नाम लिख देते तो आसान हो जाता। ऑल्दो अपना नाम तो नहीं है लेकिन उस प्लेयर का नाम जरूर लिखा है, बहुत ही उम्दा। फिर अब्बास साहब ने सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, कैसे हैं? बिल्कुल सही जवाब है। नसीम नदवी का भी बिल्कुल सही जवाब है, एक ऐसा प्लेयर जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया है वो आपको बताना है। वेल, क्रिकेट के जितने फैंस हैं वो तो बता ही पा रहे हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया के बारे में और फिर बाकी मैसेज। आज सबसे मैच होने वाला है फुटबॉल टूर्नामेंट और फेस्टिवल में अगर देखा जाए तो 2026 का लीग कप, ये है एक्साइटिंग टूर्नामेंट, आज अगस्त 4 से शुरू हो रहा है। इसमें मेजर लीग सॉकर खेला जाएगा, MLS और लीगा MX यानी कि मेक्सिको के क्लब्स आमने सामने होंगे। आज एक बड़ा ओपनिंग मैच FC सिनाती वर्सेस CF कुशा के बीच TQL स्टेडियम में शाम को 7:45 पर खेला जाएगा और ये आप देख सकते हैं, खास एप्लीकेशन है, नाम नहीं ले सकते, खास तौर पे आगे लिखा है ओके। फिर उसके बाद एक है CECAFA के गेम कप सेमीफाइनल, ये ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका का नॉकआउट फेज है, आज रवांडा के गए पेले स्टेडियम में शुरू हो रहा है ये मैच। और पहला सेमीफाइनल गौर महिया FC जो कि केन्या की टीम है और अल हिलाल SC जो कि सूडान की टीम है, वो शाम 4 खेलेंगी, यानी कि अभी से एग्जैक्ट 2 कुछ मिनटों बाद ये गेम जो है वो शुरू होगा। और आज दूसरा सेमीफाइनल होगा रेन स्पोर्ट्स और जेमएस एससी के बीच, और ये खेला जाएगा शाम को 8 बजे। जीतने वाली टीम फ्राइडे को होने वाले ग्रैंड फिनाले में जाएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट जो फेस्टिवल चल रहा है हांगकांग में, बहुत ही स्पेशल माना जाता है, जैसे कि यहाँ पर स्पेशल माना जाता है, ये वैसा ही फेस्टिवल है जब यहाँ पर कतर स्टार्स लीग होता है या फिर कतर के बड़े लीग खेले जाते हैं, वैसे ही हांगकांग फुटबॉल फेस्टिवल होता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग जैंट्स चेल्सी एफसी आज शाम 7:30 पर

नए स्टेडियम में खेलेगी, जो कि 50,000 सीटर वाला ये स्टेडियम है और ये एक ओपन पब्लिक ट्रेनिंग सेशन होल्ड करेंगे और यहाँ पर हाई प्रोफाइल एग्जीबिशन मैच की तैयारी का हिस्सा भी होने वाली है कई टीमें। उसके क्रिकेट में जो बात करें, और कुछ देर पहले हमने बताया भी, वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान का आज दूसरा दिन है और ट्रिनिडाड में खेला जा रहा है, क्वींस पार्क ओवल में चल रहा है इस टेस्ट मैच में। आज तीसरा दिन होगा, शाम को यह मैच शुरू होगा। पाकिस्तान ने दूसरे दिन का वक्त खत्म होते होते स्ट्रॉन्ग पोजिशन वो बना लिया है, उन्होंने 266 स्कोर किया है 2 विकेट के नुकसान पर, इस पर डिटेल में भी आएंगे। उसके अलावा वैसे 344 रन बनाए हैं और 344 इस पिच पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान के अब्दुल शफीक 107 पर खेल रहे हैं, नॉट आउट, और बाबर आजम स्ट्रॉन्गली 86 पर जबरदस्त खेल दिखा रहे हैं। उसके अलावा इंडियन मेंस क्रिकेट टीम ऑफिशियली श्रीलंका पहुंच चुकी है आज के दिन, और दोनों टीम के बीच आने वाले 2 मैच के टेस्ट सीरीज होने वाले हैं और ये एक तरह की तैयारी भी है प्लेयर को जांचने का, परखने का कि क्या ODI के लिए कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो तैयार हैं, जो बैट और पैड के बीच में गैप नहीं रखते हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 2027 में ODI वर्ल्ड कप है। उसके अलावा मैच 20 आज होने वाला है दी 100 में, UK के इस यूनिक 100 बॉल टूर्नामेंट में आज सनराइजर्स लीड्स वर्सेस लंदन स्पिरिट का बड़ा मुकाबला होने वाला है। ये मैच लीड्स के हेडिंगली स्टेडियम में लोकल के मुताबिक 6:30 के आसपास शुरू, और आप इसके जो भी टीम जो खेल रही है आप इसके स्कोर क्रिकेट के एप्लीकेशन में देख सकते हैं। उसके अलावा यूरोपियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप हो रहा है, आज 5वां दिन है, पेरिस फ्रांस में चल रहे इस कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट का आज 5वां दिन है। आज का मेन फोकस ऑनगोइंग होने वाला है आर्टिस्टिक स्विमिंग इवेंट्स और ओपन वाटर स्विमिंग कॉम्पिटिशंस के ओपनिंग राउंड्स पर रहेगा आज का खास फोकस। जैसे कि बताया था कि अब हम बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में। सबसे पहले बैटिंग करके वेस्ट इंडीज ने 344 का स्कोर किया, और जब वेस्ट इंडीज के प्लेयर आए तो शुरुआती विकेट थोड़े जल्दी गिर गए अकॉर्डिंग टू द टेस्ट मैच। यार इतनी जल्दी गिरना नहीं चाहिए, एक ने 15 स्कोर किया, एक ने 48 का स्कोर किया। फिर उसके बाद हॉज और जंगू जो प्लेयर हैं उन्होंने भी विकेट जो है वो गवा दिए। फिर शाई होप ने सोचा कि यार मैं थोड़ा बनाता हूँ, लेकिन मोहम्मद अली ने स्कोर करने नहीं दिया। लेकिन जबरदस्त फॉर्म में चल रहे जस्टिन ग्रीव्स ने 73 का स्कोर किया, और ये 73 का स्कोर हलवा नहीं था भाई, बहुत ही ज्यादा बॉल्स खेली हैं, लेकिन अली उस्मान ने बहुत ज्यादा सेटअप करा इनका। उसके बाद 150वीं गेंद पर ग्रीव्स की, जब वो 73 के स्कोर पर खेल रहे थे, अली उस्मान ने ग्रीव्स को, जस्टिन ग्रीव्स को आउट किया। बता दें कि ये ग्रीव्स इकलौते ऐसे बॉलर रहे हैं जो कुछ दिन पहले मैंने सवाल भी किया था कि 5 लगातार विकेट लिए हैं, 5 मेडन ओवर डालकर, और एक भी रन नहीं दिए और हर ओवर में एक विकेट लिए। जस्टिन ग्रीव्स बॉलर हैं, लेकिन उसके बाद भी, ऑल्दो ये ऑलराउंडर है, लेकिन जस्टिन ग्रीव्स ने 73 का स्कोर कर दिया। और फिर उसके बाद 70 का स्कोर रन चेज, यानी कि रन, देखो आर चेज इनका नाम है, यानी कि रोस्टन चेज, रन चेज पड़ गया। खैर चेज ने भी 70 का स्कोर किया, बहुत खिलाड़ी रहे। और फिर रोच, जोसेफ, वेरिकैन और सील्स ने ज्यादा स्कोर नहीं किया, लेकिन टीम जो है वेस्ट इंडीज की 244 के सम्मानजनक स्कोर पर पहुंच गई। विकेट के बारे में बात करें तो साजिद खान ने क्या बॉलिंग कराई यार, मूछ पे ताव देते हुए, और ये लगते भी हैं यार जब ये बॉलिंग कराते हैं ना तो लगते भी हैं बहुत ही ज्यादा दबंग टाइप के, इनको देखकर दिल खुश हो जाता है यार। 32 साल की उम्र और 4 विकेट लेकर गए हैं, और टेस्ट क्रिकेट में ये जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं। अच्छा, इसका एक और रीजन क्यों आप मानेंगे कि ये जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं, क्योंकि 32 ओवर इन्होंने कराया, जो कि बहुत ज्यादा है। 32 ओवर करा लेना या 1.5 दिन में 32 ओवर करा लेना आसान नहीं है, पूरी बॉडी जवाब दे जाती है, फिटनेस तगड़ी है। और उस पर भी ऊपर अच्छी बात यह है कि सिर्फ 32 ओवर करा के 85 रन दिए 2.6 की इकोनॉमी से, और इसके बाद किसी ने अगर बॉलिंग करी है तो वो उस्मान ने करी है 2.29 की इकोनॉमी से। इन्होंने 35 ओवर डाले, 80 रन दिए और 2 विकेट लिए, लेकिन ऑब्वियसली साजिद खान स्पेशल माने जाएंगे। उसके अलावा अली ने, शाह ने, उस्मान ने और सलमान आगा तो कुछ नहीं ले पाए, 2 ही उन्होंने ओवर कराए, लेकिन सबने 2-2 विकेट जरूर लिए। फिर अब आ जाते हैं पाकिस्तान की बैटिंग पर, इनकी बैटिंग में क्या हुआ यार, जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी उनका चलना

करना बहुत ज्यादा जरूरी था और अनवेस ने अच्छे खेल को जाते हुए 55 रन का स्कोर किया। ऑल्दो इमामुल हक जल्दी आउट हो गए, जोमेल वरिकैन का कैच और शमार जोसेफ की बॉल ऐसी थी कि इमामुल हक अपने विकेट को नहीं रोक पाए और 17 बॉल पे 14 रन बनाकर आउट हो गया। अब बात कर रहे शफीक के बारे में। शफीक एक ऐसे प्लेयर जो कि टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, एक प्रॉब्लम रही है उनकी कि उनके बैट और पैड बीच में एक तो गैप, उसके अलावा ऐसा लगता है कि हर बॉल पे वो कुछ चाह रहे हैं सिंगल। अब देखिए टेस्ट ऐसा मैच है जहां पर आपको हर बॉल पे सिंगल डबल की जरूरत नहीं है, अगर एक बाउंड्री भी आ गई हर एक ओवर में या फिर आपने सिंगल सिंगल करके 4 या 5 रन भी ले लिए टेस्ट में तो हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि शफीक बहुत जल्दबाजी में है। लेकिन इस मैच में उन्होंने अपना पूरा वक्त लिया, 185 बॉल खेली, 10 चौके 2 छक्के के हिसाब से देखा जाए तो 107 रन इन्होंने बना लिए और 57 का स्ट्राइक रेट, इससे ज्यादा बेहतर तो बाबर आजम खेल रहे थे। लेकिन शफीक को यही चाहिए भी था कि उनको अपना गेम बनाना है और जो पहले और सेकंड डाउन यानी कि फर्स्ट डाउन और सेकंड डाउन जो भी प्लेयर खेलता है उनका काम है टीम को स्टेबल पोजीशन पे पहुंचाना, एंकरिंग करना। टीम अगर जल्दी पिछड़ रही है, 2 विकेट जल्दी गिर गए तो अब टीम भाल करना है और ये काम करके दिखाया बाबर और शफीक ने। टोटल 266 का स्कोर है, सिर्फ 2 विकेट का नुकसान। दूसरा दिन खत्म होते होते अभी पाकिस्तान 78 रन से ट्रेल कर रही है, ऑल्दो ये बहुत आसानी से बना लेगी। ऑल्दो लेकिन एक और चीज है कि आप भरोसा नहीं कर सकते यार क्रिकेट पे, कब 2 विकेट है और कब 10 रन पे या 20 रन पे या 50 रन पे 8 विकेट और गिर जाए पता नहीं चलता। तो आजम ने 126 बॉल खेली है, 86 का स्कोर किया है, 1 छक्का 10 चौका और 68 के स्ट्राइक रेट से बेटर देन शफीक। लेकिन शफीक की जो पारी रही है ना अब्दुल्ला शफीक की, वो बहुत आला दर्जे की रही है। इनको यही चाहिए भी था कि टाइम ले थोड़ा सा, 85 गेंद खेली, अच्छा खासा टाइम भी लिया और अगर ऐसे ही चलते रहे तो मुझे लगता है कि सिर्फ आज के खेल में अगर देखा जाए तो आसानी से ये 500 रन बना सकते हैं। अगर एक दिन में 250 बना लिया है तो आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर हम विकेट पे आए तो कौन से ऐसे बॉलर हैं जिनको नहीं पड़ी है, वेस्ट इंडीज के सारे बॉलर कूटे गए भाई। बात कर ले सबसे पहले किमार रोच की, सबसे ज्यादा रन इन्होंने दिए हैं, 6 ओवर कराए 34 रन के हिसाब से इन्होंने 5.67 की इकोनॉमी से बहुत ज्यादा रन दे दिए हैं। फिर उसके बाद 9 ओवर कराया है जेडन सील्स ने लेकिन एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं रहे, 35 रन दिया 3.89 की इकोनॉमी से। फिर उसके बाद जोमेल वरिकैन भी जबरदस्त बॉलिंग करा रहे थे लेकिन उसके 24 ओवर कंप्लीट करने के बाद 75 रन दिए, सिर्फ एक विकेट लिया, 3.13 की इकोनॉमी के साथ इन्होंने 75 रन दिए। फिर जोसेफ ने 58 रन दिए 5.8 की इकोनॉमी के साथ। तो बाबर ने अब्दुल्ला शफीक ने सुताई तो की है और बहुत कायदे से सुताई कर रही है। उसके बाद 7 ओवर करे हैं रॉस सांचेज ने और इस 7 रन के बावजूद 7 ओवर के बावजूद 22 रन दिया और 3.14 की इकोनॉमी से एक भी विकेट नहीं मिला। और फिर उसके बाद 10 ओवर कराए केविन हॉज ने और इनको भी विकेट नहीं गया। और मुझे लगता है कि यार वेस्ट इंडीज के जो कप्तान है वो थोड़ा सा परेशान है कि यार किसको बॉलिंग दे, सबको वो बॉलिंग दे रहे हैं। रॉस सांचेज जो कप्तान है उनका जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा क्योंकि 6 के 6 बॉलर्स को अपना कर देख लिया, मौका देकर देख लिया लेकिन फायदा कोई नहीं, सिर्फ 2 विकेट 266 का पाकिस्तान ने कर लिया और 66 ओवर यानी 66 ओवर कंप्लीट भी हो गए। तो ये है हाल और हवाल हमारे पाकिस्तान टीम का। और अब बात कर लेते हैं आज सवाल की जानिब से। सवाल बड़ा आसान किया था, आपको बताना है सबसे ज्यादा स्कोर ओडीआई में किस प्लेयर ने किया है, ना वो ब्रायन लारा है, ना वो सचिन तेंदुलकर है, ना ही वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो बहुत जबरदस्त खेलते हैं ग्लेन मैक्सवेल, वो हैं जिन्होंने 200 का स्कोर किया था ओडीआई की वर्ल्ड कप में, आपको याद हो अफगानिस्तान के अगेंस्ट इकलौती उस पारी ने अफगानिस्तान को बाहर कर दिया था। प्रिंस ने ऑल्दो ब्रायन लारा जवाब दिया है, वेल मोस्टली लोगों ने जो जवाब दिया है वो है रोहित शर्मा एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली रोहित शर्मा। क्यों रोहित शर्मा, अगर आपको हो रोहित शर्मा ने श्रीलंका के अगेंस्ट जब सेंचुरी अपनी कर ली और 150 जब कर लिया तो उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेलना शुरू करा और रोहित शर्मा के पास है ये रिकॉर्ड, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर।

कपूर का एक दिन के इंटरनेशनल यानी कि ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री में, जहां उन्होंने 264 रन 73 बॉल्स में अगेंस्ट श्रीलंका ऑन नवंबर 13th 2014 में, यानी 2014-13 नवंबर अगर आपको याद है तो आपको यह भी याद होगा कि 173 बॉल पे 264 रन मारे, और किसी भी बैट्समैन के लिए 264 रन मारना बहुत ही ज्यादा अब मुश्किल है अगर वो खिलाड़ी रोहित शर्मा जैसा है तो ही वो स्कोर कर सकते हैं, कि जैसे जैसे वो खेलते चले जाएं उनके बैट से जब बॉल निकलती आसान हो जाती है। मुझे एक शॉट उनका याद है 264 में, जब वो ऑफ साइड पे थोड़ा शफल किया उन्होंने और बस बॉल को सिर्फ टच किया है, सिर्फ कलाइयों से टच किया और वो लॉन्ग ऑन पे, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान छक्का चला गया और सिर्फ नॉर्मल टच था उस दिन। ऐसे खतरनाक पोजीशन थे, ऐसे खतरनाक फॉर्म में थे कि उस दिन 264 रन उन्होंने बनाया। और उस शॉट पे 99% कोई बंदा अगर शॉट खेलेगा ना, 100 में से 99 लोग अगर वो शॉट खेलेंगे तो आउट हो जाएंगे, और उस दिन रोहित शर्मा आउट नहीं हुए। तो ये थी कुछ जानकारी एफएम 107 पे। आज हमने बात करी समर स्पोर्ट्स में दुनिया भर की बातें, चाहे क्रिकेट के बारे में बात हो, चाहे वो फुटबॉल लीग के बारे में बात हो, या फिर बात हो यूरोपियन एक्वाटिक चैंपियनशिप के बारे में। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी शाम को 4 बजे जबरदस्त एपिसोड या कहें जबरदस्त शो में, जहां पर हम आपके अपने मर्जी के गाने प्ले करेंगे। तब तक सुनते रहें और देखते रहें FM 107 और रखें अपना खास ख्याल। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं दोपहर के 1:31, यानी इट्स टाइम फॉर।
3: सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
2: यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है। हाँ जी, वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और आज आपसे सुबह 11 बजे से मुलाकात हो रही है और अभी दोपहर 1:30 बजे एस्केप रूम में। तो जनाब, आर यू रेडी आज के एस्केप रूम के चैलेंज के लिए? देखिए, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो हम ऐसा होता है कि ख्वाबों की दुनिया में कदम रख देते हैं, और जब ख्वाबों की दुनिया में कदम रखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि दिल करता है हमारी आंखें ना खुले, ये ख्वाब ना टूटे, और कई बार ऐसा लगता है कि भाई जल्दी निकले हम इस नींद से, उठें, ये मतलब ऐसा लग रहा है कि हम कैद हो गए। दोनों में से कौन सा ऑप्शन है जो आज आपका चैलेंज बनेगा? ऑप्शन कि जब आप गहरी नींद में होंगे, ख्वाबों की दुनिया में होंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप चाहेंगे, आपका दिल चाहेगा कि मेरी आंख खुल जाए, लेकिन बस वहीं पर ट्विस्ट होगा। हाँ जी, तो आज के एस्केप रूम के चैलेंज के लिए बस बने रहिए हमारे साथ। एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपकी राहों में आएगा और देखते हैं कि फिर आपका दिमाग किस तरह से दौड़ेगा और हर एक क्लू को सॉल्व करेगा। वैसे नंबर नोट करें, 666-22-107, 666-22-107 इज आवर व्हाट्सएप नंबर। इसके जरिए हमारी बातें कंटिन्यूअसली चलने वाली है। डोंट गो एनीवेयर, बने रहिए हमारे साथ। और अभी ऊंचा लंबा कद फॉरएवर, मतलब इसका अनदर वर्जन, आनंद रानंद एंड रुबाई का ग्रेट कॉम्बिनेशन, लेट्स एंजॉय। स्टे ट्यून्ड टू FM 107 द रेसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी

0: थी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उन जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यार।
1: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक है घर आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बात की जाती हैं और सुनी जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे। सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से इसी।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
0: यस, वेलकम वंस अगेन FM 107 पर, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और अब बारी है एस्केप रूम के आज के चैलेंज की। आप तैयार हैं? जब आज का दिन ऐसा है कि आप बहुत थके हुए हैं, हाँ मतलब ये आपकी आज की सिचुएशन है, डोंट थिंक आप थक गए अगर आप कमरे तो बोला आप काफ़ी थके हैं एंड आपको बहुत गहरी नींद आ रही है। आपने कहा चलो एक नींद ले लेते हैं, उसके बाद अपने कामों को कंटिन्यूसली आगे बढ़ाएंगे। आप उस गहरी नींद को लेने के लिए बिस्तर में गए और सो गए, पर अब कुछ अजीब सा हो रहा है। आप अपने बिस्तर पर नहीं हैं, आप हवा में तैर रहे हैं। आपके तकिए बादलों की तरह आपके पास से गुजर रहे हैं और ग्रेविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। दूर कहीं एक बड़ा सा नियॉन पर्पल अलार्म क्लॉक हवा में लटक रहा है। जनाब, आप इस वक्त अपने सपनों में आ चुके हैं। अगर आपको इस ड्रीमस्केप से बाहर निकलना है और असली दुनिया में वापस उठना है, आपको अपनी नींद की लेयर्स को नेविगेट करना होगा। याद रखिए, अगर अलार्म 0 पर पहुंच गया तो आप हमेशा के लिए सपने में कैद रह जाएंगे। हम ख्वाबों की गहराई में और भी नीचे जाते जा रहे हैं। चारों तरफ रंग बिरंगी और हैरतअंगेज चीजें हमें दिख रही हैं। हम सरप्राइज्ड हो रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से निकले कैसे। ग्रेविटी 0 है और हम इस ख्वाबों की दुनिया में अब तैर रहे हैं। इस ड्रीमस्केप के पहले कमरे से निकलने के लिए, ठीक है, आपको उस सीक्रेट ऑब्जेक्ट को पहचानना होगा जो आपके सर बिल्कुल नीचे होता है। तो क्लू नंबर 1 आपके लिए है कि मैं बादलों की तरह नरम हूं, मेरे बिना आपको नींद नहीं आती क्योंकि आप मुर अपना सर रखकर से हैं। मेरा नाम अंग्रेजी के अल्फाबेट पी से शुरू होता है और मुझ में टोटल लेटर्स हैं। बताइए मैं कौन हूँ? कम ऑन, गिव मी द राइट आंसर अपने नाम के साथ 666-2107 पर, 666-2107। एंड आई फील इट बहुत ही आसान है, आप जल्दी से मुझे जवाब दे सकते हैं। आई रिपीट द क्लू नंबर 1, मैं बादलों की तरह नर्म हूं, मैं मेरे बिना नींद नहीं आती, आप मुझ पर अपना सर रख कर सोते हैं। मेरा अंग्रेजी अल्फाबेट पी से शुरू होता है और मुझ में टोटल लेटर्स हैं। गिव मी राइट आंसर। सोचिए सोचिए और सोचने के मैं आपको दे एक म्यूजिकल ब्रेक। इन तालियों की आवाज आप समझ ही गए होंगे कि गाना कौन सा है। वेरी गुड ट्रैक, गान चले भी, लेट्स एंजॉय। स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: वेलकम अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। एस्केप रूम पर आज आप कहां कैद हैं? आज भाई आप एक ख्वाबों की दुनिया के अंदर कैद हैं। हाँ, थोड़ा थक गए थे, आपने कहा कि गहरी नींद ले लेते हैं, आप सो गए और सोने के बाद कुछ अलग हुआ। आपको लगा कि शायद आप अपने बिस्तर पर होगे, बट नहीं, आप हवा में तैर रहे हैं। आपके तकिए बादलों की तरह आपके आसपास से गुजर रहे हैं। ग्रेविटी बिल्कुल खत्म हुई है। एक न्यून पर्पल अलार्म क्लॉक दूर हवा में लटका हुआ है। उफ, समझ में नहीं आ रहा आपको हो क्या रहा है, लेकिन समझ में इतना आ गया है कि आप अपनी ओरिजिनल जगह पे तो नहीं है, आप सपनों की दुनिया में है। एस्केप से बाहर निकलना है, क्या करना होगा? अपनी नींद की लेयर्स को नेविगेट करना होगा, बस इतना ही करना है, क्लूज को सॉल्व करना है। भले ही आपके चारों तरफ रंग बिरंगी चीजें हैं, हैरत अंगेज चीजें हैं, लेकिन आपको उसमें खोना नहीं है, वरना आप ट्रैप हो जाओगे और हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। क्लू नंबर वन आपके लिए, मैं बादलों की तरह नर्म हूँ, मेरे बिना आपको नींद नहीं आती, क्योंकि आप मुझ पर अपना सर रख कर सोए हैं। मेरा नाम अंग्रेजी के अल्फाबेट पी से शुरू होता है, 6 लेटर्स का मैं वर्ड हूँ, क्या हूँ मैं? सही जवाब ही बता देती हूँ मैं सीधा, क्योंकि हमारे लिसनर्स ने सही जवाब ही दिया है, किसी ने गलत जवाब नहीं दिया। सो सही जवाब इस पिलो, जिसे आप हमारी लोकल लैंग्वेज तकिया कहते हैं या सिरहाना कहते हैं। जोरदार तालियां हमारे सारे लिसनर्स के लिए जिन्होंने सही जवाब देने की कोशिश की, अपनी पीठ को जोर से थपथपाएं। लेकिन जिन्होंने सबसे पहले जवाब देने की कोशिश की, उनके नाम आपको गिनाते हैं। उमर है, जमील है, क्या बात है। हमारे रेगुलर लिसनर मोहम्मद यूसुफ खान भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी सही जवाब दिया। मिस्टर नितू

आगे आप सबने सही जवाब देकर अब इस पहले पड़ाव को पार कर लिया है। तो कहाँ हैं आप? आज आप अपने ख्वाबों की दुनिया में कैद हैं। आपने पिलो को मूव किया और उसके पीछे से हमें अगला रास्ता मिल गया। लेकिन हम ख्वाबों की गहराई में और भी नीचे जाते जा रहे हैं। वो जायंट न्यून पर्पल अलार्म क्लॉक अब हमारे बिल्कुल सामने है। इसकी आवाज अब बहुत तेज हो चुकी है, टिक टॉक टिक टॉक। लेकिन एक मिल है, स्नोज बटन पर एक लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। हम इस ख्वाब के सेंटर तक पहुंच गए हैं और वो जायंट अलार्म क्लॉक बिल्कुल हमारे सामने है। इसकी आवाज तेज होती जा रही है, स्नोज बटन पर ताला लगा हुआ है। इसे खोलने के लिए हमें एक ड्रीम लॉजिक पजल सॉल्व करनी होगी। चलिए तो वो पजल, वो क्लू नंबर टू आपके सामने है। मैं आपके जिस्म का, या यूं कहें मैं आपकी बॉडी का वो ऑर्गन हूं जो कभी नहीं सोता। मेरा वजन 13 पाउंड का है। मैं एक झुर्रीदार, या यूं कहें रिंकल्ड ग्रे स्पॉन्ज जैसा दिखता हूं, और मैं ही इस वक्त ये पूरी ख्वाबों की दुनिया क्रिएट कर रहा हूं। बताए मैं क्या हूं? इट्स वेरी सिंपल, थिंक अबाउट इट। 666-22-107, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ हमें सही जवाब भेजिए। एक बार और दोहराऊंगी, मैं आपके जिस्म का वो ऑर्गन हूं जो कभी नहीं सोता। मेरा वजन तकरीबन 3 पाउंड है। मैं एक झुर्रीदार ग्रे स्पॉन्ज जैसा दिखता हूं, और मैं ही इस वक्त ये पूरे ख्वाबों की दुनिया क्रिएट कर रहा हूं। सो थिंक अबाउट इट, गिव मी द राइट आंसर। आपके आंसर्स का इंतजार कर रही हूं, क्योंकि ये दूसरा पड़ाव हमें पार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें तीसरे स्टेज तक ले जाएगा और फिर हम इस ख्वाबों की दुनिया से एस्केप कर पाएंगे। तो आपके जवाबों का मुझे है इंतजार, और सोचने के लिए मैं आपको देती हूँ एक म्यूजिकल ब्रेक। दिले नादान बेहतरीन सा सॉन्ग आपकी राहों में। एंजॉय कीजिए FM 107 पर, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया क्वेश्चन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 888-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: एस्केप रूम का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 2:02। ये वो वक्त है जब हम ये विश के हम ये दुआ मांगेंगे जल्द से जल्द एस्केप रूम की इस ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकले, वरना अगर आज एस्केप नहीं किए तो असल दुनिया में हमारी आंखें कभी खुल नहीं पाएंगी।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
2: हाँ जी, वेलकम वंस अगेन, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और आज एस्केप रूम की दुनिया में, आज आपके अपनी खूबसूरत ख्वाबों की दुनिया में, उफ दैट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। ख्वाब हम देखते हैं कि आंखें खुलें, अच्छा फील करें, हम उन ख्वाबों को पूरा करें, लेकिन जब हम खुद ही इन ख्वाबों की रंग बिरंगी दुनिया हो जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक अनइजीनेस होता है कि नहीं, जहाँ ग्रेविटी भी ना हो, मतलब सब कुछ उड़ रहा है, तैर रहा है, हाउ यू फील। तो पहला क्लू आपने सॉल्व किया, पहला मुकाम आपने पार कर लिया, सही जवाब था पिलो। अब इस ख्वाब के हम सेंटर में हैं, वहाँ पहुँच गए हैं और सामने एक जायंट अलार्म क्लॉक बिल्कुल दिख रही है। इसकी आवाज़ अब बहुत तेज़ हो रही है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, लेकिन अब मुश्किल ये है कि स्नूज बटन पर ना लॉक लगा हुआ है, उसे हमें खोलना है। इसे खोलने के लिए हमें अपना ड्रीम लॉजिक यूज़ करना है और क्लू नंबर 2 को सॉल्व करना है। आइए, मैं आपके जिस्म का वो ऑर्गन हूँ जो कभी नहीं सोता, मेरा वज़न तकरीबन 3 पाउंड है, मैं एक झुर्रीदार ग्रे स्पॉन्ज जैसा दिखता हूँ, मैं ही इस वक्त ये पूरे ख्वाबों की दुनिया क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरा नाम क्या है, बताएं सही जवाब क्या हो सकता है। आइए जरा देखते हैं हमारे लिसनर्स क्या सोच रहे हैं, इस पहेली को सुलझाने के लिए क्या जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जवाब आए हैं ब्रेन, दिमाग, मगज, किसी ने लंग्स लिखे कुछ लोग दिल लिख रहे हैं, कुछ हार्ट लिख रहे हैं,

सबने अपना अपना मन, अपना दिमाग लगाकर, अपने इमेजिनेशंस लगाकर सही जवाब देने की कोशिश की है. देखिए, ये क्या चीज़ हो सकती है जो हमारे इस ख्वाबों की दुनिया को क्रिएट कर रही है? लंग्स तो नहीं हो सकते फॉर श्योर, दिल भी नहीं हो सकता. किसी ने माइंड और मगज लिखा है. देखो, माइंड भी नहीं हो सकता क्योंकि माइंड बेसिकली थॉट्स होते हैं हमारे, ठीक है. बताती हूँ, जिन्होंने भी लिखा है दिमाग, ब्रेन, मगज, बिल्कुल सही लिखा है. जो तालिया आपके लिए, जोरदार तालिया. बढ़िया, अपनी पीठ को तपतपाए और एक बड़ी सी मुस्कुराहट दीजिए. क्या बात है, सही जवाब आपने दे दिया है. दूसरा क्लू भी सॉल्व कर लिया है, अब सिर्फ आखिरी पड़ाव बचा है. क्या बात है. आइए देखें जिन्होंने सही जवाब देने की कोशिश की, उनके नाम क्या क्या है, कौन कौन है जिन्होंने सही जवाब दिया है हमको. तो खादिर अब्दुल हादी ने हमें सही जवाब दिया है, मोहम्मद यूसुफ खान ने हमें सही जवाब दिया है, रोहेल ने भी हमको सही जवाब दिया है, रमेश ने भी सही जवाब दिया है, असद ने भी हमें सही जवाब दिया है, गुलाम रब्बानी ने भी सही जवाब दिया है, और ये शख्स, इनका नाम हमें नहीं पता है, इनके नंबर के, इनके कॉन्टैक्ट नंबर के लास्ट के दो डिजिट है 18. तो भाई आपने भी जवाब दिया, अपना नाम ज़रूर हमें बता दें तो बेटर होगा. तो चलें, ये हुई बात. ओमर और जमील ने भी जवाब दिया है, सो दैट्स अ गुड वन. वेल, हमारा दिमाग ही तो सारे खेल का मास्टर है, ये तो हम जानते हैं. तो जनाब, अब स्नूज बटन ग्लो कर रहा है. इसे ट्रिगर करने के लिए क्लॉक की स्क्रीन पर चमकने वाली एक मैथ प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी होगी. ख्वाबों में मैथ हमेशा थोड़ा सा ना ट्रिकी होता है. डू यू थिंक इट्स गोना बी ट्रिकी? चले, क्लू नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं और ध्यान से सुने. क्लॉक पर दो नंबर्स दिख रहे हैं, 15 और 12, 15 and 12. इन्हें जल्दी से ऐड कीजिए. 15 plus 12, 15 plus 12, इसका सम क्या होगा? जोर से चिल्लाइए और फौरन हमें टेक्स्ट कीजिए 6662107, 6662107 पर अपने नाम के साथ 15 plus 12 क्या होगा. देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल मैथ. गिव मी द राइट आंसर और इस एस्केप रूम के इस लास्ट स्टेप को, आखिरी पड़ाव को पार कीजिए और इस ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलिए, ठीक है. तो जल्दी से सोचें और जवाब दें. और सोचने के लिए आपको थोड़ा सा मैं ईजी करने के लिए एक म्यूजिकल ब्रेक पे लेके जाती हूँ, क्योंकि म्यूजिक आपको हमेशा मोटिवेट ही करता है. ये वन ऑफ द ट्रेंडिंग सॉन्ग है धुरंधर फिल्म का. आई एम वेरी सर्टेन यू गोना लव इट. स्टे ट्यून्ड टू FM 107.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी.
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और एस्केप रूम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं. लेकिन हमारे लिसनर्स मुझे लग रहा है थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं. देखिए भाई, कंफ्यूज होने की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ से हमें निकलना ही है. देखिए, ख्वाबों की दुनिया में आज हम कैद हैं. आज की सिचुएशन ये है, हर चीज़ तैर रही है, ग्रेविटी बिल्कुल ज़ीरो है और हमें बस अब ये क्लूज सॉल्व करके यहाँ से बाहर निकलना है. देखिए, सबसे अच्छी बात, आपने पहला क्लू सॉल्व किया, दैट वाज पिलो. दूसरा क्लू भी आपने सही तरीके से सॉल्व किया, दैट वाज ब्रेन. और अब हमारा दिमाग, जो कि हर चीज़ का मास्टर प्लान बनाता है, ये जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी क्लॉक थी, ठीक है, अब स्नूज बटन ग्लो कर रहा है उस पर. लेकिन इसे ट्रिगर करने के लिए क्लॉक की स्क्रीन पर चमकने वाली एक मैथ प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है. ठीक है, मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. मैं स्ट्रेस दे रही हूँ उस पर. ख्वाबों में मैथ हमेशा थोड़ा ट्रिकी होता है और मुझे लग रहा है कि ये सिंपल सी चीज़ भी थोड़ी सी ट्रिकी हो रही है. हमारे लिसनर्स कुछ अलग तरीके से जवाब दे रहे हैं. देखिए, नंबर 3 बहुत सिंपल है, मैं आपको बताती हूँ, उसे ध्यान से सुनिए और बस उसके जवाब पर फोकस कीजिए. सो क्लू नंबर 3, क्लॉक पर दो नंबर्स दिख रहे हैं हमको, 15 और 12. ठीक है, इन्हें जल्दी से हमें ऐड करना है. ओके, 15 और 12 का सम क्या होगा? बस जोर से आपको यही बताना है. हमें टेक्स्ट करना है 666-22107, 666-22107 पर अपने नाम के साथ. 15 और 12 का सम क्या होगा? इसे ऐड करके जो नंबर आएगा वो क्या हो? देखो, मैंने इतना सिंपल कर दिया है. कम ऑन, गिव मी दैट नंबर. वो सही जवाब मुझ तक पहुंचाइए और ख्वाबों की दुनिया से आज एस्केप कर जाइए. मैं वापस से हमारे लिसनर्स को सोचने पर मजबूर कर रही हूं, क्योंकि हमारे लिसनर्स जवाब दे रहे हैं लेकिन थोड़ा सा गलत जवाब हो रहा है. बहुत सिंपल है, आपको दो नंबर मैंने बताए हैं, 15 और 12, जो कि आपके क्लॉक पर ये दो नंबर दिख रहे हैं, कहीं और के नंबर नहीं है. क्लॉक के अंदर ये 15 और 12 नंबर दिख रहे हैं. इसे आपको सिर्फ ऐड करके मुझे सही जवाब बताना है. सो गिव मी द राइट आंसर एंड लेट्स सी कि आज आप में से ड्रीमस्केप से कौन एस्केप कर पाता है. एपी ढिल्लन एंड योयो हनी सिंह भाई आ गए आपके दिमाग को थोड़ा सूट करने के लिए. सो लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग. स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी.

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।
1: क्रिकेट हो
2: and he's hooked that away. That's four
1: run. बॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
3: अगर आप रह रहे हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM,
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी.
1: यस वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता. क्या बात है, आज आप एक की दुनिया में कैद हो गए हैं, निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. आई कैन सी कि बहुत जद्दोजहद चल रही है और इसी जद्दोजहद के चलते आपने क्लू नंबर 1 सॉल्व किया. पिलो सही जवाब था. नंबर 2 जवाब ब्रेन था और उसके बाद आपके सामने एक बड़ी सी क्लॉक आपकी आंखों में आई. भाई वहाँ पे स्नूज बटन ग्लो कर रहा है लेकिन आप उसको तभी दबा सकते जब आप एक सिंपल सी मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व. हमारे लिसनर्स कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हैं, अब तक उन्होंने काफ़ी अच्छी कोशिश की और एक क्लू नंबर 3 को मुझे लग रहा है थोड़ा से लेके कंफ्यूज हो रहे हैं, पर चलिए देखते हैं कैसे जवाब हो. सो क्लू नंबर 3, क्लॉक पर दो नंबर 15 और 12 पर एंड 12 और उसके बाद हमें उसे ऐड करना था. ऐड करके जो नंबर आता है दैट वाज द राइट आंसर. ठीक है, 666-22107 इसके ज़रिए आपको हमें सही जवाब बताना था और हमारे लिसनर्स ने क्या जवाब दिए हैं. कुछ ने लिखा है 20, ओके. कुछ ने लिखा है 3 PM 12 मिनट्स. कुछ ने लिखा है 3 AM 12 मिनट्स. ओके, सो लेट मी टेल यू व्हाट्स द राइट आंसर. क्लू नंबर 3 था कि 15 और 12 को ऐड कीजिए. इट वॉज दैट सिंपल. 27 वॉज द राइट आंसर. सो यस, जिन्होंने भी 27 नंबर लिखा है दैट्स द राइट आंसर. अपनी पीठ थपथपा लो भाई और जोर से मुस्कुरा दो क्योंकि ये जो ख्वाबों की दुनिया थी जहां पर ग्रेविटी भी नहीं थी, परेशान हो रहे थे आप, अब वहां से आप वापस बाहर निकल गए हैं. कैसा लग रहा है एकदम से अपने बिस्तर में अपने आप को स्पाकर? हाउ आर यू फीलिंग? अब भी है, सब कुछ महसूस हो रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है. वेल, जिन्होंने सही जवाब दिया है जरा उनके नाम क्या क्या है जानते हैं. सो यहाँ पर अहमद मोहम्मद बलूच ने जवाब दिया है. हमारे वन ऑफ द रेगुलर लिसनर मोहम्मद यूसुफ खान ने सही जवाब दिया है. गुलाम रब्बानी ने भी सही जवाब दिया है. ओमर एंड जमील ने भी सही जवाब दिया है. सो हमारे यही लिसनर्स हैं जिन्होंने नंबर को ऐड किया, बाकी सब ने वक्त पर गौर किया. बट कोई नहीं, आपने सही जवाब दिया है और आज के जो लकी विनर हैं, हाँ, जिन्हें हम कहेंगे कि वो हमारे मास्टर ऑफ ड्रीमस्केप हैं, कौन है आइए जानते हैं. वो है हमारे वन ऑफ द रेगुलर लिसनर मोहम्मद यूसुफ खान. भाई मुबारका मुबारका, फाइनली फाइनली क्या बात है, आप आज के हमारे लकी विनर हैं. बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आपके साथ और हमारे सारे लिसनर्स का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने नॉन स्टॉप हमारे साथ एस्केप रूम पर जुड़कर हमें सही जवाब देने की कोशिश की. बड़ा वक्त हो गया है मेरे जाने का, तो मुझे जाना होगा. ख्वाबों की दुनिया से तो आप बाहर निकल गए लेकिन कल कहाँ कैद होंगे ये जानने के लिए दोपहर 1:30 बजे एस्केप रूम पर अपनी ए फॉर अमिता को सुनना ना भूलें. और अभी FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप जुड़ सकते हैं हमसे. सोशल मीडिया पर अपनी आरजे अमिता को भी ढूंढ लीजिए. और अभी जाते जाते कहना तो बनता है हम हेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. तो आप कहीं मत जाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए और रेडियो पर हिट गाने एंजॉय कीजिए. स्टे ट्यून्ड फॉर 107 दिल से देसी.

अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हम हमेशा याद रखना चाहते हैं। शादी हो गई, बर्थडे पार्टी हो गई, किसी की ग्रेजुएशन हो, या किसी का बेबी शावर हो, या कोई भी स्पेशल फैमिली इवेंट हो, हम चाहते हैं भाई कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। और हाँ, इवेंट की तैयारी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पता है क्या? इनविटेशन कार्ड। अच्छा, एक वक्त था जब खूबसूरत डिजाइन वाले पेपर कार्ड्स घर घर भेजे जाते थे, याद है ना? वो 90s में लोग कार्ड इस्तेमाल करते थे और उनको बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया जाता था। लेकिन आज भाई टेक्नोलॉजी का दौर है और एक नया ऑप्शन हमारे पास है, डिजिटल इन्विटेशंस। यानी पेपर के बजाय मोबाइल, ईमेल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए इन्विटेशंस भेजना। तो भाई आज इको स्विच में हम बात करने लगे हैं डिजिटल इन्विटेशंस वर्सेस पेपर पर, एक ऐसी चॉइस जो हमारे इवेंट्स को भी स्मार्ट बना सकती है और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकती है। तो साथियों, जरा एक काम करते हैं, प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक छोटा सा इनविटेशन कार्ड बनाने के पीछे कितने रिसोर्सेज लगते हैं? देखिए, पेपर बनाने के ना दरख्तों को यूज किया जाता है, ट्रीज को, फिर प्रिंटिंग के लिए इंक, इलेक्ट्रिसिटी और पैकेजिंग का इस्तेमाल भी होता है। और अक्सर क्या होता है भाई, अक्सर यही होती है, इवेंट खत्म होने के बाद वो ब्यूटीफुल इनविटेशन कार्ड्स ड्रॉर्स में रख दिए जाते हैं या फिर सीधी सी बात कचरे में फेंक दिए जाते हैं अगर अपने ना हो तो। सोचिए, एक फैमिली इवेंट में अगर आप कह लें कि 100 कार्ड्स प्रिंट होते हैं, तो फिर वो सिर्फ एक दिन के लिए यूज होते हैं ना, एक दिन के लिए भी नहीं, मैं कहूंगी कुछ घंटों के लिए, तो कितना सारा पेपर वेस्ट होता है। इसके अलावा कार्ड्स को डिलीवर करने के लिए ट्रांसपोर्ट भी यूज होता है कि नहीं, जिससे फ्यूल कंजम्पशन होता है, कार्बन एमिशंस बढ़ती हैं, यानी एक छोटी चीज भी एनवायरनमेंट पर असर डाल सकती है। तो भाई अब आप पूछेंगे कि सफा बताओ हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो भाई इसके लिए आपको छोटा सा इको स्विच ऑन करना है। मुमकिन हो पेपर की बजाय डिजिटल इन्विटेशंस चूज करें। देखिए, डिजिटल इन्विटेशंस के बहुत सारे फायदे हैं, कुछ तो मैं आपको यूं ही उंगलियों पर गिनवा दूंगी। आपकी जो ये सोशल मीडिया की एप्स हैं या दूसरी तीसरी जो मैसेजिंग वाली एप्स होती हैं या ईमेल्स या ऑनलाइन इनविटेशन प्लेटफॉर्म्स के जरिए चंद सेकंड में इनविटेशन भेजा जाता है फॉर मल्टीपल पीपल। इससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और ये जो दरख्त होते हैं

0: उनको भी प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है, वो काटे नहीं जाते। प्रिंटिंग और डिलीवरी का खर्चा भी कम हो सकता है। आप डिजिटल इनविटेशन को और भी क्रिएटिव बना सकते हैं अपनी मर्जी से, फोटोज, वीडियोस, मैप्स और आरएसवीपी ऑप्शंस के साथ, और इससे टाइम भी बचता है भाई। मिसाल के तौर पर शादी का इनविटेशन सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि एक ब्यूटीफुल वीडियो मैसेज भी बन सकता है। लेकिन साथियों, अगर किसी स्पेशल ओकेजन पर पेपर इनविटेशन ज्यादा जरूरी लग रहा है आपको, तो भाई आप रिसाइकल्ड पेपर या इको फ्रेंडली प्रिंटिंग ऑप्शन क्यों नहीं चूज करते। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि हर चीज को बिल्कुल बदल दिया जाए, बल्कि जहां आसानी से बेहतर चॉइस हो सकती है वहां इको स्विच कर लिया जाए ना, मकसद तो यही है। अच्छा, अब अगर इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं ना, तो आजकल बहुत सारे लोग अपने इवेंट्स में डिजिटल इनविटेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अभी एक बच्ची के अकीके का इनविटेशन रिसीव किया था एंड इट वाज वो वाओ ब्यूटीफुल। कई कपल्स अपनी शादी के लिए वीडियोस इनविटेशंस भेजते हैं जिसमें उनकी फोटोज, इवेंट डिटेल्स और पर्सनल मैसेजेस भी होते हैं। बर्थडे पार्टीज के लिए पेरेंट्स डिजिटल कार्ड बनाकर ग्रुप्स में भेज देते हैं जो मैसेजिंग ग्रुप्स होते हैं। इजी होता है, जल्दी सबको पहुंच जाता है। अच्छा हाँ, कंपनीज भी अपनी मीटिंग्स और इवेंट्स के लिए ऑनलाइन इनविटेशंस यूज करती हैं साथियों। अच्छा, इससे ना सिर्फ पेपर वेस्ट कम होता है बल्कि गेस्ट्स के लिए भी आसानी होती है। वो इनविटेशन कभी भी मोबाइल पर दोबारा से चेक कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप इनविटेशन कार्ड कहीं भूल गए हो तो भाई एक मसला पड़ जाए। लोकेशन देख सकते हैं और अपनी अटेंडेंस कंफर्म कर सकते हैं गेस्ट। अच्छा भाई, यानी एक छोटी सी डिजिटल चॉइस कन्वीनियंस और स्टेबिलिटी दोनों लेकर आ सकती है। तो भाई साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज क्या है बता देती हूँ। अगली बार आप किसी इवेंट का प्लान बनाएं तो खुद से एक सवाल जरूर कीजिएगा, क्या इस इनविटेशन को पेपर की बजाय हम डिजिटल बना सकते हैं। भाई जरूर बना सकते हैं और यकीन जाने पेपर से बेहतर बना सकते हैं। और हाँ, हमें बताना मत भूलिएगा आपने कभी डिजिटल इनविटेशन रिसीव किया है। मैंने तो पिछले दिनों किया था, बहुत खूबसूरत था। और क्या आपको पेपर कार्ड्स ज्यादा पसंद है या डिजिटल इनविटेशंस? इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, हमसे जो मोबाइल से भेजा जाए वो सिर्फ एक क्लिक नहीं, कभी कभी नेचर के लिए एक छोटा सा पॉजिटिव स्टेप होता है। छोटी सी आदत डालें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। और सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी RJ माविश खान।

0: का टॉपिक है वक्त में बरकत। कभी आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग कम वक्त में भी बहुत काम कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों का वक्त होने के बावजूद भी काम मुकम्मल नहीं होता। इसे ही वक्त की बराका कहते हैं। बराका जब आती है जब हम अपने वक्त को सही तरीके से यूज़ करते हैं और उसे बेकार चीजों में जाया नहीं करते। अल्लाह का जिक्र, नमाज की पाबंदी और डिसिप्लिन वक्त में बरकत पैदा करता है। अक्सर सोशल मीडिया और मकसद एक्टिविटीज हमारा वक्त ले जाती हैं। अगर हम थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। आज का अमल ये है कि अपने दिन के कुछ हिस्से को प्लान बनाएं और बेकार एक्टिविटीज को कम करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मारुश। फिर मिलेंगे एक नई असी बात के साथ।
1: देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One step to 2030.
3: उस तो फ्लाइंग कार्स, एयर टैक्सीज, इनके बारे में हमने सुन रखा है, देख रखा है। अब सवाल ये उठता है कि हाउ क्लावी टू दीज पर्सनल एयर ट्रांसपोर्ट। देखिए, कभी आपने सोचा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम रोड्स पर ट्रैफिक में फंसने की बजाय अपनी गाड़ी को हवा में उड़ाकर ऑफिस, शॉपिंग मॉल या किसी के घर पहुंच जाएंगे। देखिए, जो चीजें पहले साइंस फिक्शन मूवीज का हिस्सा थी, आज पूरी दुनिया भर में वो रियलिटी बन रही है। आजकल कंपनीज एयर टैक्सीज और फ्लाइंग व्हीकल्स डेवलप कर रही है। ये व्हीकल्स इलेक्ट्रिक बैटरीज पर चलती हैं और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डिजाइन जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले सालों में सिलेक्टेड सिटीज में एयर टैक्सी सर्विसेज आम लोगों के लिए अवेलेबल हो सकती है। अब हम ये सोचते हैं कि हम फ्लाइंग कार्स के कितने करीब पहुंच चुके हैं। आज भी वे प्रोटोटाइप फ्लाइंग व्हीकल्स टेस्ट की जा चुकी है। कुछ व्हीकल्स वर्टिकल टेक ऑन लैंडिंग कर सकती हैं, यानी हेलीकॉप्टर की तरह सीधा ऊपर उठकर उड़ सकती हैं और बिना रनवे के लैंड कर सकती हैं। लेकिन अभी भी फ्लाइंग कार्स आम ट्रांसपोर्ट का हिस्सा तो नहीं बने। इसकी वजह सेफ्टी है, इसकी वजह रेगुलेशन है और शायद इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस है। वैसे गवर्नमेंट और एविएशन अथॉरिटीज को पहले ये इंश्योर करना होगा कि ये टेक्नोलॉजी पब्लिक के लिए सेफ है कि नहीं। मुझे तो सुन के ही डर लगता है। इसे ये कहना ठीक है, हमें फ्लाइंग कार्स जो है एक्साइट तो बहुत करती हैं, बट क्या हम खुद फ्लाइंग कार्स को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? आई डोंट नो, अभी तो ऑटोनॉमस कार्स का ही एक्सपीरियंस नहीं किया, फ्लाइंग कार्स का पता नहीं। लेकिन हाँ, इसके फायदे तो बेशुमार होंगे ही होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि लोग रोड्स के ट्रैफिक से बच जाएंगे। पर शायद हम कह सकते हैं कि हवा में इतना रश है, जो सफर लोग रोड पर एक घंटे में तय करते थे अब वो चंद मिनट्स में तय हो सकता है। वहीं पर अगर बात की जाए इसके फायदे की, तो एक और बड़ा फायदा है फास्ट इमरजेंसी सर्विसेज। जी हाँ, इमरजेंसी सिचुएशंस में डॉक्टर्स हो, रेस्क्यू टीम्स है या फिर कोई मेडिकल सप्लाई है, ज्यादा तेजी से डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती है। वहीं पर टाइम सेविंग भी है। बिजी सिटीज में लोगों का बहुत सा वक्त जो है वो ट्रैफिक में यूं ही वेस्ट हो जाता है। आपको पता ही होगा कि बड़ी बड़ी सिटीज में घंटों जाम लगना बड़ी कॉमन सी बात है। एयर ट्रांसपोर्ट इस वक्त की बचत करेगा और मुझे लगता है आपको आपके डेस्टिनेशन पर आसानी से पहुंचा देगा। वहीं एयर टैक्सीज जो है वो इलेक्ट्रिक पावर पर चलने के लिए डिजाइन की जा रही है। इससे फ्यूल कंजम्पशन होगा और पोल्यूशन इतना कम हो जाएगा, यानी एक तरह की क्लीन टेक्नोलॉजी। और हाँ, बेटर कनेक्टिविटी, ये हम कैसे भूल सकते हैं? असर ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इन एरियाज में पहुँचना आसान हो जाएगा क्योंकि रोड्स बनाने का झंझट ही नहीं। वैसे ऐसा नहीं है कि इतने सारे फायदे मैं गिना रही हूँ तो इसके सिर्फ फायदे हैं। नहीं दोस्तों, फ्लाइंग कार्स के अपने अलग चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है सेफ्टी कंसर्न। जैसे मैंने कहा कि सुनने में बड़ा एक्साइटिंग सा लगता है, यू नो, अगर आप कोई मूवी में देख रहे हो या कोई फिक्शन मूवी चल रही है, आपको इतनी चीजें एक्साइट करते हैं। बट अगर आपको खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करने को कहा जाए तो शायद आप फिर लगते हैं।

हो गई होगी। सबसे बड़ा सवाल जो मुझे रोकता है वो है सेफ्टी को लेकर। मतलब अगर हवा में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा भाई? इसीलिए बहुत एडवांस सिस्टम जो है उसकी जरूरत है। भाई एक चीज मुझे लगती है जो और भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होगी वो है हाई कॉस्ट। शुरू में फ्लाइंग व्हीकल्स बहुत ज्यादा महंगे होंगे, हर इंसान के लिए इन्हें अफोर्ड करना पॉसिबल ही नहीं होगा। ये तो भाई एक बात हुई, आजकल हम रोड्स पे ट्रैफिक का जो है ना वो रोना रोते हैं। कल हो सकता है हजारों फ्लाइंग कार्स हवा में हो तो उनका मूवमेंट कैसे होगा? एयर ट्रैफिक को मैनेज करना उफ बड़ा चैलेंजिंग होगा। वहां पे तो आप जो है वो सिग्नल्स भी नहीं लगा सकते, क्या करोगे? उसके साथ जो है वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जी हाँ, फ्लाइंग टैक्सीज के लिए स्पेशल लैंडिंग एरियाज और चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत होगी, तो फिर एक एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका लोड भी बढ़ता है। फिर मैं सोच रही थी बारिश हो या फिर बहुत ज्यादा हवा चल रही हो,

0: टैक्सी स्टैंड तक पहुंचेंगे और बस मिनट में अपनी डेस्टिनेशन पर लैंड कर जाएंगे. फ्यूचर का होगा पता नहीं, हो सकता है फ्यूचर में ऑफिसेज, मॉल्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की रूफ टॉप पर एयर टैक्सी लैंडिंग पी पैड्स भी मौजूद हों. स्मार्ट टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूट्स को मैनेज करेगा पर हाँ ट्रैवल को ज़्यादा सेफ भी बनाएगा. लेकिन एक्सपर्ट्स की अगर मैं मानूँ जो मैं सुनती रहती हूँ पॉडकास्ट, तो मुझे समझ में आया कि फ्लाइंग कार्स शायद ट्रेडिशनल कार्स को पूरी तरह से रिप्लेस कभी ना कर पाए. ठीक है लोग पसंद करेंगे, लेकिन एक बड़ी तादाद, एक बड़ा तबका ऐसा भी होगा जो ट्रेडिशनल कार्स को ही अपना फर्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मानेगा. तो कहने का मतलब है कि दोनों सिस्टम एक साथ चलेंगे, रोड पर भी ट्रैफिक, हवा में भी. अगर कल से यहाँ आपसे कहा जाए कि जी कल से दोहा में फ्लाइंग टैक्सी सर्विस शुरू होगी, तो क्या आप उसमें सफर करना पसंद करेंगे? क्या आप भी आज भी ट्रेडिशनल कार पर ज्यादा भरोसा करते हैं? चलिए मुझे बताइए 666-22107 पर. ऐसे ये सवाल अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प है. खैर बस आखिरी एक यही होगा मेरा कि आज फ्लाइंग कार्स एक फ्यूचरिस्टिक ड्रीम लगती है, लेकिन टेक्नोलॉजी की रफ्तार देखकर लगता है कि शायद अगले चंद सालों में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए. अब हम इसे किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे ये एक अलग बात है. तो इस सफारी के लिए, सफारी तो नहीं कहना चाहिए, क्या हम भी हवा में सफर करने के लिए तैयार हैं? ये जवाब तो मुझे आप ही देंगे. फिलहाल जब तक आप अपने जवाब को जो है वो सोच रहे हैं कि मुझे कैसे देना है, क्या देना है, मैं आपसे यहाँ पर इजाजत लेती हूँ. कल मिलूंगी वापस, एक और नए टॉपिक पे बात करूंगी. तब तक मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखो सुनिए 107 देर से दिसी. One step to 2020.
1: आप सुन रहे हैं FM 107.
2: FM 107.
3: दिल से देसी.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: नूर नूरी यहदिल्लाह लिनूरिही मैया रोशनी पर रोशनी अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है
3: अपने शरई मसाइल के हल रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक दीनी रहनुमाई अहले इल्म के मुदल्लल जवाबात और मुफीद इल्मी गुफ्तगू सुनने के लिए समात कीजिए नूरे इस्लाम तर्तीबो पेशकश फुरकान शाहिद कासमी हर जुमा शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर

0: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ अमिता आपके साथ और आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन द शो कतर ग्रीन बीट. पहले उम्मीद आपका ये दिन खुशनुमा गुजर रहा होगा और आप इस हंसी हमारे कतर की धूप को ना फुल ऑन एंजॉय कर रहे होंगे. वैसे आई नो इट्स अ समर टाइम बट हम बहुत लकी महसूस करते हैं क्योंकि हमारे कंट्री में जो कहते हैं ना धूप भरपूर आती है. हाँ, पहले इस पे स्ट्रेस क्यों दे रही हूँ, करूंगी बात आगे. आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो शायद दिखता नहीं है पर महसूस हर जगह होता है. जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और पीछे मुड़कर देखिए, मतलब अपने पास्ट के बारे में सोचिए कि कुछ साल पहले हमारा जो कतर था या हमारी जो जिंदगी थी वो कैसी थी. वो बड़े बड़े फिलिंग कैबिनेट्स, धूल से भरी हुई फाइल्स, हर चीज के तीन तीन फोटोकॉपीज और हर सरकारी काम के लिए लाइन में लगिए और टोकन लीजिए. ये वाला सिस्टम होता था जहाँ पर हमको पेपर टिकट लेने पड़ते थे, याद है कि नहीं. लेकिन आज हमारा जो कतर है वो बदल रहा है. हम एक ऐसी डिजिटल ग्रीन वेव पर सवार हैं जो ना सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बना रही है बल्कि हमारी धरती, हमारी सरजमीन को भी सांस लेने का मौका दे रही है. कलकत्ता नेशनल विजन 2030 का जो सपना है उसमें सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा सूत्र है और इस सूत्र को सच कर रही है हमारी पेपरलेस रेवोल्यूशन. आज के हमारे इस एपिसोड में हम ये कि कैसे आपके जेब रखे हुए एक स्मार्टफोन कतर के डेजर्ट में बनने वाले बड़े डेटा सेंटर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोशिशें मिलकर एक ग्रीन कतर का निर्माण कर रहे हैं, यूं कहे उसे बना रहे हैं. हम जानेंगे कि एक बाइट कैसे एक पेड़ या ट्री को बचा सकता है. तो कहीं मत जाइए क्योंकि आज हम डिलीटिंग आवर कार्बन फुटप्रिंट वन बाइट टाइम पर गहरी गुफ्तगू करने वाले हैं. तो स्टे ट्यून्ड.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
0: कतर ग्रीन बीट. वेलकम है आप सभी का ऑन FM 107 पर. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और कतर ग्रीन आप सुन रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे स्पेशल सेगमेंट द ग्रीन वायर से. तो जनाब, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फोन में सबसे जरूरी ऐप कौन सी है तो शायद आप कहेंगे व्हाट्सएप या सोशल मीडिया एप्स. लेकिन अगर आप कतर के रेजिडेंट हैं तो एक ऐप ऐसी है जो सबकी लाइफ लाइन है. अब गेस किया वो क्या है. वो है मेट्राश 2. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ये पेशकश सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, ये एक महामुहिम है एनवायरमेंट के लिए. हम अक्सर सोचते हैं कि मेट्राश 2 से आईडी रिन्यू हो गई या ट्रैफिक फाइन पे कर दिया तो हमारा वक्त बच गया. बिल्कुल सही. लेकिन क्या आपने कभी इसका ग्रीन ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोचा है. सोचिए जरा कि पहले जब आपको एक वीजा रिन्यू कराने जाना होता था तो आप गाड़ी निकालते थे, ट्रैफिक में फंसते, पेट्रोल जलाते और फिर वहां जाकर 4-5 पेपर के फॉर्म्स भरते. MOI के डेटा के मुताबिक मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस अब डिजिटल हो चुके हैं. इसका मतलब है मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ पेपर बच गया है. लेकिन बात कागज की नहीं है जनाब, बात है उस कार्बन डाइऑक्साइड की जो आपकी कार से निकलने वाला था अगर आप फिजिकल ऑफिस जाते. जब आप अपने घर के AC में बैठकर एक से अपना काम करते हैं तो आप अनजाने में ही सही कतर की हवा को साफ रखने में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं. ये एक नेशन वाइड ऑफसेटिंग मशीन की तरह काम कर रहा है. हर ई ट्रांजेक्शन एक पौधा लगाने के बराबर है. इसीलिए अगली बार जब आप मेट्राश 2 यूज करें तो थोड़ा प्राउड फील करें, गर्व महसूस करें क्योंकि आप सिर्फ एक नहीं निपटा रहे, आप कतर को ग्रीन बना रहे हैं. यस, अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से. और ये है डिजिटल ताकत का असली करिश्मा. अब वक्त है बात करने का हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट पर.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल है, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
0: कतर ग्रीन बीट. तो जनाब, अक्सर जब मैं सस्टेनेबिलिटी और गोइंग ग्रीन की बात करती हूँ तो लोग मुझसे एक बड़ा ही मुनासिब और गहरी सोच वाला सवाल पूछ लेते हैं और वो ये है, कहते हैं कि अमिता

कह रहे हो कि पेपर छोड़कर डिजिटल हो जाओ, लेकिन कंप्यूटर, बड़े बड़े सर्वर और इंटरनेट चलाने में भी तो बिजली लगती है ना, तो फिर ये ग्रीन कैसे हुआ? वेल, आपका ये जो सवाल है ये बिल्कुल सही है. आई थिंक कभी कभी इससे लेके कंफ्यूजन भी होता है. ये सच है कि पूरी दुनिया का जो डिजिटल डेटा है उसे चलाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है. लेकिन यहाँ आता है कदर विजनरी सिस्टम. इस सवाल का जवाब छुपा है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग इंजन में. आज हम उस इनविजिबल इंजन की बात करेंगे जो कतर को डिजिटल तो बनाता ही है पर धरती को ठंडा भी रखता है. पहले के जमाने को याद कीजिए. हर छोटी कंपनी, हर बैंक, हर सरकारी दफ्तर का अपना एक अलग सर्व रूम होता था. एक छोटा सा कमरा जहां 24 घंटे बड़े बड़े कंप्यूटर्स शोर मचाते थे क्योंकि वो मशीन बहुत गर्म हो जाती थी. उन्हें ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े एसीज लगाए जाते थे जो दिन रात बिजली फूंकते थे. अब सोचिए ऐसे हजारों कमरे पूरे कतर में थे. अब इसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, टुकड़ों में बांटी हुई एनर्जी की खपत. लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस पूरे तरीके को बदल दिया. कतर ने दुनिया के सबसे बड़े टेक जायंट्स के साथ मिलकर दोहा में हाइपरस्केल डेटा सेंटर्स कायम किए हैं. हाइपरस्केल का क्या मतलब होता है अगर आप सोचें तो इसे एक मिसाल से समझिए. अगर हर इंसान अपनी अलग कार चलाए तो पोल्यूशन ज्यादा होगा, लेकिन अगर वही सारे लोग एक ही अल्ट्रा मॉडर्न हाई स्पीड मेट्रो में सवार हो जाए तो एनर्जी बचेगी. हाइपरस्केल डेटा सेंटर्स भी डिजिटल दुनिया की वही मेट्रो है. इन सेंटर्स में हजारों सर्वर्स को एक साथ एक ही छत के नीचे रखा जाता है जहां उनकी एनर्जी और कूलिंग को सेंट्रलाइज कर दिया जाता है. अब आप सोचेंगे कि अमिता, कतर तो एक गर्म मुल्क है, यहाँ इन बड़े डेटा सेंटर्स को ठंडा रखना तो बड़ा मुश्किल होता होगा, है कि नहीं? बल्कि तो कतर का कमाल है. हमारे MCIT ने जिन डेटा सेंटर्स को होस्ट किया है वहाँ सिर्फ आम एसी नहीं लगे होते, वहाँ एडवांस कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है. इनमें से कुछ सेंटर्स लिक्विड कूलिंग यूज करते हैं जो हवा के मुकाबले 30-40% ज्यादा शट होती है. कुछ सेंटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हैं जो हर सेकेंड चेक करता है कि किस सर्वर को कितनी ठंडक चाहिए. इसका नतीजा क्या निकलता है? इन नए सेंटर्स में पुराने सर्विस रूम के मुकाबले बिजली की खपत तकरीबन हो जाती है. हम अपने डेजर्ट के माहौल में भी इन सर्वर्स को इतनी एफिशिएंसी से चला रहे हैं कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट लगातार कम हो रहा है. ये है द लॉजिक ऑफ एफिशिएंसी. जब हम एक बेस के पर काम करते हैं तो हम रिसोर्सेस को बेहतर तरीके से स्टोर और इस्तेमाल कर सकते हैं. पर इसके पीछे एक बड़ा विजनरी लॉजिक है. जब हम अपना डेटा कतर की अपनी सरजमी पर, अपने लोकल क्लाउड पर होस्ट करते हैं तो डेटा को हजारों माइल दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ता. इसे ना सिर्फ इंटरनेट की स्पीड बढ़ती है बल्कि वो एनर्जी भी बचती है जो डेटा को अंडरसी केबल्स के जरिए दुनिया के दूसरे कोने तक भिड़कती थी, समझे? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड आईटी का ये कदम कतर नेशनल विजन 2030 का एक मजबूत अर है. हम सिर्फ डिजिटल नहीं बन रहे हैं, हम स्मार्ट डिजिटल बन रहे हैं. हम दिखा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी दुश्मन नहीं है बल्कि बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं. सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ सोलार पैनल्स लगाना नहीं है बल्कि ऐसे इनविजिबल सिस्टम्स बनाना है जो सदियों तक हमारी जमीन की हिफाजत भी कर सके. तो अगली बार जब आप मेट्राश 2 पर कोई ट्रांजेक्शन करें या अपने ऑफिस की फाइल क्लाउड पर सेव करें तो एक पल के लिए रुकिए और मुस्कुराइए. हाँ, क्योंकि पर्दे के पीछे का ये इनविजिबल इंजन बड़ी खामोशी से, बड़ी काबिलियत से एनवायरनमेंट को बचा रहा है. आपका हर डिजिटल क्लिक एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो कम बिजली में ज्यादा काम कर रहा है. ये है हमारा डिजिटल कतर जहां बाइट्स पेड़ों की जगह नहीं लेते बल्कि पेड़ों को बचाने में मदद करते हैं. तो अभी आपने कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ बने रहना है.

0: कतर बीट पर अभी हमारी बातें कंटिन्यूसली चलने वाली है. सो स्टे ट्यून टू एफएम 107 दिल से देसी.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
0: कतर ग्रीन बीट. आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन एफएम 107. मैं हूँ आपकी अमिता, आपके साथ कतर ग्रीन बीट सुन रहे हैं हम. अभी हमने बात की कि कतर के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करते हैं. सुनने में तो ये सब बहुत हाईटेक लगता है ना. लेकिन अब वक्त है शो के उस हिस्से का जहां मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप क्या कर सकते हैं. हाँ जनाब, तो सच तो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है या जो बड़े इदारे हैं, यू कहें इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं. लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बदलते हैं. हम अक्सर सोचते हैं मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मेरे एक पेपर बचाने से क्या हो जाएगा. ओके, चलिए इस पर बात करते हैं. कतर में 2.7 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं. अगर हम सब मिलकर एक एक छोटी आदत बदले तो उसका असर किसी बड़े पैमाने से कम नहीं होगा. हाँ जी, एक डिजिटल ग्रीन वेव जो हमारे एनवायरमेंट को नया जीवन दे सकती है. तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी कुछ चीजें हैं, कुछ आसान तरीके हैं जो हमारे कतर के इस मिशन में एक एम्बेसडर बन सकते हैं. तो सबसे पहला, मुझे लगता है कि सबसे आसान भी है, ये है ई बिल स्विच. तो जब अपने मेल बॉक्स या अपने घर का वो कोना देखिए, यहाँ पुराने बिल्स का ढेर लगा था. कारमा का बिल हो, फिर ये आपके फोन का बिल हो, इंटरनेट का बिल हो, बैंक की मंथली क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट हो, उफ, हम में से बहुत लोग अभी भी पेपर स्टेटमेंट रिसीव करते हैं. क्या आपको पता है कि एक आम पेपर बिल बनाने में कितना पानी और कितने पेड़ खर्च होते हैं? और सिर्फ बनाना ही नहीं, वो पेपर बैंक से आपके घर तक गाड़ी में आता है जिसका कार्बन एमिशन अलग होता है. तो आज ही अपने मोबाइल ऐप खोलिए, ठीक है, फिर चाहे वो बैंक के ऐप्स हो, चाहे वो किसी भी चीज के ऐप्स हो जिसके जरिए आप गो पेपरलेस हो सकते हैं, प्लीज गो अहेड विद दैट, उन्हें एक्टिव कीजिए. इससे ना सिर्फ आपका कबर्ड साफ रहेगा बल्कि आपके रिकॉर्ड निशा क्लाउड पर सिक्योर रहेंगे. और फिर सोचने की बात है कि अगर हम सब पेपरलेस बिलिंग पर जाएंगे, हम हर साल हजारों पेड़ों को कटने से बचा सकेंगे. ये सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, ये हमारी धरती के लिए एक तोहफा भी है. दूसरी चीज मुझे लगती है डिजिटल रिसीट्स या द मॉल कल्चर रेवोल्यूशन. हाँ, तो ये क्या है? पॉइंट है कि हम जो शॉपिंग बहुत करते हैं, हम शॉपिंग के शौकीन हैं, ठीक है, तो हमारे लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम कतर में रहते हैं और यहाँ के मॉल्स, चाहे वो कितने भी बड़े मॉल हो, हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. जब भी हम कुछ खरीदते हैं, कैशियर हमें एक लंबी सी रसीद पकड़ता है, हम उसे बैग में डालते हैं और जाकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं. पर क्या आपने कभी उस पेपर को ध्यान से देखा है? वो थर्मल पेपर होता है. फैक्ट्स की बात करूं तो थर्मल पेपर रिसाइकल नहीं हो सकता क्योंकि उसमें BPA नाम का एक केमिकल होता है जो एनवायरमेंट के लिए जहरीला होता है. आजकल कतर के बड़े रिटेलर्स जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो आपको ऑप्शंस देते हैं SMS रिसीट या प्रिंटेड. हमेशा SMS या ईमेल चुनिए. इसके दो फायदे हैं, एक तो एनवायरमेंट को आप बचा पाएंगे और दूसरा अगर आपको वो आइटम भी रिटर्न करना हो तो रसीद खोने का डर भी नहीं होगा, वो आपके फोन में हमेशा मौजूद रहेगी. तब याद रखिएगा कि जब आप शॉपिंग के लिए जाएं तो इस चीज का खासम खास ख्याल रखना है. और उसके बाद आता है declutter the cloud, the invisible waste. हाँ जी, this is something very very important. तो ये बात शायद आपने पहले कभी ना सोची हो. हम सोचते हैं डिजिटल डेटा तो इनविजिबल है, तो इससे पोल्यूशन कैसे होगा? मैं आपको बताएं, हर एक फोटो जो आप क्लाउड पर सेव करते हैं, हर वो गुड मॉर्निंग वाला 10 MB का वीडियो जो हमारे सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पर आता है, उसे दुनिया में कहीं ना कहीं एक सर्वर पर जिंदा रहना पड़ता है और उन सर्वर्स को चलने के लिए बिजली चाहिए होती है. तो हमारी डिजिटल जो नेग्लिजेंस है उसकी वजह से आज सर्वर्स पर इतना डिजिटल जंक जमा हो गया है कि उसे मेंटेन करने में उतनी ही एनर्जी लगती है जितनी एक ट्रे से एंट्री को चलाने में लगती है.

0: समझ रहे हैं आप? तो आज का होमवर्क नोट कीजिए, हफ्ते में सिर्फ 10 मिनट निकालिए, अपने फोन की गैलरी खोलिए, वो 50 एक जैसी सेल्फीज, वो पुराने ब्लर वीडियोस या वो फालतू के फॉरवर्ड मैसेजेस डिलीट कर दीजिए, ठीक है? इसे कहते हैं डिजिटल क्लीनिंग। जब हम क्लाउड से कचरा साफ करते हैं तो डेटा सेंटर्स पर लोड कम होता है, बिजली बचती है और कतर की हवा साफ होती है। सो इट्स दैट सिंपल। और वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो मेरे सारे अजीज दोस्तों, ये जो कुछ टिप्स है जो मैंने आपको दी, इसको बस आजमा लीजिए। लेकिन याद रखिए, बूंद बूंद से जब सागर हम कहते हैं ना कि बनता है, तो हर एक छोटी कोशिश से कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। तो हम कतर में एक ऐसी डिजिटल वेव क्रिएट कर रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी हमें कुदरत या यूं कहें नेचर से दूर नहीं ले जाती, बल्कि उसके करीब लाती है। का एक क्लिक, एक डिलीट बटन या एक SMS रिसीट चुनना, ये सब इस बात की गवाही है कि आपको अपने देश से, अपनी कंट्री और अपनी धरती से मोहब्बत है। तो चलिए आज से ही डिजिटल एडिशन को अपना लेते हैं। वेल, मैं हूं अमिता, आपके साथ ग्रीन बीट सुन रहे हैं आप, और अब वक्त हो गया है हमारे जाने का। वक्त हमारा कैसे तेजी से गुजरता है बिल्कुल पता नहीं चला, लेकिन हर हफ्ते कुछ ना कुछ स्पेशल हम आपके लिए लेकर आते हैं कतर ग्रीन बीट में, जैसे कि हम आज लेकर आए। और कहना चाहेंगे कि जो डिजिटल ग्रीन वेव है, इसका हिस्सा हम ऑलरेडी हैं, बस अब हमें इसे बरकरार रखना है। सो डू नॉट मिस दैट। एंड ऑन दिस नोट मैं कहूंगी कि अब आप मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि वक्त है मेरे जाने का। आपकी मेरी मुलाकात होगी कतर ग्रीन बीट में अगले हफ्ते, सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक क्या करना है, हमारे FM7 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, अपनी आर जमीता को भी आप सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं। और अभी अपना खूब सारा ख्याल रखिए, मुझे दे दीजिए इजाजत, बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर, दिल से देसी।

0: स्टूडियो की घड़ी में 4:01 इस्तकबाल है आप सभी का शो में जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: हाँ जी दिल से देसी क्या है हाल चाल और क्या चल रहा है बताना यार। और आज तारीख है 4 अगस्त। वेल द रिक्वेस्ट शो और लोग हैं वैसे तो पता नहीं वीज़ा मिला होगा तो नए लोग आए होंगे तो नए लोगों को अगर बताना है तो बता देता हूँ कि भाई ये शो है द रिक्वेस्ट शो और इस शो में आपके अपने मर्जी के गाने चलते हैं। FM 107 सुन रहे हैं आप और FM 107 पे शाम को 4 से 5 आपके अपने मर्जी के गाने प्ले किए जाते हैं। वेल एक कैच है इसमें और वो ये कि आपके गाने तो होंगे लेकिन थीम हमारी होगी और आज की जो थीम है भाई साहब आपको ना मजा आ जाए पैसे वापस। वैसे पैसा कौन सा दे रहा है फ्री में सुनने ले लेकिन भाई मजेदार आज की थीम है FM 107 पे आज जो गाने प्ले किए जाएंगे वो होंगे नन अदर देन किशोर कुमार। वेल इसका रीजन है क्योंकि आज है 4th of August और आज दिन इनकी पैदाइश है इनका जन्मदिन तो आज हम इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि 4 अगस्त को इनका बर्थडे है और 4 अगस्त खास दिन तो होना भी चाहिए यार। तो हम आज सेलिब्रेट करने वाले हैं किशोर कुमार का बर्थडे उनके गाए हुए गाने या उस गानों में रहे हैं है ना या फिर उन पर जो गाने फिल्माए गए हैं वो गाने हम प्ले करेंगे। देखो आज होगी बहुत ज़्यादा पुराने गानों की भी रिक्वेस्ट आए लेकिन कोशिश करिएगा एकदम रोतड़ू वाले गाने ना हो और बहुत ज़्यादा पुराने ना हो कि उसकी ऑडियो भी यहाँ पर समझ में ना आ रही हो लेकिन ऐसे गाने ज़रूर कीजिए रिक्वेस्ट जो असल में आपके दिन को आने वाले और यू नो शाम को और भी लाजवाब बना दे इस शो में जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज किशोर कुमार के गानों को प्ले करना। वेल आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6622107।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: दिल से देसी और अगर देखिए मैसेज की तरफ रुख करके तो ये मैसेज आना शुरू हो गए। यूसुफ का मैसेज हैप्पी ट्यूसडे इवनिंग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई कैसे हैं और फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैं बहुत अच्छा हूँ अबू सिद्रा और किशोर कुमार का गाया हुआ मेरे महबूब कयामत हो रही भैया पहला ही गाना बड़ा ही लाजवाब है और आज मुझे लगता है कि सबसे पहला गाना किशोर कुमार का वो यही प्ले होने वाला है मेरे महबूब कयामत होगी। किशोर जी की आवाज़ में आपको सुनाई तो दे रहा होगा ना मेरे महबूब कयामत होगी आज रसूली गलियों में ओके मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। ठीक है तो ये गाना आपके पास है एक तो 4 मिनट वाला है और एक 4.5 मिनट वाला है 4 वाले पर चलते हैं। ठीक है अब एकदम पुराना ही होगा लेकिन मज़ा तो होगा भाई। ठीक है अबू सिद्रा की रिक्वेस्ट पे पहला ये सॉन्ग आ रहा है फिर बाद में भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फजील भाई मेरी रिक्वेस्ट है

एकदम लास्ट में क्यों प्ले होती है, इसका जवाब चाहिए तो चाहिए। इतने लास्ट में इसलिए होता है क्योंकि आप टाइम लगा देते हैं, बस यही माजरा है। और दूसरा ये कि कभी कभार टाइम लग जाता मुझे ढूंढने में, है ना, थोड़ा सा डिटेल तो आसान हो जाता है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं। आज अब आपने सही 4:03 मैसेज किया है, तो वरना आमतौर पे आप लेट मैसेज कर रहे थे तो वहाँ पर मामला फंस जाता था, है ना। एक बार आपने 4:10 पे करा था तो वो वाला, उससे पहले देखो ये जो 4-6 होते हैं ना, इसमें ही मोस्टली रिक्वेस्ट आ जाती है। 4:10 पे आपने कहा, फिर वो उठा आखिर में प्ले किया भाई ने, लेकिन वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। बाकी गाने की रिक्वेस्ट करो। फिर एक और मैसेज किस भाई का है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा, ओए होए सरताज भाई ये गाना भी प्ले होगा यार, ये भी बड़ा लाजवाब गाना है। उसके अलावा एक और मैसेज किस भाई का है, अस्सलाम वालेकुम, चलते चलते मेरे ये गीत, हाँ यार ये भी गाना अच्छा है, ठीक है। मतलब ये तो बात वो भी है ना कि यार किशोर कुमार ने गाया हो गाना अच्छा ना हो ये बहुत रेयर होगा। फैयाज भाई कहते हैं, फजील भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, किशोर कुमार का एक गाना है बहन के ऊपर, फूलों का तारों का सबका कहना है, खजानों में मेरी बहन है, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा लेकिन देखते हैं, अगर ये हमारे पास मौजूद रहा तो हम चलाएंगे। थोड़ा सा लोगों का मूड भी फ्रेश रहे ऐसे ही गानों की रिक्वेस्ट, उससे फिर क्या है कि, है ना, दूसरी तरफ जाएंगे नहीं लोग। वैसे तो मैंने हथकड़ी ऐसा ईजाद कर ली कि खड़ी आपको कार के अंदर लेकर आके रखेगी और फिर आपको कहीं बटन दबाने नहीं देगी, कहीं और जाने के लिए आपके पास मौका नहीं है। अब्दुल्ला गुड आफ्टरनून सर, आफ्टरनून, अगर जो एआई से बना है उसे प्ले कर सकते हैं? नहीं भाई वो तो बिल्कुल नहीं, आवाज़ तो किशोर की है। नहीं मेरा भाई ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, यहाँ आप पकड़ जाएंगे। फिलहाल ये 3 इन्जॉय करते हैं। सबसे पहले मेरे महबूब कयामत होगी किशोर कुमार की आवाज़ में, फिर चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, और मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है सरताज की रिक्वेस्ट पे, और चलते चलते वाली रिक्वेस्ट है भाई की, ठीक है। तो अबू सिद्रा की रिक्वेस्ट सबसे पहले, और एक एक करके आपकी रिक्वेस्ट प्ले की जाएगी। अगर कहीं कहीं अगर गलती हो जाती है कि आपका गाना नहीं प्ले होता, क्योंकि लेजेंडरी के इतने गाने हैं, इतने लोग रिक्वेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं छूट जाता ही है एक ना एक गाना, तो माजरत मेरी तरफ। इंशाल्लाह किशोर कुमार के गाने फिर हम जरूर प्ले करेंगे।

या तो हमें सुने, आप भी कभी अलविदा मत कहिएगा एफ एम 107 के इस खास शो द रिक्वेस्ट शो को सुनते रहिएगा और एफ एम 107 को कभी अलविदा ना कहिएगा। किशोर कुमार की आवाज में ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक एफ एम 107 पे सुना आपने और उम्मीद है कि आज का ये खास दिन 4 अगस्त यानी कि आज किशोर कुमार का जन्मदिन है आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे, शो को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके लाजवाब बेहतरीन रिक्वेस्ट भी लगातार आ रही है। बल्कि कुछ ऐसे रिक्वेस्ट भी हैं जो अपन प्ले नहीं कर सकते क्योंकि वो किशोर कुमार नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हो रहा है ओके जो थीम है उसी पर फजील स्टिक रहेगा, जिद्दी आदमी है यार। कई बार तो मेरे को ट्रिक भी कर लिया गया ना कि ये गाना प्ले कर दो, मेरे को तो ऐसा होता था कि हाँ यार ये ईमानदार आदमी है इनको पता होगा, लेकिन फिर कई बार जब मैं इधर रिसर्च करता हूँ पता चलता है वो किशोर कुमार का गाना है ही नहीं, किसी और का गाना है ना, या फिर जो थीम है उस पर वो गाना रिक्वेस्ट नहीं किया गया तो फिर अपन को चेंज करना पड़ता है, कई बार गाने नहीं प्ले किए हैं। तो अब मैं प्रेफरेबली पहले देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। वेल हमारे पास तीन गाने तैयार रखे हुए हैं और ये तीनों गाने एक से बढ़कर एक हैं। सबसे पहला गाना जो अभी आने वाला है वो कौन सा होगा ये

ये आप कर सकते हैं क्योंकि तीनों जो गाने आए वो एक ही वक्त पे आए, और अभी जब से मैं ये शो कर रहा हूँ ऐसा पहली बार हुआ है कि पहले तो ऐसा क्या होता है एक एक मिनट का फर्क हो जाता था कहीं ना कहीं, है ना, आगे पीछे हो जाता था, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे अगर कहा जाए तो ये तीनों एक ही टाइम पे आ गए। एक तो गाना है अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन, किशोर कुमार की आवाज में गाना, डॉन मूवी का ये ट्रैक है अरे दीवानो, तो अपन ये प्ले करने वाले हैं। फिर एक और गाना है मेल वर्जन का हमें तुमसे प्यार कितना, आए हाय यार तुम्हारी बस ना भाई ऐसा गदर है। तो अरे दीवानो जो रिक्वेस्ट किया है वो है शहजादा सलीम की रिक्वेस्ट पे। ओके, मुमताज ने रिक्वेस्ट किया है देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, लताज की आवाज किशोर कुमार का साथ, ये भी एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक एफएम 107 पे। सबसे पहले नंबर पे आ रहा है अरे दीवानो, दूसरे नंबर पे है देखा एक ख्वाब रिक्वेस्टेड बाय मुमताज, और जो तीसरे नंबर पे है वो है हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, ये है आरके के रिक्वेस्ट पे, और मैं इनका नाम नहीं देख पा रहा हूँ, अगर मुझे नाम मिल जाएगा तो आसान हो जाएगा, बाकी नाम तो यहाँ पर नहीं है। ओके, बाकी आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों एफएम 107 के इस खास रिक्वेस्ट शो में। आज जो थीम है वो थीम है वन एंड ओनली जो हमारे दिलों के बड़े करीब हैं किशोर कुमार, क्योंकि आज हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले सुनते हैं अरे दीवानो मुझे पहचानो, मेरा भी फेवरेट ये गाना है, एंजॉय करें इस गाने को, और रिक्वेस्ट है 666-22-107 पे कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। ऑल्दो हमारे पास एक या दो गाने की रिक्वेस्ट और बची है, उसके बाद फिर हम गेम की तरफ बढ़ेंगे।

एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

लरा और किशोर कुमार की आवाज में खूबसूरत सा ट्रैक FM 107 पे। और कुछ दिन ऐसे होने भी चाहिए कि यार बहुत ज्यादा हाई बीट वाले डिकचिक डिकचिक वाले गाने ना सुनाई दें। सूदिंग दो एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हो, खूबसूरत आवाज़ हो, किशोर की आवाज़ हो, लता की आवाज़, शाम को बेहतरीन बनाने का इंतज़ाम हो। तो आज वही एक दिन है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे किशोर कुमार का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त गायकार और क्या क्या नहीं थे, मतलब लाजवाबी आर्टिस्ट। फिलहाल हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:25 और अब दो और गाने हैं। वेल, हम बात बहुत सारी कर सकते हैं क्योंकि अपने पास इतना कुछ होता है कहने को, चाहे वो किशोर कुमार हो या फिर बाकी कोई ऐसा सेलिब्रिटी, सलमान हो, आशान हो, उनके बारे में बहुत सी बातें की जा सकती है। लेकिन मुख्तसर सा वक्त होता है और फिर उस वक्त में अगर गाना ना प्ले हो तो रिक्वेस्ट जो है वो रह जाती है। लेकिन अभी बाकी रिक्वेस्ट के बारे में बात करते हैं। एक गाना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो ये है ऐसा गाना जो सुनने के बाद मुझे लगता है कि आपका बाकी का जो वक्त है वो

0: बोला जवाब गुजरेगा। यू भाई की रिक्वेस्ट पे ये गाना आ रहा है और फिर अनुज भाई ने भी आज क्या गाने की रिक्वेस्ट का, ओ मेरे दिल के चैन, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट एज वेल। अगर मुझे टॉप 20 में कोई गाना रखना होगा तो मुझे लगता है ये गाना जरूर से जरूर आएगा, एवरग्रीन गाना है ओ मेरे दिल के चैन। तो ये दो गाने एंजॉय करें एफएम 107, और जब वापस आएंगे तो फिर हम पहचान कौन गेम शुरू करेंगे। और एक भाई है सारिक, उनका नाम है, थोड़ा सा लेट हो गया, मेरे महबूब कयामत होगी इस गाने के रिक्वेस्ट किया, और अबुद्रा की ये रिक्वेस्ट सबसे पहले प्ले की जा चुकी है। भाई आप थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन ये गाना हमने अभी कुछ देर पहले प्ले किया। बाकी सलाम आया है हिशाम साहब का, वालेकुम अस्सलाम। साथी और मैसेज उस्मान का, कहते हैं सलाम, आई एम लेट टुडे। कोई बात नहीं भाई, कोई रोको दीवाने को, मन मचल रहा है कुछ गाने को। ओम भो उस्मान भाई, गदर काट दी भाई साहब। उस्मान इंदौरी नाम रख दूं इनका। उस्मान भाई एकदम ही गदर। फिर उसके बाद एक और ये मैसेज किस भाई का है, ठीक है सलाम का ये मैसेज है, नाम नहीं लिखा लेकिन इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। नाम लिख देंगे तो आसान हो जाता है नाम पढ़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम, आपको भी एहसान अली, लेट हो गया यार, कहाँ दे यार ऑफिस से लेट से, मैं बॉस को यार दे दिया करो कि अरे पेट में दर्द हो रहा है, 10 मिनट पहले निकल रहे हैं, है कि बहुत तेज से आई है याद किसी की, तो इसलिए मैं घर जा रहा हूँ, मतलब अपने बच्चे की याद आई, बच्चे को देखने को घर जा रहा हूँ, तो कुछ तो बहाने बना लिया करो यार, जल्दी निकल जाया करो 10 मिनट पहले, लेट हो जाता है फिर गाने रह जाते हैं। फिलहाल एक कॉल आ रही है, मुझे लगता है कि ये शानिया वाले भाई है क्या। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: एक गोली डाली पांच घर खाली।
0: सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? हाँ नहीं, बहुत से बात करते हैं, मैं नंबर पहचान गया, मुझे लगा आज फिर सुनाने के लिए ये कॉल कर रहे हैं तो सुन ही लेता हूँ, मैं बहुत देर से कॉल कर रहे थे आप।
1: फजील भाई नहीं नहीं यार, तुम मेरा बेटे का जो उम्र है क्या, तुमको क्यों सुनाएगा
0: यार। नहीं, इस बेटे की उम्र भी दाढ़ी में सफेदी आ गई है तो,
1: लेकिन कोई शो तुम्हारा मिस नहीं है, मेरा भी चार बजे केमल निकलता है, 4 किलो घूमता है, तुम भी 4 बजे शो में आ जाता है।
0: अरे आज उठने भी फिर किशोर कुमार के गाने सुन लिए,
1: कल जो भूर बारिया सुनाया ना गाना, तो मेरा 40 मुंह से 40 आदमी गाना सुना।
0: अरे वाह, अच्छा ऐसे ही अगर आप गाने सुनाते रहेंगे एफएम 107 का ये द रिक्वेस्ट शो जो है, अगर आप अपने ऊँटों को सुनाते रहेंगे 40 से 80 हो जाएंगे बहुत जल्दी।
1: कभी कभी देखो, कभी कभी मालिक साहब ना इसलिए लेके 40 आदमी सलाम दे रहा है, 40 आदमी।
0: क्या बात है, मतलब मैं अच्छा ये तो मोहब्बत वाले गाने भी है ना, ऐसा ऊट वगैरह सुनते रहेंगे तो वो भी खुश रहेंगे। अच्छा ये भी एक एक एक जगह मैंने सुना भी था
1: ये आदमी लोग भी बहुत प्यार करता है, जितने मेरे आदमी बैठे ना 40 आदमी बैठे, पूरा आदमी से प्यार, सबको बोल के रखा है फजील कर शो आ रहा है।
0: अरे वाह माशाल्लाह, बस उनसे कहा करो, रिक्वेस्ट भी कर लिया करें। और वैसे मैंने आपको एक बात बतानी है कि जानवर ना म्यूजिक से बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। एक जगह मैंने देखा था, वो न्यूज आई थी बाकायदा, कि भैंस ना दूध तब देती जब वो टीवी देखती है, टीवी में म्यूजिक चलता है तो।
1: रेस वाला ऊँट है भाई, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का ऊँट हो मेरी जान।
0: अरे मेरा भाई, तब तो बहुत संभाल के रखो, कैसा कोई गाना अगर बुरा लग गया तो।
1: मैं अभी शानिया में आऊँ ना, कभी तुमको टाइम मिलता है, मक्खी मारते रहते हो घर में तुम, कबीर भाई वो मक्खी मारता, आजकल उसका काम है सोफे पे सोफे पे लाली गिराते, तो लाली गिराएगा तो मक्खी तो आएगा ना, वो मेरा भाई लाली गिरेगा तो मक्खी आएगा, वैसा ही इधर आओ शानिया में, चक्कर मारो, 2 दिन छुट्टी था तुम्हारे पास मेरी जान, वीडियो बनाओ उधर देखो, रात दिन खुला 24 शानिया में इधर आ सकते
0: हैं इंशाल्लाह। अब आपने कहा है तो मैं इस बात का वादा करता हूँ इंशाल्लाह कभी ना कभी आपसे जरूर, ये वीकेंड नहीं तो नेक्स्ट, लेकिन एक बार तो जरूर आएंगे शानिया।
1: इंशाल्लाह
0: यार, क्या 1 करोड़ का ऊंट कौन देखेगा नहीं यार,
1: वो मजाक जो है ना, मजाक में थोड़ा ख्याल किया करो।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, और क्या कर रहे
1: हैं? शेर आ गया
0: अरे नहीं, आपके बातों का जो कोड़ा पड़ता है मुझे जब जब कॉल करते हैं आप, तो वो बहुत वो कम थोड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई, माजरा थोड़ा सा वक्त कम है, अभी और गाने हमें प्ले करने हैं, चला बात
1: को पता
0: है। ओके भाई, ओके बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
1: सलाम वालेकुम।
0: तो जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता वो बता दें कि ये गाने की रिक्वेस्ट नहीं करते, बस मुझे कभी कभार डांटने के लिए कॉल करते हैं, ये प्यार है, ये मोहब्बत है ना, और ये मोहब्बत से तो हम रابطہ रखा है, और ताउम्र हम ऐसे मोहब्बत को साथ लेकर चलेंगे। फिलहाल दो गाने आ रहे हैं, आज तो बात भी ऐसी निकल रही है भाई, एकदम भारी भारी भरकम है ना।

फिलहाल किशोर कुमार की आवाज में 1969 का गाना है जो कि आराधना मूवी का है, मैं सपनों की रानी। बहुत ही लाजवाब ये ट्रैक है। इन गानों को सुनिए, एंजॉय करें FM 107 पर। जब वापस आएंगे तो हम गेम खेलेंगे पहचान कौन। म्यूजिक म्यूजिक हाँ म्यूजिक। बाकी ये बता भी दें कि ये जो गाना है किसने रिक्वेस्ट किया है। एक तो यूसुफ भाई की रिक्वेस्ट है और एक है अनुज भाई की रिक्वेस्ट। ये वाला यूसुफ भाई की रिक्वेस्ट पे है।

ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक किशोर कुमार की आवाज में, और सुनने का मन कर रहा है अगर किशोर कुमार के गाने आप 4-6 घंटे भी प्ले कर दें तो वो गाना कहीं से भी हल्का नहीं लगता, कहीं से भी मूड ऑफ नहीं होता। और खास तौर पे इस तरह के गाने, रूप तेरा मस्ताना, ऐ मेरे दिल, ओ मेरे दिल के चैन, मेरे सपनों की रानी, अरे दीवानों मुझे पहचानो। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। फिलहाल हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:49 और इस तरह के गाने आपका दिन बना जाते हैं और पूरी शाम भी। फिर इसके बाद आपका दिल करता कि यार आज जो है घर जाके टीवी पर इनके गाने प्ले कर देंगे, इनकी जो जितनी भी जबरदस्त गाने की प्लेलिस्ट है उसे प्ले कर देंगे। और मैंने कई बार यहाँ पर ऐसा किया है, कुछ ऐसे गायकार के गाने हमने यहाँ पर सुनाए हैं रिक्वेस्ट शो में जो कि बहुत अच्छा गाते हैं, तो फिर मैं घर पे जाके ना उनके गानों को टीवी में लगा कर छोड़ देता हूँ, फिर वो गाने चलते रहते हैं, मजा आ जाता है, फिर किचन का काम हो जाता है ना, ऐसे बर्तन धोने में दुख नहीं होता। फिर घर के कामों में ऐसा लगता है कि मजा आ रहा है ना। अब घर का भी बोरिंग तब लगने लगता है जब आप कुछ कर ना रहे हो, बैकग्राउंड में कुछ होता रहना चाहिए। याद है कि कहाँ इन्वेस्ट करूं, अब कहाँ से पैसे निकालूं, सैलरी से कुछ काम नहीं है। या फिर जैसे महिलाओं का होता है वो ठीक है कि काम करते करते कि देखो सास ने ये जो काम किया ना अच्छा नहीं किया, ससुर को देखो जब कहा था कि भिंडी लेकर आओ तो फिर वो भिंडी क्यों नहीं लेकर आए, मटर लेके आए, मुझे भिंडी पसंद है ना इसलिए नहीं लेकर, ये सब दिमाग चल रहा होता तो काम हो जाता है। ऐसे बैकग्राउंड में अगर गाने चल जाए किशोर कुमार के, काम

0: हो जाता है, फिर तकलीफ भी नहीं होती है।
1: खास तौर पे हम लोगों को भाई, हम लोगों से तो जबरदस्ती काम कराया जाता है, हमारा थोड़ी मन है बर्तन का, लेकिन अब किसी ने जबरदस्ती करनी तो क्या ही कर सकते। चलो यही तो खुशी का वक्त है, 4 से 5 जल्दी से खुश रहते। अभी फिलहाल पहचान कौन का वक्त आ गया है, और आज का तो यार देखो किशोर कुमार के वो हिट गाने ही लेकर आया हूँ मैं जो बहुत ज़्यादा लोगों ने सुने हुए हैं, और आज के गाने सही में ऐसे हैं कि आप पहचान जाएंगे, ऐसे हो ही नहीं सकते कि आप इनके गाने को ना पहचाने, लेकिन ये हिट गाने रहे हैं। तो जो नए लोग हैं उनको बता दें, बीच से कहीं से भी गाना मैं किशोर कुमार का प्ले करने वाला हूँ, कहीं से भी, और आपको गेस करना है गाने का नाम, ठीक है? और फिर हुक तो मैं प्ले कर ही दूंगा कि गाने का असली हुक क्या है और गाने का नाम क्या है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन बीच से जो लिरिक्स प्ले करूंगा वो हो सकता है बहुत पॉपुलर ना हुई हो, क्योंकि आम तौर पे हम हुक ज्यादा सुनते हैं और हमारे जमान पे हुक ज्यादा रहता है गाने का। ये पहला गाना पहचान कौन का, और आप हमें मैसेज करिए पहचानते हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और व्हाट्सएप का नंबर है 6662217। ये रहा गाना।

सारे जहां को पता है कि आज का गाना ये कौन सा है, गाने का नाम क्या है। जब तक आप मैसेज कर रहे हैं, बाकी लोगों के मैसेज पढ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, वालेकुम सलाम, आपने मेरे दिल की बात की, बहुत शुक्रिया। वो क्या दिल की बात है मेरे को नहीं पता, अपनी बात कर जाता हूं मैं। अनवर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, रफी साहब का भी प्रोग्राम लेके आओ, बर्थडे आ जाए किसी दिन, या फिर बर्थडे नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं है, किसी दिन तो ही जाएगा इंशाल्लाह अगस्त के महीने। फिर उसके बाद ये मैसेज है हिशाम साहब का, फजू भाई आज एक सॉन्ग सुपर नाइस वन, हाँ आज का तो बिल्कुल सही। फिर उसके बाद उस्मान औरंगज़ेब ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। फिर उसके बाद मोहब्बत में ये गाने की रिक्वेस्ट थी शायद, बिल्कुल सही कह रहे हैं फजील, ये सॉन्ग और मेरे दिल की चंद्स है, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। फिर एक भाई ने मैसेज किया था, वो मुझे मिल नहीं रहा, कह रहे भाई कायदे आज़म के ज़माने चला दिया यार। देखो कभी कभार तो दिन होता है यार, और किशोर कुमार का गाना यार सदाबहार है, फिर तो कभी भी आप प्ले कर दें। बाकी मैसेज पे आते हैं, जो पहचान कौन गेम को खेल रहा है, दानिश ने बिल्कुल सही पहचाना है। आगे फिर फलक एस आर के ने भी गेम को सही समझा, बिल्कुल सही पहचाना है। अरमान खान ने सही पहचाना है। फिर एक और है, भाई ने नाम नहीं लिखा है लेकिन बिल्कुल सही पहचाना है आपने, प्रोफाइल पर भी हिशाम ने बिल्कुल सही लिखा है, सही पहचाना आपने हिशाम साहब, बिन अरबैद इनका नाम है, सही पहचाना है आपने। शहजादा सलीम ने सही पहचाना, नज़ीर ने सही पहचाना है, एहसान अली ने, मुमताज़ ने, क्या बात है यार, मतलब आज तो ऑब्वियसली मैं कह भी रहा था कि ये तो बहुत आसानी से आप पहचान लेंगे यार, आज के गाने तो बहुत ही आसानी से, क्योंकि किशोर कुमार के जो फ़ैन है ना वो इक्का दुक्का थोड़ी है यार, मैं मेरे जैसा आदमी फ़ैन है जो जिनकी पैदाइश ही बहुत लिट हुई है। मुकीम भाई ने बिल्कुल सही पहचाना है, और सैयद हुसैन ने भी बिल्कुल सही पहचाना है, कोई भी गलत नहीं है। गाने का नाम है मस्ताना प्यार।

बस ये रिश्ता किशोर कुमार का जिनसे है वो पहचान लेंगे कि ये गाना असल में कौन सा है। नंबर 666-22107 और आपका रिश्ता क्या कहलाता है बताइएगा। किशोर कुमार के इस गाने को पहचानिए। आजाद ने ठीक एक थे सही जवाब दिया है, थोड़ा इमोजी वगैरह लगाकर जवाब दिया लेकिन मैं समझ गया। फिर उसके बाद यूसुफ भाई ने बिल्कुल सही पहचाना है पहला और दूसरा गाना। फल्के सारके ने बिल्कुल सही पहचाना है, शाम ने सही पहचाना है, अरमान ने सही पहचाना है। भाई लास्ट में ये वाला सॉन्ग करो प्लीज़ प्ले। ठीक है मैं ये वाला सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ जो पहले नंबर पर प्ले किया है। ठीक है फिर उसके बाद मोहम्मद गफ्फार ने फजील भाई खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई आप सुनाए गफ्फार साहब बिल्कुल सही पहला सॉन्ग भी और दूसरा सॉन्ग भी सही पहचाना। शहजादा सलीम ने बता दिया है बड़े फैन है वो। मकसूद ने कहा है कि मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ भाई, मैं भी सही जवाब दिया है। मलिक शफीक ने भी सही जवाब दे दिया है। एहसान अली ने कहा है हम पुराने खिलाड़ी हैं भाई,

जवाब आप लोगों ने दिया है और आज एक भी जवाब इन दो गानों में गलत नहीं है, पहली बार हुआ है मेरे ख्याल में, वरना दो करने के बाद एक ट्राई कर रहे हैं, गाते हैं अच्छा है, लिरिक्स बहुत अच्छी, म्यूजिक बहुत अच्छा, कॉम्पोजिशन लाजवाब। चाहे आप बात करें कुणाल गांजावाला का, उन्होंने भी गाना गाने की कोशिश करी है, इनके शाश्वत ने भी इनके गाने गाने की कोशिश की, हार्दिक और विक्की ने भी गाना गाने की कोशिश करी है, अच्छा मतलब कहीं से भी पीछे नहीं हटते लोग, लेकिन एक दो इंस्ट्रूमेंट के साथ अच्छी कॉम्पोजिशन का दौर, उस वक्त बहुत ज्यादा कॉम्पोजिशन नहीं होता, उस वक्त ज्यादातर लिरिक्स और गाया कौन है भाई ये देखा जाता था, तो इन दोनों ने कमाल कर दिया है। और किशोर कुमार का ये आखिरी गाना है वो पहचानिए, इसे सबने टिया, लेकिन इस गाने में बात

0: काली रात में।
1: हाँ जी बताइए गाने का नाम क्या है। उम्मीद है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जवाब देंगे। यूसुफ भाई ने बिल्कुल सही पहचाना है, बहुत उम्दा। मैं अपने चाचू के साथ टीवी पे सुनता था ये सॉन्ग। हाँ यार दानिश भाई, ये ऐसे सॉन्ग हैं कि आप नहीं सुनते थे स्पेसिफिकली, लेकिन वो उस दौर के लोग सुनते थे और हमें भी पसंद आ गया। बिल्कुल सही पहचाना है, नाम है सलीम। फिर फलक एसआर के ने भी सही पहचाना है, हिशाम भाई ने सही पहचाना है, फिर उसके बाद मुमताज़ ने भी सही पहचाना है, ओम प्रकाश ने कह दिया है कि एंट्री कर लिया है हमने द रिक्वेस्ट शो में, एहसान अली ने बहुत पहले से एंट्री करके रखा हुआ है लेकिन सही पहचान है, जहन में आ रहा है लेकिन जबान पर नहीं आ रहा है दानिश आज़ाद का कहना है, और मुकीम भाई ने कहा है कि सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है, इनकी एंट्री भी हो गई है एफएम 107 के इस खास शो में, और ये वाला पल पल दिल के पास। अच्छा ये गाना कह रहे हैं प्ले करने को एमके भाई, लेकिन यार वक्त हमारे पास बहुत कम है, मेरे ख्याल में कोई भी गाना प्ले नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी 4:58 हो चुका है, और गाने का नाम है जिसे कुणाल ने, हार्दिक ने, सब ने, शाश्वत ने गाना गाने की कोशिश करी, एंड दिस सॉन्ग इज़

0: क्या बात है, ये लाजवाब गाना है। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दी इजाजत, मुलाकात होगी अब से कल शाम एक नए थीम के साथ, एक नए जबरदस्त सिंगर के साथ, या किसी बॉलीवुड मूवी के सॉन्ग के साथ, या फिर होता है किसी ऐसे स्टार की मूवी के गानों के साथ जो बहुत ज्यादा, जिनके गाने फेमस रहे। लेकिन कल शाम को 4 बजे मेरा साथ मत छोड़ना, तुम्हारे साथ की जरूरत है और तुम्हारे बेहतरीन से लाजवाब से रिक्वेस्ट की जरूरत है। तब तक सुनते रहो FM 107 और अपना ख्याल रखो, दिल से देसी।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: ओके क्लास गेट रेडी। सारे के सारे आज अपनी किताबें निकालिए, सॉरी व्हाट्सएप निकालिए, उस पे लिखिए कबीर भाई। ये कबीर की स्पेलिंग है, डबल ई लगाओ, डबल ई आई आर। एक तो इतनी शैतान क्लास बिलीवर। तो क्या लिखेंगे हम? कबीर भाई कैसे हैं? ठीक है, इधर आओ। ये पीछे कौन है? ये पराठे खाने की क्लास है। ये इधर आओ तुम, पराठे खाने की क्लास है। व्हाट इज दिस?

Baş baş ay ay ay ay ay ay. Diyersio diyersio diyersio. Assalamu alaikum. मैं तो हवाला कबीर है सेवन पे आपका एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड आज ने सर जी बहुत बढ़िया चल रहा है भाई। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ढूंढ नहीं पा रहे मुझे, कह रहे हैं आपकी स्पेलिंग गलत है। अरे मैंने तो सही बताया, आपने गलत दी है। डबल ई आर नहीं लगाना है, ए बी आई आर लगाना है। ये दो प्रकार के लोग मुझसे पीछे टकराते हैं, एक वो जो मेरे ही नाम की स्पेलिंग गलत लिख रहे होते हैं और दूसरे वो जो कतर को कतार बोलते हैं। अंग्रेजों को बोलने दो कतार, तुम्हें नहीं बोलना है कतार। देसी लोग बोल रहे हैं यार आई मीन कतार, ओ माय गॉड। मेरा मन करता है कि मुंह पे के मुंह बनाऊं पर मैं कर नहीं पाता हूं। एनीवे कुछ मैसेजेस। यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे भाई? कह रहे टीचर कबीर भाई कैसे? और एक मैसेज आया आसिफ भाई का, मौलाना कारी साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे, क्या हाल है बच्चे? आसिफ भाई कह रहे कबीर भाई आपकी आवाज़, जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, मैं उन्हीं का इंटर्न था मेरे भाई 2 साल, और मेरे पड़ोसी भी हैं वो साथ साथ। तो एक मैसेज, सर क्लास में बोरिंग फील हो रहा है, थोड़ा सा ढोल बजा। ये देख रहे हैं कैसे बचे इस क्लास के, ढोल बजा दो, टीचर को बोल रहे हैं ढोल बजा दो, पता भी नहीं देखिए आप। ये मेरी गलती, मैंने हाथ ज़्यादा ढीला छोड़ दिया है ना, बज गए ढोल, पढ़ाई पर ध्यान देना। कामरान भाई के लिए ढोल बजाए जा रहे हैं पूरे 5 रियाल के। बका जी 5:04 हो गए, 5 रियाल के बजाऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्लास पे ध्यान दो। वालेकुम सलाम अशफाक साहब, क्या हाल है आपके? इनके बाद मैसेज किया है, कैसे कबीर भाई? मैं बढ़िया भाई, हुसैन भाई आप सुनाइए क्या हाल है? और मैसेज आया वालेकुम सलाम, मुबीन भाई ने डबल ई लगा के जानबूझ के छेड़ा है मुझे। कल से मैं एक वो बड़ा स्केल आता ना वो लेके आऊँगा, लकड़ी वाला, जोर से लगा चाट। अब्दुल नवीद साहब वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? और एक मैसेज सलाम कबीर भाई जान, वालेकुम सलाम एम के भाई क्या लें? और एक मैसेज है फलक साहब का, वालेकुम सलाम। देन क्या नाम है आपका भाई? असकान असका इन इम्बान, अच्छा वालेकुम सलाम मेरे भाई। देन मकसूद भाई खादिम साहब वालेकुम सलाम, हिशाम साहब वालेकुम सलाम, आरिफ भाई, भाई आरिफ क्या लें? वालेकुम सलाम। क्या मुझे पहचानो? मैं पहचान लिया भाई, स्पोर्ट्स अपडेट में मिलते हैं आप मुझसे। हमारी दोस्ती खेल कूद में हुई थी। और ये आसिफ भाई कह रहे हैं तो भाई बजा दो ना ढोल, बजाया ना मैंने कबीर या कबीर, के ए बी आई आर। आसिफ भाई दूसरी मरतबा आपने पूछा, मैं मुंबई तक दौड़ाऊंगा, मैं सीरियसली, मैं मारता मारता नहीं हूँ, दौड़ाता बहुत ज़्यादा हूँ मैं। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ पिज्ज़ा पार्टी हो जाए। ओहो पिज्ज़ा पार्टी, मैं अभी अभी जस्ट पिज्ज़ा ही खा के आया हूँ इत्तफाकन। आरिफ भाई को बहुत सारा, आरिफ भाई कह रहे लव यू भाई, यही तो प्यार है जी मेरा भाई, भाईचारा ऑन टॉप क्या। और एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है माशाल्लाह, आमिर सुल्तान साहब ने ऐसे कह दिया। खादिम साहब

0: डबल ई आर ही लगा रहे हैं। कुछ बच्चे बड़े ढीठ होते, नहीं सुधरते, कुछ कर ले आप नहीं सुधरते। चलो ठीक है, मेरी स्पेलिंग तो ठीक है, जैसे मर्जी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरी सारे देशियों से एक गुजारिश है, कतार मत बोलो, एक्सेंट में नहीं अच्छा लगता यार। मैं आपके मुंह पे बोल नहीं पाता क्योंकि क्या है, मेरे नाम से, मेरे नाम के आगे आरजे लगा हुआ है, तो मुझे बहुत तहजीब और तमद्दुन से बात करनी पड़ती है। क्यों मेरे अंदर का दिल्ली वाला जगा रहे हो? कतार मत बोलो, कतर। कभी सुना है किसी लोकल को बोलते हुए कतार? तुसी केड़ी कतार रहंदे हो? अच्छा एनीवे, आज का जो किस्सा जबरदस्त होने वाला है, जैसे मैंने कहा था कि इंटेंसिटी कहानियों की बढ़ती चली जाएगी, कल जो आपने सुनी उतनी ही, उसे एक दो इंच ऊपर इंटेंसिटी बाकी आज की कहानी सुनाऊंगा मैं। आज भी वही साहब है निकल जाएगी कहानी सुनने के बाद। अब बोलेंगे हैं क्या कह रहे हो ये, वैसी वाली कहानी है। एंड इसके साथ वाला भी कुछ देर में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम फैयाज भाई को बहुत सारा प्यार क्या, और उस्मान भाई अस्सलाम, और सैयद खादिम साहब अटके हुए कह रहे हैं हाथ से कबीर भाई। खादिम भाई सेंड योर लोकेशन, आई विल टीच यू स्पेलिंग ऑफ माई नेम, ओके? और बाकी प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है, कोई भी कतार बोले उसको वहीं टोक दो, मैं तो टोक नहीं सकता, फिर लोग बोलेंगे देखो आरजे कितने बदतमीजी से बात कर रहा है, तो आप टोक दिया करो ठीक है। मैं किसी दिन जो है वो जैसे ऋतिक रोशन ने पहना था ना नकाब, वैसा पहन के आऊँगा मैं, उस दिन इनको बताऊँगा अच्छे तरीके से। मैं बता, इतना कंट्रोल करना पड़ता है आसपास भीड़ो, और उसमें जो है देसी लोग बोल रहे हो या कतार में तो बहुत गर्मी है यार। और एक मैसेज हमको भी भेज दिया करो, आपका बयान मौलाना साहब भेज दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, अरे मुबारक हो, क्यों कह जा रहे हैं लोग मुझे। और मलिक वकास साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, क्या हाल है, गुड इवनिंग, कल वाली स्टोरी में क्या ट्विस्ट था, यकीन करो मैं एंड तक सोच रहा था कि बंदा खुद अपनी बीवियों को सलटा रहा है, लेकिन एंड में क्या ही निकला भाई, आज भी एंड में ऐसा ही कुछ होगा वकास साहब, धरती ला देंगे। वैसे भाई वाइस तो मेरा काम 3 बजे ख़त्म हो जाता है तो रूम चला जाता हूँ, लेकिन आज मौका मिला है एक बार ठीक, मेरे व्हाट्सएप को पिन करके डेली स्टोरी भेज दिया करो। भाई को बहुत सारा प्यार यार, अरे भाई इतनी मोहब्बत से बोलोगे तो यार फिर तो करना ही पड़ेगा यार, बहुत प्यार भाई को, थैंक यू सो मच आरिफ भाई। और हमें एक भाई ने मैसेज किया जिनका नाम बड़ा, जिनका नाम है ख्याल, आज ख्याल खुद मेरे पास आया है, वाह ख्याल भाई, वालेकुम अस्सलाम। और एक मैसेज मजा आने वाला है, बाकी हरियाणवी में कुछ बोल दो बहुत अच्छा लग देगा। ऐसे कैसे बोल दूं, पहले कौन हो आप, एक जाया कौन हो आप। AI kabir.ai, मैं एक AI हूँ, तो आप मुझे बोलिए कुछ काम दीजिए, मैं करके दिखाता हूँ ठीक है, मैं AI हूँ। मिलते हैं 11:02 के बाद। कौन हो आप, स्टे ट्यून्ड।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है, महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

शाबाशी मिलेगी, लेकिन ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है। आज मैं लॉकअप देख रहा था, एक चल रहा रियलिटी शो, आई एम सो सॉरी आप मुझे जज करें कि देखो रियलिटी शो देख रहा है, मैं क्या करूँ इस बारे में, मजबूर था देखने के लिए तो मैंने ऐसे टाइम पास में ना चीप थ्रिल्स तो मैं देख रहा था, तो उसमें एक टास्क और मैं वही टास्क आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले राशिद भाई वालेकुम अस्सलाम, तो अब जरा इमेजिन कीजिए, ठीक है, इमेजिन करना है आपको कि आप और आपका दोस्त, बेस्ट फ्रेंड आपका, ठीक है, आप दोनों के दोनों एक जगह कैद हैं और कहा यह जा रहा है कि वहां से, वहां पे जो जिस जगह पे आप दोनों कैद हैं, एक दूसरे को आपको कन्विंस करना है, जो वहां पर रहेगा उसको मिलेगा 10 लाख का इनाम, मतलब चला जाएगा वो खाली हाथ जाएगा। तो अब आपके दोस्त को आपको कन्विंस करना है कि भाई 10 लाख मुझे लेने दे, तू चला जा, या फिर आप खुद वॉकआउट कर जाएंगे, एंड माइंड यू आप इनाम शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, क्या करेंगे आप? एक मैसेज है आर्यवा लिखते हैं, भाई अभी भी कहानी में मेन कैरेक्टर को मार देते हो गए, जो सुबह आते थे तब भी जितने भी कहानी सुनाई है उसमें 3 से 4 नेचुरल डेथ, 2 से 3 जिंदा छोड़ दिए, बाकी सब मार डाले थे आपने, किसी को प्लेन से गिरा के, तो किसी को क्या करके कतर फ्लाइट से, तो किसी को वांटेड बना के दूसरे डेस्क ले जाना, भाई यही सब चल रहा है अभी तो, यही सब है भाई परेशान है, ऐसा ही है भाई। और एक और मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और एक भाई ने मैसेज किया है और अच्छा, तो मैं सवाल दोहराता हूँ, देखो सवाल सुनो, तो आप और आपके दोस्त जो हैं वो एक जगह कह दें, वहाँ से जो निकल जाएगा वो खाली हाथ जाएगा, और जो आप हैं, आपने अगर अपने दोस्त को कन्विंस कर लिया तो आप मिलेंगे 10 लाख, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपके दोस्त को मिल जाएंगे और आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा। आपका क्या स्टैंड रहेगा, क्या करेंगे आप? अपने कन्विंस करेंगे कि यार मुझे रहने देना यार, यहाँ पे मुझे लेने देना, या फिर आप कुर्बान कर देंगे 10 लाख रुपए, जा जी ले अपनी जिंदगी। एंड माइंड यू एक ही रूल है, कंडीशन अप्लाई, आप उस इनाम को शेयर नहीं कर सकते, ये है सवाल। अब आओ सच्ची सच्ची बताना, देखो झूठ वूट नहीं बोलना इसमें, हाँ खाम खा के शरीफ नहीं बनना है यहाँ पे, ठीक है। सो 666-22-107 नंबर है, 666-22-107, एंड आप बता सकते हैं कि आपका इस पे क्या कहना है। मुझे पता है अभी लोग बहुत ज्यादा शरीफ बन के आएंगे, अरे मैं तो अपने दोस्त से कुर्बान कर दूंगा, दोस्ती बहुत जरूरी है उस टाइम मुझे पता है क्या होगा अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। सो गिवन दिस हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आई रियली वॉन्ट टू नो कि आप क्या करेंगे। एक भाई ने मैसेज किया है एक भाई हैं, इनका नाम भी आरिफ है, और आरिफ भाई कह रहे हैं कि कबीर भाई मैं तो अपने दोस्त को कन्विंस करूंगा, देख मैंने तुझे 10,000 दिए थे वो काट के, ये बाकी मुझे रख लेने दे, बाकी मैं तुझे आने वक्त में उधार देता रहूंगा। वाह वाह वाह वाह उधारी पे कटवाएंगे जिंदगी उसकी, लेकिन एक कौड़ी नहीं देंगे उसको, वैसे भी आप शेयर नहीं कर सकते, सो माइंड यू यू कैन नॉट शेयर द अमाउंट। एक और मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये कह रहे हैं कबीर भाई आप सच में AI तो नहीं, क्योंकि मैंने आपको कभी भी देखा नहीं, तो मुझे नहीं देखा तो उसका मतलब मैं AI हो गया, ये कैसा लॉजिक है भाई एक मैसेज है, सीधा धमका सकते हैं कि निकल जा नहीं तो धमकाओगे तो क्यों जाएगा भाई, 10 लाख की बात है मेरे भाई, कैसे चला जाएगा, ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया ना। माइंड यू कि आपके पास कोई राज होगा तो ये आप ऐसा कर पाएंगे, वरना तो कैसे भगाएंगे उसको, दाना उनका ना नहीं काम आएगा, क्या दोबारा सोचिए, ठीक है। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, ये इनका नाम, क्या नाम है आपका, शहजीना, सही पढ़ा हूँ मैं, ये कह रही है कि मेरी अगर बेस्ट फ्रेंड हुई तो मैं तो उसकी क्या, मैं समझ में नहीं आया शहजीना आपने क्या लिखा है, उसके बाद में उन्होंने लिखा है कि मैं उसको पटा लूंगी, मुझे पता है कैसे मनाना है, और मैं उसे बाहर भेज के इनाम खुद ले लूंगी। बहुत बढ़िया, ऐसी दोस्त हर किसी को मिले, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो कितने होनहार लोग, कितना सच बोलने वाले लोग हैं, पब्लिक आज बिल्कुल अलग है भाई। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेक्सटिंग। राशिद भाई वालेकुम अस्सलाम, और एक और भाई हैं, वालेकुम अस्सलाम। हाँ तो भैया देखो ये सिचुएशन है, अब आप देख लीजिए क्या करना है। मैं एक और बार

0: बता देता हूँ सिचुएशन, तो आप और आपका दोस्त एक जगह पर हैं, ठीक है, कैद हुए हुए हैं। अब इस कैद से जो रिहा हो जाएगा उसे खैर जाना पड़ेगा, और जो वहाँ रह जाएगा उसे इनाम मिलेगा। तो क्या करेंगे आप? क्या अपने दोस्त को कन्विंस करेंगे कि मुझे रहने दे और इनाम लेने दे, या फिर आप वहाँ से चुपचाप चले जाएंगे कि कोई बात नहीं यार, इनाम तू रख, मैं यहाँ से जा रहा हूँ? ये है सवाल। एक मैसेज है, सलाम कबीर, गुड इवनिंग, लॉट्स ऑफ लव, एंड कारी साहब का नाम बता दें प्लीज़। कौन से कारी साहब का नाम बता दूँ? मैं समझा नहीं। अरे वो मुझे ही कह रहे थे साहब, कौन से कारी साहब का नाम बताऊँ मैं। और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, शाबाश। एक मैसेज है, क्या आपका नाम रेडबुल है? एनर्जी ड्रिंक नहीं भाई। मैसेज है, मैं तो दोस्त को इमोशनली ब्लैकमेल करूंगा मेरा भाई। फलक भाई, क्या आपका आपका टूल क्या है इमोशनल ब्लैकमेल करने का? हाउ विल यू डू इट? एक मैसेज, कबीर भाई जो दुआ पढ़ते हैं, अच्छा वो उनका नाम है तला भाई, तला भाई हमारे यहाँ शो भी करते हैं, बहुत सारे शोज करते हैं, अरेबिक सिखाते हैं और पुलिस और अवाम भी करते हैं कई मरतबा, तो तला भाई की आवाज़ है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है उनकी, और बंदा शो भी बहुत बढ़िया करता है। एक मैसेज, सलाम भाई, डिपेंड करता है 10 लाख रुपए हैं या 10 रियाल हैं, रुपीज़ होंगे तो आई विल गिव अप, रियाल होंगे तो दोस्त को धक्का दे के बाहर निकाल देंगे। क्यों 10 लाख रुपए में क्या बुराई है मुझे बताओ साद मुस्तफ़ा भाई, मैं जानना चाहता हूँ प्रॉब्लम क्या है 10 लाख रुपए में, कम लग रहे हैं क्या लालची आदमी? नहीं नहीं, मैं 10 लाख रुपए ही बोलूंगा, रियाल तो ज्यादा हो जाएगा। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, ऐसा नहीं हो सकता दोस्त को बोले भाई तू चला जा, बाद में 50-50 बांट लेंगे, बांटने का सिस्टम ही नहीं मोहम्मद भाई, शर्त ये है कि आप जो है उससे उसके उसके बाद कभी नहीं मिल पाएंगे, और बांटने का तो कोई सही है, ये केस है, देर इज नो शेयरिंग, इट इज योर्स और हिज और हर, सिंपल सी बात है, ठीक है। और एक मैसेज आया, खादिम है, खादिम भाई वालेकुम अस्सलाम, और खादिम भाई ने फिर दिल लगा के भेजा, थैंक यू सो मच खादिम भाई, सी स्पेलिंग के साथ। बहुत सारा प्यार। एक मैसेज, कबीर भाई आई विल गिव इट टू माय फ्रेंड बिकॉज इन लाइफ आई डिडंट वांट एनी चॉकलेट, सो लेट हिम एंजॉय। वाह, इतने बड़े बड़े दिल हैं लोगों के, मकसूद भाई क्या बात है, क्या बात है भाई। मैं तो अपने दोस्त को बोलूँगा भाई चला जाए ऐसे चुपचाप। मैं देना देता को नहीं भाई। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं अपने दोस्त को इमोशनली ब्लैकमेल, मगर कैसे करेंगे? एक मैसेज है, मेरा एक दोस्त है अली, बात यह है कि मैं और एक जब बस है? क्या जीत सकता है तो कोई, मैं समझा नहीं मुबीन भाई क्या कहेगा ये आप। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाजी, 10 लाख US डॉलर हैं तो दोस्ती तो जज्बाती बातें मर मर के निकल जाएंगे, जज्बाती बातें मार मार के निकल जाएंगे, राणा साहब कह रहे हैं, डॉलर फोन बात नहीं करते भाई, हम रुपए की बात कर रहे हैं। मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, याया भाई लिखते हैं, भाई आपकी पिक्चर वेबसाइट पर मौजूद है, लिंक सेंड कर दूँ? भाई वैसे दोस्ती में कोई बगा नहीं, बट इन दिस सिचुएशन अगर उसको नहीं पता तो निकाल दूँ और फिर वी विल शेयर। कौन इतना कौन चेक करेगा बाद में? ना ना ना, शर्त यही है कि नो शेयरिंग भाई। एक मैसेज है, जीएस के साहब लिखते हैं, भाई मैंने मेरे दोस्त से 10 लाख लेने हैं, बहुत टाइम दे नहीं रहा, मैं उसको जेल में रहने दूंगा और उसको बाहर आते ही पकड़ लूंगा। ये अलग ही सीन चल रहा है भाई, देसी लोगों का अलग ही सीन चल रहा है। कहाँ तक जाएगा? एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, यो ब्रो, लॉन्ग टाइम, आज के सवाल के लिए भाई मैं अपनी फ्रीडम चाहिए, फ्री रहे तो ऐसे बहुत से 10 लाख जीत लेंगे या कमा लेंगे। साहिल भाई हमारा नेता कैसा हो, साहिल भाई जैसा हो, साहिल भाई लॉन्ग टाइम नो सी, क्या बात है यार, इतने टाइम से गायब थे आप। तो कुछ लोग जो हैं वो तो बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं शरीफ वाले मैसेज भी कर रहे हैं। एक मैसेज है, आरिफ अंसारी साहब को लिखते हैं, भाई मेरा दोस्त बहुत ही, मुझे ही पीछे हटना पड़ेगा। इन्हें भरोसा इनके दोस्त जन माने को नहीं भाई। यूसुफ भाई कह रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूज सवाल है, सच तो कोई कहेगा नहीं, मैं कह रहा हूँ सच कि सबको पैसे चाहिए, मगर मेरी बात कहें तो उसको बोलूँगा कि तू ले ले कोई ना, एंड डोंट से, सब यहाँ दरिया दिल हैं। ये बात तो है, दरिया दिली मैं दिखाऊंगा भाई उस टाइम पर, कोई दरिया दिली नहीं है। एक बात है, क्या रीवा किस गोट का नाम है, क्या मतलब ये क्या मैसेज किया है इन्होंने, रेहान भाई क्या बात हुई मुदसर, मैं समझा नहीं। वैसे मैंने सेम ही बोला है, अली ने सुनेगा मेरा, अली सुन रहा है क्या? अली भाई ये मुबीन भाई बहुत चालू है, दूर रहना इनसे, बता रहा हूँ तुम्हें, खाम खान के चक्करों मत पड़ो भाई। अली एक कॉल आ रही, रुको। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई,
0: कैसे मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई एकदम शानदार, आप सुनाइए।
1: अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह भाई।
0: जी भाई क्या कहना चाहेंगे?
1: पहले ही बात है कबीर भाई,

0: कोई नहीं मानता है भाई,
1: कोई नहीं मानता, तो करेंगे क्या आप, क्या करिएगा
0: भाई की बात, धक्के मार के मैं गोदाम डर
1: जाऊंगा यही उम्मीद थी मुझे, कोई नहीं छोड़ता भाई, मैं भाई आपके साथ हूँ, मैं छोड़े कोई नहीं भाई, कोई नहीं छोड़ने वाला, ये बात तो सच है, शाबाश इस सच्चाई के लिए, बहुत बढ़िया।
0: 1 रुपए का चिंगम कबीर भाई, चिंगम वही वाला हिसाब है भाई।
1: क्या बात कही है, क्या बात कही मेरे भाई ने। वैसे आप अमूमन खुले हाथ के हैं, थोड़े कंजूसी आ जाती है कई मरतबा, क्या सीन रहता
0: है? अपने पास है तो अपना क्या हिसाब रहे तो ठूक ठाक, नहीं तो चुपचाप।
1: अरे यार अच्छा डायलॉग था ये, अच्छा डायलॉग था, दोबारा बोलो क्या डायलॉग था ये?
0: सरफराज बात कर रहा
1: हूँ। नहीं सरफराज भाई, डायलॉग क्या था आपका अभी जो आपने बोला,
0: पहले वाला या बाद वाला?
1: बाद वाला, अभी जो बोला चुपचाप ठीक ठाक जो आपने बोला वो क्या था?
0: रहे तो ठीक ठाक, नहीं तो चुपचाप।
1: अरे यार क्या बात है यार, क्या बात, क्या कोटेशन दिए भाई, ये तो व्हाट्सएप पे लगाने वाली है। जगह मिलेगी पूरी पूरी, क्या बात है, क्या बात है,
0: अपना भाई हिसाब है तो ठीक है,
1: अच्छा
0: नहीं है तो शांत रहो बस, खराब।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
0: 15 दिन तक जहाँ मर्जी वहाँ खाना खाओ, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, उसके
1: बहुत शानदार ये जिंदगी, आप मतलब ज्यादा ही आज में जी रहे हैं आप, कल की भी टेंशन ये परसों की तो है ही नहीं।
0: कल किसने देखा कबीर भाई?
1: सही बात है, सही बात है, कल किसने देखा, आपने तो परसों का तो बिल्कुल भी नहीं सोचा, वो कल का भी नहीं, आज ही आज,
0: बस वही है अपने औकात के हिसाब से।
1: औकात अनुसार, साफ सीधी बात,
0: औकात अनुसार।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस सरफराज भाई। नहीं नहीं सही किया, सही किया आपने, मैंने एक्चुअली में नजर नहीं गई आपकी कॉल, ऐसी है ना मेरी फौरन नजर गई उस बात पे, तो अच्छा किया आपने कॉल कर ली, बहुत मजा आया सरफराज भाई आपसे बात करके।
0: सुन के तेरे
1: ताज भी
0: आ जाते,
1: अरे छेड़े हो सरफराज भाई, मैं थोड़ी दूंगा 10 लाख। अरे मेरे भाई को बहुत सारा प्यार सरफराज भाई, बहुत सारा प्यार भाई को, थैंक यू सो मच मेरी जान, थैंक यू,
0: बात करके हो जाता है
1: मेरा मेरे भाई, थैंक यू सो मच, आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है, बरकरार रखिए इसे, ख्याल रखिए, अरे बस ख्याल रखो मेरी जान, हाँ
0: ठीक है,
1: ठीक है,
0: वाले को बुरा ना लगे बस।
1: आहा, ये मीठी छुरी, ये बॉय। ठीक है सरफराज भाई, समझ गया मैं, आज आपको डन हो गया।
0: ठीक है भाई,
1: बस कुछ देर भाई, कुछ देर में शुरू कर रहा हूँ,
0: कहानी के लिए मैं इस टाइम ड्यूटी लिया हूँ, बात का टाइम ड्यूटी दे दो।
1: अब बस अभी आई कहानी, बस अभी आई कहानी मेरी जान, बस अभी शुरू करो।
0: ओके ओके भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
1: ओके मेरा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। भाई के बाद एक मैसेज करें भाई, गुड इवनिंग, श्रद्धा कपूर एकता कपूर के सीरियल में काम मिलेगा सरफराज भाई को, बिल्कुल मिलेगा, इकबाल भाई इनका तो नहीं। एक और कॉल आ रही है, उठा लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, क्या हाल चाल भाई के?
1: क्या हाल है भाई के? बड़ा एकदम शानदार चला है भाई।
2: अरे भाई मैं तो भाई, कहानी तो नहीं हुई होगी अभी तक?
1: नहीं कहानी तो अभी शुरू कर रहा हूँ बस, मैं आपकी कॉल के तुरंत बाद है।
2: ठीक है, मैं सोचा मैं लेट हो जाऊंगा, मैं अभी बस इतनी जल्दी काम निपटाया हूँ
1: भाई, मुखालफा देना पड़ जाता है आपको, लेट हो जाते हैं कहानी के लिए तो मुखालफा लगता है, अब ऐसे हल्के में थोड़ी छोड़ते हैं हम, वो तो अच्छा हुआ टाइम पे आ गया।
2: भाई तो मुझे भी सुनना था, मुबारक हो। हाँ एक कॉलर ने कॉल की, हाँ अच्छा हुआ आप मिस कर गए कहानियाँ, डायरेक्ट बोल रहे हो उसको यार, है ना, अरे क्या बोल रहा हूँ
1: यार। तो करना पड़ता है भाई, क्या करें, ताने हमें भी मारने पड़ते हैं। तो बताइए आपने सवाल सुना नहीं सुना?
2: नहीं सुना, क्या था टॉपिक?
1: ये था कि आपका और आपका दोस्त, मान लीजिए एक जगह पे कैद हैं, ठीक है, टास्क ये है कि आपको अपने दोस्त को कन्विंस करना है कि वो बाहर चला जाए और इनाम आपको मिल जाएगा, या तो आप इनाम अपने दोस्त के लिए छोड़ जाएं और खुद बाहर निकल जाएं, क्या करेंगे इस सिचुएशन में?
2: मैं उसको कन्विंस करूंगा कि बाहर चला जाए, इनाम मैं ले लेता
1: हूं। अच्छा, और शेयरिंग करने का कुछ सीन नहीं है? ठीक है, शेयरिंग नहीं कर सकते?
2: शेयरिंग नहीं कर सकते,
1: नहीं कर सकते,
2: नहीं तो अगर मेरा वो
1: जिगरी
2: है तो भाई मैं छोड़ दूंगा।
1: ए, मोहब्बत जिंदाबाद, क्या
2: भाई क्या है, मैं दिल्ली से और मैं फ्रेंडशिप पे विश्वास करता हूँ आपकी जिगरी पे।
1: अरे बाबा जी कौन सी पहाड़ी पे बैठते हैं हम, बताइए मुझे, मैं भी आना चाहूँ।
2: पैसे पैसे तो बहुत कमा लेंगे भाई।
1: ऐसी लोगों की तलाश रहती है।

0: बिल्कुल भाई, अगर हो सकता है, क्योंकि अगर उससे उसको ज्यादा जरूरत हो मुझसे, क्योंकि भाई अगर वो मेरा जिगरी है तो मुझे उसके हालात पता होंगे और उससे मेरे हालात पता होंगे।
1: मैं बता रहा हूँ, रो दूंगा, मत करो, झेड़ो मेरे इमोशनल तार को, कैसी बात है।
0: अच्छा बाकी भाई मैं आपको पीछे मैसेज कर दूंगा कि मैं एक्चुअल क्या करूंगा।
1: हाँ वो मुझे मैसेज कर देना, डिटेल में बता रहा मुझे, डिटेल में। ये तो आपकी ये तो आपने इमेज क्लियर करी है अपनी, ये मैं संभाल लूंगा, बोल दूंगा भाई बहुत बढ़िया अपना। बाकी मैसेज में अपना असली रूप दिखा दो, ठीक है?
0: ठीक है भाई यार,
1: बस अब कहानी सुनने को तैयार हो जाइए, शुरू कर रहा हूँ आपकी कॉल के बाद तुरंत।
0: चले भाई ठीक है, मैं बस अब रेडी हूँ, पूरा एकदम तैयारी में हूँ।
1: ठीक है डन, अरे जान ठीक है, डन,
0: चले ठीक है भाई,
1: ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और भाई के बाद तुरंत मैं जल्दी से मैसेज कर दूँ, पढ़ लूँ, सॉरी भाई आपकी कहानी के चक्कर में है, क्या हो गई मैं समझा नहीं, तबस्सुम बहन को हंसी आ गई बात सुन के। और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कामरान अब्बास भाई, और क्या खबर है भाई? सर गुड इवनिंग भाई, बढ़िया चल रहा भाई। ये मुर्शद साहब ने मैसेज किया है, और एक मैसेज है, कल स्पाइडरमैन देखी मज़ा ही आ गया, आपने देखी? नहीं भाई मैं देखने जाऊंगा इंशाल्लाह, मेरा प्लान एक और मूवी पर है, सबसे पहले वारपन की तरफ जा रहा हूँ मैं, स्पाइडरमैन भी देखूंगा। टाइल भाई लिखते हैं, हाँ भाई ऑफिस शिफ्ट हो गई है, शिफ्ट हो गया है, कतर क्या घर से 6 मिनट दूरी पर, 6 मिनट की दूरी पर, खाना वाना सब वहीं। और जब तक गाड़ी ठंडी होती है उससे पहले घर आ जाता है, एंड फिर घर जाना पड़ता है, इसलिए भाई शो मिस हो रहा है, कतई मौत चल रही, 6 मिनट की दूरी पर घर, बताइए इनका। मेरा नाम उल्टा और सीधा दोनों लिखा है इन्होंने, वाह बहुत बढ़िया शानदार। सलाम सर जी, वालेकुम अस्सलाम, वो साथ आप कैसे हैं आप? नसीम साहब वालेकुम अस्सलाम, अनुज भाई गुड इवनिंग, हरा एक पर्दा पर्दे पर्दा, वही तो बहन वही चल रहा है दुनिया में। एक मैसेज है, चले जाएं वरना ख़त्म हो जाएंगे ये स्पाइडर, क्या मिला है आपको ये क्या है क्या ये, मैं समझ नहीं पा रहा, ये क्या फ्रिज मैगनेट है क्या ये? ठीक है तो अब मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ, मैं आपको कल की कहानी, आपको अगर आपने कल की कहानी सुनी है तो जितनी कल की थी ना एक दो नॉच उसे ऊपर ले जाएंगे, आज की कहानी में भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको फुल भाई साहब मजा आ जाएंगे, तो बस तैयार रहिए इस चीज़ के लिए। और अगर आप मुझे लाइव सुन रहे हैं, इन केस यू लिसनिंग टू मी लाइव, प्लीज़ टेक्स्ट मी, आप एक डॉट भी लगा सकते हैं कि हाँ जी लाइव सुन रहा हूँ, तो मैं समझ जाऊँगा ऑडियंस में कौन कौन है, ठीक है भाई? एक मैं जल्दी से छोटा सा प्रोमो कहेंगे यार, एक सेकेंड, छोटा छोटा जहा प्रोमो, छोटा सा बिल्कुल प्यारा सा प्रोमो चला देता हूँ, उसके बाद मिलते हैं।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है,
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस, और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107,
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
1: हाँ जी तो तैयार हैं आप, होपफुली आप तैयार हैं ही, अरे मैंने माइक पे मार दिया, सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी माइक जी। तो अब मैं ज़रा शुरू करता हूँ, तो सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी बात को ठेस पहुँचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रमोट करने को प्रमोट नहीं करती है, FM 107 किसी भी पोजिशन को ना तो बढ़ावा देता ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम बढ़िया वाला भाई, बढ़िया वाला। तो वॉल्यूम आई गेस आपने बढ़ा ली होगी, नहीं बढ़ाई तो अभी भी टाइम है, बढ़ा लीजिए, मैं शुरू कर रहा हूँ आज का ये किस्सा, चलो जी। ओके तो आज का किस्सा जो है वो सुनाने के लिए मुझे कई साल आपको पीछे ले जाना होगा, तो चलिए मेरे साथ वक्त के पहिए को वापस पीछे घुमाते हैं और चलते हैं जरा 1885 में, ठीक है? मार्च का महीना था, सुबह का वक्त था, इट वॉज 12th of March इन द मॉर्निंग, और इस वक्त एक नौजवान लड़का जिसका नाम था हेनरी ज़िगलैंड, वो जो था अपने घोड़े को चला के ले जा रहा था, इनफैक्ट घुमा रहा था फैमिली फार्म में। उसका जो फैमिली फार्म था ये ड्राइनर टाउन नाम की जगह थी मिनेसोटा यूएसए, वहां पे चला रहा था। अब हेनरी के पास जो एक जिसे वो इधर उधर चला रहा था, एक्चुअली में घोड़े को हुफ इंजरी हुई थी जिसकी वजह से घोड़ा चल नहीं पा रहा था, बहुत दिक्कत में था, और अभी उसकी रिकवरिंग चल रही थी। तो हेनरी ने सोचा अपना, मैं अपने इस साथी को, इस घोड़े को जरा वॉक पे ले जाऊं, एक्सरसाइज भी हो जाएगी उसकी, और एक एक अंदाजा हो जाएगा कि अभी जो ये घोड़ा है चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, कितना चल पा रहा है, दर्द है कि नहीं। और हेनरी बहुत अच्छे मूड में था, जबरदस्त

एकदम होता ना किसी किसी दिन आपको लगता भाई सब बढ़िया है। हेनरी के साथ बिल्कुल वैसे ही था। खूबसूरत मौसम, जहां तक नजर जाए वहां तक हरियाली, बिल्कुल मिड मौसम, न ठंडा है न गर्म है, हवाएं चल रही हैं। और इस बात का एहसास कि जिंदगी में कितना कुछ है, कितनी खूबसूरत जिंदगी, ये फीलिंग, ये एहसास जो उसे हो रहा था, ये उसके लिए आम नहीं है क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल हो चुकी थी, इनफैक्ट एग्जैक्ट ऑपोजिट हो चुका था। तो हेनरी के साथ क्या हुआ, हेनरी ज़िगलैंड जो बंदा है, इसकी एंगेजमेंट उस वक्त पहले, और जिस लड़की से एंगेजमेंट, उसका नाम था मेजी टिकना। मेजी और हेनरी दोनों मिले थे 5 साल पहले, बातचीत शुरू हुई और बातचीत जो थी वो प्यार में बदल गई। दोनों के दोनों अपने अर्ली 20s में थे और इनिशियली वो जो होता है ना जो रोमांस ब्लूम करता है, बिल्कुल दोनों के साथ वैसा ही था। और बहुत अच्छा वक्त इन दोनों के साथ में चला उस वक्त भी, और इसने सोचा कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करते, चट मंगनी पड़ ब्याह कर लेते हैं। अब मंगनी तो होगी, इंगेजमेंट तो होगी, लेकिन शादी का जब फैसला लेना था तब दोनों के डिले किए जा रहे थे। बट मीनवाइल एक बहुत बड़ा फैसला हेनरी ने लिया। हेनरी ने कहा काम करो तो मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ। अब उस टाइम पे, इवन एट दैट टाइम इन यूएस, बहुत बड़ी बात थी कि आप किसी को बोलें कि मेरे साथ रहने लग जाओ, आपकी शादी नहीं हुई। पर हेनरी ने जिद करी और मेजी को मानना पड़ा। पर मेजी ने कहा जल्दी शादी करेंगे हम, प्रॉमिस मी। और हेनरी ने कहा हाँ क्यों नहीं, ऑफकोर्स वी विल। तो दोनों के दोनों शिफ्ट हो गए और जो शादी का फैसला था उसमें लग रहा था टाइम। वेडिंग का दिन आ ही नहीं रहा, हेनरी बिजी हो गया अपने फार्मिंग में, खेती बाड़ी में, और मेजी जो थी उसकी जॉब जो थी वो पकड़ ली थी टीचिंग की, बहुत सिंपल बहुत सरल। और हेनरी जो था समवेयर इन द बैक ऑफ हिज माइंड वो सोच रहा था अरे सब सही तो है यार, मैं इसको कैसे बताऊं, सब सही चल तो रहा है, शादी का खर्चा करना ही क्यों है और जल्दी क्या है। इसी चक्कर में टालते टालते साल निकलते रहे। मेजी को अब आने लगा गुस्सा और वो हर रोज हेनरी से पूछने लगी तुम तो मुझे डेट बताओ, हेनरी आज के आज मुझे डेट बताओ, कब कर रहे हैं हम शादी, आई वॉन्ट टू नो द डेट। पर जैसे जैसे वो बार बार पूछती थी वो रिएक्शन ही नहीं देता था ठीक से, और वो कहता था हाँ हाँ हम बिल्कुल जल्दी करेंगे। मगर उसके माइंड में इतना जोर, इतना प्रेशर देने के बाद दिमाग में ये आ रहा था यार करनी क्यों है, सब ठीक तो है। और साथ में ये भी सोच रहा था कि यार आई डोंट नो मुझे इससे शादी करनी भी है या नहीं। और जब ये सोच रहा था तो कुछ दिनों बाद मेजी ने एक अल्टीमेटम दे दिया। वो किचन में खाना बना रही थी, उसने बताया हेनरी प्लीज कम, वी नीड टू टॉक। और जब वी टू टॉक कोई बोल दें खातून तो आप समझते हैं पे क्या होता है। तो उन्होंने किचन में बिठाया और बोला हेनरी लिसन टू मी केयरफुली, शादी जल्दी करो वरना मैं जा रही हूं तुम्हें छोड़ के। और हेनरी जो था इस मोमेंट में ये रियलाइज कर रहा था कि यार ठीक है एंडी करते हैं, खत्म करते हैं। और उसने कहा ठीक है वी आर डन, और अपना सामान पैक करने भी लग गया और अपने फैमिली फार्म जाने का उसने फैसला कर लिया। मेजी जो थी वो सोच रही थी अरे इतना आसान, इसने कुछ मनाया नहीं, कुछ बोला नहीं, कोई तारीख नहीं दी, इतना बड़ा अल्टीमेटम सुन के सीधा गया सामान पैक करने लग गया। बिकॉज रियलिटी में अंदर ही अंदर वो ये नहीं चाह रही थी कि वो यहां से चली जाए, छोड़ दे या वो उसे छोड़ दे। वो तो हेनरी को ये अल्टीमेटम इसलिए दे रही थी ताकि वो फोर्स कर सके उसे कि भाई बहुत हो गया, मगर वो तो चल दिया। हेनरी को कहीं उसकी एक बात भी जहन में खटक गई कि उसने बोला यू हैव रूइंड माय लाइफ, तूने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। और उसके बाद फिर हेनरी सुनने को राजी नहीं था, हेनरी सामान पैक किया वहां से चल दिया। क्योंकि ये वो दौर था 1885 से आगे तक काफी सालों तक जब सोसाइटी इन सिचुएशंस को बहुत अलग नजर से देख रही थी। मेजी जो थी वो ये कहना चाह रही थी कि देखो भाई तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, सोसाइटी तुम्हें फिर भी एक्सेप्ट कर लेगी, मगर मुझे नहीं करेगी एक्सेप्ट। और ये सुनने के बाद भी हेनरी लॉजिकली ये जानता है कि मेजी को उसने बहुत ही बुरी सिचुएशन में छोड़ दिया है, इंटरनली वो ये मानता है। बट वो साथ में ये भी सोच रहा था कि यार मैंने अच्छा फैसला किया, अगर शादी कर लेते तो साथ में रह नहीं पाते क्योंकि मैं

नहीं सह पाऊंगा। तो अब इस प्रेजेंट डे मार्च 12 1885 पे वो अपने घोड़े को चला रहा था और चलाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि घोड़ा इंजरी से रिकवर कर रहा था, एंड वही सारी बातें उसके जहन में आ रही थी। बहरहाल वो खुश था कि वो आद है, बहुत खुश है और निकल आया रिश्ते से। तो इतने में उसने अपने घोड़े को एक ओक ट्री के पास ले गया, बड़ा सा पेड़ था उसके साइड में बांध था, और उसने अपने घोड़े को उस पेड़ से बांधा। उसके बाद गया पानी लेके आया और घोड़े के आगे रख दिया कि घोड़ा आराम से पानी वानी पी, क्योंकि अच्छा मौसम भी हो रहा था, एवरीथिंग वाज नाइस। अब इतने में क्या हुआ, इतने में हेनरी को अचानक से एक आवाज आई दूर से, हेनरी। और वो जो आवाज आई दूर से वो आवाज ऐसी नहीं थी कि उसको कोई पुकार रहा है, वो ऐसी आवाज थी कि कोई बहुत गुस्से में चिल्ला रहा है उसका नाम। तो उसने इधर उधर नजरें घुमाई अपने, कौन है भाई, कौन नाम ले रहा है मेरा। और फिर उसने आवाज को फॉलो किया, जब 3-4 बार उसका नाम लिया गया, एंड ही सॉ कि अक्रॉस द फील्ड एक बंदा उसकी तरफ घूर रहा है और उसका नाम चिल्ला रहा है, और बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक नजरों के साथ, आंख में आंखें डालकर। और यह आदमी था मेजी का बड़ा भाई फिलफोर्ड। फिलफोर्ड जो था, साफ पता चल रहा था फिलफोर्ड के चेहरे से कि वो हेनरी को खत्म करने, मारने ही आया है, बस उसे मौका चाहिए और सामने हेनरी है, अब तो नहीं छोड़ेगा। और हेनरी ये बात समझ पा रहा था सामने देख के। और जब हेनरी ने देखा कि फिलफोर्ड उसकी तरफ गुस्से में देख रहा है और आ रहा है, फिर उसकी नजर पड़ी फिलफोर्ड के पास टंगी हुई राइफल की तरफ। वो एक ओल्ड फैशन्ड राइफल थी, और जब राइफल हेनरी ने देखी तो बातचीत करने का तो सवाल ही नहीं उठता। हेनरी मुड़ा और भागने की कोशिश करना, मुड़ा तो इतना बड़ा पेड़ था ओक ट्री जिस पे उसने घोड़ा बांधा हुआ था, वो पेड़ से टकराया, गिरा उठने की कोशिश, फिर पत्थर से टकराया, बाउंस हुआ। इतने में फिलफोर्ड भागता हुआ उसकी तरफ आ गया। हेनरी जानता था मैं कुछ नहीं कर सकता, भाग सकता ही नहीं, उसके पास गन है, गोली से कैसे भागूंगा। तो उसने कहा भागने का फायदा नहीं है, और वो घुटनों के बल आ गया और उसकी तरफ देखने लगा फिलफोर्ड की तरफ, और बोला भाई प्लीज प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, देख देख मुझे मार के कुछ नहीं होगा, यू हैव टू बिलीव मी, देख मैं अभी भी उससे बहुत प्यार करता हूं, वो नहीं चाहेगी कि तू ऐसा कुछ करे, इट्स नॉट राइट। तो मैं क्या कह रहा हूं फिलफोर्ड, प्लीज अंडरस्टैंड। और इस वक्त गन जो वो पॉइंटेड थी सीधा हेनरी की तरफ, और हेनरी को लग रहा था कि शायद ये सुन लेगा, शायद चुप हो जाएगा। फिलफोर्ड कुछ फीट की दूरी पर था, घूर रहा था, और ये मोमेंट में एकदम साइलेंस आ गया, एकदम चुप्पी, कोई कुछ नहीं बोल रहा। और फिलफोर्ड ने फिर एकदम से बोला नजरें झुका के कि तू जानता भी है मेजी की कैसे सुनूंगा अब मैं, मेजी अब इस दुनिया में नहीं रही तेरी वजह से। और फिलफोर्ड ने यह बोलते के साथ ही अपने राइफल उठाई और एक फायर, एकदम से दर्द बिल्कुल बनाता हुआ पूरे बदन में सर की तरफ गया हेनरी के, और हेनरी पीछे जाके गिरा, लिटरली पीछे जाके गिरा, यानी बाउंस्ड ऑफ जमीन पे गिरा। आफ्टर फ्यू सेकंड उसे पता था कि जो सर में उसकी इतना खतरनाक दर्द हो रहा है अब वो बचेगा नहीं। देखा कि ब्लड उसके माथे पे से गिरना शुरू हुआ था, उसके चेहरे पे आ रहा था, क्लियरली उसे लगी थी, मगर वो समहाउ जिंदा था। देन ऐसे हुए जमीन पे खून से लथपथ, उसे आवाज आ रही थी गन के रीलोडिंग की, और हेनरी ने सोचा कि मैं भागूं या क्या करूं, अगर भागा भी तो ये क्लियरली मुझे मार देगा, रीलोड कर रहा है, कितनी दूरी जा पाऊंगा। और हेनरी ने फिर मरने की एक्टिंग शुरू करी कि एक काम करता हूं, मरने की एक्टिंग करता हूं, शायद इसे लगेगा कि ये तो मर गया और शायद ही चला जाएगा। अब हेनरी जमीन पे पड़ा हुआ था और उसका दिल जोरों से धड़ा था, और उसको सुनाई दे रही थी वो मैकेनिकल साउंड राइफल की रीलोड होने की, और ये प्रोसेस काफी स्लो था क्योंकि ये जो गन थी ये काफी पुरानी आर्मी मस्केट थी, वो राइफल जो कब सिविल वॉर में यूज की गई थी, तो इसको रीलोड करना इतना आसान नहीं था। इसके अंदर पहले कि गन की पैरल में गन पाउडर डालो, लेड डालो, उसके बाद जो है उसको अच्छे से अंदर की तरफ करो, उसके बाद लोड हो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड पूरे टाइम हेनरी अपनी सांसें

रोकने की कोशिश कर रहा था कि अगर इसने देख लिया कि मैं सांस ले रहा हूं तो मैं तो गया, और वो मरने की एक्टिंग कर रहा था लगातार। फिर उसे फाइनली वो आवाज सुनाई दी जब गन आखिर लोड होती है। अब वो बहुत ही टेंस हो रहा था, आंखें उसकी बंद थी, सोच रहा था कि बस ये समझ जाए कि मैं मर गया हूं, यहां से चला जाए। फिर आवाज आई एक बैंग गोली की, उसने अपनी आंखें मीच ली, मगर इस बीच उसको कुछ नहीं हुआ। ही डिडंट फील एनीथिंग, बस एक गोली की आवाज और कंप्लीट साइलेंस। और फिर उसने 3-4 मिनट होने के बाद जब कोई आवाज नहीं आई तो धीरे से अपनी आंखें खुली और उसने देखा कि फिलफोर्ड जमीन पर पड़ा था। फिलफोर्ड मर गया था, उसने उसी राइफल से अपने आप को भी खत्म कर लिया था। और हेनरी जानता था, ही इज द रीजन फॉर एवरीथिंग। वो बच गया था, मिराकुलसली बच गया था, लेकिन उसे इस बात का कोई गिल्ट नहीं था। वो जानता था मेजी भी उसकी वजह से गई है इस दुनिया से, उसका भाई फिलफोर्ड भी उसे गया है, लेकिन वो उल्टा ही सोच रहा था। वो ये सोच रहा था कितने वीक लोग थे ये लोग, कितने वीक लोग थे दोनों के दोनों, जी नहीं सकते, मेरे चक्कर में चले गए। एंड उसके बाद ये पूरे किस्से के बाद हेनरी का जो लक था वो बढ़ता ही चला जा रहा था, बेटर एंड बेटर। इनफैक्ट उसके जो सर की इंजरी थी वो भी ठीक हो गई विद इन अ मंथ और सो, ही वाज फाइन। और उसने शादी करी एक बहुत ही अमीर औरत से जिसका हस्बैंड मर चुका था, और क्योंकि वो औरत बहुत अमीर थी तो सब फार्म बड़ा होता गया, पैसे आते गए, और बहुत ही जल्दी इस पूरे एरिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हेनरी। आने वाले सालों में उसे ना तो मेजी का कभी नाम सुनाई दिया, ना उसने कभी किसी से बात करी, ना उसके बारे में सोचा, ना उसके भाई के बारे में सोचा। इट बिकेम लाइक अ डिस्टेंट मेमोरी, लाइक यू डोंट इवन केयर। कुछ यादें ऐसी होती है ना हमारी, दैट वी डोंट केयर, हुआ होगा यार कई साल पहले, आपको याद भी नहीं जब तक कोई याद न दिलाए। तो इट बिकेम दैट सॉर्ट ऑफ अ मेमोरी। तो कुछ सालों तक तो ऐसा ही चला, टू बी प्रिसाइज 20 ईयर्स तक, 20 सालों तक। मगर फिर आया मार्च का महीना, 21 तारीख 1905। सुबह का वक्त था और इस वक्त हेनरी भेड़ चरा रहा था और पेड़ काट रहा था, और उसका बेटा था उसके साथ में। और हेनरी जो था वो अपने बच्चे को सिखा रहा था, अमूमन वो सब काम खुद नहीं करता क्योंकि पैसे वाला हो गया था, मगर अपने बेटे को सिखाने के लिए वो आज खुद निकला था। और उसे एक कहानी बता रहा था, उसमें अपना नाम नहीं ले रहा था क्योंकि अपना आपको वो क्यों दिखाएगा विलन। तो वो बता रहा था कि बेटा एक टाइम की बात है, एक आदमी था और ऐसे ऐसे था, और वो अपनी ही कहानी उसे बता रहा था। अब वो पहुंचा उस ओक ट्री के पास पहुंचा, पेड़ काटते काटते, वो वही पेड़ जब 20 साल पहले उसने घोड़ा बांधा था, तो बताने लगा कि यहीं पर था वो आदमी, इस पेड़ से टकराया। और उसका बेटा बहुत ध्यान से सुन रहा था, उसने पेड़ काटने की कोशिश करी, पेड़ कट ही रहा था। तो उसने कहा बेटा एक काम करो, डायनामाइट लेके आओ। तो पहले जब पेड़ नहीं कटते थे ना तो पेड़ के ट्रंक में डायनामाइट फंसा देते थे ताकि जब फटेगा तो पेड़ फटेगा पूरा का पूरा। तो उसने डायनामाइट मंगाया और पेड़ की ट्रंक में डायनामाइट लगा दिया और बोला चटो पीछे चटो पीछे चटो, और 50 फीट की अच्छी खासी दूरी पे जाके अपने बेटे के साथ बैठ गया। और फिर हुआ बूम, एक्सप्लोजन। जानते क्या हुआ था, 20 साल पहले जब फिलफोर्ड 1885 में राइफल ताने हुए था हेनरी पे और उसने राइफल चलाई भी थी, तो वो गोली उसके माथे को चूमती हुई निकली और पेड़ में जाके लग गई थी, ओक ट्री में। और 20 साल बाद जब इसने डायनामाइट लगाया उस पेड़ पे और उसे फोड़ा अच्छी खासी दूरी पे गया, तो वही बुलेट जो पेड़ के अंदर थी इट रॉकेटेड टूवर्ड्स हेनरी और सीधा हेनरी भेजे में जाके लगी, एंड हेनरी डाइड। तो एक तरह से फिलफोर्ड ने जो गोली चलाई थी उससे हेनरी बचा नहीं था, बस गोली ने

रास्ता तय करने में 20 साल लगा दिए एंड हेनरी इवेंचुअली डाइड. जैसे कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम. यहां गोली

0: जो बुलेट में से गोली उसकी लगी, जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो पता लगा ये बुलेट कहां से निकली है, एंड एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। लोगों ने इस किस्से पर प्ले भी किए हैं, थिएटर भी किए गए हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत ही वियर्ड सा किस्सा है ये कि गोली जो पेड़ में लगी रही बस निशाने का इंतजार कर रही थी 20 सालों तक, और उसके बाद निशाने पे जाके लगी। या ये थी कहानी, अब आपके हवाले। 666-22107, 666-22107 ये नंबर है, और ये कहानी अब आपकी हुई। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर ज़रूर ज़रूर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किस्सा कैसा लगा, एंड आई वुड लव टू नो इट फ्रॉम यू, क्योंकि कहानी आपके लिए होती है ना, मुझे खुशी होगी कि अगर आप इस पर रिस्पॉन्स करके ज़रूर ज़रूर बताएंगे। ओके, बताएंगे कि नहीं? माइक चेक, बोले
1: क्या बोल रहे ले?
0: क्या बोल रहे ले पब्लिक, कैसी लगी कहानी तुमको? वन टाइम
1: पब्लिक के लिए
2: करते ना,
0: पटेलों
2: के लिए
0: भाई,
1: अपने
0: पाशा लोग
1: के लिए,
0: ओ,
1: एक नंबर
0: क्या?
1: बॉम्बे 17
0: किधर हो भाई, मैसेज करो ना।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कलीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qm।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ भाई पार्टी, मजा आया कहानी में? 6:02 हो गए भाई। आई होप आपको अच्छा, बिकॉज आई एंजॉयड नरेटिंग दिस वन। मुझे सच में बहुत मजा आया ये कहानी सुनाते हुए। आई डोंट नो आपने एंड क्या सोचा था, मैं ये भी जानना चाहूँगा, किसी ने अगर एंड सोचा था कि भाई इसका एंड कुछ ऐसा होने वाला है तो वो भी जाए, बिकॉज आई डोंट नो क्या आपने एंड सोचा कि नहीं सोचा, क्या बनता है, सोचा क्या तो बताइएगा 6:62107 पर, ऑल्सो फॉर द स्टोरी, बिकॉज आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताना। एक मैसेज आया है ख्याल भाई का। ख्याल भाई वालेकुम अस्सलाम, क्या बाटे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है। और एक मैसेज आया कबीर भाई, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच, द स्टोरी वॉज नाइस, गोली गोली पे लिखा है बनने वाले का नाम, एब्सोल्युटली। और एक मैसेज है भाई भाई, थैंक यू सो मच, दिल भेजा भाई अशफाक भाई ने, तब उस बहन ने मैसेज किया है कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी कबीर भाई, लेकिन सिर्फ एंड नहीं सुन भाई, बीच में डिस्टर्प्टेड पार्ट्स, अजीब बात है, गोली इतने साल बाद निकल के उसको लगी, बट नाइस, अगर रिकॉर्डेड हो तो प्लीज़ भेजेगा बहन, आपको प्लीज़ लगाने की जरूरत नहीं, मैं भेज दूंगा। हमजा भाई ज़रूर भेजूंगा। फलक भाई वालेकुम अस्सलाम। और एक भाई कहते हैं अल्लाह घर देर है अंधेर नहीं, ये गुलाम रजीक भाई ने मैसेज किया, और कबीर भाई मस्त कहानी थी, थैंक यू सो मच। सरफराज आलम भाई ने मैसेज किया है। हुसैन भाई लिखते हैं भाई मैसेज क्या करें, अभी स्टोरी के अंदर से बाहर आ जाएं ज़रा। और एक मैसेज है शहजाद हुसैन साहब का, A1 लिखा है। और एक भाई लिखते हैं जब आपने बोस ने अमीर लड़की के साथ शादी की, हमने बोला किस्मत हो तो हेनरी जैसी, बाद में जब गोली का सुना तो बोला नहीं चाहिए हेनरी की किस्मत। मैं बोला ना मोहम्मद भाई, पलट देते हैं हम कहानी को। और एक हुसैन ने मैसेज किया है, वो लिखते हैं भाई इसे कहते हैं उड़ता तीर, ज़्यादा ही चौड़ा हो रहा था हेनरी। मज़ा ना वो सुन के, एक रिवेंजफुल स्टोरी थी, अवेंजफुल स्टोरी एक्चुअली में। सोनू भाई वालेकुम अस्सलाम, नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच। तो अभी मैसेज पढ़ूंगा मैं आपका भी, 2-3 बड़े बड़े मैसेजेस हैं उनको मैंने बचा के रखा है, गाने के बाद मैं ज़रूर वो सारे मैसेजेस पढ़ूंगा। ये 6:62107 नंबर है, मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। और क्या कहना था मैं, हाँ थोड़ा सा रुको, किधर गया किधर गया, ये चलते हैं। ओके हेलो जी, सुखी

0: शाबाश शाबाश शाबाश,
1: जिन्होंने मैसेजेस किए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग कहानी मांग रहे हैं, देखो कई मरतबा क्या होगा ना कि कहानी रिकॉर्डेड नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप लाइव सुन लिया करें, पर मैं इस कहानी सबको भेजूंगा, डोंट वरी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप कहानी इतने अटेंटिवली सुनते हैं, जो भी सुनते हैं थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैं आपको एक खबर दूँ, देखो डोंट कोट मी, ये मत कहिएगा कबीर ने बोला था, मैंने शाम में सुना था, वो एक आरजे FM 107 का बोल रहा था, ये मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा है, मैंने नहीं कहा भाई, साफ सीधी बात, उन्होंने बोला है कि रेनफॉल हो सकती है। एग्जैक्ट वर्ड बताता हूँ, एग्जैक्ट वर्ड पढ़िएगा, फॉर्मेशन ऑफ लोकल क्लाउड्स विद अ चांस ऑफ रेनफॉल एंड आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म्स ऑन वेंसडे। अंग्रेजी सुन लिया आपने, तो कह रहे हैं कि लोकली थोड़े से क्लाउड आए, थोड़ी सी रिमझिम हो जाएगी और थोड़ी सी बिजली कड़क जाएगी, ये हो सके है वेंसडे को भाई। तो ये मैं अब बादल तो है नहीं अभी, और आज कौन सा दिन चल रहा है, एक सेकेंड लेट मी सी, आज है ट्यूसडे ना, तो कल की, अरे तो कल की बात हो रही है। तो ऐसा है टेम्परेचर का हाल, और ये अभी वेदर डिपार्टमेंट ने स्टेट किया है। एंड साथ में उन्होंने ये मेंशन किया, डिपार्टमेंट ऑल्सो सेड कि जो वेदर है वो थोड़ा मिस्टी से फॉगी हो जाएगा कुछ एरियाज में, और उसके बाद बहुत गर्म होगा दिन में, फिर लोकल बादल जो है वो आएंगे और फिर बारिश आएगी, पूरा प्रोसेस समझा दे। तो भाई मैंने कुछ नहीं बोला। अस्सलाम वालेकुम। बस बढ़िया, आप सुनाए क्या हाल है? क्या हो गया भाई?
2: पहले रख लूं यार, बंदे के साथ भाई बहुत बुरा हुआ यार,
1: है ना?
2: बाड़ चौड़ में बेचारा हो रहा था, वही गोली उसको लगी, साले तुमको वही गोली खानी पड़ी, तुमने आखिर किया है जो काम।
1: ज्यादा हवा भाई अच्छी नहीं होती है
2: कबीर भाई, ये रियल स्टोरी है?
1: इट्स अ रियल स्टोरी भाई।
2: यार इसको क्या बोले, कर्मा बोले, क्या बोले यार,
1: ये अखबार में भाई उस टाइम के, दिस वाज वन ऑफ द स्टोरी जहाँ पे प्लेस होने लगी थी इस कहानी के ऊपर, बिकॉज वो इतनी अनबिलीवेबल स्टोरी थी कि लोगों ने इसको प्लेस में बदला। उस टाइम पे मूवीज तो इतनी बंदी नहीं थी, तो दे ट्राई टू मेक इट इन अ प्ले, कि चलो नुक्कड़ नाटक टाइप जो होते हैं तो उसमें उसको लाया गया कि देखो ऐसा होता है अगर आप ऐसा करते हैं, तो समझाने के लिए लोग यूज करते
2: हैं। वही गोली उसको लगी,
1: हाँ
2: खुद से वो गोली ले ली, वो होता है ना मतलब एक उड़ता तीर वाला भाई, लेकिन सूरी भाई भाई मजा आ गया यार, वॉलपेपर कल वाली वॉलपेपर आज ये भाई हैरत अंगेज। मुझे लगा था कि उसकी कंड होगी तो वही मारे, वो बदला लेगी बस, यही सोचा था।
1: अरे सिंपल नहीं सोचना, जब आप मुझसे सुन रहे कहानी तो सिंपल कैसे हो सकती है बताइए।
2: वही तो गलती हो गई भाई, बिग फैन भाई, ऐसी गलती कभी नहीं होगी।
1: हाँ ये मत करिए,
2: हो ही नहीं सकती भाई, कबीर भाई की कहानी और सिंपल,
1: हाँ सिंपल नहीं
2: सुना, अच्छा स्टोरी तो सिंपल ही जा रही थी, इतनी अच्छी जा रही थी, ये जो एंडिंग लास्ट में जो पेड़ फूटा, हाँ। उसके बाद उसकी मौत हुई यार वाकई में
1: तो मुझे पता था ये कहानी के एंड में तो लोगों को जरूर शॉक लगेगा, तो
2: अरे भाई शॉक शॉक भी लगी, हंसी भी आ रही थी,

0: समझ में नहीं आ रहा यार क्या हो गया
1: और मैं एक इत्तेफाक बताऊं,
0: हाँ
1: इत्तेफाक ये कि ये वाली और कल वाली कहानी मुझे एक साथ मिली, क्योंकि कल वाली कहानी मार्च की, ठीक है, वो भी 1905 की थी, और इत्तफाकन ये कहानी भी मार्च में एंड होती है और ये कहानी भी 1905 में जाके एंड हुई है, तो ये दोनों मुझे एक साथ ही और दो मतलब एक ही अखबार में अलग अलग स्टोरीज के तौर पे मिली है, सोच रहे हैं आप, तो टेक्निकली दोनों किसी साथ में है।
0: वही तो यार, वो तो ये वाली ऐसे थी मतलब जैसे आदमी मूवी देख रहा है और लास्ट में हॉल में कुर्सी वगैरह सब टूट गए, भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई। तो अच्छे तो भाई घर में नहीं सुन रहा था, नहीं तो सही में तोड़ देता कुछ ना कुछ। मैं सर पकड़ के ये करने लगा, घुमाने लगा अपने बाल को, भाई है
1: बता एक ऐसी एक कहानी और थी, आई डोंट नो कितने लोग अभी इनको याद ही नहीं याद है, मैंने एक कहानी सुनाई थी, मैं कुछ नहीं बताऊंगा उसके बारे में, शायद किसी ने ना सुनी हो, तो वो होटल रूम की कहानी है, उसमें भी एक मिस्ट्री सॉल्व होती है और पता लगता है कि कैसे लगी उसको गोली, तो पता नहीं आपने कभी सुनी है नहीं सुनी है, एक होटल की कहानी थी।
0: कहानी देखो भाई कबीर भाई, कहानी मैं तो आपसे ही सुन रहा हूँ ये जो भी है।
1: अच्छा
0: हाँ, मैंने इससे पहले कोई कहानी नहीं सुनी, मूवीज वगैरह बस, हाँ मूवीज वगैरह में इंटरेस्ट है, मूवीज वगैरह देखी, लेकिन कहानी जो है ना मैं बहुत कम, आपसे सुन रहा हूँ ये मुझे पता चला कि दुनिया में ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। बता वो उस दिन ना आपने वायरस वाली कहानी बताई, मतलब वो ब्लड सेल वाली, हाँ वो जो सारे इंसान के बॉडी में एक वैक्सीन का काम कर रही है, ये पता नहीं थी भाई, वो आपके जरिए से पता चली।
1: हेनरिएटा की कहानी तो भाई बहुत, मुझे तो बहुत जबरदस्त लगी थी वो कहानी, हेनरिएटा नेक्स्ट कहानी,
0: वो तो भाई कभी माइंड से निकल नहीं सकती वो ऐसी कहानी,
1: वो है भी जरूरी, वो है भी जरूरी भाई, मैं हैरान है मेडिकल फील्ड में लोगों को, मेडिकल फील्ड में नहीं पता है भाई लोगों को वो कहानी, पता है आपको, नोबडी
0: न्यूज़, तो हैरत वाली बात है, वो पता होनी चाहिए, वो एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी है, वो उसको पता नहीं था लेकिन उसका बहुत बड़ा, वो आज भी जिंदा है, मर के भी वो जिंदा है।
1: हाँ एग्जैक्टली, तो वो बहुत इंस्पायरिंग कहानी है, पर ऐसी जो कहानी होती है ना जैसे आज वाली थी, तो एंड तक अगर आप जाएंगे तो एंड में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा, बोलेंगे यार ये तो कुछ और ही हो गया।
0: तो ये भाई ये सब कहानी है, आदमी शॉक है ये क्या हो गया। हाँ। यार गोली कैसे लग गई है, मैं यही सोच रहा था भाई कैसे, यार मैं कंफ्यूज की आखिर यार क्या बोलू इसको, एंडिंग में मतलब क्या बोलना क्या है।
1: हाँ तो वही ना, इसकी
0: समझ में नहीं आया।
1: ये अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, I'm really really happy कि चलो ये झटका लगा लोगों को, मैं ऐसे कैसे सुनाना चाह रहा था।
0: मौत हुई है, सदमा लग गया यार।
1: अब देखेंगे अगली दो कहानियां क्या होंगी, बिकॉज अगली दो मुझे कोई आइडिया नहीं है, अभी मैं जाके करूंगा रिसर्च, I'll find something इंशाल्लाह।
0: भाई वो आप ऐसी बोलते हो कि कोई आइडिया नहीं, कहानी वही जबरदस्ती होगी, कहानी कोई भी अभी तक मैंने जितनी भी कहानी सुनी आप कोई भी ऐसा ये था कोई थोड़ी सी डिसबैलेंस हो, सब में कुछ ना कुछ ट्विस्ट है।
1: थैंक यू मेरा भाई, बहुत बहुत प्यार मेरे, आप मेहनत सफल करवा दी मेरी, सुन के बहुत खुशी हुई।
0: अरे बिल्कुल, अरे मैं तो यार मैं उस पे तैयार बैठा हूँ, तो मैं वीडियो देखना चाहता हूँ, मतलब हाँ। एक होता है ना बैठ के सुनने वाला, हाँ, वो हाँ। कब आएगा मालूम नहीं।
1: बस भाई एक जगह से परमिशन थोड़ी हल्की सी वो रहती है, बस एक क्योंकि है ना हम थोड़ा लीगल डिपार्टमेंट देखने पड़ते हैं ना, तो वो एक बार क्लियर हो जाए तो फिर चढ़ जाएंगे हम पूरा।
0: सही बात है भाई, इंडिया होता तो लीगल डिपार्टमेंट देख लेते।
1: इंडिया तो भाई मैं अपने जीने पे बैठ के कर देता, सॉरी भाई कोई टेंशन नहीं थी।
0: उसकी वजह से खामोश बैठा
1: हूं। हाँ बस वही है, बस भाई भरे बैठे हैं लेकिन क्या करें भाई, थोड़ा सा खामोश बैठना पड़ता, कुछ नहीं है।
0: सही बात है भाई, जी भाई चले भाई, ओके भाई, बहुत बढ़िया भाई कबीर भाई, बहुत अच्छी कहानी,
1: मजा आ
0: गया,
1: बहुत मेरा भाई
0: दिन बना दिया दिन।
1: थैंक यू सो मच मेरी जान, थैंक यू सो मच,
0: चले भाई, अल्लाह
1: हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। तो भाई की तमाम मोहब्बत के बाद, तमाम मोहब्बत क्या होता है, भाई की मोहब्बत के बाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, कबीर भाई कॉल में भाई, अभी टाइम थोड़ा सा कम है, अजान के बाद कॉल करूँ तो चलेगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है। एक मैसेज है, ये तो अचानक से वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, हया कुरैशी यही करते हैं हम तो कहानियों के जरिए, दैट इज़ द होल पॉइंट। अभी पता नहीं कल फिर फर्स्ट कौन सी कहानी होगी, बिकॉज आई रियली डोंट नो, निकाली कल की भी कहानी, क्योंकि थर्सडे को तो आपको बहुत स्पेशल कहानी चाहिए, तो थर्सडे को तो बहुत स्पेशल कहानी मिलनी चाहिए, तो कल का मसला है बस वो है ना, मैंने आज का सोचा है कल का नहीं सोचा, तो कल भी देखते हैं आप क्योंकि कोई कहानी मिले, आई रियली होप सो। बाकी आपने जाना है नहीं यार, बेस्ट जगह पर है, कहाँ जाएंगे, और भाई ने बोला कॉल करने के लिए, तो मैं कुछ देर में कॉल करूँगा भाई, थोड़ा सा बस आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अजान के बाद ही मैं कॉल कर पाऊँगा, तो जाना आपने नहीं है। कविता सिंह नीरज श्रीधर की आवाज है, बंधु 2.0 ओ ओ ओ, ओ।

सुर लगाने नहीं आते, वरना आपका भाई आगे लगा देता। ये बिरयानी खाने के बाद जो आवाज निकलती है बिल्कुल वैसी है। गुड इवनिंग।

ना चिड़ते नु लुका के रखिया। मैं कह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक भाई लिखा है मुझे, सलमान भाई कैसे हैं आप? एंड सलमान भाई के बाद जो है एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम मौलाना कारी साहब, कारी मौलाना साहब, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सर आज की स्टोरी मिस हो गई, बराए कर जब फुर्सत मिले तो मुझे भी भेज दीजिएगा। और सर एक बात पूछनी थी, मेरा एक दोस्त कह रहा था कि आप मंसूरा की मस्जिद में रमजान मुबारक के दौरान तरावी पढ़ते थे, क्या ये बात दुरुस्त है? एकदम दुरुस्त है। आपने जासूस छोड़े हुए मेरे पीछे।

0: शाबाश एक कॉल भी आ रही है, रुको उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई।
0: हाँ मेरा भाई, क्या हाल है भाई? के जगास
1: और क्या खबर है भाई?
0: मैं इधर सब बढ़िया है, तुम बताओ तुम्हारे इधर क्या चल रहा है?
1: आजकल बहुत मक्खी मार रहे हो आज क्या?
0: मैं बहुत मक्खी मार रहे, बहुत सारा मक्खी है मेरे घर में। हाँ सुन रहा हूँ।
1: सुना आजकल बहुत मक्खी मार रहे हो
0: और क्या?
1: हाँ सोफे पे सो गए, लालियाँ गिराओगे तो मक्खी आएगा ना मेरी जान।
0: वाह वाह वाह, क्या क्या करें अब, क्या करें, गरीब आदमी क्या करेगा साहब।
1: ऐसे वाह बात है ऐसे कबीर भाई, और कहता आज टाइम मिल गया, नमाज पढ़ने जा रहा था, हम बोला चलो काल मार लेता हूँ।
0: बस दुआ करना भाई के लिए।
1: बिल्कुल हमेशा दुआ तुम लोग के लिए भाई, हमेशा दुआ करते हैं तुम्हारा फजील, सुबह जो पूरा टेंशन के लिए दुआ करते हैं।
0: ओके बहुत बहुत शुक्रिया बहुत। और बताइए क्या चल रहा है जिंदगी में?
1: ओ भाई फर्स्ट क्लास चल रहा, फर्स्ट क्लास एकदम छका
0: एकदम झास। आज मैंने सुना आपने कॉल पे फजील को बहुत डांटा आपने। आज मैंने सुना आपने बहुत डांटा फजील को, मैंने सुना आज कॉल पे।
1: नहीं यार अपना बच्चा है अपना।
0: अच्छा तो डांट दिया उसे उठा के बेचारे को है?
1: अपना बट वो क्या है कभी कभी वो एंजॉय कर लेते हैं यार। हाँ ऐसा होना चाहिए मैंने भाई। जाने जान
0: जाने जान, गाना सुना दो यार आज कोई गाना सुना दो, कोई गाना आता है?
1: को भी सुनाता हूँ ना गाना, इसलिए उसके साथ मस्करा कर रहा था। हाँ तो फिर
0: कोई गाना आता है आपको वैसे?
1: भाई नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लेता हूँ, सलाम अलैकुम।
0: मेरी बात तो भाई पूरी काट के भाई ने साइड में रख दी है, ठीक है चलो। अब नहीं कहूंगा मैं तुम्हारी क्यों सुनूंगा। अच्छा एक मैसेज, हेलो हेलो मेरे भाई क्या हाल है? एक भाई ने मुझे बोला था कॉल करने के लिए, सो आई एम गोना कॉल हिम राइट अवे। अगर उन्होंने कॉल उठा ली तो बात है कॉल उठाने पे। लेट सी कि ये कॉल उठाते हैं कि नहीं। क्या नाम इनका? क्या भाई डर गए भाई? भाई डर गया, हाँ डर गए वो, भाग गए वो। हमारा खौफ ही ऐसा है भाई, क्या करें। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, बढ़िया एक शानदार शानदार भाई, सब कुछ शानदार है अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम बढ़िया टनाटन। बाकी अभी मैं बाहर बता रहा था लोगों को, मैंने वेदर रिपोर्ट पढ़ी अभी और मुझे पता लगा कि कल जो है लोकल थोड़ी सी बारिश हो सकती है। मगर फिर भी एक मैसेज, कबीर भाई आज का सवाल हर्षद चोपड़ा लॉकअप से रिलेटेड था। जी बहन मैंने बताया अभी लॉकअप से रिलेटेड है, मुझे इतना गुस्सा है ना, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग लॉकअप, लेकिन वो जो हर्षद चोपड़ा नाम का बंदा है उसमें था बेसिकली, इतना गुस्सा मुझे किसी बंदे पे नहीं आया यार। मतलब क्या है वो, क्या है वो, इसलिए मैंने आज का सवाल पूछा था, मैंने रेफरेंस देके पूछा था। एक मैसेज है कि क्या बादल तो नहीं है मेरी जान, लेकिन कहा है ऐसा कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने। फिलहाल एक और खबर बता देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपैलिटी ने रिवील किया है कि 108,000 किलो फ्रेश डेट्स जो हैं वो बेची गई हैं शुरुआत के 9 दिनों में ऑफ द 11th लोकल फ्रेश डेट्स फेस्टिवल। ये फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया है इन कोलेबोरेशन मिनिस्ट्री एंड सूक वाकिफ मैनेजमेंट, और इसकी बाकायदा स्टेटमेंट जारी की गई आज के दिन ही। मिनिस्ट्री ने स्टेट किया कि फेस्टिवल ने तकरीबन 61,000 विजिटर्स को देखा, अभी तक फुटफॉल इतना हो चुका है जब से वो लॉन्च हुआ है ऑन द 25th ऑफ जुलाई, और अभी तक 9 दिन हो चुके हैं। तो हाईलाइट किया उन्होंने कि इवेंट ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए इन टर्म्स ऑफ पब्लिक अटेंडेंस ऑफ कोर्स, और साथ ही में जो इन हाउस परचेज है होम ग्रोन वेट डेट्स की जो सपोर्ट करते हैं कतर के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को। सो अगेन अवर रिकॉर्ड हैज बीन

टोकन, और साथ में स्टेटमेंट में ये भी जारी किया गया जो टोटल सेल्स हैं वर लेड बाय द खलास कल्टीवेटर, जिसमें 44,247 यानी 44,247 किलोग्राम सोल्ड किए गए, फॉलोड बाय शीशी एट 22,780 किलोग्राम्स, और बाकी बढ़ते चले गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कुल मिला के 108,000 हुए हैं. एंड is how it is. So if you have been there, बहुत बढ़िया, नहीं गए तो भाई आपकी दिक्कत है, क्यों नहीं गए हैं. इसके अलावा कतर प्रिसिशन हेल्थ इंस्टीट्यूट यानी QPHI जो कि नेशनल सेंटर है फॉर रिसर्च एंड इम्प्लीमेंटेशन अंडर कतर फाउंडेशन, उन्होंने अनाउंस किया है एक अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद कतर नेशनल लाइब्रेरी, और इट एक्चुअली मेक्स इट एन स्पेशलाइज एजुकेशनल मटेरियल्स फॉर जीनोम हीरोज कलेक्शन अवेलेबल थ्रू मनारा और कतर रिसर्च रिपोजिटरी, और लाइब्रेरी इतनी वास्ट है उसमें और एडिशन हो चुका है इसकी वजह से. इसके अलावा कतर एयरवेज की तरफ से खबर है, उन्होंने रिज्यूम कर दी अपनी फ्लाइट्स, नॉन स्टॉप फ्लाइट्स बिटवीन हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट PHL जो कनेक्ट करती है दोहा और फिलाडेल्फिया को, और ये जो रूट है शुरू हो चुका है 1 अगस्त से. कतर एयरवेज ने शुरू किया है एयरबस 3500 एयरक्राफ्ट को, और एयरक्राफ्ट की खबर सॉरी कहानी नहीं सुनाई है मैंने बहुत टाइम से, तो वो भी मैं ज़रूर सुनाऊंगा बहुत जल्द. इसके अलावा कतर यूनिवर्सिटी अनाउंस किया एडमिशन फॉर मोर देन 6,000 फीमेल एंड मेल स्टूडेंट्स टू द यूनिवर्सिटी बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम फॉर द फॉल ऑफ 2026 सेमेस्टर. ये आप ऑनलाइन जाके वेबसाइट पर देख सकते हैं, इट इज़ ऑल अवेलेबल देयर. बाकी कहीं भी ट्रैफिक और आप फंसे हुए तो आप मुझे बताएं 666-22107 666-22107. मेन खबर यही है, कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा है कल को बादल, लोकल बादल इधर से उधर सरकेंगे, आपको थोड़ा चिढ़ाएंगे, थोड़ा सा मिस्ट हो जाएगा, कुछ जगहों पे फॉग हो जाएगा, और फिर बादल बरसेंगे, गहरे से पता नहीं बरसेंगे नहीं, आई क्लियरली डोंट नो. अभी तो वेदर एकदम क्लियर है, नामो निशान नहीं है किसी बादल का. 36 डिग्री सेल्सियस फॉर नाउ, बाहर निकलने का 1% दिल नहीं है. 33 डिग्रीज मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ हाई 43 डिग्री सेल्सियस. इसके अलावा जो ह्यूमिडिटी लेवल है आज 56 बताया जा रहा है, और कल जो है कल से लेकर पूरे थर्सडे तक, मतलब वेंसडे थर्सडे और फिर आने वाले थर्सडे, लगातार मुझे ऐप के अंदर भी और 2-3 और जगहों पे बारिश की चांसेस नजर आ रहे हैं. इफ दैट हैपेंस आई डोंट नो, मेरे टाइम पे तो होती नहीं बारिश, जब मैं आ रहा होता हूँ ऑफिस तो नहीं होती, जब बैठ जाता हूँ स्टूडियो में तो बारिश हो जाती है, तो मेरी तो किस्मत ही खराब है इस मामले में, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है. सो लगातार फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, और 2-3 जगह मैंने और चेक किया, दिखा रहा है कल 85% चांसेस हैं प्रेसिपिटेशन के यानी बारिश के, उसके बाद 90%, 85%, और लगातार अगले वीक तक चांसेस बने रहेंगे. सो आई होप कि ऐसा ही हो, हम सब इंतजार कर रहे हैं, दुआ कीजिए थोड़ी तो राहत मिले यार, प्लीज. सो 666-22107 इज द नंबर, कहीं पे आप फंसे हैं तो प्लीज़ हमें बताइएगा. ट्रैफिक में हैं तो इंतज़ार करूँगा आपके मैसेजेस का. बाकी कहानी तो आपने सुनी है, आई होप आपको अच्छी लगी हो. और एक और मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपने तो कहानी सुना के क्या ख्याल बदल दिए, दिन बदल दिया. हाँ भाई ऐसे ही करते हम तो. अगली मुझे पता नहीं भाई अगली कहानी क्या है, आई होप के या तो कल एक एविएशन की कहानी होगी या फिर कल एक सर्वाइवल स्टोरी होगी. आई ट्राई, जो भी मुझे पहले मिल जाए अच्छी मिले, जो आपने पहले कभी ना सुनी हो तो मैं आपको ज़रूर वो सुनाऊंगा, डोंट वरी. क्वालिटी देंगे आपको, डोंट वरी, क्वालिटी ही मिलेगी आपको, इस बात की पूरी एश्योरेंस है. बाकी शीशे वाली चुन्नी भाई छोरी ग्रे कमांडर वाणी सिंह कड़क रहा छोरी करा करा छोरी 6:36 हो लिया भाई रोक.

मेरे बारे में सर्च किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. सो थैंक यू सो मच. बाकी तो आपने जाना किधर भी नहीं है भाई, बढ़िया से गाना चलाएंगे आपके लिए, वाइब भी हो रही है. और किधर गया यार, किधर गया. इधर ही था यार, अभी मैं लगाने वाला था, मेरी नजरों के सामने से ये गाना ही गायब हो गया. कोई नहीं, ये वाला लगा देते हैं. मोरनी शारवी यादव और बादशाह 6:47.

अपने मियां मिट्ठू बनवा चलो बन जाते हैं उनकी समझ। मुबीन भाई आपने ये पूछा तो आप जब AI से पूछेंगे तो मैंने एक वो रिकॉर्ड मैराथन किया था रेडियो पे जहाँ पे मैंने 106 घंटे लगातार शो किया था लगातार, तो कोई भी आ नहीं था, रात में सिर्फ 20 मिनट सोने की इजाजत, तो वो वाला किया था। और एक हमने रिकॉर्ड किया था 23,000 अक्रॉस इंडिया, तो वो एक और रिकॉर्ड है। सो आई एम सो प्राउड ऑफ दैट, थैंक यू सो मच। मैं कभी बोलता नहीं मेरे को अच्छा लगता है सीरियसली कौन करता है अपने खुद की तारीफ, मगर थैंक यू सो मच दोज़ हू हैव सर्च्ड अबाउट मी। ये मेरे लिए एक अलग अचीवमेंट है कि आपने इंटरनेट पर मुझे ढूंढा, थैंक यू सो मच। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो दुहा कबीर KABIR EER नहीं, वरना मिलूंगा नहीं फिर मैं, तो प्लीज ढूंढ लीजिएगा। कल मिलते हैं और किसी के साथ जबरदस्त कहानी सुनाएंगे आपको, टेंशन को नहीं भाई। और आज की कहानी आपको मिल जाएगी, अरबाज भाई कह रहे हैं मैं इकट्ठे करता हूँ सारी कहानियों को और एक साथ वीकेंड पे सुनता हूँ क्योंकि उस टाइम पाएंगे नहीं, ये भी मोहब्बत है मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं कल सीधा, एक लास्ट पढ़ देता हूँ। कबीर भाई एक बात बताओ, आपकी भी तरह 8-10 घंटे की शिफ्ट है या आप प्रोग्राम करते हैं और बाद में चले जाते हैं? हमारी भी शिफ्ट है मेरी जान, 7 घंटे की शिफ्ट होती है हमारी हुसैन भाई, वी कम एट अ टाइम जहाँ से हमें 7 घंटे देने होते हैं। सो या वो टाइम है 7 आवर्स का होता है, बीच में शो आप घर से प्रिपेयर करके लेके आ जाएं या फिर आके प्रिपेयर कर लें, दैट्स अप टू अस। तो ऑन दैट नोट दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, अब ना क्योंकि आप बेहद जरूरी हैं। मां सलामा। Don't worry.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हम हमेशा याद रखना चाहते हैं। शादी हो गई, बर्थडे पार्टी हो गई, किसी की ग्रेजुएशन हो, या किसी का बेबी शावर हो, या कोई भी स्पेशल फैमिली इवेंट हो, हम चाहते हैं भाई कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। और हाँ, इवेंट की तैयारी में एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है, पता है क्या? इनविटेशन कार्ड। अच्छा, एक वक्त था जब खूबसूरत डिजाइन वाले पेपर कार्ड्स घर घर भेजते थे, याद है ना? वो 90s में लोग कार्ड इस्तेमाल करते थे और उनको बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया जाता था। लेकिन आज भाई टेक्नोलॉजी का दौर है और एक नया ऑप्शन हमारे पास है, डिजिटल इनविटेशंस। यानी पेपर के बजाय मोबाइल, ईमेल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए इनविटेशंस भेजना। तो भाई आज के इको स्विच में हम बात करने लगे हैं डिजिटल इनविटेशंस वर्सेस पेपर पर, एक ऐसी चॉइस जो हमारे इवेंट्स स्मार्ट बना सकती है और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकती है। तो साथियों, जरा एक काम करते हैं, प्रॉब्लम हाईलाइट करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक छोटा सा इनविटेशन कार्ड बनाने के पीछे कितने रिसोर्सेज लगते हैं? देखिए, पेपर बनाने के ना दरख्तों को यूज किया जाता है, ट्रीज को, फिर प्रिंटिंग के लिए इंक, इलेक्ट्रिसिटी और पैकेजिंग का इस्तेमाल भी होता है, और अक्सर

0: क्या होता है भाई, अक्सर यही होता है कि इवेंट खत्म होने के बाद वो ब्यूटीफुल इनविटेशन कार्ड्स ड्रॉर्स में रख दिए जाते हैं या फिर सीधी सी बात है कचरे में फेंक दिए जाते हैं अगर अपने ना हो तो। सोचिए एक फैमिली इवेंट में अगर आप कह लें कि 100-150 कार्ड्स प्रिंट होते हैं तो फिर वो सिर्फ एक दिन के लिए यूज होते हैं ना, एक दिन के भी नहीं मैं कहूंगी कुछ घंटों के लिए, तो कितना सारा पेपर वेस्ट होता है। इसके अलावा कार्ड्स को डिलीवर करने के लिए ट्रांसपोर्ट भी यूज होता है कि नहीं, जिससे फ्यूल कंजम्पशन होता है, कार्बन एमिशंस बढ़ती हैं, यानी एक छोटी सी चीज भी एनवायरमेंट पर असर डाल सकती है। तो भाई अब आप पूछेंगे कि सफा बताओ हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो भाई इसके लिए एक आपको छोटा सा इको स्विच ऑन करना है, जहां मुमकिन हो पेप की बजाय डिजिटल इन्विटेशंस चूज करें। देखिए डिजिटल इन्विटेशंस के बहुत सारे फायदे हैं, कुछ तो मैं आपको यूं ही उंगलियों पे गिनवा दूंगी। आपकी जो ये सोशल मीडिया की एप्स हैं या दूसरी तीसरी जो मैसेजिंग वाली आ रही है या ईमेल्स या ऑनलाइन इन्विटेशन प्लेटफॉर्म्स के जरिए चंद सेकंड में इन्विटेशन भेजा जा सकता है और मल्टीपल पीपल। इससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और ये जो दरख्त होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है, वो काटे नहीं जाते। प्रिंटिंग और डिलीवरी का खर्चा भी कम हो सकता है। आप डिजिटल इन्विटेशन को और भी क्रिएटिव बना सकते हैं अपनी मर्जी से, फोटोज, वीडियोस, मैप्स और RSVP ऑप्शंस के साथ, और इससे टाइम भी बचता है भाई। मिसाल के तौर पर शादी का इन्विटेशन सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि एक ब्यूटीफुल वीडियो मैसेज भी बन सकता है। लेकिन साथियों अगर किसी स्पेशल ओकेजन पर पेपर इन्विटेशन ज्यादा जरूरी लग रहा है आपको, तो भाई आप रिसाइकल्ड पेपर या इको फ्रेंडली प्रिंटिंग ऑप्शन क्यों नहीं चूज करते। देखिए भाई मकसद ये नहीं है कि हर चीज को बिल्कुल बदल दिया जाए, बल्कि जहां आसानी से बेहतर चॉइस हो सकती वहां इको स्विच कर लिया जाए ना, मकसद तो यही है। अच्छा अब अगर इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं ना, तो आजकल बहुत सारे लोग अपने इवेंट्स में डिजिटल इनविटेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अभी बच्ची के अकीके का इनविटेशन रिसीव किया था एंड इट वाज वो वाओ ब्यूटीफुल। कई कपल्स अपनी शादी के लिए भी इनविटेशंस भेजते हैं जिसमें उनकी फोटोज, इवेंट डिटेल्स और पर्सनल मैसेजेस भी होते हैं। बर्थडे पार्टीज के लिए पेरेंट्स डिजिटल कार्ड बनाकर ग्रुप्स में भेज देते हैं, जो मैसेजिंग ग्रुप्स होते हैं, इजी होता है, जल्दी सबको पहुंच जाता है। अच्छा हाँ, कंपनीज भी अपनी मीटिंग्स और इवेंट्स के लिए ऑनलाइन इनविटेशंस करती हैं साथियों। अच्छा इससे ना सिर्फ पेपर वेस्ट कम होता है बल्कि गेस्ट्स के लिए भी आसानी होती है, वो इनविटेशन कभी भी मोबाइल पर दोबारा से चेक कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप इन कार्ड कहीं भूल गए हो तो भाई एक मसला पड़ जाए, लोकेशन देख सकते हैं और अपनी अटेंडेंस कंफर्म कर सकते हैं गेस्ट। अच्छा भाई यानी एक छोटी सी डिजिटल चॉइस कन्वीनियंस और स्टेबिलिटी दोनों लेकर आ सकती है। तो भाई साथियों आज का इको स्विच चैलेंज क्या है बता देती हूँ। अगली बार आप किसी इवेंट का प्लान बनाएं तो खुद से एक सवाल जरूर कीजिएगा, क्या इस इनविटेशन पेपर की बजाय हम डिजिटल बना सकते हैं। भाई जरूर बना सकते हैं और यकीन जाने पेपर से बेहतर बना सकते हैं। और हाँ हमें बताना मत भूलिएगा आपने कभी इनविटेशन रिसीव किया है। मैंने तो पिछले दिनों किया था, बहुत खूबसूरत था। और क्या आपको पेपर कार्ड्स ज्यादा पसंद है या डिजिटल इनविटेशंस? इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए हर मैसेज जो मोबाइल से भेजा जाए वो सिर्फ एक क्लिक नहीं, कभी कभी नीचे एक छोटा सा स्टेप होता है। छोटी सी आदत डालें और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से दे।
1: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है, और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। खुश रहें और खुश रहें।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी। One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: दोस्तों, फ्लाइंग कार्स, एयर टैक्सीज, इनके बारे में हमने सुन रखा है, देख भी रखा है। अब सवाल ये उठता है कि हाउ क्लोज आर वी टू दीज पर्सनल एयर ट्रांसपोर्ट। देख, अभी आपने सोचा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम रोड्स पर ट्रैफिक में फंसे की बजाय अपनी गाड़ी को हवा में उड़ाकर ऑफिस, शॉपिंग मॉल या किसी के घर पहुंच जाएंगे। देखिए, जो चीजें पहले साइंस फिक्शन मूवीज का हिस्सा थी, आज पूरी दुनिया भर में वो रियलिटी बन रही है। आजकल कंपनीज एयर टैक्सीज और फ्लाइंग व्हीकल्स डेवलप कर रही है। ये व्हीकल्स इलेक्ट्रिक बैटरीज पर चलती है और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डिजाइन की जा रही है। वैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले सालों में सिलेक्टेड सिटीज में एयर टैक्सी सर्विसेज आम लोगों के लिए अवेलेबल हो सकती है। अब हम ये सोचते हैं कि हम फ्लाइंग

लेकिन अभी भी फ्लाइंग कार्स आम ट्रांसपोर्ट का हिस्सा तो नहीं बने। इसकी वजह सेफ्टी है, इसकी वजह रेगुलेशंस है और शायद इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस। इसे गवर्नमेंट और एविएशन बॉडीज को पहले ही इंश्योर करना होगा कि ये टेक्नोलॉजी पब्लिक के लिए सेफ है कि नहीं। मुझे तो सुन के ही डर लगता है। इसे ये कहना ठीक है कि हमें फ्लाइंग कार्स जो है एक्साइट तो बहुत करती हैं, बट क्या हम खुद फ्लाइंग कार एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? आई डोंट नो, अभी तो ऑटोनॉमस कार्स का ही एक्सपीरियंस नहीं किया, फ्लाइंग कार्स पता नहीं। लेकिन हाँ, इसके फायदे तो बेशुमार होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि लोग रोड्स के ट्रैफिक से बच जाएंगे। शायद हम कह सकते हैं कि हवा में इतना रश है, जो सफर लोग रोड पर एक घंटे में तय करते थे अब वो चंद मिनट्स में तय हो सकता है। वहीं पर अगर बात की जाए इसके फायदे की, तो एक और बड़ा फायदा है फास्ट इमरजेंसी सर्विसेज। जी हाँ, इमरजेंसी सिचुएशंस में डॉक्टर्स हो, रेस्क्यू टीम्स है या फिर कोई और मेडिकल सप्लाई है, ज्यादा तेजी से डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती है। वहीं पर टाइम सेविंग भी है। बिजी सिटीज में लोगों का बहुत सा वक्त जो है वो ट्रैफिक में यूज हो जाता है। आपको पता ही होगा कि बड़ी बड़ी सिटीज में घंटों जाम लगना बड़ी कॉमन सी बात है। एयर ट्रांसपोर्ट इस वक्त की बचत करेगा और मुझे लगा है कि आपको आपके डेस्टिनेशन पर असर आ देगा। वहीं कई एयर टैक्सीज जो हैं वो इलेक्ट्रिक पावर पर चलने के लिए डिजाइन की जा रही हैं। इससे फ्यूल कंजम्पशन होगा और पोल्यूशन कितना कम हो जाएगा, यानी एक तरह की क्लीन टेक्नोलॉजी। और हाँ, बेटर कनेक्टिविटी, ये हम कैसे भूल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में एरियाज में पहुँचना आसान हो जाएगा क्योंकि रोड्स बनाने का झंझट ही नहीं। वैसे ऐसा नहीं है कि इतने सारे फायदे में गिना रही हूँ तो इसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। नहीं दोस्तों, फ्लाइंग कार्स के अपने अलग चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है सेफ्टी कंसर्न। जैसे मैंने कहा कि सुनने में बड़ा एक्साइटिंग सा लगता है, यू नो, अगर आप कोई मूवी में देख रहे हो या कोई फिक्शन मूवी चल रही है, आपको इतनी चीजें एक्साइट करती है। बट अगर आपको खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करने को कहा जाए तो शायद आप रिलक्टेंट हो गई होगे। सबसे बड़ा सवाल जो मुझे रोकता है वो है सेफ्टी को लेकर। मतलब अगर हवा में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा भाई? इसीलिए बहुत एडवांस सिस्टम जो है उसकी जरूरत है। एक चीज मुझे लगती है जो और भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होगी वो है हाई कॉस्ट। शुरू में फ्लाइंग व्हीकल्स बहुत ज्यादा महंगे होंगे, हर इंसान के लिए इन्हें अफोर्ड करना पॉसिबल ही नहीं होगा। ये तो भाई एक बात हुई। आजकल हम रोड्स पे ट्रैफिक का जो है ना वो रोना रोते हैं। कल हो सकता है हजारों फ्लाइंग कार्स हवा में हो तो उनका मूवमेंट कैसे होगा? एयर ट्रैफिक को मैनेज करना उफ बड़ा चैलेंजिंग होगा। वहां पे तो आप जो है वो सिग्नल्स भी नहीं ला सकते, क्या करोगे? उसके साथ जो है वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, फ्लाइंग टैक्सीज के लिए स्पेशल लैंडिंग एरियाज और चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत होगी, तो फिर एक एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका लोड भी बढ़ता है। फिर मैं सोच रही थी बारिश हो या फिर बहुत ज्यादा हवा चल रही हो या डस्ट है, तो ऐसे में या बहुत ज्यादा और कोई क्लाइमेटिक कंडीशन है जहाँ पर मुझे लगता है कि इस तरह के फ्लाइंग व्हीकल से उनका ऑपरेशन बड़ा मुतासर हुआ। अब आपको देखना होगा कि आज मौसम ठीक है तभी तो मैं जा सकता हूँ, इसमें जाऊँ तो जाऊँ कैसे? वैसे एक ऐसी सिटी भी आने वाले वक्त में होगी जहाँ सिर्फ और सिर्फ एयरटेल आप जो है वो आसानी से सिंपली मोबाइल ऐप से बुक करेंगे, वो आपके घर के नज़दीक आके लैंड करेगी। आप घर से निकलेंगे, नियरेस्ट टैक्सी स्टैंड तक पहुंचेंगे और बस 10 मिनट में अपनी डेस्टिनेशन पर लैंड कर जाएंगे। फ्यूचर कैसा होगा? पता नहीं, हो सकता है फ्यूचर में ऑफिसेज, मॉल्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की रूफ टॉप पर एयर टैक्सी लैंडिंग भी पैड्स भी मौजूद हों। स्मार्ट टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूट्स को मैनेज करेगा और हाँ, ट्रैवल को ज्यादा सेफ भी बनाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स की अगर मैं मानूं, जो मैं सुनती रहती हूँ पॉडकास्ट, तो मुझे समझ में आया कि कार्स शायद ट्रेडिशनल कार्स को पूरी तरह से रिप्लेस कभी ना कर पाए। ठीक है, लोग पसंद करेंगे, लेकिन एक बड़ी तादाद, एक बड़ा तबका ऐसा भी होगा

0: ट्रेडिशनल कार्स को ही अपना फर्स्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट मानेगा. तो कहने का मतलब है कि दोनों सिस्टम एक साथ चलेंगे, रोड पर भी ट्रैफिक, हवा में भी. अगर कल से यहाँ आपसे कहा जाए कि जी कल से दोहा में फ्लाइंग टैक्सी सर्विस शुरू होगी, तो क्या आप उसमें सफर करना पसंद करेंगे? क्या आप भी आज भी ट्रेडिशनल पर ज्यादा भरोसा करते हैं? चलिए मुझे बताइए 666-22107 पर. इसे ये सवाल अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प है. खैर, बस आखिरी टेक यही होगा मेरा कि आज फ्लाइंग कार्स एक फ्यूचरिस्टिक ड्रीम लगती है, लेकिन टेक्नोलॉजी की रफ्तार देखकर लगता है कि शायद अगले चंद सालों में ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए. अब हम इसे किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, ये एक अलग बात है. तो इस सफारी के लिए, सफारी तो नहीं कह चाहिए, क्या हम भी हवा में सफर करने के तैयार हैं? ये जवाब तो मुझे आप ही देंगे. फिलहाल जब तक आप अपने जवाब को जो है वो सोच रहे हैं कि मुझे कैसे देना है, क्या देना है, मैं आपसे यहाँ पर इजाजत ले लेती हूँ. कल मिलूंगी वापस, एक और नए टॉपिक पे बात करूंगी. तब तक मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हमदुर को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी. One step to 2020.
1: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम कर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामईन, इस्लाम हमें सिखाता है कि जिंदगी हर मरहले पर अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत के मुताबिक चलना ही कामयाबी है। सामईन, नौ मौलूद बच्चे के हवाले से आज की सुन्नत है तहनीक और दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौ मौलूद बच्चों की तहनीक करते थे। तहनीक का मतलब है किसी चीज को चबाकर बच्चे के मुंह डालना। ये लफ्ज हनक से लिया गया है। हनक अरबी में तालू को कहते हैं, तो तहनीक का मतलब हुआ खजूर वगैरह को चबाकर बच्चे के तालू पर मलना। तहनीक का तरीका यह है कि किसी नेक सालर के मुंह में चबाई हुई खजूर बच्चे के मुंह में डालकर उसके तालू पर मल दी जाए ताकि लुआब उस बच्चे के पेट में चला जाए और इस तरह उस नेक की नेकी के असरात इस बच्चे के अंदर मुंतकिल हो जाए। मुतअद्दिद अहादीस में इस अमल की दलील और सबूत मिलती है। बुखारी में अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा से मनकूल है, वो कहती हैं, मैं जब मदीना मुनव्वरा आई और कुबा में उतरी, वहाँ मैंने बच्चा जना तो उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर मंगवाई, उसे चबाया और बच्चे के मुंह में अपना लुआब मुबारक डाल दिया और फिर बरकत पा दी। इसी तरह अबू मूसा ज़ला रिवायत है जिसे इमाम मुस्लिम ने जिक्र किया है, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो मैं उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम इब्राहिम रखा। खजूर

0: की नीयत और फितरत में पैदा करनी चाहिए ताकि हम लोगों के ऐब नहीं उनकी खूबियां देख पाएं। बिलाशुबा ये अमर इंसान की बख्शिश का वसीला है। याद रखिए कि जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते अल्लाह ताला उन्हें ऐसी मंजिल अता फरमाता है जो किसी के वहम गुम नहीं होती। हमें हर लम्हे अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजारी से नेमतें महफूज और रिस्क में कुशादगी पैदा होती है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला सबको अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए और हम पर अपनी रहमत का साया कायम रखे।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की प्रकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। ये जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: Assalamualaikum, आप सुन रहे 60 Seconds of Baraka, FM 107 पर। मैं हूँ आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है वक्त में बरकत। कभी आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग कम वक्त में भी बहुत काम कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों का वक्त होने के बावजूद भी काम मुकम्मल नहीं होता। इसे ही वक्त की बराका कहते हैं। बरक आती है जब हम अपने वक्त को सही तरीके से यूज करते हैं और उसे बेकार चीजों में जाया नहीं करते। अल्लाह का जिक्र, नमाज की पाबंदी और डिसिप्लिन वक्त बरकत पैदा करता है। अक्सर सोशल मीडिया और बेमकसद एक्टिविटीज हमारा वक्त ले जाती हैं। अगर हम थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। आज का अमल ये है कि अपने दिन के कुछ हिस्से को प्लान बनाएं और बेकार एक्टिविटीज को कम करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
4: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पब्लिक प्लेसेस में पेट्स के लिए कुछ लॉज रखे हैं, जैसे डॉग्स को अक्सर पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क्स और कॉर्निश में अलाउड नहीं है। परमिटेड एरियाज में भी लीश्ड होना जरूरी है। इसके साथ पेट आइडेंटिफिकेशन, जिसमें ओनर्स को मशवरा दिया जाता है कि माइक्रोचिप्स, टैग्स या टैटूज के जरिए आइडेंटिफिकेशन करें। डेंजरस एनिमल्स के लिए भी कुछ रेगुलेशंस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर डेंजरस स्पीशीज को रेगुलेट करती है, जिनमें रॉटवीलर्स, डोबरमैन्स और दूसरे एनिमल्स शामिल हैं जो पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट बन सकते हैं। ऐसे में स्ट्रे डॉग्स को फीड ना करें क्योंकि ये टेरिटोरियल बिहेवियर को इंकरेज करता है। अगर आपको ये बाइट करें तो फौरन नियर हॉस्पिटल जाकर रेबीज वैक्सीन लगवाएं। अग्रेसिव डॉग्स की गैदरिंग को अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। पब्लिक सेफ्टी और पेट ओनरशिप के रूल्स को हाईलाइट करती हैं जो रीसेंट मिनिस्ट्री इंटीरियर एडवाइजरी में शामिल है।
5: Anytime, anywhere.
6: Yes, anytime, anywhere.
5: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
7: FM 107.
5: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: स्कैम अलर्ट। दोस्तों नया जमाना है, नए तरह के स्कैम्स हर रोज बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं फिजिकल स्कैम के बारे में। जैसे पहले जो हुआ करता था, लोग कॉल के जरिए, ओटीपी के जरिए, फोन कॉल के जरिए या फिर मिस कॉल के साथ साथ एप्लीकेशन के जरिए, यानी कि इंसान आपके सामने नहीं होता था लेकिन दूसरा तरीका होता था, डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीके होते थे लोगों को फ्रॉड में फंसाने के लिए या उनके साथ स्कैम करने के लिए, और उनका हजारों रुपए हजारों रियाल गायब हो जाया करता था। लेकिन अब फिजिकल स्कैम का जमाना आ गया, लोग आपके सामने आने लग गए, अब किसी बात का डर नहीं रहा है। और अब ही एक स्कैम चल रहा है, बायोमेट्रिक वेलफेयर एंड राशन स्कैम। रूरल एरियाज और विलेजेस में आजकल गवर्नमेंट स्कीम्स और फ्री राशन के लिए बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन लाजमी हो गया है। स्कैमर्स फिर गवर्नमेंट एजेंट्स बनकर आते हैं और भोले भाले गलों को, विलेजर्स को स्कीम का फायदा दिलाने का बहाना बनाते हैं। वो उनका फिंगरप्रिंट मशीन पर स्कैन करवाते हैं और बताते हैं, कहते हैं कि आपको जितना भी अनाज है, जो आपके लिए जरूरी चीजें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, वो आसानी से आपके घर पे आ जाएगा, इसलिए आप स्कैन जो है अपना अंगूठा उंगलियां स्कैन कर दें। लेकिन ये एक चाल होती है, असल में वो फिंगरप्रिंट उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, यानी कि भोले भाले लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए यूज हो जाता है। खैर इसका सॉल्यूशन भी है दोस्तों, किसी भी अनजान या प्राइवेट पर्सन के कहने पर अपने बायोमेट्रिक कंफर्मेशन या थंब इंप्रेशन किसी को ना दें। हमेशा वेरीफाई करें कि आने वाला पर्सन इंसान असली गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं, और सिर्फ ऑफिशियल सेंटर्स पर जाकर ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं। और इस तरह के स्कैम से बचने के लिए हर वक्त सतर्क और होशियार रहें। फिर मिलेंगे नए जमाने के एक और नए स्कैम से आपको बचाने के लिए, तब तक सुनते रहें FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, पिछले एपिसोड में हमने बात की कि सीजनल एलर्जी के असबाब क्या क्या हो सकते हैं और किस तरह से जो सीजनल एलर्जी है उसे हम मुतासिर हो सकते हैं। आज हम उसकी अलामत और उसकी डायग्नोसिस पर बात करेंगे। सीजनल एलर्जी की सबसे नुमायां अलामत बार बार छींकें आना है, नाक बहना, नाक बंद होना, आंखों में खारिश होना, आंखों से बाज़ोकात पानी आना और इसी तरह गले में खश भी हो सकती है। कुछ अफराद में कुछ ऐसी अलामतें भी देखी जाती हैं जो कि आम तौर पर नहीं भी होती, से सर में शदीद दर्द होना और चेहरे पर आप दबाव या भारीपन महसूस करते हैं, जो सूंघने की हिस है उसमें कमी हो सकती है, कानों में खारिश महसूस होना, इसी तरह नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाना, बहुत ज़्यादा फटीग, थकन और चिड़चिड़ापन महसूस करना, ये ऐसी अलामत हैं जो कि जाहिर हो सकती हैं। एलर्जी वजह से रात को नाक बंद रह सकती है जिससे फिर नींद मुतासिर होती है। नींद की कमी काम की कारकर्दगी, पढ़ाई और तवज्जो पर नेगेटिव असरात डालती है। अक्सर अफराद एलर्जी और नज़ला जुकाम में नहीं कर पाए। नज़ला आमतौर पर चंद दिनों में बेहतर हो जाता है, उसके साथ टेम्परेचर भी हो सकता है, जबकि एलर्जी कई हफ्तों तक जारी रह सकती है और उसमें बुखार बिल्कुल नहीं होता। डॉक्टर मरीज की अलामत की वजह से ही एलर्जी का अंदाज़ा लगाते हैं और बाद सूरतों में एलर्जी टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं ताकि मखसूस जो वजूहात हैं उन्हें देखा जा सके। अक्सर एलर्जी के साथ सांस भी फूलने लगती है और अगर ऐसा हो या फिर सीने में जकड़न महसूस हो या खांसी बार बार आने लगे तो ये अस्थमा की अलामत हो सकती है और फौरी तिबी मशवरे की ज़रूरत होती है। फौरन आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। बच्चों में एलर्जी की बर वक्त तशखीस बहुत अहम है क्योंकि मुसलसल नाक बंद रहने से उनकी नींद, उनकी तालीम और जिस्मानी नशो नुमा मुतासिर हो सकती है। अलामत को नज़रअंदाज करने की बजाय बर वक्त तवज्जो देना बेहतर सेहत की तरफ पहला कदम है।
3: Maximum music, maximum fun.
0: On FM 107, Dil Se Desi.

0: सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे जासिम जाबिर के बारे में। जासिम जाबिर एक यंग और प्रॉमिसिंग कतरी फुटबॉलर हैं जो कतर की नेशनल टीम और डोमेस्टिक फुटबॉल में डिफेंसिव रोल के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी पैदाइश 20 फरवरी 2002 को दोहा में हुई और बसपार एकेडमी से ट्रेनिंग हासिल करके प्रोफेशनल फुटबॉल तक पहुंचे। उनका मेन पोजीशन है डिफेंसिव मिडफील्डर, लेकिन वो जरूरत पड़ने पर सेंटर बैक और राइट बैक की पोजीशन में भी खेल सकते हैं। जासिम ने असद और अर्रयान जैसे टॉप कतरी क्लब्स के साथ अपना डोमेस्टिक करियर डेवलप किया, जहां उन्हें हाई लेवल कोचिंग और इंटरनेशनल क्वालिटी प्लेयर्स के साथ खेलने का तजुर्बा मिला। उनकी गेम रीडिंग, टैकलिंग और डिसिप्लिन उन्हें मॉडर्न फुटबॉल का एक वर्सेटाइल डिफेंडर बनाती है। इस साल का वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप में कतर को ग्रुप बी में रखा गया था और कतर के स्क्वाड में जासिम को शामिल कर लिया गया था। उन्होंने ग्रुप स्टेज मैचेस में कतर की तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट अपीयरेंसेस किए। स्विट्जरलैंड के खिलाफ एक एक ड्रॉ और बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ मैच में उन्होंने डिफेंसिव मिडफील्ड रोल में टीम को स्टेबिलिटी फराहम की, जबकि कनाडा के खिलाफ टफ मैच में भी वो मिडफील्ड और

0: बैक लाइन के दरमियान लिंक बनाते रहे। इन मैचेस ने उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस दिया। जासिम जावेर को कतर फुटबॉल का फ्यूचर स्टार माना जाता है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो आने वाले टूर्नामेंट्स में और बेहतर परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शफ अहमद को दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरत अंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.ua।
5: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरी विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। ओनली ऑन FM 107 दिल से डेरी, दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सबका आपके अपने प्रोग्राम में, दिल से जुड़े प्रोग्राम में। भाई वो प्रोग्राम जहां रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे यादगार कहानियों में बदल जाते हैं, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, शॉपिंग मॉल्स की रोशनियों में चमकती यादें, और कभी मेट्रो या दीगर सफर के एनकाउंटर्स जो दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। हर शख्स के पास एक कहानी होती है, एक एहसास, एक याद जो अपनी वर्चुअल डायरी का हिस्सा होती है, और ये यादें ही हैं जो हमें रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाती हैं, एक सुकून, एक मुस्कुराहट और एक नई ताजगी देती हैं। तो आइए मिलकर सुनते हैं, महसूस करते हैं और शेयर करते हैं वो कहानियां जो हम सबको एक दूसरे के करीब लाती हैं। ये है आपका अपना प्रोग्राम जहां हर याद एक सफर है और हर सफर एक कहानी। और इसी सिलसिले से हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं एक मेहमान, जहां हम उनसे उनकी कहानी सुनते हैं, कुछ सवाल जवाब के जरिए से उनको जानते भी हैं और उन यादों से खुद को कनेक्ट भी करते हैं। तो दोस्तों आज के जो हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनकी जिंदगी हॉकी फील्ड के इर्द गिर्द घूमती है और जिनका सफर मेहनत

0: जज्बे और कामयाबी की एक खूबसूरत मिसाल है। अदनान सुहेल साहब का ताल्लुक पंजाब के शहर गोजरा से है, जो पाकिस्तान में ओलंपिक विलेज के नाम से मशहूर है और हॉकी के लाजवाब विरसे का मरकज माना जाता है। उन्होंने अपना हॉकी का जो सफर है इस्लामिया हाई स्कूल से शुरू किया, जहां 4 साल तक अपनी सलाहियतों को निखारा और इसके बाद लाहौर में पंजाब कॉलेज से तालीम हासिल करते हुए डिपार्टमेंटल हॉकी में कदम रखा और सुई सदन गैस और पाकिस्तान कस्टम्स जैसी नुमाया टीम्स की नुमाइंदगी की। साल 2011 में उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ आया जब वो कतर मुंतकल हुए। यहाँ से उनका सफर कतर नेशनल हॉकी टीम के इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर शुरू हुआ, जिसने उन्हें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इंटरनेशनल हॉकी और यूरोपियन लीग्स में खेलने का मौका दिया। खिलाड़ी से कोच बनने तक का उनका सफर भी इंतहाई दिलचस्प रहा। आज अदनान सुहेल साहब कतर हॉकी नेशनल टीम डेवलपमेंट के असिस्टेंट कोच के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और आने वाली नस्ल के हॉकी सितारों की तरबियत और रहनुमाई कर रहे हैं। आइए खुशामदीद कहते हैं सुहेल साहब को और उनका इस्तकबाल करते हैं। अदनान साहब, वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में।
0: अहलन बस भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदनान साहब के आपने वक्त निकाला अपने जरूरी टाइम से हमारे साथ जुड़ सके।
1: जरूर, क्यों नहीं सर, आपने मुझे इनवाइट किया है तो बनता है टाइम निकालना।
0: चलिए तो अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और कुछ सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। अदनान साहब, अगर आप अपनी शख्सियत को 3 अल्फाज में बयान करें तो वो क्या होंगी?
1: मैं अगर 3 अल्फाज में बयान करूँ तो उसमें जुनून, इस्तकामत और शुक्र।
0: वाह क्या बात।
1: जुनून मुझे जो सुबह मैदान में खींच के लेके जाता है, इस्तकामत जो मुझे मुश्किल वक्त में साबित कदम रखती है,
0: वाह,
1: शुक्र जो अल्लाह ताला का हर हाल में करना चाहिए।
0: करना चाहिए, बहुत खूब, बहुत अच्छे अदनान साहब। अदनान साहब, एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर और असिस्टेंट कोच के तौर पर आप अपनी पहचान को कैसे देखते हैं?
1: ये अल्लाह ताला का बहुत ही करम है कि हम मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं और हर हाल में मैं अल्लाह ताला का शुक्र ही करता हूं।
0: आज जब आप अपने सफर को देखते हैं तो सबसे ज्यादा फख्र किस पर होता है?
1: सबसे ज्यादा फख्र मुझे इस बात पर ही होता है कि मैं एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर रहा हूं और कंटिन्यूसली अभी भी कतर की नेशनल टीम से खेल रहा हूं और अल्लाह ताला ने और मैंने साथ मेहनत करता रहा हूं, प्लेयर के साथ साथ मैं कोचिंग का जो होता है कोर्सेज वगैरह करता रहा हूं, सीखता रहा हूं और अल्लाह ताला ने एक ऐसा मुकाम दे गया मुझे कि अब मुझे असिस्टेंट कोच की प्रॉपर जॉब मिल गई है,
0: अल्हम्दुलिल्लाह,
1: ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं प्रोफेशनल हेड कोच भी बन सकता हूँ अगर मैं अपनी कंटिन्यूसली स्टडी स्टार्ट रखूँ। जैसे पहले मैंने अपनी ग्राउंड गेम के दौरान कोचिंग को भी साथ रखा सीखते, उसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि कोचिंग के साथ साथ हमें खेलना भी आ जाता है, कुछ चीजें पॉइंट्स होती हैं जो बाद में एक बड़ी उम्र के बाद पता चलती हैं, वो छोटी उम्र में पता चल जाता है। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने ये हिम्मत और सलाहियत दी कि मैं सीखता हूँ और हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ।
0: क्या बात है अदनान साहब, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी दे और इसी तरीके से आप नई जनरेशन की भी रहनुमाई करते रहें, यही दुआ है। अदनान साहब, आपकी पैदाइश गोजरा तौबा टेक सिंह में हुई, बचपन की कुछ यादें हमारे साथ शेयर कीजिए।
1: जी, मैं गोजरा तौबा टेक सिंह, एक छोटा सा तहसील है तौबा टेक सिंह की पंजाब की, उधर पैदा हुआ और मैं वो स्कूल में पढ़ता था तो एक चीज मुझे है जो मिसिंग है मेरी लाइफ में, क्या है वो समझ नहीं आ रही थी, पढ़ रहा था बस पढ़ रहा था और कुछ नहीं। तो 7th क्लास में जब था ना तो कुछ एक असम्बली होती है, असम्बली में कुछ प्लेयर्स को अनाउंसमेंट हुई कि ये हॉकी प्लेयर्स हैं नेशनल टीम, हमारी जो स्कूल की टीम है ये जी सिल्वर मेडल लेकर आई है। तो उनको मैंने जब देखा बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो मैंने कहा ये जब प्रोटोकॉल इनको मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा। फिर मैंने सोचा, फिर डिसाइड किया कि मैंने ना कुछ करना है पढ़ाई के साथ साथ, एक तो उसमें एक फिटनेस बन जाती है, एक इंसान बुरे चीजों से बच जाता है, स्मोकिंग ये दूसरी ऐसी वैसी चीजों से, माहौल से। तो मैंने अपनी पढ़ाई और उसके बाद स्पोर्ट्स दोनों पे फोकस किया और फिर मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि मैं हॉकी खेलूंगा इंशाल्लाह। तो मैंने फिर उधर से अपने जो सर थे उनसे बात की, सर मैंने भी ये हॉकी खेलनी, मुझे मोटिवेट किया उन्होंने तो मैं हॉकी स्टार्ट कर दी थी फिर नेक्स्ट डे से।
0: क्या बात है भाई, तो ये तो आपने बता दिया कि हॉकी से पहला तारुफ कैसे हुआ, क्या ये बचपन का शौक था या किसी ने इंस्पायर भी किया? जैसा कि आपने अर्ज किया कि कहीं ना कहीं आपने ये सोचा कि भाई हमें इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, तो

0: कभी ऐसा भी हुआ कि हॉकी वगैरह किसी को खेलते देखा या किस तरीके से इंस्पिरेशन मिली आपको?
1: एक्चुअली मेरे एक अंकल थे वो पाकिस्तान पीआईए से खेलते थे, तो उनको भी देख के सोचता था, लेकिन घर का कुछ सिस्टम ऐसा था कि उस वक्त नहीं माहौल बना खेलने का, नहीं चांसेस बना जब, लेकिन स्कूल में था। और उसके अलावा मैं क्रिकेट खेलता था हॉकी से पहले, क्रिकेट ग्राउंड के साथ ही हॉकी का ग्राउंड था, तो फिर हम क्रिकेट खेलते हुए हमारी बॉल उधर चली जानी हॉकी वाले ग्राउंड में, तो वो कोच मुझे बॉल देता था और साथ कहता था, यार क्या खेलते हो, इधर आओ, हमारे सिटी में जो है हॉकी ज्यादा फेमस है, आप क्रिकेट छोड़ो इधर आ जाओ। जब भी होना यही चीज सुनने को आनी, ये चीजें भी थी उसके बाद स्कूल में जो टीम को देखा तब, ये चीजें, ये दोनों चीजें को मिक्सअप करके, और साथ मेरे अंकल जो खेलते थे, फिर उनको मैंने फोन किया, उनसे रहनुमाई ली, उनसे हेल्प उन्होंने मेरी बहुत की, तो इधर से करते करते ये चीजें थोड़ी सी सोच को समझ समझ के मैं हॉकी में।
0: क्या बात है, आपने पहली बार कब महसूस किया कि हॉकी आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन सकती है?
1: मैंने उसी वक्त जब मैंने प्लेयर्स को प्राइजेस देखे और उनको रिस्पेक्ट देखा, कि नॉर्मल एक स्टूडेंट को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी जितनी वो प्लेयर्स जो हॉकी खेलते भी थे और साथ पके भी थे, तो फिर उस वक्त मैंने ये सोचा कि मैंने भी इंशाल्लाह इस तरह प्रमोट करना है,
0: आगे बढ़ाना है अपने आपको।
1: जी जी।
0: कतर आने का फैसला कैसे हुआ और उस वक्त आपके जहन में क्या ख्याल थे?
1: कतर आने का फैसला इस तरह हुआ कि मैं, हम हॉकी खेल रहे थे पंजाब में, पाकिस्तान में कस्ट, और ये दो तीन डिपार्टमेंट मैंने खेले हैं, तो लेकिन उधर सैलरी बहुत कम थी, तो लेकिन मैं एक अच्छा प्लेयर था, टैलेंटेड, और मेरे साथी जो कुछ थे वो पहले ही कतर आ रहे थे हम मुझसे कुछ तकरीबन महीना डेढ़ महीना पहले, तो मैंने देखा कि अगर कतर को भी जरूरत थी कि एक ग्रुप मिल जाए, हमारा एक ग्रुप था 8 लड़कों का बहुत अच्छा, हमारे उस्ताद थे ताहिर रहमान ओलंपिक 94 के चैंपियन है, तो वाइस कैप्टन थे और शहबाज सीनियर के साथ, तो उन्होंने फिर हमें ये कतर के साथ, उनके साथ अच्छे लिंक्स थे उसके इधर की फेडरेशन के साथ, तो उनको ऑफर आई थी कि आप हमें कुछ प्लेयर चाहिए जो बहुत ही अच्छे हों और एक ग्रुप हो जो हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कि हम अगर टीम बनाएं तो कुछ वो सेटल करने के लिए आपस में, मैं क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, तो फिर हमारा एक पूरा ग्रुप स्टेप बाय स्टेप, 4 लड़के पहले आए थे, फिर 5वां मैं आया था, मेरे बाद फिर 3 आए, एक 2 महीने के अंदर अंदर हम 8 लड़के जो कतर की नेशनल टीम ज्वाइन कर चुके।
0: क्या बात है भाई। जब आप पहली बार दोहा पहुंचे अदनान साहब, तो पहला इम्प्रेशन क्या था?
1: पहला इम्प्रेशन एक तो पहले बहुत कुछ थे, और उस वक्त मैं जब उतरा सबसे पहले दोहा एयरपोर्ट पर आना, तो इधर उतरे हैं तो सबसे पहले मेरे दोस्त जो थे उन्होंने पिक किया, सब इकट्ठे आए, बहुत खुशी हुई कि यार इधर एक माहौल बहुत अच्छा था, साफ सुथरा था, कम्युनिटी मतलब उनके साथ वो एक दूसरे की केयरिंग थी, तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी।
0: क्या बात है। शुरू के दिनों में एक नए मुल्क में और एक नए कल्चर में एडजस्ट करना कैसा रहा आपके लिए?
1: एक्चुअली ज्यादा मुश्किल इसलिए नहीं हुआ कि मैं पाकिस्तान में भी, पूरे पाकिस्तान में जाता रहा हूँ, खेलता रहा हूँ, हर डिफरेंट सिटीज में कैंप्स और अकेडमी में तकरीबन दो दो दो तीन तीन महीने बाहर रहना, आउट ऑफ सिटी रहना, फैमिली से दूर एक ग्रुप फ्रेंड के साथ, तो एक इतना मुश्किल नहीं हुआ था इधर के भी, और इधर की जो मैनेजमेंट थी बहुत ही नाइस थी, हमारे सर नासिर थे वो इंडिया के थे, वो हमारे सेक्रेटरी थे हॉकी फेडरेशन के उस वक्त, और उनकी वजह से, उनकी हेल्प उन्होंने बहुत ज्यादा की हमारी, हमें समझाते थे, बताते हर चीज, और जो चीजें हमें बाद में बहुत टाइम से बात पता चलनी थी वो पहले बता देते थे, तो इसकी वजह से हमें कोई इतना ज्यादा मुश्किलात नहीं हुई।
0: बहुत अच्छे। शुरू के दिनों में एक नए मुल्क में और एक नए कल्चर में एडजस्ट करना कैसा रहा?
1: बहुत ईजी था, मुश्किल नहीं था, इसलिए कि इधर स्पोर्ट्स जो एडमिनिस्ट्रेटर था ना बहुत अच्छा था, तो हमें अकोमोडेशन अच्छी मिली, रहना खाना पीना सब अच्छा मिला, और ग्राउंड फैसिलिटीज अच्छी हुई, क्योंकि हम स्पोर्ट्स मैन थे, हमें सबसे मेन चीज़ होती है हमें स्पोर्ट्स मिलती रही, वो हमें मिलती रही है, खेलते रहिए बिजी, तो कोई इतना मुश्किल नहीं हुआ।
0: अच्छा, ये भी जान सकता हूँ अंदान साहब के स्पोर्ट्स करियर को कंटिन्यू रखना कितना चैलेंजिंग रहा, क्योंकि जिम्मेदारियां तो होती हैं घर की भी काम की भी?
1: चैलेंजिंग जब तक पाकिस्तान में थे तब तक तो काफी मुश्किल था, तो लेकिन जब कतर आ गए तो इधर ये था फिक्स सैलरी एक मिलने लगी थी, अकोमोडेशन घर वगैरह सब कुछ, मेडिकल फैसिलिटीज, जो इंसान को मुश्किल होती है वो सारी इधर कोई ऐसी मुश्किल नहीं हुई।
0: क्या बात।
1: और साथ तो इस वजह से कोई इतना मुश्किल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।
0: हमारा कतर इसी तरह हर किसी का, हर एक का ख्याल रखता और रखता आया है, अल्लाह ताला मजीद कामयाबियां दे हमारे कतर को भी और हम सब को भी। क्या कभी आपने सोचा कि ये सफर इतनी दूर तक ले जाएगा?
1: नहीं, कभी नहीं सोचा था मेरा, एक्चुअली मेरा जैसे पहले कुछ भी नहीं सोचा, जाएंगे बस ये पाकिस्तान में रहेंगे, अपने पाकिस्तान की तरफ से हॉकी खेलेंगे, डिपार्टमेंटल हॉकी खेलेंगे, तो

0: नहीं थी, लेकिन जब हालात ऐसे आए, कुछ मुश्किलात ऐसी, तो फिर सोचा कि नहीं इधर से निकलना थोड़ा सा बनता है, चलो कुछ नहीं सीखेंगे। एक्चुअली हमें भी इधर भी हम एक महीने के लिए आए थे, एक लीग थी इधर कतर में, तो वो खेल के उन्होंने कहा था उसमें ट्रायल होंगे, आप देखेंगे अगर हमें पसंद आए, तो हमने भी कहा चलो ठीक है चलते हैं, क्या बात है क्या मुश्किल है, एक महीना रहेंगे वापस आ जाएंगे। जब इधर आए, इधर का माहौल अच्छा था, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी, तो कोई इतना मुश्किल नहीं हुआ। तो फिर हमने भी डिसाइड किया कि नहीं जाना, तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि आपको वापस नहीं भेजना, तो हम फिर इधर अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो गए।
1: भाई चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सख्त दिन और स्ट्रॉन्ग डेज की बात करते हैं। हर एथलीट की जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, जैसे आपने भी अभी फरमाया, तो आपका सबसे मुश्किल दौर कौन सा रहा, जो चीजें परेशानी के हिसाब से बात करें तो?
0: परेशानी कुछ नहीं थी, एक बार एक हमारा कोच आया था मलेशियन, तो वो अच्छा था, लेकिन उसको एक इन द एंड एक हमारी चैंपियन ट्रॉफी हो रही, तो उसमें उसने एक टीम प्लेयर को ड्रॉप किया था, एक लड़का था का जुनेद, एक तारिक और एक मैं, और मैं हमारी जगह उन्होंने एक उसके कोई दोस्त है मलेशियन ही, एक मेरे का 35 एज और एक कोई 32 ऐसे कुछ था, उन्होंने रिप्लेस करके हमें टीम से ड्रॉप कर दिया था। तो उस वक्त फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ना अब छोड़ के जा रहा हूँ, ये 2012 के एंड की बात है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक सेकंड जो असिस्टेंट कोच था ना, वो मैं ऑफिस में बैठा था, भाई मेरे पास क्या हुआ, मैंने कहा ये इशू है, कोच ने ऐसे ऐसे ये गलत चीज की है, जिसने का टेंशन नहीं लो, तो मैंने उसको सारा बताया, उसने फिर सेक्रेटरी से बात की, मैं हुआ तो वो टूर्नामेंट नहीं हम खेले थे, उसके बाद ये हम कंटिन्यूसली रुके भी हैं, खेले भी हैं, लेकिन ये है वो कोच की गलत पॉलिसी, वो कोच नेक्स्ट ईयर फारग हो गया था कुछ मंथ में, क्योंकि उसकी पॉलिसी गलत थी, जो जिस प्लेयर को उन्होंने हमारे साथ रिप्लेस किया था वो एक्चुअली एक्स इंटरनेशनल थे मलेशिया के, और वो पहली मैच में अनफिट हो गया था एक प्लेयर को।
1: भाई ये तो हमारे खतर की खासियत है कि हर किसी के साथ इंसाफ होता ही है। अदनान साहब, दोहा इतनी खूबसूरत जगह और हर किसी का ख्याल रखने वाला मुल्क हमारा कतर, क्या कभी होमसिकनेस महसूस हुई या फिर से दूर रहने का एहसास हुआ आपको दोहा में रहते हुए?
0: जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि एक टीम थी हमारे, एक ग्रुप था लड़कों का, वो बहुत अच्छा था, ऊपर से हमारी मैनेजमेंट जो थी बहुत अच्छी थी, जो प्रॉब्लम हो जो इशू हो वो सुनती थी, और कभी भी फाइनेंस कोई क्या कहते हैं पैसों का नहीं हुआ, सैलरी का इशू नहीं हुआ उस वक्त। तो मेन चीज़ तो यही होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तभी होता है कि होम सिकनेस हो, उसके अलावा हमें परमिशन थी जब आपका दिल करे, ऑफ सीजन होता है हमारा जून जुलाई अगस्त, इसमें आप 2-3 महीने आप जा सकते हो पर्सन, तो हमें जब साल में एक बार दो बार जाते थे।
1: इंजरीज, प्रेशर और कंपटीशन वगैरह, इन सबको मैनेज करने के हवाले से क्या कह सकते हैं?
0: कभी प्रेशर वगैरह तो कभी नहीं हुआ, एक मैच प्रेशर होता था, लेकिन हमारे जो कोच था ना एक इजिप्ट के थे, तो वो माशाल्लाह बहुत ही क्वालिफाइड थे और बहुत समझदार, मागद अबू तालिब, तो उन्होंने हमें प्रेशर पहले इतनी ट्रेनिंग करवा देते थे कि जब हमारे कुछ टूर्नामेंट आता कुछ आता हमें पहले स्टेडियम में ले जाते थे, ठीक है, दिन में 2-3 सेशन करवाते थे, इतना हार्ड वर्क करवाते थे कि हमें वो प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं लगता था मैच के दिनों में।
1: ओके,
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था।
1: लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सरवर मिर्जा आपके साथ, बस मैं यूं गया और यूं वापस आया, देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं दोहा डायरीज विद RJ सरवर मिर्जा, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: चलिए अब फैमिली के हवाले से भी जान लेता हूँ कि आपकी फैमिली का आपकी स्पोर्टिंग जर्नी में क्या रोल रहा है?
0: मेरा एक्चुअली फादर का बहुत रोल था मेरे इसमें खेलने में, स्टार्ट में मुझे कोई भी अलाउ नहीं कर रहा था घर में, भाई मदर, तो लेकिन फादर जो थे वो उन्होंने अलाउ किया, उन्होंने कहा आपको जो दिल करता है करो, लेकिन अपनी स्टडी के साथ कंटिन्यूस रखो कंटिन्यू, तो उसके उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और मजे के बाद मुझे पता चला है बाद में, मेरे फादर भी बचपन में हॉकी खेलते रहे हैं, मुझे तकरीबन 10 साल बाद पता चला है कि वो भी हॉकी खेलते रहे हैं,
1: तो ये बात शायद कहीं ना कहीं उन्होंने छुपाई रखी और आपको भी एक बेहतरीन हॉकी प्लेयर बनना देखना चाहते हैं, मगर शायद उन्होंने वक्त का इंतजार किया।
0: जी जी, हमें बिल्कुल उन्होंने वक्त का इंतजार किया, उन्होंने मुझे 10 साल बाद पता चला कि हैं आप भी हॉकी खेलते रहे हो, कहता है जी मैं खेलता रहा हूँ, क्योंकि हमें ग्राउंड में आते थे मुसलसल, हमें देखने ग्राउंड की गेम्स वगैरह देखने, हमारा सिटी जो है ना टाउन जो है ना हॉकी के हिसाब से ओलंपिक विलेज के नाम से फेमस है, और अभी भी हम उधर मॉर्निंग 4 o'clock हॉकी स्टार्ट हो जाती है और तकरीबन 9-10 बजे तक चलती है।

0: और शाम को फिर 2 बजे दोपहर को शुरू हो जाती है और शाम को 6-7 बजे तक जब तक के सूरज ग्रूव नहीं हो जाता उस वक्त तक चलती
1: है। क्या बात है, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने का सफर जो रहा, इनमें बातें बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ी होंगी, तो इसके हवाले से कुछ कहना चाहते हैं?
0: इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचने के लिए कुर्बानियां तो बहुत दी हैं, एक बहुत लंबी दास्तान है। तो लेकिन हम ये कि हम हार्ड वर्कर थे और कंटिन्यूसली ग्राउंड में जाना नहीं छोड़ा था। मुश्किल वक्त आए थे, एक दो बार छोड़ा की फिर वापस आए, फिर छोड़ी फिर वापस आए। मुझे हमेशा शुरू से अच्छे उस्ताद मिले और मैं वो मुझे पसंद करते थे। मेरी एक चीज़ अच्छी थी कि मैं हार्ड वर्क करता, मैं सब चीज़ को नेगेटिव नहीं लेता था, पॉजिटिव लेता था। कभी मुश्किल आनी शेयर करनी उस्तादों से कोचिज से, तो अच्छी रहनुमाई मिलती थी और अपने वाला साहब अच्छी रहनुमाई मिलती थी, फिर मोटिवेट होकर समय वापस ग्राउंड में आना पड़ता था। तो इससे कोई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा सिस्टम।
1: ऑलराइट, आज पीछे देखते हुए सबसे बड़ी सीख कुछ ऐसी मिली जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं?
0: पीछे देखते हुए सीख यही मिली है कि आप कुछ भी मुश्किल वक्त हो, कोई भी कभी कोई परेशानी हो, अपने पेरेंट्स अपने साथ और अपने जो वेल विशर्स हैं उनके साथ शेयर करें और उसको कोशिश करें उसका हल निकालें। और परेशानी कोई भी हमेशा के लिए नहीं होती, उसको बस हार्ड वर्क और अच्छे से टैकल कर लो तो वो परेशानी दूर हो जाती है।
1: क्या बात है भाई अदनान साहब, चलिए अब अगले सेगमेंट की जानिब चलते हैं और कुछ मेमोरीज इकट्ठा करते हैं, कुछ माइलस्टोन्स की बात करते हैं, कुछ गोल की बात करते हैं। और अब हमें हमारे लिसनर्स जानेंगे भी मजीद आपके बारे में। 2017 इंडोर एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतना कैसा एहसास था?
0: ये बहुत जबरदस्त, एक्चुअली हम ब्रॉन्ज मेडल की जगह सिल्वर और सिल्वर मेडल भी जीत सकते थे, क्योंकि हमारा हरीफ सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग हरीफ था वो था ईरान। इंडोर हॉकी में ईरान बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकंड पे जो गोल्ड मेडल ईरान हुआ था और ब्राउन मेडल सिल्वर मेडल जो हुआ था ओमान हुआ था और ब्राउन मेडल कतर हुआ था। तो उस वक्त सबसे प्रॉब्लम एक मैच में एक फ्रैक्चर ऑफ सेकंड में ऐसा गलती है हमारे कोच से कि हमारा गोल कीपर चेंज कर रहे थे उस टाइम में, हम 1-1 ड्रॉ जीत रहे थे 1-0 से, तो 1-0 से जीत रहे थे, वो एक गलती से एक फ्रैक्चर ऑफ सेकंड में हमें एक गोल हो गया, बराबर हो गया। उसके बाद प्लेंटी शूट आउट लगे, प्लेंटी शूट आउट पे हम ओमान से हार गए थे, ओमान फिर फाइनल में पहुंच गया था, हम सेमीफाइनल मतलब कि हम ब्राउन मेडल की इसमें मैच में चले गए थे। ये सेमीफाइनल की बात कर रहा हूँ, तो उससे ये बहुत इशू होना था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम उस वक्त फाइनल में पहुंच जाते तो हमारी टीम इंडोर वर्ल्ड कप खेलती।
1: क्या बात है, इंशाल्लाह अब ये जो आपका ख्वाब है आगे अल्लाह ताला खैर से पूरा कराएगा। मेडल जीतने के बाद सबसे पहला ख्याल अदनान साहब किसका आया जहन में?
0: सबसे पहला ख्याल तो अपने वालिद का ही आया, माशाल्लाह उनके बहुत खुशी विश थी कि हम कुछ ना कुछ अचीव करें। तो और उसके बाद कतर ने हमें बहुत सपोर्ट किया, तो हमने अपनी जान लगा के उस वक्त ब्राउन मेडल भी इजी नहीं था लेना, तो क्योंकि हमारा मैच मलेशिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है एशिया में, तो हमने अपनी जान पूरी लगा के ये ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था कि हमने कर कुछ ना कुछ देना है।
1: वाह,
0: क्योंकि कतर ने हमें बहुत कुछ दिया है।
1: वाह,
0: तो हमने उसको ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या जज्बा है और क्या खूब बात कही है। कोई ऐसा मैच जो आज भी आपके जहन में ताजा हो? जाहिर है कि ये वाला जो आपने किया, इसके अलावा भी कुछ इसमें ऐड करना चाहते
0: हैं? एक मैच हमारा सिंगापुर में था, सिंगापुर में साथ हम मैच सीरीज खेल रहे थे।
1: अच्छा,
0: 5 मैच की सीरीज खेल रहे थे।
1: अच्छा।
0: तो पहले 2 मैच तो हम जीत गए थे, तीसरे मैच में ऐसा हुआ कि हम ना थोड़ा सा इजी ले लिया टीम को, हम 3-0 से हारे थे। तो हमारा कोच जो था वो नाराज होकर ग्राउंड से बाहर चला गया। तो हाफ टाइम में हमने डिसाइड किया लड़कों ने, यार ये क्या हो गया कि ये कोच तो नाराज हो गया, क्या करना है। और हमें खुद नहीं समझ आ रही थी, हमने बहुत इजी लिया हुआ था टीम को। तो आप मानोगे कि वही मैच हम 5-3 से जीत के बाहर आए।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है।
0: तो वह तो ये करना की बात, उस वक्त हमने सोचा कि इतना इजी हो रहा है मैच, क्यों हम इस टीम पहले 2 जीते हुए क्यों ऐसा इशू। तो वो प्रॉब्लम ये था इंडिविजुअल खेल रहे थे, ये फिर टीम वर्क किया और कोच को देखा कि कोच एंग्री है, फिर हमें फील हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने फिर इतना हार्ड वर्क किया उसी मैच में, इतना के जोर लगाया कि वो टीम भी सरप्राइज हुई, हमारा कोच भी सरप्राइज हुआ और हम खुद सरप्राइज हुए कि हम एक टीम को 3-0 से हारने से 5-3 पे जीत के बाहर निकले।
1: क्या बात है भाई, कतर की नेशनल रिप्रेजेंटेशन करते हुए आपको कैसा महसूस होता है? आज दुनिया भर में हमारा कतर मशहूर है माशाल्लाह, और इसमें इतने बड़े ओहदे पे होना तो कैसा महसूस होता है अदनान साहब?
0: आई एम प्राउड टू माई सेल्फ कि मैं कतर की नेशनल टीम से खेला हूँ।

0: It's not easy to play for Qatar national team. So I always up to be a national team player of Qatar and also assistant coach of youth hockey of Qatar.
1: क्या बात है, प्लेयर से असिस्टेंट कोच बनने तक का सफर कैसा रहा आपका?
0: प्लेयर से असिस्टेंट कोच बनने का सफर थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन 2013 में मैंने FIH का सबसे पहले हाई क्वालिफाइड कोर्स किया. उससे फील हुआ कि ये काम बहुत जरूरी है कि मैंने अपना फ्यूचर प्लान भी कर लू, क्योंकि प्लेयर जो होता है हमेशा के लिए प्लेयर नहीं रहता, और एक टाइम आता है कि उसने थोड़ा सा ढलना भी होता है. उसने फिर उसका फ्यूचर प्लान के हिसाब से मैंने सोच के फिर उसी वक्त कोचिंग शुरू कर दी थी. तो मैं करते करते हार्ड वर्क करते 2015 में लेवल 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते हाई क्वालिफाई तक हमने कोर्सेज किए, क्योंकि हॉकी की कंपनी FIH की स्टडी होती है. तो मेरे जो एक्स इंटरनेशनल ओलंपियन ताहिर जमान है वो FIH के एजुकेटेड है, बहुत बड़े, उनकी रहनुमाई रही, और उनके साथ ये विक्रम FIH के प्रेसिडेंट है, उनकी रहनुमाई रही, बड़े बड़े जो उस्ताद थे उनकी रहनुमाई रही. तो कोचिंग सीखते रहे, तो एक वक्त आया अब कि हमें उन्होंने कोच अपॉइंट कर लिया, क्योंकि हम एक तो इधर का माहौल जानते हैं, इधर के स्कूल्स को जानते हैं, इधर के लोकल प्लेयर्स को, माहौल को. तो इस वजह से हमें उन्होंने पहले प्रेफर किया कि हम आपको ही लेंगे तो कोशिश, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर इधर हॉकी के हाल
1: में. आज जब आप यंग प्लेयर्स को ट्रेन करते हुए देखते हैं तो उनके अंदर क्या क्वालिटीज आप देखना पसंद करते हैं?
0: सबसे पहले तो हम उनमें क्वालिटी जो होती है ये देखते हैं, उनकी विश हो कि ये स्पोर्ट्स आपने करनी है, वो हैप्पी हो स्पोर्ट्स में. और दूसरा होता है कि फिटनेस, थोड़ी सी फिटनेस इतना हो कि सके इतना मुश्किल ना हो, हमें हार्ड वर्क ना करना पड़े कि इसको पहले उसकी फिटनेस पे काम करें फिर उसको हॉकी सिखाएं. तो हमें कोशिश करते हैं जो स्कूलों में जाते हैं तो उधर से हम बच्चों को पिक करते हैं, तो जो दूसरी स्पोर्ट्स में मल्टी स्पोर्ट्स में करते हैं और हॉकी में इसलिए हम लेके आते हैं उनको कि हॉकी में ज्यादा चांसेस है बच्चों, क्योंकि जल्दी वो इधर से अगर कतरी पासपोर्ट है, कतरी नेशनल है, तो वो जल्दी टीम में आ सकता है, बनिस्बत के वो हम इंडियन पाकिस्तानी या दूसरे हों. वो उनके लिए कम अज कम हमें वेट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा परमिशन लेनी पड़ती हैं, फिर जाकर उनका पासपोर्ट बनता है, फिर वो खेलते हैं. इससे अब जब वक्त चल रहा है हम ज्यादा काम कर रहे हैं कतरी बच्चों पे, और कतर से नॉन कतरियों में जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो फिर हम उसको पिक करते हैं प्लेयर्स को. और उनकी एक अकेडमी बन गई है, अकेडमी के उसका प्रोसीजर है, उसमें बुला के उनको अंडर 12, 14, 16, 18 फिर अंडर 21 फिर जो भी प्लेयर्स जितने भी एज का कोई नहीं है यंग हो, तो उनको फिर उनका एक नेटवर्क सिस्टम बना दिया है, ऐसे चल रहा है अब. और इंशाल्लाह 2030 हमारा जो गोल है 2030 एशियन गेम्स है, उस तक हमने बहुत परफेक्ट टीम बनानी है.
1: क्या
0: तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब मोर देन 50 कतरी प्लेयर्स हैं और तकरीबन 15-20 नॉन कतरी प्लेयर्स भी हैं. उस पर एक हमारी पूरी टीम सिस्टम चल रहा है, उस पर हम वर्क कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि 2030 तक हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी.
1: क्या बात है अरनान साहब. ड्रेसिंग रूम या ट्रेनिंग सेशन की कोई यादगार जो लिसनर्स के साथ आप शेयर करना चाहते हो, कोई अमसाहिया या कोई तफरी वाली बात भी शेयर कर सकते हैं लेटर नोट पे?
0: जी ये तो ड्रेसिंग रूम में इधर उधर फंक्शन होता रहता है, तो वो तो नहीं है, लेकिन एक ये खेल के हम जा रहे थे एक दिन, यूरोप में था हमारा कैंप, तो टीम में ना मैं सबसे थोड़ा सा शरीफ बच्चा था कोच की नजर में, मुंह तो नोटी लेकिन उसकी नजर में. तो वो ना लड़के एक दूसरे को मार रहे थे, आइस स्नोफॉल हुई भी थी तो बर्फ मार रहे थे. तो मैं बिल्कुल कोच के साथ चल रहा था, बिल्कुल कोच के साथ. तो मैंने देखा ये सब मार रहे हैं, मैं कोच के साथ बड़ा डिसेंट सा बन के चल रहा हूँ. मैंने देखा मेरा कोच भी ना बना के मार रहा है और लोगों को पता नहीं चल रहा है किसने मारा. तो मैं कोच के साथ चलते चलते मैंने बर्फ उठाई, उसको नहीं पता चला, मैं पीछे होके मैंने बर्फ कोच के सर कमर पे तो मार के बिल्कुल बराबर में आ गया. तो कोच परेशान किसने मारी, उसने सबसे पूछ लिया, वो कोई भी माने ना, सबको पता था मैंने मारी है. और कोच खुद ना माने के होगा तैयार शरीफ सा बच्चा ये नहीं मारेगा. तो उसे तकरीबन एक साल बाद पता चला कि वो जो बर्फ मारी थी ना वो लगी भी जोर के थी उसके.
1: अब तो
0: पता चला कि ये मारने वाले
1: मारने वाले माशाल्लाह खुद कोच है. तो तैयार रहिए, अभी आपको काफी
0: ये फन और ये चीजें चलती हैं आउट ऑफ द फील्ड, आउट ऑफ द फील्ड
1: चलती हैं. यंग टैलेंट आपको सुन रहा है फकत, तो आप भी तैयार रहिए कहीं ना कहीं आगे बढ़िए.
0: छोटा मोटा फन
1: बिल्कुल बिल्कुल रहना चाहिए. अदनान साहब, दोहा के हवाले से बात अगर हम करें, हमारा प्यारा दोहा, तो आप एक लफ्ज में कैसे बयान करेंगे दोहा को?
0: दोहा इज मोस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी एंड कतर इज मोस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड.

0: मैं अराउंड अबाउट 20-21 कंट्रीज घूमा हूँ. जो सुकून, जो इत्मीनान और फ्रेश फील करते हो ना, कतर के अलावा मुझे कहीं भी इतना रिलैक्स नहीं हुआ. तो
1: क्या बात,
0: कतर इज द बेस्ट, दोहा इज द बेस्ट.
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. कतर हमारा बेस्ट है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा. जो यंग एथलीट्स हॉकी में करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है अदनान साहब?
0: जो यंग एथलीट हॉकी में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको एक सोच के समझ के आना चाहिए कि ये स्पोर्ट्स है, ये मैंने करनी है. एक स्पोर्ट्स को चूज और उसमें देखें कि इसमें फ्यूचर किसमें है. जैसे कि हमने स्टार्ट की थी बचपन में, हमें पता था हमारी सिटी में हॉकी ही सबसे फेमस है और इजी है, इजी टू गेट अ चांस टू हाई लेवल. तो अगर आप भी कुछ को ज्वाइन करते हो या देखते हो, को भी पहले चूज करना चाहिए कौन सी स्पोर्ट्स अच्छी है जिसमें फिटनेस भी है और उसके अलावा आगे अपॉर्चुनिटी भी है. तो जैसे कि फुटबॉल है, फुटबॉल में अपॉर्चुनिटी बहुत कम है क्योंकि बहुत ज्यादा प्लेयर खेल रहे हैं. गेम्स है उसमें अपॉर्चुनिटी, इस वक्त हॉकी ही एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिस सबसे ज्यादा इधर कतर में, जिसमें आप अगर 3-4 साल अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो आपको नेशनल टीम में चांस मिल सकता है.
1: क्या बात है भाई. आपके नजदीक सक्सेस टैलेंट से आती है या कंसिस्टेंसी से?
0: दोनों से.
1: ओके ओके, गुड वन. आखिर में अंदन साहब क्या कहना चाहते हैं, दोहा ने आपकी जिंदगी को किस तरह से शेप किया या बदला है?
0: दोहा ने हमें बहुत बहुत बदला है, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है. एक्चुअली कतर के लोग बहुत ही नाइस हैं. मैं हमारे जो दोस्त हमारे कतर के नेशनल हैं, वो खेलते थे, बहुत ही पॉजिटिव हैं और हमेशा उन्होंने हमारे साथ मदद की है हर हाल में, हर परेशानी में, और हमारे साथ एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर चले हैं. तो इस वजह से हमें, मैं जो दो बार कतर छोड़ के भी गया हूँ, यूरोप में खेला हूँ, तो लेकिन जो सुकून और जो रिलैक्सेशन इधर है वो कहीं नहीं मिली.
1: क्या बात है भाई अदनान साहब. इसी के साथ प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचता है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और अपनी कहानी और स्टोरी अपने साथ शेयर करी.
0: थैंक यू सो मच.
1: तो दोस्तों, ये थे अदनान साहब, और जिन्होंने बहुत अच्छी बातें एक नई पीढ़ी के लिए हमारे साथ शेयर करी. आप सबसे भी इतना कहना है कि जिंदगी के हर सफर में, हर नई मंजिल पर अपना हौसला जिंदा रखिए, अपनी पहचान को संभाल कर रखिए, क्योंकि कहानी सिर्फ शहर ही नहीं लिखता, कहानी आप भी लिखते हैं. इसी खूबसूरत सोच के साथ इजाजत चाहता हूँ. अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ. तब तक के लिए प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए. देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल देसी.
2: दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
3: कतर का सबसे ज्यादा जाने वाला रेडियो स्टेशन
4: FM 107.
5: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. बट डोंट वरी, मैं हूँ. भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिमा.
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
6: आज ही राब्ता करें
4: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.ua.
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज विद RJ सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी. हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर, ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान किया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अब वो हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए हा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीम कुरान।
2: बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। प्रोग्राम तहफीम कुरान के आज के इस हलके में आप सबको खुश आमदीद, तलहा ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। गुज़श्ता हलके में हमने शादी के हवाले से कुरानी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की थी, आज भी हम उसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अब जब शादी की बात होती है तो गुफ्तगू दो सवालों के गिर्द घूमती है। पहला सवाल ये है कि जिंदगी का साथी किस तरह मुंतखब किया जाए, और दूसरा ये कि क्या इंसान वाकई तौर पर शादी के लिए जहनी और जज्बाती तौर पर तैयार है या नहीं। ये दोनों सवाल बज़ाहिर आसान मालूम होते हैं, लेकिन हकीकत में एक कामयाब इज़्तिवाजी ज़िंदगी की बुनियाद इन्हीं दो बातों पर कायम होती है। आज के दौर में से लोग ये समझते हैं कि अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को कई साल तक जानते हों, एक दूसरे के साथ वक्त गुजार चुके हों, एक दूसरे की पसंद और नापसंद से वाकिफ़ हों, तो लाजमन उनकी शादी ज़्यादा कामयाब होगी। दूसरी तरफ एक रवायती तरीक़ा भी है जिसमें ख़ानदान एक दूसरे को जानते हैं, वालिदैन तहकीक करते हैं और फिर बाहमी रजामंदी से तय होता है। दिलचस्प बात यह कि मुतअद्दिद समाजी मुतालआत ये बताते हैं कि रिवायती अंदाज से होने वाली शादियाँ औसतन ज़्यादा कामयाब साबित होती हैं। ये इसलिए नहीं कि और उसका सबब या उसकी वजह यह है कि इस तरीके में शख्सियत के साथ साथ ख़ानदान, माहौल, अकदार, मिजाज और ज़िंदगी के अंदाज को भी देखा जाता है। चूँकि शादी सिर्फ ये तो दो अफराद का ताल्लुक नहीं, दो ख़ानदानों का रिश्ता है। वैसे आज बहुत से नौजवान शादी से इनकार नहीं करते, लेकिन शादी से खौफ ज़दा रहते हैं। कोई कहता है

0: ती ये है कि इंसान ऐसे शख्स की तलाश करता रहता है जो उसकी हर शर्त 100% पूरी करे। कद, रंग, तालीम, खानदान, आमदनी, पेशा, शहर, मिजाज, शौक, रहन सहन, बोलने का अंदाज, दोस्त, सफर, घर, गाड़ी, हर चीज बिल्कुल अपनी पसंद के मुताबिक हो। ऐसा कामिल इंसान अमूमन हकीकत में मौजूद नहीं होता। इज़दवाजी इंतखाब बुनियादी और जरूरी मेयार का तकरीबन 70-80% हिस्सा मौजूद हो और बाकी मामलात काबिल कुबूल और काबिल गुफ्तगू हो तो इस रिश्ते पर संजीदगी से गौर किया जा सकता है। बाकी 20-80% में दोनों को एक दूसरे के लिए गुंजाइश, कुर्बानी और मुआफ़क़त पैदा करना पड़ती है। चूँकि शादी ये सिर्फ मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी हों इस बात का नाम नहीं। शादी में बाज़ जगह इंसान को अपनी ख्वाहिशात, अपनी पसंद से ज़रा हट कर नरमी का बर्ताव करना पड़ता है। बाज़ आदतें बदलनी पड़ती हैं, बाज़ तरजीह देना पड़ती है। यही इज़दवाजी तकमील है। कुरान के हवाले से कुरानी कॉन्सेप्ट में हमें इस सिलसिले में क्या नुमाई दी गई है, इस पर हम इंशाल्लाह तफसील से गुफ्तगू करेंगे। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
1: कुरान को समझने के लिए आसार दिया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है। मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
0: वेलकम एक्सामिनी, आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस मुबारक हल्के में। सभी कलम इस्लामी नुक्ते नज़र में सबसे अहम मेयार शादी के हवाले से दीन और अखलाक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की के सरपरस्तों को हिदायत दी कि जब ऐसा शख्स रिश्ता लेकर आए जिसके दीन और अखलाक से इत्मीनान हो तो निकाह पर गौर किया जाए। इसी तरह मर्दों को तालीम दी कि औरत से माल, खानदान, हुस्न और दीन की बिना पर निकाह किया जाता है, मगर दीन वाली को तरजीह दो। शादी के हवाले से कुरान करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम और मदियन की दो खवातीन का वाक़या बयान किया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दो औरतें अपने जानवरों को पीछे रोके खड़ी हैं, यानी सब अपने जानवरों को लेकर किसी कुएं से पानी पिला रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर खवातीन के उन दो औरतों के जानवरों को पानी पिलाया। एक खातून ने उनके अंदर दो सिफात देखी। उनमें से एक खातून ने उनके अंदर दो सिफात का मुलाहजा किया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर एक कुव्वत और दूसरी अमानत। वो अपने वालिद पास गई और अर्ज किया, या अबत इस्तअजर इन खैर मन इस्तअजरत अल-क़वीयुल अमीन। अब्बा जान उन्हें काम पर रख लीजिए, बेहतरीन शख्स जिसे आप मुलाजिम रखें वो है जो ताकतवर और अमानतदार हो। इस खातून ने बरह रास्त ये नहीं कहा कि मैंने उन्हें पसंद कर लिया, बल्कि उनकी अहलियत और किरदार का जिक्र किया। वालिद ने इशारा समझा और मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अपने बेटी से निकाह की पेशकश रखी। कुरान के इस वाक़े में पसंद, ख़ानदानी हिकमत, हया वसे शरायत सब नज़र आती है। तो शरीक हयात के इंतखाब में इस कुरानी वाक़े से हमें सबक ज़रूर मिलता है कि जज्बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया गया, लेकिन जज्बात को अखलाकी ज़बान, ख़ानदानी एतमान और ज़िम्मेदाराना तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। अब इस खातून ने ज़ाहिरी तासुर से आगे बढ़कर दो बुनियादी औसाफ पहचाने मूसा अलैहिस्सलाम में, एक कवी यानी ज़िम्मेदारी उठाने की साई, दूसरे अमीन एतमाद और अबदारी। तो ये दोनों सिफात इस दवाज इंतखाब में नहायत अहम हैं। सिर्फ ये ना देखिए कि लड़का कितना कमाता है, ये भी देखिए कि उसको किस तरह इस्तेमाल करता है। बिल्कुल उसका सिर्फ ये ना देखिए कि लड़की कितनी तालीम याफ्ता है, ये भी देखिए कि इख्तिलाफ में उसका अखलाक कैसा रहता है। यानी जब इख्तिलाफ हो जाए, तनाव, झगड़ा, इस तरह का कोई मामला पेश आ जाए तो उसका अखलाक कैसा रहता है। चूँकि इख्तिलाफ के वक्त जो जवाबी कार्रवाई होती है उसी में हमारा जो असल चेहरा है वो दिखता है। अब मंगनी या इब्तदाई तारुफ का मकसद हमें समझना चाहिए। इसका मकसद ये नहीं कि खानदान एक

के यहाँ आए, खाना खाए और इस तरह जाहिरी बातों को देखकर फैसला कर लें, बल्कि शख्सियत और मुस्तकबिल को जाहिर करने वाले सवाल और किए जाएं कि जिंदगी का क्या मकसद है, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है कि दोनों ये देख सकें कि इनका मकसद एक दूसरे के साथ चल सकते हैं या नहीं। मसलन एक शख्स मुस्तकिल अपने वतन में रहना चाहता है जबकि दूसरा बैरून मुल्क कैरियर का ख्वाब रखता है, कोई खास पेशे, सरकारी मनसब या सफारती शोबे में जाना चाहता है और दूसरा कुछ अलग किस्म का सोच रखता है, तो ये इख्तलाफात शादी के बाद दरियाफ्त हों तो तनाज़ो बन सकते हैं। तो पहली बात या पहला मेयार ये रहा कि इस तरह के अहम और संजीदा सवालात होने चाहिए जो हमारे मुस्तकबिल को तय कर सकते हैं। फिर दूसरा अहम मेयार है समाजी शख्सियत, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल और डिजिटल दुनिया ने इंसान को बाहर बहुत कनेक्टेड दिखाया है मगर अमली तौर पर बाज़ औक़ात बड़ा तन्हा नज़र आता है। कोई नौजवान अपने काम में कामयाब है, टेक्नोलॉजी में माहिर है मगर उसे दो इंसानों के दरमियान गुफ्तगू, हमदर्दी और ताल्लुक निभाने का सलीका नहीं आता। उसे आप ऑनलाइन गेम्स ओपन कर दीजिए, वो हर मरहला उबूर कर लेगा, लेकिन उसे इस दिवाजिता हवाले से बात करें तो शायद उसे ये मालूम ही ना हो कि इख्तिलाफ कैसे बयान किया जाए, नाराज़गी कैसे दूर की जाए। इसीलिए सामाजिक काबिलियत भी अहम मेयार है। ये मालूमात हासिल कीजिए कि क्या उसके दोस्त हैं, उसके दोस्त किस किस्म के लोग हैं, उनके साथ ताल्लुक कितना गहरा है, वो फारिग वक्त कहाँ गुजारता है, क्योंकि इंसान के दोस्त अक्सर उसके मिजाज, अकदार और मुस्तकबिल का आयना होते हैं। इसलिए रिश्ते से पहले उसके समाजी हक़ीक़त के बारे में जानना तजस्सुस नहीं, ये जिम्मेदाराना तहकीक है। इसी तरह ये भी समझना ज़रूरी है कि सामने वाले शख्स का मिजाज समाजी है या घरेलू किस्म का बंदा है, यानी कुबाज़ तो कोई खामोशी और घर में रहने को पसंद करते हैं, फिर कोई मुख्तलिफ सरगर्मियों में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये कहने का मकसद ये नहीं कि कोई एक मिजाज सही और दूसरा गलत, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि बताने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात दो खामोश मिजाज अफराद एक साथ बहुत खुश रहते हैं, कम बात करें मगर एक दूसरे के सुकून को समझते हैं, ये उनके लिए बेहतरीन ज़िंदगी हो सकती है। इसी तरह दो मुआशरत पसंद अफराद सफ़र, दावा, दोस्तों और ख़ानदान के साथ मुतहरक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मसला उस वक्त होता है जब एक शख्स मुकम्मल खामोश और गोशा नशीन हो जबकि दूसरा हर हफ्ते मिलने जुलने, घूमने फिरने के लिए बाहर जाना पसंद करता हो और दोनों एक दूसरे के मिजाज को गलत समझने लगे। लिहाजा मकसद ये नहीं कि दोनों लाजमन एक जैसे हों, मकसद ये कि दोनों का फ़र्क का इल्म हो और वो उसे कबूल करने की सलाहियत रखते हों। आम इंसानी ज़िंदगी में गुफ्तगू, हंसी, ख़ानदान से मुलाकात, दोस्तों से ताल्लुक, सैर, सफ़र और मुश्तरक तजुर्बात अहम होते हैं। अगर एक शख्स इन सब से मुकम्मल तौर पर दूर है तो उसको पहले ही मालूम होना चाहिए कि वो किस तर्ज ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है। अब आते हैं शरायत की फहरिस्त की तरफ। इब्तदाई में हमने ये कहा था कि शरायत बयान करना कोई गलत नहीं, लेकिन शरायत की फहरिस्त से पहले अपनी हकीकत भी देखिए। जो लड़की माली तौर पर मजबूत शौहर चाहती है वो ये भी देख ले कि क्या वो उस शख्स के, उस मालदार शख्स के काम के दबाव, वक्त की कमी या जिम्मेदारियों को समझने की तैयार है। जो मर्द आला तालीम याफ्ता और बासलाहियत बीवी चाहता है क्या वो उसके कैरियर, जहनी इस्तकलाल और राय की कदर करेगा। जो शख्स बहुत खूबसूरत शरीक हयात चाहता है क्या वो अखलाक और जिम्मेदारी में भी मुनासिब कोशिश कर रहा है या नहीं। जो शख्स दीनदार शरीक चाहता है क्या वो खुद दीन के बुनियादी तकाजों को संजीदगी से लेता है या नहीं। याद रखिए इज़्दवाजी इंतखाब ये बाजार की खरीदारी नहीं कि इंसान सिर्फ खुसूसियात की फहरिस्त सामने रखे, ये दो इंसानों का अहद है और दोनों को सिर्फ मुतालबा नहीं कंट्रीब्यूशन भी देना होता है। तो शादी से पहले तहकीक ज़रूरी है मगर तहकीक और तजर्बे फ़र्क है। काबिल एतमाद ज़राए से अखलाक, ज़िम्मेदारी, माली रवैये, ख़ानदान, दोस्त और उमूमी शहरत के बारे में मालूम करना दुरुस्त है, लेकिन किसी की निजी ज़िंदगी में नाजायज़ मुदाखलत, अकाउंट्स हैक करना या अफवाहों पर फैसला करना यह अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। तहकीक का मकसद है इज़्दवाजी मुवाफ़क़त को समझना। हर इंसान में कमज़ोरियाँ होती हैं, सवाल तो ये नहीं कि सामने वाला बेआइब है या नहीं, सवाल ये है कि उसकी कमज़ोरियाँ मालूम, काबिल बर्दाश्त और काबिल इस्लाह हैं या नहीं। ओवरऑल खुलासा कलाम यह है कि शरीक हयात के इंतखाब में शरायत रखना गलत नहीं, लेकिन शरायत को सही तरतीब देना ज़रूरी है। याद रखिए कामयाब इंतखाब वो नहीं जिसमें इंसान को 100% अपनी पसंद का शख्स मिल जाए।

0: देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जासिम जाबिर के बारे में। जासिम जाबिर एक यंग और प्रॉमिसिंग कतरी फुटबॉलर हैं जो कतर की नेशनल टीम और डोमेस्टिक बॉल में डिफेंसिव रोल के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी पैदाइश

0: 20 फरवरी 2002 को दोहा में हुई और वो अस्पार एकेडमी से ट्रेनिंग हासिल करके प्रोफेशनल फुटबॉल तक पहुंचे। उनका मेन पोजीशन है डिफेंसिव मिडफील्डर, लेकिन वो जरूरत पड़ने पर सेंटर बैक और राइट बैक की पोजीशन में भी खेल सकते हैं। जासिम ने असद और अर्रयान जैसे टॉप कतरी क्लब के साथ अपना डोमेस्टिक करियर डेवलप किया, जहां उन्हें हाई लेवल कोचिंग और इंटरनेशनल क्वालिटी प्लेयर्स के साथ खेलने का तजुर्बा मिला। उनकी गेम रीडिंग, टैकलिंग और डिसिप्लिन उन्हें मॉडर्न फुटबॉल का एक वर्सेटाइल डिफेंडर बनाती है। इस साल का वर्ल्ड कप और इन कप में कतर को ग्रुप बी में रखा गया था और कतर के स्क्वाड में जासिम को शामिल कर लिया गया था। उन्होंने ग्रुप स्टेज मैचेस में कतर की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपीयरेंसेस किए। स्विट्जरलैंड के खिलाफ एक एक ड्रॉ और बोस्निया हर्जेगोविना के खिलाफ मैच में उन्होंने डिफेंसिव मिडफील्ड रोल में टीम को स्टेबिलिटी फराहम की, जबकि कनाडा के खिलाफ टफ मैच में भी वो मिडफील्ड और बैकलाइन के दरमियान लिंक बनाते रहे। इन मैचेस ने उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस दिया। जासिम जाबिर को कतर फुटबॉल का फ्यूचर स्टार माना जाता है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो आने वाले टूर्नामेंट्स में और बेहतर परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगले बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
2: FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: जेन ज़ी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: दोस्तों, बिजली से लगने वाली आग का खतरा हर जगह होता है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है अगर हम कुछ अहम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें। सबसे पहले, हमेशा ओरिजिनल और सर्टिफाइड वायर्स, सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल करें जो कतर या इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती हों। लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल आइटम्स इस्तेमाल करना न सिर्फ आपके माल का नुकसान कर सकता बल्कि जान को भी खतरे में डाल सकता है। वायर्स का सही तरीके से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। ये बात भी याद रखें कि ओवरलोडेड सॉकेट्स या एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल ना करें और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को मॉइस्चर और हीट से बचाएं। अगर कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई मसला आए, जैसे कि स्पार्क, झटका या यूजुअल स्मेल, तो फॉरन क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएं। आपके घर और ऑफिसेस की हिफाजत आपके हाथों में है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल सिटी को नजरअंदाज ना करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आप एहतियाती तदाबीर को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीब टू हैबिट, RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30।

0: एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीस, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीस टू हैबिट, हदीस टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम, पिछले एपिसोड में हमने बात की कि सीजनल एलर्जी के असबाब क्या क्या हो सकते हैं और किस तरह से जो सीजनल एलर्जी है उससे हम मुतासिर हो सकते हैं। आज हम उसकी अलामत और उसकी डायग्नोसिस पर बात करेंगे। सीजनल एलर्जी की सबसे नुमाया अलामत बार बार छींकी आना है, उसके साथ नाक बहना, नाक बंद होना, आंखों में खारिश महसूस होना, आंखों से बाज़ूकात पानी आना और इस तरह गले में खराश भी हो सकती है। कुछ अफराद में कुछ ऐसी अलामतें भी देखी जाती हैं जो कि आम तौर पर नहीं भी होती, से सर में शदीद दर्द होना और चेहरे पर आप दबाव या भारीपन महसूस करते हैं। जो सूंघने की हिस्स है उसमें कमी हो सकती है, कानों में खारिश महसूस होना, इसी तरह नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाना, बहुत ज़्यादा फटीग, थकन और टिटरापन महसूस करना, ये ऐसी अलामत हैं जो कि ज़ाहिर हो सकती हैं। एलर्जी की वजह से रात को नाक बंद रह सकती है जिससे फिर नींद मुतासिर होती है। नींद की कमी काम की कारकर्दगी, पढ़ाई और तवज्जो पर नेगेटिव असरात डालती है। अक्सर अफराद एलर्जी और नज़ला जुकाम में फ़र्क नहीं कर पाते। नज़ला आम तौर पर चंद दिनों में बेहतर हो जाता है और उसके साथ टेम्परेचर भी हो सकता है, जबकि एलर्जी कई हफ्तों तक जारी रह सकती है और उसमें बुखार बिल्कुल नहीं होता। डॉक्टर्स मरीज की अलामत की वजह ही एलर्जी का अंदाज़ा लगाते हैं और बाद सूरतों में एलर्जी टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं ताकि मखसूस जो वजूहात हैं उन्हें देखा जा सके। अक्सर एलर्जी के साथ सांस भी फूलने लगती है और अगर ऐसा हो या फिर सीने में जकड़न महसूस हो या खांसी बार बार आने लगे तो ये अस्थमा की अलामत हो सकती है और फौरी तिबी मशवरे की ज़रूरत होती है। फौरन आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। बच्चों में एलर्जी की बरवक्त तशखीस बहुत अहम है क्योंकि मुसलसल नाक बंद रहने से उनकी नींद, उनकी तालीम और जिस्मानी नशोनुमा मुतासिर हो सकती है। अलामत को नज़रअंदाज करने की बजाय बरवक्त तवज्जो देना बेहतर सेहत की तरफ पहला कदम है।
1: कदर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हम हमेशा याद रहें। शादी हो गई, बर्थडे पार्टी हो गई, किसी की ग्रेजुएशन हो, या किसी का बेबी शावर हो, या कोई भी स्पेशल फैमिली इवेंट हो, हम चाहते हैं भाई कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए।

0: और हाँ, इवेंट की तैयारी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पता है क्या? इनविटेशन कार्ड। अच्छा, एक वक्त था जब खूबसूरत डिजाइन वाले पेपर कार्ड्स घर घर भेजे जाते थे, याद है ना? वो 90s में लोग कार्ड इस्तेमाल करते थे और उनको बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया जाता था। लेकिन आज भाई टेक्नोलॉजी का दौर है और एक नया ऑप्शन हमारे पास है, डिजिटल इनविटेशंस। यानी पेपर के बजाय मोबाइल, ईमेल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए इनविटेशंस भेजना। तो भाई आज के इकोसिस्टम में हम बात करने लगे हैं डिजिटल इनविटेशंस वर्सेस पेपर पर, एक ऐसी चॉइस जो हमारे इवेंट्स को भी स्मार्ट बना सकती है और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकती है। तो साथियों जरा एक प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक छोटा सा इनविटेशन कार्ड बनाने के पीछे कितने रिसोर्सेज लगते हैं? देखिए, पेपर बनाने के लिए ना दरख्तों को यूज किया जाता है, ट्रीज को, फिर प्रिंटिंग के लिए इंक, इलेक्ट्रिसिटी और पैकेजिंग का इस्तेमाल भी होता है। और अक्सर क्या होता है भाई, अक्सर यही होता है कि इवेंट खत्म होने के बाद वो ब्यूटीफुल इनविटेशन कार्ड्स बॉर्ड्स में रख दिए जाते हैं या फिर सीधी सी बात है कचरे में फेंक दिए जाते हैं अगर अपने ना हो तो। सोचिए एक फैमिली इवेंट में अगर आप कह लें कि 100-150 कार्ड्स प्रिंट होते हैं तो फिर वो सिर्फ एक दिन के लिए यूज होते हैं ना, एक दिन के लिए भी नहीं, मैं कहूंगी कुछ घंटों के लिए, तो कितना सारा पेपर वेस्ट होता है। इसके अलावा कार्ड्स को डिलीवर करने के लिए ट्रांसपोर्ट भी यूज होता है कि नहीं, फ्यूल कंजम्पशन होता है, कार्बन एमिशन बढ़ती है, यानी एक छोटी सी चीज भी एनवायरमेंट पर असर डाल सकती है। तो भाई अब आप पूछेंगे कि सफा बताओ हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो भाई इसलिए कि आपको छोटा सा इको स्विच ऑन करना है, जहां मुमकिन हो पेपर की बजाय डिजिटल इनविटेशंस करें। देखें डिजिटल इनविटेशंस के बहुत सारे फायदे हैं, कुछ तो मैं आपको यूं ही उंगलियों पर गिनवा दूंगी। आपकी जो ये सोशल मीडिया की एप्स हैं या दूसरी तीसरी जो मैसेजिंग वाली एप्स होती हैं या ईमेल्स या ऑनलाइन इनविटेशन प्लेटफॉर्म्स के जरिए चंद सेकंड में इनविटेशन भेजा जा सकता है फॉर मल्टीपल पीपल। इससे इस्तेमाल कम होता है और ये जो दरख्त होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है, वो काटे नहीं जाते। प्रिंटिंग और डिलीवरी का खर्चा भी कम हो सकता है। आप डिजिटल इनविटेशन को और भी क्रिएटिव बना सकते हैं अपनी मर्जी से, फोटोज, वीडियोस, मैप्स और RSVP ऑप्शंस के साथ, और इससे टाइम भी बचा है भाई। मिसाल के तौर पर शादी का इनविटेशन सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि एक ब्यूटीफुल वीडियो मैसेज भी बन सकता है। लेकिन साथियों अगर किसी स्पेशल ओकेजन पर पेपर इनविटेशन ज्यादा जरूरी लग रहा है आपको, तो भाई आप रिसाइकल्ड पेपर या इको फ्री प्रिंटिंग ऑप्शन क्यों नहीं चूज करते? देखिए मेरा मकसद ये नहीं है कि हर चीज को बिल्कुल बदल दिया जाए, बल्कि जहां आसानी से बेहतर चीज हो सकती है वहां इको से लिया जाए ना, मकसद तो यही है। अच्छा अब अगर इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं ना, तो आजकल बहुत सारे लोग अपने इवेंट्स में डिजिटल इनविटेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अभी एक बच्ची के अकीके का इनविटेशन रिसीव किया था एंड इट वाज वो वाओ ब्यूटीफुल। कई कपल्स अपनी शादी के लिए वीडियोस इनविटेशंस भेजते हैं जिसमें उनकी फोटोज, इवेंट डिटेल्स और पर्सनल मैसेजेस भी होते हैं। बर्थडे पार्टीज के लिए पेरेंट्स डिजिटल कार्ड कर ग्रुप्स में भेज देते हैं जो मैसेजिंग ग्रुप्स होते हैं। इजी होता है, जल्दी से सबको पहुंच जाता है। अच्छा हाँ, कंपनीज भी अपनी मीटिंग्स और इवेंट्स के लिए ऑनलाइन इनविटेशंस यूज करती हैं साथियों। अच्छा इससे ना सिर्फ पेपर वेस्ट कम होता है बल्कि गेस्ट्स के लिए भी आसानी होती है। वो इनविटेशन कभी भी मोबाइल पर दोबारा से चेक कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप इनविटेशन कार्ड कहीं भूल गए हो तो भाई एक मसला पड़ जाए। लोकेशन देख सकते हैं और अपनी अटेंडेंस कंफर्म कर सकते हैं गेस्ट। अच्छा भाई, यानी एक छोटी सी डिजिटल चॉइस कन्वीनियंस और स्टेबिलिटी दोनों लेकर आ सकती है। तो भाई साथियों आज का इको स्विच चैलेंज क्या है बता देती हूँ। अगली बार आप किसी इवेंट का प्लान बनाएं तो खुद से एक सवाल जरूर कीजिएगा, क्या इस इनविटेशन को पेपर की बजाय हम डिजिटल बना सकते हैं? भाई जरूर बना सकते हैं और यकीन जाने पेपर से बेहतर बना सकते हैं। और हाँ, हमें बताना मत भूलिएगा आपने कभी डिजिटल इनविटेशन रिसीव किया है। मैंने तो दिनों किया था, बहुत खूबसूरत था। और क्या आपको पेपर कार्ड्स ज्यादा पसंद है या डिजिटल इनविटेशंस? इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, हर मैसेज जो मोबाइल से भेजा जाए वो सिर्फ एक क्लिक नहीं, कभी कभी नेचर के लिए एक छोटा सा पॉजिटिव स्टेप होता है। छोटी सी आदत डालें और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। और सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है वक्त में बरकत। कभी आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग कम वक्त में भी बहुत काम कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों का वक्त होने के बावजूद भी काम मुकम्मल नहीं होता। इसे ही वक्त की बराका कहते हैं। बराका जब आती है जब हम अपने वक्त को सही किसे यूज करते हैं और उसे बेकार चीजों में जाया ही नहीं। अल्लाह का जिक्र, नमाज की पाबंदी और डिसिप्लिन वक्त में बरकत पैदा करता है। अक्सर सोशल मीडिया और बेमकसद एक्टिविटीज हमारा वक्त ले जाती हैं। अगर हम थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। आज का अमल ये है कि अपने दिन के कुछ हिस्से को प्लान बनाएं और बेकार एक्टिविटीज को कम करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
3: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi. One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. Main hoon aapki host Nazia.
0: One Step to 2030.
1: Us to flying cars, air taxis, inke bare mein humne sun rakha hai, dekh bhi rakha hai. अब सवाल ये उठता है कि how close are we to these personal air transport? देखिए कभी आपने सोचा है एक दिन ऐसा आएगा जब हम roads पर traffic में फंसने की बजाय अपनी गाड़ी को हवा में उड़ाकर office, shopping mall या किसी के घर पहुंच जाएंगे. देखिए जो चीजें पहले science fiction movies का हिस्सा थी, आज पूरी दुनिया भर में वो reality बन रही है. आजकल कंपनीज एयर टैक्सीज और फ्लाइंग व्हीकल्स डेवलप कर रही है. ये व्हीकल्स इलेक्ट्रिक बैटरीज पर चलती हैं और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डिजाइन की जा रही है. वैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले सालों में सिलेक्टेड सिटीज में एयर टैक्सी सर्विसेज आम लोगों के लिए अवेलेबल हो सकती है. अब हम ये सोचते हैं कि हम फ्लाइंग कार्स के कितने करीब पहुँच चुके हैं. आज भी कई प्रोटोटाइप फ्लाइंग व्हीकल्स टेस्ट की जा चुकी है. कुछ व्हीकल्स वर्टिकल

बहुत करती हैं बट क्या हम खुद फ्लाइंग कार को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे आई डोंट नो अभी तो ऑटोनॉमस कार्स का ही एक्सपीरियंस नहीं किया फ्लाइंग कार्स का पता नहीं लेकिन हाँ इसके फायदे तो बेशुमार होंगे ही होंगे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि लोग रोड्स की ट्रैफिक से बच जाएंगे फिर शायद हम कह सकते हैं कि हवा में इतना रश है जो सफर लोग रोड पर एक घंटे में तय करते थे अब वो चंद मिनट्स में तय हो सकता है वहीं पर अगर बात की जाए इसके फायदे की तो एक और बड़ा फायदा है फास्ट इमरजेंसी सर्विसेज जी हाँ इमरजेंसी सिचुएशंस में डॉक्टर्स हो रेस्क्यू टीम्स है या फिर कोई और मेडिकल सप्लाई है ज्यादा तेजी से डेस्टिनेशन तक पहुँच सकती है वहीं पर टाइम सेविंग भी है बिजी सिटीज में लोगों का बहुत सा वक्त जो है वो ट्रैफिक में यूं ही वेस्ट हो जाता है आपको पता ही होगा आगे बड़ी बड़ी सिटीज में घंटों जाम लगना बड़ी कॉमन सी बात है एयर ट्रांसपोर्ट इस वक्त की बचत करेगा और मुझे लगता है कि आपको आपके डेस्टिनेशन पर आसानी से पहुंचा देगा वहीं कई एयर टैक्सीज जो है वो इलेक्ट्रिक पावर पर चलने के लिए डिजाइन की जा रही है इससे फ्यूल कंजम्पशन होगा और पोल्यूशन कितना कम हो जाएगा यानी एक तरह की क्लीन टेक्नोलॉजी और हाँ बेटर कनेक्टिविटी ये हम कैसे भूल सकते हैं बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पहुँचना आसान नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में इन एरियाज में पहुँचना आसान हो जाएगा क्योंकि रोड्स बनाने का झंझट ही नहीं वैसे ऐसा नहीं है कि इतने सारे फायदे मैं गिना रही हूँ तो इसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं नहीं दोस्तों फ्लाइंग कार्स के अपने अलग चैलेंजेस हैं सबसे बड़ा चैलेंज है सेफ्टी कंसर्न जैसे मैंने कहा कि सुनने में बड़ा एक्साइटिंग सा लगता है यू नो अगर आप कोई मूवी में देख रहे हो या कोई फिक्शन मूवी चल रही है आपको इतनी चीजें एक्साइट करती है बट अगर आपको खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करने को कहा जाए तो शायद आप रिलक्टेंट हो गए होंगे सबसे बड़ा सवाल जो मुझे रोकता है वो है सेफ्टी को लेकर मतलब अगर हवा में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा भाई इसीलिए बहुत एडवांस सिस्टम जो है उसकी जरूरत है भाई एक चीज मुझे लगती है जो और भी बहुत ज्यादा तरंदाज होगी वो है हाई कॉस्ट शुरू में फ्लाइंग व्हीकल्स बहुत ज्यादा महंगे होंगे हर इंसान के लिए इन्हें अफोर्ड करना पॉसिबल ही नहीं होगा ये तो भाई एक बात हुई आजकल हम रोड्स पे ट्रैफिक का जो है ना वो रोना रोते हैं कल हो सकता है हजारों फ्लाइंग कार्स हवा में हो तो उनका मूवमेंट कैसे होगा एयर ट्रैफिक को मैनेज करना उफ बड़ा चैलेंजिंग होगा वहां पे तो आप जो है वो सिग्नल्स भी नहीं लगा सकते क्या करोगे फिर उसके साथ जो है वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर जी हाँ फ्लाइंग टैक्सीज के लिए स्पेशल लैंडिंग एरियाज और चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत होगी तो फिर एक एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका लोड भी बढ़ता है फिर मैं सोच रही थी बारिश हो या फिर बहुत ज्यादा हवा चल रही हो या यू नो डस्ट है तो ऐसे में या बहुत ज्यादा और कोई क्लाइमेटिक कंडीशन है जहाँ मतलब जहाँ पर मुझे लगता है कि इस तरह के फ्लाइंग व्हीकल्स से उनका ऑपरेशन बड़ा मुतासर होगा मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आज मौसम ठीक है तभी तो मैं जा सकता हूँ अदरवाइज मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे वैसे एक ऐसी सिटी भी आने वाले वक्त में होगी जहाँ सिर्फ और सिर्फ एयर टैक्सी आप जो है वो आसानी से सिंपली मोबाइल ऐप से बुक करेंगे वो आपके घर के नज़दीक आके लैंड करेगी आप घर से निकलेंगे नियरेस्ट टैक्सी स्टैंड तक पहुंचेंगे और बस 10 मिनट में अपनी डेस्टिनेशन पर लैंड कर जाएंगे फ्यूचर कैसा होगा पता नहीं हो सकता है फ्यूचर में ऑफिसेज मॉल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की रूफ टॉप पर एयर टैक्सी लैंडिंग पी पैड्स भी मौजूद हों स्मार्ट टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूट्स को मैनेज करेगा पर हाँ ट्रैवल को ज्यादा सेफ भी बनाएगा लेकिन एक्सपर्ट्स की अगर मैं मानूं जो मैं सुनती रहती हूँ पॉडकास्ट तो मुझे समझ में आया कि फ्लाइंग कार्स शायद ट्रेडिशनल कार्स को पूरी तरह से रेस कभी ना कर पाए ठीक है लोग पसंद करेंगे लेकिन एक बड़ी तादाद एक बड़ा तबका ऐसा भी होगा जो ट्रेडिशनल कार्स को ही अपना फर्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मानेगा तो कहने का मतलब है कि दोनों सिस्टम एक साथ चलेंगे रोड पर भी ट्रैफिक हवा में भी अगर कल से यहाँ आपसे कहा जाए कि जी कल से दोहा में फ्लाइंग टैक्सी सर्विस शुरू होगी तो क्या आप उसमें सफर करना पसंद करेंगे क्या आप भी आज भी ट्रेडिशनल कार पर ज्यादा भरोसा करते हैं चलिए मुझे बताइए 666-22107 पर इसे ये सवाल अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प है खैर बस आखिरी टिक यही होगा मेरा कि आज फ्लाइंग कार्स एक फ्यूचरिस्टिक ड्रीम लगती है लेकिन टेक्नोलॉजी की रफ्तार देखकर लगता है कि शायद अगले चंद सालों में ये हमारी रोजमर्रा

0: हिस्सा बन जाए. अब हम इसे किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे ये एक अलग बात है. तो इस सफारी के लिए, सफारी तो नहीं कहना चाहिए, क्या हम भी हवा में सफर करने के लिए तैयार हैं? ये जवाब तो मुझे आप ही देंगे. फिलहाल जब तक आप अपने जवाब को जो है वो सोच रहे हैं कि मुझे कैसे देना है, क्या देना है, मैं आपसे यहाँ पर इजाजत ले लेती हूँ. कल मिलूंगी वापस एक और नए टॉपिक पे बात करूंगी. तब तक मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हैं सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. One step to 2020.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.
2: हवा के झोंके आज मौसम से टूट गए.
3: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है.

0: इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है रिक्वेस्ट शो। रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ, संडे से थर्सडे, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, FM
2: 107, देसी देसी। स्कैम अलर्ट।
0: अब कौन आदमी सच्चा, कौन आदमी झूठा, ये आप कैसे पता लगाएंगे? भरोसा तो है नहीं किसी पर। तो आजकल ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं जिसको पकड़ पाना बेहद मुश्किल हो गया। वेल दोस्तों, इस्तकबाल है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रॉड के बारे में जो आपके साथ चंद मिनटों में हो जाएगा और आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है क्या। वेल, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रॉड के बारे में जो कि आपको भारी पड़ सकता है खाने को लेकर। है ये क्या मतलब? तो दोस्तों, ये हो सकता है फूड डिलीवरी स्कैम। ऐसा स्कैम है, नए जमाने का नया स्कैम, चलिए आपको बताते हैं। ये स्कैम ऐसे काम करता है, समझिए कि आपने फूड जो है वो ऑर्डर किया, खाना जो है वो ऑर्डर किया है किसी भी वेबसाइट से या फिर किसी भी एप्लीकेशन से। तो ऑर्डर करने के बाद एक राइडर जो है वो असाइन किया जाता है उस फूड को, उस खाने को एक तरफ से दूसरी तरफ यानी कि आपके घर तक पहुंचाने के लिए। आपने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुना है। होता यह है कि आपके पास एक लिंक जो है वो आ गया और उस लिंक के बाद आपके पास एक कॉल आती है। कॉल के बाद आपसे कहा जाता है कि आप एक बार प्लीज इस लिंक पर क्लिक करिए और बताइए कि जो कैश ऑन डिलीवरी का अमाउंट है, आपके घर जो फूड डिलीवरी हो रही है वो अमाउंट सही है या नहीं। आपको लगता है ठीक है, ये जेन्युइन बंदा है, जेन्युइन राइडर है जो मेरा खाना एक रेस्टोरेंट से मेरे घर तक लाएगा। ऐसे में आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं क्योंकि एग्जैक्ट अभी आपने फूड जो है वो ऑर्डर किया है एक एप्लीकेशन से और सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट के बाद आपके पास लिंक आ गया क्योंकि एक बंदा राइडर है और यहाँ पर तुरंत 2 मिनट के अंदर मुझे मैसेज आ गया। ऐसे में आप तुरंत उस पर क्लिक करते हैं लेकिन सारी आपकी बैंक डिटेल्स या आपका जो डेटा है या मोबाइल का जो एक्सेस है वो उस स्कैमर के पास जा सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। हो सकता है, देखिए पता ही नहीं है ना कि कौन कैसे मिला हुआ है, आपके पास खाना ला सकता है, लेकिन ये नया स्कैम होता है ऐसे है कि आपका जो फोन नंबर है वो किसी को दे दिया जाता है, वो आपको लिंक भेजता है। इसमें राइडर इंक्लूड नहीं है लेकिन कोई थर्ड पार्टी इंक्लूड हो सकती है कि आपका नंबर उनके पास है, उनकी डिटेल यानी कि आपकी डिटेल भी उनके पास है और वो आपको लिंक भेजते हैं और कहते हैं प्लीज मैम वेरीफाई करिए, क्योंकि आज के जमाने में स्कैमर्स का सोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। लिंक पर किसी भी तरह से क्लिक ना करें। अगर से सिर्फ कोई ये भी कह रहा हो कि लिंक पर क्लिक करके ये बता दीजिए कि जो कैश ऑन डिलीवरी का अमाउंट हो क्या वो सही है, या फिर कोई कहे कि लिंक पर क्लिक करके आप पेमेंट कर दीजिए, कैश ऑन डिलीवरी एप्लीकेबल नहीं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जब भी आपने कैश ऑन डिलीवरी का एप्लीकेशन में ऑप्शन दबाया है तो कैश ऑन डिलीवरी ही करें। किसी थर्ड पार्टी या किसी अननोन नंबर से लिंक आए आपके पास कि फूड जो डिलीवरी आप कराना चाहते हैं उसका पेमेंट या पहले करिए या फिर एक बार लिंक क्लिक करके चेक कर लें, तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें, ये एक स्कैम हो सकता है। ऐसे स्कैम से बचने के लिए आपको सुनते रहना होगा फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए तरीके के स्कैम के बारे में मैं यानी कि फजील हर हफ्ते बात करता रहता हूं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहें FM 107।

0: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोड़ा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ। छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिस्टर, आपका अपना रेडियो शो जो करता है हमारी जमीन को बेहतर बनाने की। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश, एंड टुडे वी आर डाइविंग इनटू अ सुपर एक्साइटिंग टॉपिक,
0: टॉपिक ऑफ द डे,
1: ग्रीन ट्रांसपोर्ट, मूविंग विदाउट पोल्यूटिंग। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने ट्रैवल को इको फ्रेंडली बना सकते हैं और कैसे छोटी छोटी दिलियां बड़े फर्क ला सकते हैं। सो बकल अप, लेकिन इको फ्रेंडली स्टाइल में। टुडेज शो इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन मूव अराउंड विदाउट हार्मिंग आवर प्लैनेट। हम डिस्कस करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक कार्स और साइकिलिंग के बेनिफिट्स। प्लस वी हैव गॉट सम अमेजिंग ग्लोबल स्टोरीज, प्रैक्टिकल टिप्स और एक फन चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू। अपनी राय और आइडियाज शेयर करने के लिए कनेक्ट विद अस ऑन सोशल मीडिया @FM107 Qatar या हमें मैसेज करें व्हाट्सएप पे 6622107। अब चलिए शो स्टार्ट करते हैं।
0: सस्टेन द फ्यूचर।
1: लिस्टर्स, आज का टॉपिक है ग्रीन ट्रांसपोर्ट, मूविंग विदाउट पोल्यूटिंग। हमारी जमीन के लिए छोटी सी बात भी बहुत बड़ा असर कर सकती है। तो सबसे पहले ये ग्रीन ट्रांसपोर्ट है क्या? दुनिया एक बहुत बड़ा क्राइसिस फेस कर रही है, क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन। शहरों की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक और डस्ट इतनी ज्यादा हो गई है कि सेहत पर सीरियस असरात नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अपनी जरूरत ट्रैवलिंग और कम्यूटिंग स्टॉप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सफर तो हर रोज की जरूरत है। फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ग्रीन ट्रांसपोर्ट। ग्रीन ट्रांसपोर्ट का मतलब है ऐसी ट्रैवलिंग और कम्यूटिंग जो एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज करे। यानी कि हम अपना सफर कंप्लीट करें लेकिन हवा को पोल्यूट ना करें, फ्यूल वेस्ट ना हो और ट्रैफिक और नॉइज पोल्यूशन कम हो। इस कॉन्सेप्ट के अंदर मल्टीपल ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस और सिस्टम्स आते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन, मेट्रो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज और हाइब्रिड कार्स, साइकिलिंग और वॉकिंग, कार पूलिंग और शेयर्ड मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड व्हीकल्स। ये सब चीजें एक ही प्रिंसिपल पे बेस्ड करती है, मूव करो लेकिन प्लैनेट को हार्म मत करो। ट्रांसपोर्ट सेक्टर दुनिया के टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का एक बड़ा हिस्सा है। पेट्रोल और डीजल कार्स स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं, जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बनती है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट इन इमिशंस को ड्रास्टिकली कम करता है। शहरों की पोल्यूटेड हवा अस्थमा, लंग कैंसर और हार्ट डिजीजेस का रिस्क बढ़ाती है। अगर ट्रांसपोर्ट ग्रीन हो जाए तो एयर क्वालिटी बेटर होगी और लोग सेहतमंद रहेंगे।

और बसेस का एफिशिएंट नेटवर्क लोगों को प्राइवेट कार्स के मुकाबले में चीप और फास्ट ऑप्शन देता है। लाहौर की ऑरेंज मेट्रो और कराची की ग्रीन लाइन बस सिस्टम ग्रेजुअली पोल्यूशन और ट्रैफिक को रिड्यूस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार्स और बसेस अब लग्जरी नहीं, नेसेसरी बन रही है। इनके जो फीचर्स हैं वो है जीरो टेल पाइप इमिशंस, कोई स्मोक या एग्जॉस्ट नहीं, हाई एनर्जी एफिशिएंसी, पेट्रोल कार्स के मुकाबले में 3% ज्यादा एफिशिएंट, लो मेंटेनेंस यानी ऑयल चेंज या इंजन इश्यूज कम, रिन्यूएबल कंपैटिबल, सोलर या विंड से चार्ज किए गए ईवीज और भी इको फ्रेंडली बन जाते हैं। अब इनके चैलेंजेस देखें तो चैलेंजेस हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अभी बैटरी कॉस्ट ज्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज में एडॉप्शन स्लो है। ग्लोबल एग्जाम्पल्स

0: 16,000 electric buses हैं, दुनिया का सबसे बड़ा EV bus fleet. Delhi, India में EV taxis और e-rickshaws काफी popular हो रहे हैं. कभी-कभी simplest solution सबसे best होते हैं. Walking और cycling environment के लिए बिल्कुल green और pollution free है. Benefits देखें तो zero emissions, healthy lifestyle, मतलब weight control, stress कम, fitness better, affordable, जैसे कि cycle का maintenance minimal है और walking free. इसका साथ ही traffic reduction से भी बचा जा सकता है. जब आप cycle use करें या फिर पैदल चलें, तो ये दोनों ही सूरतों में कम space लेते हैं. Global examples देखें तो नीदरलैंड में साइकिलिंग कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि 60% से ज्यादा लोग अपना डेली कम्यूट साइकिल से करते हैं. फ्रांस में देखें तो कार फ्री डेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जहां सिर्फ पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट अलाउड होते हैं. कारपूलिंग और शेयर्ड मोबिलिटी के हवाले से देखा जाए तो कारपूलिंग का सिंपल फार्मूला है, अगर चार लोग एक ही ऑफिस जाते हैं तो चार अलग कार्स क्यों, एक ही कार शेयर करो. लेस व्हीकल्स, लेस एमिशंस, फ्यूल और पार्किंग कॉस्ट कम, सोशल इंटरेक्शन एंड कन्वीनियंस. राइड शेयरिंग एप्स कार पूलिंग सर्विसेज ऑफर कर रही हैं, जो इको फ्रेंडली भी हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी. ग्रीन ट्रांसपोर्ट का एक और मिशन है व्हीकल्स को रिन्यूएबल एनर्जी से पावर करना, सोलर पावर्ड कार्स और बसेस, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स व्हीकल्स, ट्राम्स और ट्रेन्स जो रिन्यूएबल पावर्ड ग्रिड से चलती है. एग्जाम्पल अगर लें तो जर्मनी ने हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स लॉन्च किए हैं, जो डीजल ट्रेन्स का इको फ्रेंडली रिप्लेसमेंट है. दुबई ने हाइब्रिड वाटर टैक्सी और सोलर बसेस इंट्रोड्यूस किए हैं. ट्रांसपोर्ट सिर्फ व्हीकल्स के बारे में नहीं, बल्कि शहरों की प्लानिंग में भी होता है. डेडिकेटेड साइकिल लेन्स बनानी चाहिए, वाइड फुटपाथ पेडेस्ट्रियन के लिए हों, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जहां बस, ट्रेन और मेट्रो एक नेटवर्क की तरह वर्क करे, कार फ्री जोन्स जहां सिर्फ वॉकिंग और साइकिलिंग अलाउड हो. एग्जांपल के तौर पे देखें तो डेनमार्क ने साइकिलिंग लेन्स और कार फ्री स्ट्रीट ने इस शहर को सबसे इको फ्रेंडली सिटीज में शामिल किया है. सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वॉकिंग के लिए डेडिकेटेड प्लानिंग ने कार डिपेंडेंसी को काफी कम कर दिया है. ग्रीन ट्रांसपोर्ट अब एक लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल प्रायोरिटी बन चुका है. UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs में भी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को हाईलाइट किया गया है. SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज ग्रीन ट्रांसपोर्ट अर्बन पोल्यूशन और कंजेशन रिड्यूस करता है. CDG 30 क्लाइमेट एक्शन कार्बन इमिशंस को कम करने का एक मेजर सॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स है. अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो हमारे शहरों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में पोल्यूशन क्राइसिस वर्स्ट हो रहा है. स्मोक सीजन हर साल सीवियर होता जा रहा है. ग्रीन ट्रांसपोर्ट के बिना इस इशू को सॉल्व करना मुमकिन नहीं. BRT सिस्टम्स एक पॉजिटिव स्टेप है. इलेक्ट्रिक बसेस पायलट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन साइकिल लेन्स और कार पूलिंग कल्चर प्रमोट करना भी बाकी है. ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक फैंसी आइडिया नहीं बल्कि सर्वाइवल की जरूरत है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट, EVs, साइकिलिंग, वॉकिंग और रिन्यूएबल पावर सिस्टम हमारी इकोनॉमी, हेल्थ और के लिए बेस्ट सॉल्यूशंस हैं. सोचें अगर हम सब कलेक्टिवली ग्रीन ट्रांसपोर्ट अडॉप्ट करें तो हवा साफ होगी, ट्रैफिक मैनेजेबल होगा, फ्यूल डिपेंडेंसी कम होगी और फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेफर प्लैनेट होगा. ग्रीन ट्रांसपोर्ट का सिंपल मैसेज है, मूव करो लेकिन पोल्यूट मत करो.
1: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर RJ महविश के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
0: आखिर में एक दफा फिर नजर डालते हैं ग्रीन ट्रांसपोर्ट पे. ये वो तरीका है जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कम करते हैं. For example, using public transport like buses or trains, driving electric vehicles, ya phir cycling and walking. Qatar mein dekhe to we are seeing some great examples of green transport. Aur aaj humne inhi ke bare mein baat bhi ki. Jaise Doha Metro, ye ek shandar public transport system hai jo na sirf convenient hai balki eco-friendly bhi.

दोहा मेट्रो चलने से रोड्स पर काफी ट्रैफिक कम होता है और फॉसिल फ्यूल्स का यूज भी घटता है। एक स्टडी के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लाइक मेट्रोस कैन रिड्यूस कार्बन इमिशंस बाय अप टू 50% कंपेयर टू प्राइवेट कार्स। ये है असली गेम चेंजर। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी टैक्सीज। यू माइट हैव सीन सम शाइनी न्यू ईवी टैक्सीज अराउंड दोहा। ये बैटरी पावर्ड होते हैं और इनका जीरो टेल पाइप इमिशन होता है, मतलब नो हार्मफुल स्मोक कमिंग आउट व्हाइल यू ट्रेवल। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईवीज कैन कट ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बाय 30-40% ओवर देयर लाइफ टाइम कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल कार। ये है फ्यूचर का ट्रांसपोर्ट। और तीसरा एग्जाम्पल है साइकिलिंग। दोहा में अभी साइकिलिंग कल्चर ग्रो कर रहा है, स्पेशली इन एरियाज लाइक एजुकेशन सिटी या अलविदा पार्क। साइकिलिंग इज नॉट जस्ट गुड फॉर द प्लैनेट बट आल्सो फॉर योर हेल्थ। जीरो इमिशंस, जीरो फ्यूल और फुल फिटनेस, इससे बेहतर क्या हो सकता है। अब थोड़ा रियलिटी चेक। कतर में वी लव आवर कार्स राइट, लेकिन कार कल्चर का एनवायरनमेंट पे बहुत असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अननेसेसरीली बड़े व्हीकल चलाते हैं या सिंगल ऑक्यूपेंसी कार यूज करते हैं, वी आर एडिंग टू एयर पोल्यूशन एंड ट्रैफिक कंजेशन। एक एवरेज पेट्रोल कार हर साल लगभग 4.6 मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करती है, एंड सीरियसली दैट्स ह्यूज। तो हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? Why does sustainability matter? क्योंकि ये सिर्फ आज के नहीं बल्कि हमारी फ्यूचर generations के लिए भी है। Green transport reduces air pollution, saves natural resources और climate change के effects को कम करता है। अगर हम आज छोटे steps लें, we can ensure a cleaner, healthier planet for our kids. जिनिस्टर्स, और अब बस हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं अपने ग्रीन फ्लैश सेगमेंट के साथ। सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 पे सस्टेन द फ्यूचर विद आरजे महाविशाल। अब चलिए दुनिया भर की कुछ एक्साइटिंग सस्टेनेबिलिटी अपडेट्स के लिए, ये है हमारा ग्रीन फ्लैश सेगमेंट।
1: ग्रीन फ्लैश।
0: पहली खबर आती है ओस्लो, नॉर्वे से। ओस्लो इज एमिंग टू बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार फ्री सिटीज बाय 2030। दे आर एंडिंग साइकिलिंग लेन्स, इंप्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सिटी सेंटर में पिट कार्स को बैन कर रहे हैं। रिजल्ट, क्लीनर एयर और हैप्पियर रेजिडेंट्स। दूसरी खबर है कोपेनहेगन, डेनमार्क से। वहाँ 62% लोग डेली साइकिल से काम पे जाते हैं। सिटी ने डेडिकेटेड बाइक ब्रिजेस बनाए हैं और अब वहाँ की कार्बन इमिशंस पहले के मुकाबले में बहुत कम है। तीसरी स्टोरी आती है बोगोटा, कोलंबिया से। हर संडे बोगोटा के रोड्स कार्स के लिए बंद हो जाते हैं और लोग साइकिलिंग, वॉकिंग या स्केटिंग के लिए निकलते हैं। इस इनिशिएटिव ने ना सिर्फ पोल्यूशन कम किया है बल्कि कम्युनिटी स्पिरिट को भी बूस्ट किया है। ये थी दुनिया भर से ग्रीन ट्रांसपोर्ट के बारे में खबरें। अब बात करते हैं एक कटिंग एज आइडिया की जो ट्रांसपोर्ट के फ्यूचर को शेप कर रहा है।
1: ग्रीन इनोवेशन।
0: आज हम स्पॉटलाइट डाल रहे हैं हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पे। ये एक अल्ट्रा फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो पॉड्स को वैक्यूम ट्यूब्स में 700 माइल पर आवर तक चला सकता है। इसमें फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत नहीं और ये सोलर एनर्जी से पावर हो सकती है। दुनिया भर में इस पे काम चल रहा है और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। इमेजिन दोहा से दुबई सिर्फ 30 मिनट में। दैट्स अ गेम चेंजर फॉर सस्टेनेबल ट्रेवल। अब बारी आती है हमारे इको लिविंग टिप्स की।
1: इको लिविंग टिप्स।
0: चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं टू मेक योर ट्रांसपोर्ट ग्रीनर। हफ्ते में एक बार दोहा मेट्रो या बस का यूज करें इंस्टेड ऑफ योर कार। इट्स अफोर्डेबल, कन्वीनियंट, प्लैनेट के लिए बेहतर। अगर आपकी डेस्टिनेशन 1-2 किलोमीटर के अंदर है तो वॉक या साइकिलिंग करें, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ऑफिस या स्कूल जाते वक्त दोस्तों या कोलीग्स के साथ कारपूल करें, ये फ्यूल और इमिशंस दोनों कम करता है। स्मॉल स्टेप्स, बिग इम्पैक्ट। ट्राई दीज टिप्स और देखें कैसे आप फर्क ला सकते हैं। और अब बारी आती है हमारे सेगमेंट वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट की।
1: वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट।
0: वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट में आज हम आपको सुनाएंगे एक यंग कतरी एनवायरमेंटलिस्ट जो कि पैशनेटली बात करेंगे साइकिलिंग के बारे में और कैसे इनका पर्सपेक्टिव सस्टेनेबल लिविंग के बारे में चेंज हुआ। तो आइए सुनते हैं।
2: ايكو ترانزيت شركة خاصة تشتغل في مجال النقل والمواصلات في دولة قطر. احنا الحمد لله في هذا المؤتمر لوزارة المواصلات اعلننا عن الوكيل الحصري لمنتجات شركة ايكو ترانزيت من الحافلات 6 متر الى 18 متر والمركبات الكهربائية اللي موجود حاليا. الوكيل الحصري راح لنا الحمد للسيارات ان شاء الله. جميع حافلاتنا فيها امكانية الوصول لاخواننا من ذوي الاعاقة، وطبعا هذه الميزة احنا ركزنا عليها وقت تصميم الحافلات اللي موجودة حاليا. وغير المنتجات اللي ذكرتها عندنا شواحن كهربائية بعد السريعة والبطيئة راح تكون موجودة في قطر. في 2030 كل قطاع النقل العام راح يكون عن طريق الطاقة النظيفة، فهذا طبعا شجعنا أن ندخل في هذا المجال لأن خطتنا تتوافق مع رؤية قطر 2030 للاستدامة والبيئة النظيفة.
0: जी जबरदस्त, एक बहुत ही इंस्पायरिंग वॉइस हमने सुनी और ये हमें याद दिलाती है कि हर छोटा कदम

0: चेंज करता है। आप भी इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं।
1: वीकली चैलेंज।
0: तो लिसनर्स, ये रहा आपका टेक अवे चैलेंज इस हफ्ते के लिए। इस हफ्ते ट्राई करें कि एटलीस्ट एक दिन आप कार के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल या फिर वॉक करें। फॉर एग्जाम्पल, दोहा मेट्रो लेकर ऑफिस जाएं, शाम को पार्क में साइकिलिंग करें। अगले हफ्ते हमें बताएं कि आपने ये चैलेंज कैसे पूरा किया। मैसेज करें व्हाट्सएप पे 666-22-107 पे या फिर सोशल मीडिया पे @FM107 Qatar। लिसनर्स, बहुत शुक्रिया आपका साथ देने के लिए। आज हमने सीखा ग्रीन ट्रांसपोर्ट के बारे में और कैसे हम सब अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अगले हफ्ते हम बात करेंगे ओशियंस इन क्राइसिस के बारे में, ओवर फिशिंग, कोरल ब्लीचिंग और पॉल्यूशन जैसे सीरियस टॉपिक्स पर। वी विल ऑल्सो शेयर टिप्स लाइक अवॉइड ओवरफिश्ड सीफूड एंड जॉइनिंग बीच क्लीनअप्स। सो डोंट मिस इट। अपनी राय शेयर करें M107 Qatar या व्हाट्सएप पे 666-22-107। तब तक के लिए स्टे ग्रीन, स्टे सस्टेनेबल और अपनी जमीन का ख्याल रखें। मैं हूं मावश, अब आपसे वक्त हो गया है कहने का। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।
1: सस्टेन द फ्यूचर। आप सुन रहे हैं FM 107, दिल से देसी।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
2: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स न सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं। स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल लाइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स

0: अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हित से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफ मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
1: Qatar's most heard station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

قل الله.

इनसे पूछो तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई ऐसा भी है जो हक की तरफ रहनुमाई करता हो? कहो वो सिर्फ अल्लाह है जो हक की तरफ रहनुमाई करता है। फिर भला बताओ जो हक की तरफ रहनुमाई करता है वो इसका ज्यादा मुस्तहक है कि उसकी पैरवी की जाए या वो जो खुद राह नहीं पाता इल्ला ये कि उसकी रहनुमाई की जाए? आखिर तुम्हें क्या हो गया है, कैसे उल्टे उल्टे फैसले करते हो? हकीकत यह है कि इनमें से अक्सर लोग महज कयास और गुमान के पीछे चले जा रहे हैं, हालांकि गुमान हक की जरूरत को कुछ भी पूरा नहीं करता। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। और ये कुरान वो चीज नहीं है जो अल्लाह की वही और तालीम के बगैर तसनीफ कर लिया जाए, बल्कि ये तो जो कुछ पहले आ चुका था उसकी तस्दीक और अल-किताब की तफसील है। इसमें कोई शक नहीं कि ये फरमा रवाए कायनात की तरफ से है। क्या ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने इसे खुद तसनीफ कर लिया है?

लोग हैं जो तेरी बातें सुनते हैं, मगर क्या तू बहरों को सुनाएगा? खा वो कुछ न समझते हों। इनमें बहुत से लोग हैं जो तुझे देखते हैं, मगर क्या तू अंधों को राह बताएगा? खा उन्हें कुछ न सूझता हो। हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, लोग खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं। आज ये दुनिया की जिंदगी में मस्त हैं, और उस अल्लाह इनको इकट्ठा का तो यही दुनिया की जिंदगी इन्हें ऐसी महसूस होगी गोया ये महज एक घड़ी भर आपस में जान पहचान करने को ठहरे थे। उस वक्त तहकीक हो जाएगा कि फिल वाके सख्त घाटे में रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुठलाया और हरगिज वो राह रात पर न थे। जिन बुरे नताइज से हम इन्हें डरा रहे हैं, उनका कोई हिस्सा हम तेरे जीते जी दिखा दें या उससे पहले ही तुझे उठा रहे, बहरहाल इन्हें आना हमारी ही तरफ है, और जो कुछ ये कर रहे हैं उस पर अल्लाह गवाह है। हर उम्मत के लिए एक रसूल है, फिर जब किसी उम्मत के पास उसका रसूल आ जाता है तो उसका फैसला पूरे इंसाफ के साथ चुका दिया जाता है और उस पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाता। कहते हैं अगर तुम्हारी ये धमकी सच्ची है तो आखिर ये कब पूरी होगी? कहो मेरे इख्तियार में तो खुद अपना नफा व जरर भी नहीं, सब कुछ अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ है। हर उम्मत के लिए मोहलत की एक मुद्दत है, जब ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो घड़ी भर की तकदीम व ताखीर भी नहीं होती। इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर आह का आजाब अचानक रात को या दिन को आ जाए तो तुम क्या कर सकते हो? आखिर ये ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए मुजरिम जल्दी मचाएं? क्या जब वो तुम पर आ पड़े उसी वक्त तुम उसे मानोगे? अब बचना चाहते हो हालांकि तुम खुद ही उसके जल्दी आने का तकाजा कर रहे थे। फिर जालिमों से कहा जाएगा अब हमेशा के आपका मजा चखो, जो कुछ तुम कमाते रहे हो उसकी पादाश के सिवा और क्या बदला तुमको दिया जा सकता है।

حتى